ओम शांति। बाबा ने हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान देकर स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। कभी हम सोचते थे कि सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के हाथ में या विष्णु जी के हाथ में है और वो उनसे संहार का कार्य करते हैं, परंतु अब हमें पता चल गया कि स्वदर्शन चक्र तो हमारे पास भी है और हमें उससे संहार करना है व्यर्थ संकल्पों का, मनोविकारों का, दुष्वृत्तियों का, अपने व्यसनों का। बाबा ने ज्ञान देकर हमें भरपूर किया और स्मृतियां दिलाई। एक बहुत बड़ी स्मृति ये दिलाई, तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, तुम तो संपूर्ण पवित्र थे। इसको यदि हम याद करते हैं तो व्यसनों को छोड़ने का बल हमारे पास आ जाता है, निर्विकारी बनने की प्रेरणाएं तेजी से हमें प्राप्त होने लगती हैं। उससे भी पहली स्मृति दिलाई थी, तुम आत्मा हो, महान हो। आत्मा का ज्ञान तो शास्त्रों में भी थोड़ा बहुत था, लेकिन बाबा ने हमें स्वमान भी याद दिलाए, तुम साधारण आत्मा नहीं, तुम महान आत्मा हो, तुम शक्ति संपन्न हो। अनेक चीजें आत्मा की हमें याद दिलाई, और यदि हमें ये याद आती रहे, यदि हमारे अंदर ये जागृति हो जाए, तो हमारा देह भान छूटता जाएगा और देह भान से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं, विकार, मन का भारीपन सब समाप्त होता जाएगा। तीसरी स्मृति दिलाई हमें हमारे पूज्य स्वरूप की, कि सतयुग से तुम चले इस संसार में, सतयुग तुम्हारा बहुत सुंदर भी था, त्रेता भी बहुत सुंदर भी था, तुम वहां पर निर्विकारी थे, और फिर द्वापर युग के बाद तुम ही पूज्य बनकर सबके इष्ट बन गए, क्योंकि तुमने संगम युग पर दो कार्य किए, स्वयं को पवित्र बनाया और बाबा के महान कार्य में मददगार बने, इस कारण तुम्हारी पूजा होती है। तो हम पूज्य बन गए। पूज्य स्वरूप को यदि हम याद करते हैं, अपने पूज्य स्वरूप को याद करें, हम दाता, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, सबके विघ्न नष्ट करने वाले, सबको पापों से मुक्त करने वाले, सभी को दुखों से दूर करने वाले, विद्या देने वाले, बुद्धि देने वाले, सफलता देने वाले, विघ्न हरने वाले, ये हमारा पूज्य स्वरूप है। गहराई से इस फीलिंग में आए, ये मेरा स्वरूप है। और चौथा याद दिलाया, तुम अब ब्राह्मण हो, गॉडली स्टूडेंट, भगवान के बच्चे, उसकी पालना में पलने वाले, श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करने वाले, और तुम्हें बनना है फरिश्ता। तुम कल पहले भी फरिश्ते बने थे। देखिए, हमें पूरे 5000 साल की कहानी बाबा ने याद दिला दी, और कितना अच्छा हुआ कि जब हम इस यात्रा के अंत में पहुंचे तो स्वयं भगवान ने आकर हमारी थकान मिटा दी। उसने कहा, बच्चे मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा सहयोगी हूँ, अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे दुखों के दिन पूरे हुए, अब मैं तुम्हें घर वापिस ले जाने आया हूं, तुम अथाह शांति में रहोगे और फिर जाकर पुनः विश्व पर राज करोगे। तो ये हमारे पांच स्वरूप हैं, इनका हम बहुत अच्छी तरह अभ्यास करते रहें। इन पांचों स्वरूपों के अभ्यास से हमारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे, हमारे जीवन में दिव्यता आ जाएगी, योग बहुत अच्छा लगेगा। तो आज सारा दिन बहुत अच्छी तरह हर घंटे में एक बार पांच स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, अपने एक एक स्वरूप को सामने इमर्ज करेंगे और ये फीलिंग देंगे, ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है। इससे देखें सारा दिन कितनी सुखद फीलिंग रहेगी, व्यर्थ से पूरी तरह आप मुक्त हो जाएंगे। साथ साथ जब ब्राह्मण स्वरूप को याद करें तो अपने किसी अच्छे स्वमान को भी याद करेंगे, और आज का स्वमान होगा, मैं
इस जहान का नूर हूँ, मेरे ऊपर सारी सृष्टि का आधार है, मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त भी हूँ। तो आज इस नशे में रहते हुए सारा दिन बहुत अच्छी तरह पांचों स्वरूपों का अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। आज के युग की चुनौती यह है कि कोई व्यक्ति जिस भूमिका को ग्रहण करता है, वह भूमिका उस व्यक्ति के बढ़ने की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। क्षमता और प्रभावकारिता तब आते हैं जब व्यक्ति अपनी विस्तृत होती भूमिका के साथ साथ अपनी क्षमताओं और ज्ञान को भी बढ़ाता जाता है। लगातार सुधार करना ही इकलौता रास्ता है। कोई भी हमेशा सफल नहीं होता, न कोई आजीवन असफल ही रहता है। सफलता विलंबित असफलता है और असफलता विलंबित सफलता है। न असफलता अंतिम होती है और न ही सफलता स्थायी होती है। आज की सफलता और आज की विफलता जीवन की लंबी यात्रा में एक के बाद एक उठाया जाने वाला कदम है। जीवन एक खेल है और यदि आप यह खेल खेलते रहे तो जीत आपकी ही होगी। रास्ते को बीच में छोड़कर न जाएं, अंत तक चलें, चलते रहें। आखिरकार आप समापन रेखा को जरूर पार कर जाएंगे। अधिकांश लोगों के लिए जीवन कोल्हू के बेल की तरह एक ही चक्र में घूमते रहने जैसा होता है। सुबह उठना, बिस्तर छोड़ने से पहले कुछ देर आलस के साथ कश्मकश करना, उसी तरह ब्रश करना, वही कॉफी पीना, वही अखबार पढ़ना, उसी निश्चित समय पर नहाना धोना, फिर हड़बड़ी में जल्दी जल्दी नाश्ता निगलना और काम के लिए दौड़ पड़ना, वही काम, वही ऑफिस, वही गपशप, वही लंच, वही बातचीत, घर वापसी का वही रास्ता, कभी न खत्म होने वाले वे ही टीवी सीरियल, वही बहसबाजी, वही डिनर ठूंसना, वही बिस्तर, फिर निढाल होकर सो जाना और अगले दिन वही उठना और फिर वही क्रम। जीवन को कोल्हू के चक्कर की तरह बना लेना कोई जरूरी तो नहीं है। जीवन का उबाऊ होना भी जरूरी नहीं है। जीवन साल भर के ऋतु चक्र को पूरा करके उसकी पुनरावृत्ति करते रहने जैसा भी नहीं है। जीवन थोपा हुआ होना भी जरूरी नहीं है। जीवन कोई आजीवन कारावास भी नहीं है। जीवन मात्र जीवित रहने से कुछ ज्यादा भी है।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

हर वर्ष कोई नई निपुणता प्राप्त करें और देखें कि जीवन कितना जीवंत है। जीवन में ऐसा कोई समय, ऐसी कोई अवस्था न आने दें जिन दिनों आप एक सक्रिय छात्र की तरह कुछ न कुछ सीख न रहे हों। गायन, वादन, नृत्य, वैकल्पिक चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी कोई नया विधि विधान, योगासन, कोई नई भाषा, उन्नत व्याकरण, लेख या कथा लेखन, भाषण कला, खाना पकाना, पेंटिंग, सुलेख, कला का कोई भी नया रूप, ड्राइविंग, तैराकी, कोई नया खेल, कोई नई तकनीकी शिक्षा, आध्यात्मिक अध्ययन, बागवानी, कोई पशु पक्षी पालना, एक्वेरियम में मछली पालना, फोटोग्राफी, कोई सांस्कृतिक गतिविधि, सीखने के लिए ऐसी असंख्य चीजों की सूची वास्तव में बहुत लंबी है।

इनमें से कुछ भी चुनें और सक्रिय बने रहें। जीवन में सदैव खोजी बने रहें, प्रयोग परीक्षण करते रहें, कोशिश करते रहें, अपनी उत्सुकता, जिज्ञासा और कौतूहल को बनाए रखें। कोई ऐसा काम करने की कोशिश करें जो आपने पहले न किया हो। नए नए व्यंजन बनाने में हाथ आजमाएं, उन वस्त्रों को पहनें जिन्हें पहनने में आप सकुचाते रहे हैं। कोई नई हेयर स्टाइल आजमाएं, ऐसे स्थानों पर जाएं जहां आप अभी तक न गए हों। यदि आप पुरुष हैं तो एक दिन रसोई संभालें, किसी दिन आंख पर पट्टी बांध कर रहें, किसी दिन अपने वाहन के बजाय सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, कार्यस्थल पर किसी दिन भूमिकाएं बदल कर देखें। कैसा रहे कि प्रबंध निर्देशक एक दिन रिसेप्शन पर बैठे। इस सूची का भी कोई छोर नहीं है। जीवन के साथ सृजनात्मक रहें, बस ऐसे ही कुछ न कुछ करते रहें। आपकी सारी सफलताओं, सारी उपलब्धियों और हासिल किए गए तमाम मुकामों से भी ज्यादा है जीवंत जीवन जीने के लिए अपने आप से अक्सर यह प्रश्न पूछते रहना, पिछली बार कब मैंने किसी काम को पहली बार किया था। जीवन को जश्न बना लें, अपने जीवन में हर दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जीवन को बड़ा बनाएं, जीवंत रहने के लिए जोश में रहें।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सामान्य बात है कि कुछ संस्थान बहुत तेजी से उभरते हैं और इसके बाद उससे भी ज्यादा तेजी से ताश के पत्तों के महल की तरह भर भरा कर गिर भी जाते हैं। उन लोगों से पूछें जिन्होंने शेयर बाजार में ऐसी ही कंपनियों में निवेश करके अपने हाथ जला लिए हैं, और उन अन्य अनेक लोगों से भी जो ऐसी ही वित्तीय कंपनियों में धन लगाकर अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। डबडबाती आंखों से वे अपनी व्यथा सुनाएंगे। हाँ, ऐसे संस्थान भी देखे जा सकते हैं जो अपना आधार सुदृढ़ करने में, व्यापारिक आदर्श स्थापित करने में, अपनी आधारभूत चीजों को सही व दुरुस्त करने में और अपनी पद्धतियों, प्रणालियों और आधारभूत ढांचे को यथास्थान व सही सही बैठाने में अपना समय लेते हैं। ये संस्थान हालांकि अपनी शुरुआती अवस्था में सुस्त रहते हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में वे बढ़त पकड़ लेते हैं। तकनीकी रूप से सुदृढ़ इन कंपनियों में जिन लोगों ने निवेश करके अपनी पूंजी खूब बढ़ाई है, उन लोगों से बात करें तो वे आपको सफलताओं की गाथा सुनाएंगे। एक कहावत प्रसिद्ध है कि रोम एक दिन में नहीं बन गया था। यदि वह एक दिन में बन गया होता तो अगले ही दिन धराशायी भी हो गया होता। कहने का भाव यही है कि सफलता इतनी जल्दी नहीं मिल जाती, और मान लीजिए अगर सफलता एक झटके में भी मिल जाए तो वह बहुत जल्द ही असफलता में भी बदल जा सकती है। अगर आप धीरे धीरे से अपने आप को हर पहलू से मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी यह सफलता कायम बनी रहेगी, ना कि उन महलों जैसे होंगे जो बहुत तेजी से उभरते हैं, बहुत तेजी से बन जाते हैं, लेकिन उससे भी तेजी से ताश के पत्तों के महल की तरह गिर जाते हैं। कोई भी इमारत जब बनाते हैं तो सबसे पहले उसका आधार तैयार करते हैं, और जितनी शक्तिशाली उसकी नींव होती है उतना ही वह मकान बड़े लंबे समय तक खड़ा रहता है, उसके गिरने का डर नहीं रहता है। तो जरूरी है अपनी नींव को सशक्त बनाना। कमजोर नींव पर बने मकान जल्दी धराशायी हो जाते हैं।

0: ओए रुको रुको ओए रुको ओए त्रिदेव त्रिमूर्ति एक बाइक पे तीन हैं और तुम लोगों को शर्म नहीं आती और बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे मालूम नहीं तुमको ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी तीन के बोझ की मारी
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज
0: ओए तुम्हारे मैच की तो ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्रीज बोल्ड हो जाओगे ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे ओए ये ट्रैफिक है भाई यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती ठोको ताली ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क
2: याद रखें एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं यह एक दंडनीय अपराध है सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी सुनते रहो मुस्कुराते रहो

संबंधों के मामले में भी हम देखते हैं कि जिन संबंधों में लोग बहुत ही कम समय में एक दूसरे के हो जाते हैं, वे संबंध किसी एक गलतफहमी, किसी एक घटना या किसी एक तर्क वितर्क के बाद ही छिन्न भिन्न हो जाते हैं। लेकिन जो संबंध पर्याप्त समय के साथ साथ सुदृढ़ता, आश्वस्तता, विश्वस्तता, स्पष्टता और घनिष्ठता के साथ बनाते हैं, केवल वे ही समय की कसौटी पर खरे उतरने के योग्य स्थायित्व और गहराई वाले बन पाते हैं। किसमें ज्यादा स्थायित्व होता है, अपनी नोक पर खड़े त्रिशंकु में या अपने आधार पर खड़े त्रिशंकु में? आधार को अच्छी तरह जमाने में समय लगता है, बाद में सामने आने वाले गड़बड़ झाले को ठीक ठाक करने की मारामारी में समय गंवाने के बजाय शुरुआत में ही आधार को अच्छी तरह जमाने में अपना भरपूर समय और मेहनत लगा दें। अगर आप कहते हैं मैं तो भोजन का शौकीन व्यक्ति हूँ, तो निश्चित रूप से और इसी कारण से आप कम खाएं, तब आप भोजन का स्वाद लेने के लिए ज्यादा जी सकेंगे। अगर आपका कहना है मैं तो आराम तलब इंसान हूँ, तो इसी कारण से आप थोड़ा कम सोएं, तब आप सोने के लिए अधिक जी सकेंगे। आप कहते हैं मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो निश्चित रूप से और इसी कारण से उसे मुक्त होने दें। मैं शिखर पर पहुँचना चाहता हूँ, तो निश्चित रूप से और इसी कारण से आप नीचे तलाधार पर रहते हुए इसके लिए तैयारी को पर्याप्त समय दें, तब वह तलाधार ही आपको शिखर तक पहुंचा देने वाला आधार बन जाएगा। सीमित उपयोग जीवन को लंबा करेगा, असीमित उपयोग इसे घटा देगा। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मधुबन का आंगन हो, बाबा मम्मा की छाया हो और दादियों का प्यार, बस यही तो संगम के आनंद हैं। दादी रत्न मोहनी जी हर एक आत्मा से इतने प्यार से मिलती हैं, जो आत्माओं को अपने पन की भासना आती है। दादी जी किसी आत्मा को परमात्मा से मिलाने और उन्हें परमात्मा का प्यार प्राप्त कराने के लिए सदैव प्रयासरत रहती हैं। वे हमेशा ही कहती हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही कर्मों का फल है, इसलिए आत्माओं को अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कर्म दूसरों को सुख देने वाले होने चाहिए। दादी जी दिनचर्या में खुद भी नियमित रहती हैं, तो दूसरों को भी यही सिखाती हैं कि हमें भी अपने जीवन में नियमितता को लाना चाहिए। दादी रत्न मोहनी जी की विशेषता है कि वो आत्माओं के मन की बात जान लेती हैं, भले ही वो आत्मा ना भी बताए, परंतु दादी जी उसको इतना प्यार और ईश्वरीय पालना देती हैं, जो वो खुद ही अपनी बात दादी को सुनाकर हल्के हो जाते हैं और अपनी समस्या का हल प्राप्त कर लेते हैं। यही तो प्यार है, जहां हम किसी की कमी को अपनी कमी समझ उन्हों को भी ऊपर उठाने में मदद करते हैं और जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य योनि में जन्म लेना और जीवन को यूं ही व्यतीत कर देना, शायद ये हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। शक्ति वंदन की आज की श्रृंखला में हम स्नेहल दीदी से दादी जी के जीवन के अनमोल गुणों को जीवन में धारण करने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे।
1: शक्तिवंदन में आइए सुनते हैं उन महानुभावों से जिन्होंने दादी रतन मोहिनी जी के अंग संग रहकर उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में अनेक शिक्षाएं प्राप्त की, उनके जीवन से ओतप्रोत होकर अपने आप को धन्य महसूस किया। सुनते हैं उनके अनुभव उन्हीं के मुखारविंद से।
2: ओम शांति। शरीर का नाम स्नेहल है और मैं बचपन से ज्ञान में चलती हूँ। और जब मैं 1.5 साल की थी तो मम्मी को ज्ञान मिला था, और फर्स्ट टाइम जब मैं मधुबन में आई, 10-12 साल की होंगी लगभग, तो फर्स्ट टाइम में वहाँ मैंने सभा में प्रकाशमणि दादी के साथ दादी को देखा। तो जैसे मम्मी पापा को खास बुलाया मिलने के लिए, तो मम्मी के साथ साथ मैं भी गई। तो दादी मुझे देख रही थी, रतन मोहिनी दादी, कि ये कुमारी है, छोटी है, एक छोटी सी कुमारी फ्रॉक पहने हुए आई है। मम्मी पापा का कुछ प्रोग्राम था, सम्मान होना था, तो मैं भी साथ में मम्मी के साथ उस प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहती थी, लेकिन सबने मना किया कि आप तो कुमारी है, आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं हो सकते हो। तो मैं बैठ गई। फिर बाद में उसी दिन भोजन करके वहाँ दादी चक्कर लगा रही थी मधुबन में आंगन में, तो मैं थोड़ा साइलेंस में ही रहती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन दादी की नज़र ने मुझे जैसे वहाँ पहचाना था कि ये क्या सोच रही है, तो मैं भी दादी को देख ही रही थी सिर्फ। तो दादी ने मुझे बुलाया, तो उतने में एक बहन आई, तो वो दादी से अच्छे से बात कर रही है, फिर मुझे देख के बोला, दादी इनके परिवार ने हमें ज्ञान दिया। तो दादी को बहुत आश्चर्य हुआ कि अच्छा, इन्होंने मना, मैंने ज्ञान दिया, छोटी सी कुमारी ने ज्ञान दिया। ऐसा करके दादी फिर मुझे हाथ पकड़ के गार्डन में ले गई, किसी पार्टी से मिल रही थी तो साथ में बहुत प्यार से बिठाया। फिर पूरा क्लास हुआ, वो क्लास भी मैंने पूरा सुना। फिर बाद में दादी मुझे यहाँ लेके आई तो मैं कैसे जाऊँ, ऐसा सोच के मैं उधर ही बैठ गई। फिर लास्ट
3: समय आपकी क्या उम्र रही होगी?
2: 12 13 साल थी उम्र। तो पूरा क्लास होने के बाद झोपड़ी के आगे क्लास किया दादी ने, तो दादी ने के पास में फिर चली गई। दादी ने बोला अच्छा तुम रुकियो, फिर हाथ पकड़ के दादी के साथ में आई। तो पूरा दादी ने पूछताछ की, अच्छे से प्यार से बात किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये दादी बहुत अच्छी है। तो अगर मुझे सेंटर पे रहना है या मधुबन में मना इनसे मुझे मिलना है, उसी समय ऐसा जाने अनजाने में संकल्प आया था। फिर बाद में तो चले गए, अपना पढ़ाई वढ़ाई किया, फिर बाद में सेंटर पे आए, फिर भट्टियों में मिलते थे। तो दादी से ऐसे ही मुलाकात जनरल में होती थी, इतना खास मिलना नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर मधुबन में कुछ कारणवश में आई थी, हेल्थ ठीक नहीं थी, कुछ ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला था, तो वो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चल रहा था। तो मैं रोज क्लास में आती थी, मिलती थी। और उसी साल में माना 2009 में शायद शांतमणि दादी ने शरीर छोड़ा, तो दादी शांतिवन में संभालने के लिए दादी यहाँ आ गए। तो दादी एक एक से पर्सनली मिली थी क्लास में। तो दादी ने मेरे से पूछा क्या करते हो, तो मेरे को ऐसा था कि मैं अभी वापस सेंटर ज्वाइन करना वो ताकत नहीं है शरीर की, और कुछ सेवा करना है तो वो मन की स्थिति और तन की स्थिति इतना ठीक नहीं है, तो मैं कैसे करूँ। इसी असमंजस में थी, तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, बस घर में थोड़ा बहुत जो भी सेवा है काम है वो करती थी, और अपना लौकिक भाई को अकाउंट में मदद करती थी। तो ऐसे ही दादी को बताया, तो दादी ने कहा कि अच्छा आप अकाउंट करती हो तो सेवा करोगी। मैंने कहा दादी हाँ। अचानक मेरे मुख से निकला दादी को देख करके, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं क्या सेवा करूँगी। और कोई बोलते थे कि मधुबन में भी बोलते थे आकर के सेवा करो, तो मुझे इतना नहीं होता था कि मैं जाऊँ सेवा करूँ, इतना कॉन्फिडेंस या इतना कि किसके पास जाऊँगी क्या सेवा करूँगी वो सब कुछ नहीं होता था। लेकिन दादी ने बोला आओ यहाँ भी हमारा ऑफिस है सेवा करो, तो मैंने हाँ बोल दिया। लेकिन कब जाना है और कब करना है कुछ भी पता नहीं है। तो डेली मैं क्लास में या अमृत वेले में जाती थी, 1.5-2 किलोमीटर घर से आकर के सुबह अमृत वेला करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अभी अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो ये जीवन व्यर्थ है। अगर मैंने बाबा को जीवन दिया है तो मुझे जीवन में कुछ न कुछ करना है, इतना सिर्फ घर में मदद करना और इतना ही काफ़ी नहीं है। घर में सब कुछ अच्छा है, सभी मदद भी करते थे मुझे, कोई भी टेंशन जैसी बात नहीं थी या कमाई करना ऐसा भी नहीं था। लेकिन मुझे ये जीवन ही व्यर्थ लगता था कि मैं एक समय में सेंटर में बहुत अच्छी डेडिकेटेड बहन रही और अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो वो पहचान के दादी ने वो संकल्प मेरा रीड किया शायद। तो उस समय इससे पहले भी कई बार दादी से मिली थी, माना जब मैं यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई तब, तो दादी ने पूछा था कि आप क्या करते हो, दवाई लेके फिर आप सेंटर जाओ। एक दो बार फोन भी आया मम्मी के पास कि ये ऑलरेडी सेंटर पे रह चुकी बहन, तो इसको भेजो ऐसा। तो मैंने मना भी नहीं किया, कुछ बोला नहीं। तो मेरी जगह पे मेरी जो लौकिक भाभी है उसने कहा मैं जाती हूँ सेंटर पे, दीदी तो सेंटर पे रह के आई है, मुझे थोड़ा अनुभव करना है। तो वो उसको भेजा था दादी ने। फिर बाद में अचानक जैसे दादी से मिले तो मुझे ऐसा फील हुआ कि दादी नहीं बोल रही है, बाबा बोल रहा है दादी के थ्रू। क्योंकि हम खुद कुछ नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे भगवान हमें सपोर्ट करता है तो डायरेक्टली हमें कैसे सपोर्ट करेंगे, इसलिए वो दादी के थ्रू माना किसी न किसी बंदे के थ्रू हमें बताते हैं। तो दादी ने जैसे ही पूछा आप सेवा करोगे तो क्या सेवा करेंगे, सेंटर की सेवा करनी है, मधुबन में क्या सेवा करनी है, कुछ भी आइडिया नहीं है, बस बोला, मेरे मुख से भी हाँ निकला। फिर मैंने फॉलोअप किया, फिर भी इस चीज़ को 7-8 मास लग गए दादी के ऑफिस में, वर्तमान समय में सेवा कर रही हूँ पिछले 13 साल से। तो दादी के ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए भी 7-8 मास लग गए। फिर हम जाते थे दादी के पास, परिवार से सहित माना मम्मी पापा भाई बहन सभी मिल करके दादी से मिलते थे, कुछ न कुछ बातें करते थे, दादी को अपना डे टू डे कुछ प्रॉब्लम है पूछते थे। और दादी बहुत घरेलू रूप से बात करती थी, और किसी का कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व करती थी। जैसे एक बार की बात याद है कि हमने पूछा कि कुछ ऐसा विघ्न है हमारे व्यापार में या उसमें परिवार में, तो कैसे हम क्या करें। हम ज्ञान योग तो करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, परंतु फिर भी कम नहीं होता है। तो उसके लिए दादी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। ये कई बार सुना था कि आप मेडिटेशन करो, एक जगह पे बैठो, और जैसे एक समझानी बड़े बुजुर्ग देते हैं ना, तो वो वही चीज़, वही शब्द उन्होंने जो बोला, हमें मालूम है डेली हम

0: बहुत हमें अंदर में जैसे खुशी होती थी कि कहा इतनी बड़ी दादी है, इतनी इनकी पावर है और ये हमें नाम सहित याद रखती है। तो इस प्रकार से हमारा दादी से मिलना जुलना रहा बाद में, और दादी ने मुझे कहा सेवा के लिए आओ। तो दादी से सेवा के लिए कैसे आना है, जुड़ना है, उस बारे में भी बहुत बात बार मिली मैं, लेकिन दादी अपना प्रोग्राम में किसी न किसी इसमें बहुत बिजी रहती थी। तो दादी का विचार था कि एक अलग ऑफिस खोले, उसमें कुछ अलग प्रोग्राम देवे, एक साथ में उनके साथ वाली एक बहन देवे, लेकिन शायद वो सेट नहीं हुआ। फिर यहाँ शांतिवन में जो दादी का ऑफिस ओपनिंग हुआ, उस समय अचानक मैं उसी दिन गई थी, तो दादी ने कहा, मुझे देख के बोला कि कई प्रोग्राम में ही दादी जा रही थी, अचानक मुझे देख के बोला, अच्छा तुम आ गई, मैं तुम्हें याद कर रही थी। तो इतना मना इंटर कनेक्शन दादी के साथ था, और दादी के साथ इंटर कनेक्शन कहने से अच्छा है कि दादी का भगवान के साथ इतना कनेक्शन अच्छा था, क्योंकि मैंने लक्ष्य लिया था कि अगर मुझे भी अपना जीवन जीना है तो एक तो हमारा मेडिटेशन करना है रेगुलर, जो हमारी दिनचर्या है उसमें टिकना है। दूसरा है कि जो सेवा मैं कर रही हूँ बचपन से लेके, वही सेवा मुझे करनी, चाहे कुछ भी हो। कहते ना, भगवान के घर में झाड़ू लगाना भी बहुत बड़ी बात होती है, जो एक करोड़पति भी जो काम करता है उससे भी बड़ी बात है। तो यही संकल्प ले करके मैंने वो लक्ष्य लिया था, और रेगुलर 3 मास में सुबह 3:30 बजे उठ करके घर से शांतिवन आती थी, माना 1.5-2 किलोमीटर 2-व्हीलर पे अकेली आती थी। थोड़ा संकल्प ऐसा होता था कि अकेली जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं बाबा की इतनी मदद, उस समय में इतना एनर्जी फील होती थी। वहाँ से मैं शांतिवन पहुँचती थी, और कॉन्फ्रेंस हॉल के पास में इधर से दादी आती थी, हम गुड मॉर्निंग करके दादी से दृष्टि लेके फिर अंदर बैठते थे। तो ऐसा वो काफी अच्छा 3 मास का समय मेरा अमृत वेला जो कहते हैं मेडिटेशन का, वो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद जैसे ऑफिस में दादी के पास सेवा में लगी, तो उस समय का भी अनुभव बहुत विचित्र और अनोखा है। तो जैसे लगता था कि स्वयं भगवान जो कहते ज्योति स्वरूप है, तो वो ज्योति नीचे आई है, और दादी दादी नहीं दिखती थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे शक्ति भर रहे हैं, और वो शक्ति में इतना एनर्जी फील होती थी जैसे कोई नशा करता है, तो उसमें अंदर में ब्रेन में कुछ एक्टिव हो जाते हार्मोन्स, तो वो इतना नशा होता था। और एक आध दिन बाय चांस मिस हो गया, तो कुछ मिस हो गया ना, सारा दिन भर वो फील होता था। ऐसे 3 मास तो मैंने मिस नहीं किया, लेकिन बाद में थोड़ा कम ज्यादा तबीयत के कारण हुआ, किस कारण हुआ, तो वो जो उस समय जो पुरुषार्थ किया, एफर्ट किया, उस बात का मना अभी तक भी वो महसूस होता है कि वो अनुभव कितना अच्छा था। जैसे मैं एक बार कोई फर्स्ट टाइम गुलाब जामुन खावे और उसका टेस्ट ब्रेन में फिट हो गया, तो वही टेस्ट हमें याद आता है और दूसरी बार हम वो खाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, तो वही टेस्ट मुझे आ गया मेडिटेशन करने का, और दूसरी बार तीसरी बार अभी डेली कम से कम मैंने लगभग 8-10 साल वही अनुभव दादी से किया। दादी जब तक अमृत वेले भी आते थे क्लास में, और मुरली क्लास में भी फ्रंट में बैठती थी, सुबह भी बैठती थी, तो वही ज्ञान योग का शक्ति का अनुभव मुझे होता था। और दादी का अटेंशन रहता था कि ये कुमारी ज्ञान योग में इंटरेस्टेड है, तो मुझे देख के दादी बहुत खुश भी होती थी। और समझो बाय चांस मैं शाम के योग में नहीं पहुंच पाती थी, तो दादी पूछती थी, आज क्या हुआ, नहीं आई, कहाँ थी? तो दादी का इतना पूछना मेरे लिए बहुत होता था। तो मना मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी बात मिस की, दादी बोल रहे ना, तो मुझे आना चाहिए, काम बाद में होता रहेगा। तो दादी ने जब ऐसे बोला, तो उसके बाद दादी जब शाम को आ रही है योग में, चाहे आ रही नहीं आ रही, शाम का योग भी मैंने कभी मिस नहीं किया। और दादी सामने बैठ कर के जो योग कराती है, वो दादी का योग है या दादी का बाबा के साथ कनेक्शन है, भगवान के साथ, वो नहीं है, लेकिन मुझे तो हमेशा यही अनुभव हुआ कि डायरेक्ट भगवान उनके द्वारा हमें पालना दे रहे हैं। तो इस प्रकार से दादी के साथ इंटर कनेक्शन जो बोलते हैं, वो इमोशनली भी मेरा बहुत अच्छा रहा।
1: दादी के साथ इतने सारे आपने अनुभव किए हैं, लेकिन

0: वो बहुत छोटे उम्र से ही संस्था के साथ जुड़े हैं। अन्य दादियों को भी आपने देखा। दादी रतनमोहिनी जी कैसे यूनिक और स्पेशल है, क्योंकि हर एक दादी की अपनी एक विशेषता है, तो दादी को आप कैसे देखते थे?
1: एक्चुअली मैंने बचपन से सभी बड़ी दादियों को देखा, क्लासेस उनकी सुनी, लेकिन जितना नज़दीक से रतनमोहिनी दादी के पास मिलने का, रहने का मौका मिला, उतना किसी के साथ नहीं मिला। और दादी की ये विशेषता है कि अगर कोई मन में सोच रहा है और हेजिटेट हो रहा है कि कैसे बोले, तो दादी खुद ही पूछती है। तो ऐसा कई बार होता है, अभी तक भी ऐसा होता है कि कुछ बात है मन में लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ, संगठन है या कोई भी बात है, तो दादी मुझे देखती रहेगी, अच्छा क्या बात है बोलो, मन में कुछ सोच रहे हो आप, बोलो बोलो। नहीं दादी कुछ नहीं है, मैं कुछ बात नहीं है। जब तक मैं वो बात नहीं बोलूँ तब तक दादी छोड़ती नहीं है। फिर धीरे से इशारे में कुछ बोलने से दादी समझ जाती है, फिर जिसकी बात है, जिसके कारण है, उसको बोलती है या मुझे समझाने देनी है तो दादी देती है। बाकी प्रकाशमणि दादी के साथ भी अच्छा अनुभव रहा, लेकिन उनसे इतना नज़दीक में नहीं मिल पाए। मनोहर दादी जी से थोड़ा नज़दीक में एक दो बार ही मिले थे, तो हम सेंटर में महाराष्ट्र में रहते थे, इस कारण से साल में एक बार आना होता था पार्टियों के साथ, मना सभी भाई बहने उनके साथ आना होता था, मिलना होता था। और मैं छोटी थी तो मेरे से बड़ी बहनें जो थी वही सारा कारोबार करती थी। लेकिन मैंने सभी दादियों में यही एक विशेषता देखी है कि वो संकल्प अपना शक्ति से, जो उनकी योग की शक्ति है, तपस्या की शक्ति है, उससे वो थॉट रीड कर लेती है। लेकिन रतनमोहिनी दादी जो है उनका ये विशेषता है कि मन में इनके कुछ चल रहा है और वो बोल नहीं पा रही है तो खुद से उत्साहित करेगी, खुद से बोलेगी, या इतना प्यार करेगी जो व्यक्ति अपने आप ही पिघल जाएगा, अपने आप ही बोल देगी।
0: कभी दादी से अपने साकार बाबा के बारे में हो या यज्ञ की वो पुरानी बातें आपको सुनने को मिली, कोई चीज आपको जो इंस्पायर किया?
1: दादी बताती थी कि पहले तो वहाँ सिंध में रहे तो बाबा ने बहुत अच्छी पालना की थी, फिर यहाँ आबू में आए तो थोड़ा जो भी फाइनेंशियल था, लेकिन हमें बाबा लेके जाते थे, पहाड़ियों में ले जाते थे, फल फ्रूट का नाश्ता करते थे। फिर दादी सबसे एक्टिव थी, तो दादी को बाबा बोलते थे कि जाओ बच्ची, जो चूल्हा जलाते हैं ना, पानी गर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसके लिए लकड़ी लेके आओ। तो दादी जो पहाड़ी चढ़ करके चली जाती थी, उस समय एज भी दादी का कम था और साथ में एक बहन कोई होती थी, तो लकड़ी जमा करने का और सभी काम करती थी। जैसे इलेक्ट्रिक का कुछ खराब हो गया, स्विच खराब हुआ, तो चढ़ करके वो करती थी, खाना बनाना, ये सारे काम दादी करती थी। लेकिन दादी ने ये भी सुनाया कि हम दिन भर में कारोबार करते थे और रात को हम योग भट्टी करते थे, तपस्या करते थे, तो उसमें हम दूध और एक फल बाबा हमको देता था। तो रात को 11-12 बजे से बैठ करके सुबह 5 बजे तक बैठते थे, तो उसमें ओम ध्वनि करते थे, क्योंकि कुछ लोग 350 लोग थे तो कुछ लोग सोते थे, कुछ लोग भट्टी करते थे, तो ऐसे दादी भी भट्टी करती थी। तो उसमें कई बातें थी, जैसे ये जो माहौल था यहाँ का, वह ब्रिज कोठी में रहते थे तो बहुत सारे इविल सोल का प्रभाव था, तो इनको सामने दिखता था कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई डरा रहा है, लेकिन ये अपना योग तपस्या में बहुत अच्छे से बैठती थी, तो उनको डर भी नहीं लगता था और वो आत्माएं भी चली जाती थी। तो ये एक अनुभव दादी ने हमको उस टाइम में सुनाया था। ये बात ऐसी थी कि मैं किसी को, हमारे साथ में किसी एक भाई को या बहन को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करती थी जब से दादी के कनेक्शन में आई, तो मैंने कहा कि मैं बाबा की याद करती हूँ, इनका प्रभाव सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं एक नशे से बैठ गई और इनको बाबा की याद के सकाश जिसको बोलते हैं या पावर, मैं नहीं दे रही, बाबा दे रहा है, लेकिन उन
0: मतलब परमात्मा से एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर के जिनको आवश्यकता हाँ। है उनको आप देते?
1: हाँ, वो पावर परमात्मा से लेकर के हम देते हैं योगाभ्यास में, तो वो अभ्यास मैंने किया तो उनका जो भी प्रॉब्लम थी तो वो ख़त्म हो गई। लेकिन नेक्स्ट डे मुझे कुछ अपना भारीपन ऐसा कुछ कुछ महसूस हुआ, फिर मैं दादी के पास गई। दादी, मैंने योग तो किया, बाबा से याद किया, जैसे परमात्मा को, शिव बाबा को, शिव को हम परमात्मा को बाबा कहते हैं, लेकिन मुझे उसका थोड़ा प्रभाव उसका आया है, तो मैंने फिर भी बैठ करके मेडिटेशन किया है। थोड़ा कुछ कम तो हुआ है, लेकिन प्रभाव आया। ऐसा क्यों हुआ, दादी से ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो दादी ने मुझे एक नज़र दृष्टि दी, फिर कहा कि आपके अंदर डर था। मैं दादी बोल रही तो मैं हाँ बोलूँ ना बोलूँ, कन्फ्यूज़न में थी। मैंने थोड़ा ऐसे थोड़ा हेजिटेशन से बोला, नहीं दादी ऐसा तो नहीं बोला, चेक करो, आपके अंदर एक डर था। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो सूक्ष्म डर था कि इनको जो तकलीफ़ हो रही है मुझे ना आ जाए। तो ये थोड़ा भी सूक्ष्म निगेटिव पॉइंट अगर हो है तो हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं। तो दादी ने कहा, आपके ऊपर प्रभाव आ ही नहीं सकता जब आप परमात्मा की छत्र छाया में हो, आप बाप को याद कर रहे, भगवान को याद कर रहे, तो दूसरे का आपको प्रभाव आ ही नहीं सकता, उनको भी आप मुक्त कर सकते हो। तो उस दिन से वो कॉन्फिडेंस, वो शक्ति मेरे अंदर आ गई, और उसके बाद में ऐसा कभी भी कुछ भी अनुभव भी नहीं हुआ। और किसी को भी मैं हेल्थ के लिए भी मदद करती हूँ, या जो भी अपने घरेलू नुस्खे जिसको बोलते हैं, तो उस टाइम में भी मुझे बहुत एनर्जी मिलती है।
2: मैं मधुबन हमेशा ये सोचता हूँ, किस तरीके से बाबा मम्मा के उपकारों को चुका पाऊंगा। भाग्य विधाता भगवान ने तो स्वयं ही मुझे अपनी गोद में बिठाया है और मुझे यज्ञ के इतिहास को अमर बनाने के लिए ये भाग्य प्रदान किया है कि जो मैं कुछ भी कह सकूं। बाबा ये बात जानते थे कि दादियों का जीवन अपने आप में यज्ञ के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वैसे तो हर एक दादी ने बाबा की शिक्षाओं को शत प्रतिशत धारण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु दादी रत्न मोहनी जी ने बाबा की शिक्षाओं को जिस प्रकार से आत्मसात किया है, हर शिक्षा की खुद स्वरूप बनी है, वह उनके सादगी और योगी जीवन से दिखाई पड़ता है। दादी जी यज्ञ के कारोबार को संभालती हैं, साथ ही साथ जो भी स्थूल कार्य होते हैं वो भी बहुत ही उत्साह से करती हैं। बाबा ने दादियों को कभी भी भाइयों से कम नहीं समझा, इसलिए हर वो काम दादियों को सिखाया जो एक भाई कर सकता हो, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, बिजली का कोई काम हो, या यज्ञ कारोबार से संबंधित मकान की खरीद बिक्री हो। बाबा ने सभी कार्य सिखाए और फिर दादी यज्ञ की मजबूत स्तंभ की स्थापना करने के निमित्त बनी।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। जब से हमारी ये सीरीज शुरू हुई है, बहुत से हमें कॉल्स आते हैं, बहुत से ईमेल्स आते हैं और आप सबका एक बहुत लगातार रिस्पॉन्स आता जा रहा है। ढेर सारा प्यार भी मिलता है, लेकिन साथ ही हमें बहुत बार दर्शकों ने लिखकर भेजा कि उनके अनुभव जो हो रहे हैं, जो आप लोगों को मिल रहा है, वो बहुत सुंदर है और जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हर बार हम आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करें जो हो सकता है आप ही के जीवन में हुआ हो। तो आज एक बार फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, हम एक बात ये करना चाहेंगे कि जो लोगों का अनुभव हुआ है, जो परिवर्तन हुए हैं, वो जो उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है जो पूरे जितने और नए दर्शक जुड़ते हैं उनके लिए।
1: आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि परमात्मा भी हमें हमेशा यही कहते कि ज्ञान तो है ही सर्वश्रेष्ठ, लेकिन ज्ञान तब मेरे लिए पर्सनल हो जाता है जब वो मेरा एक्सपीरियंस बनता है। तब तक वो किसी और का ज्ञान है, जैसे या कहें पहले वो परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान, क्योंकि बाबा का ज्ञान मेरी प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि शिव बाबा ने कहा जो कुछ मेरा है वो आपका है, लेकिन वो मेरी प्रॉपर्टी कब बनता है, जब मैं उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करती हूँ और फिर यूज़ करके सक्सेस मिलती है, एंड देन आई से इट वर्क्स। सो टिल आई कम टू दैट line which says this gyan works, that's the day when I say okay, now I'm at the right place, this is, and this is God. Even that let's say the belief to the truth, wo jo journey hai, because it starts with the belief ki ye gyan jo hai wo direct parmatma de rahe hain, lekin wo mere liye truth kab ban jata, when I see the transformation in myself, then I say ki, you know, jo dene wala hai, wo jo doctor hai, he's right because I'm getting cured.
0: Right.
1: So it's a very big thing for any individual.
0: Aur Sister Shivani, aisa bahut se log mujhe hamare sath jo jud rahe hain, wo kehte ja rahe hain ki mere mein parivartan dekh rahe hain, lekin main show par hu.
1: To aapke andar sab parivartan dekh rahe hain. I must tell you ki wherever I have gone and whoever I have met, everyone talks about you and everyone says, Kanu, देखते आ रहे हैं पिछले डेढ़ दो साल से, एंड वो तो बिल्कुल चेंज हो गई है, एंड यू मस्ट नो कि यू आर बिकमिंग अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। दे आर, बिकॉज दे सीइंग यू एंड दे से कि वो बहन के अंदर इतना चेंज आ गया है, उसको इतना समझ में आने लगा है, एंड दे ऑल्सो फील देर इज अ चेंज इन द वे यू आर presenting the whole gyan. So they say ke, because they are seeing you as the example on which the gyan has worked. See, इस साइड पर जो भी भाई बहने बैठते उनको तो वो देख ही तब रहे हैं आफ्टर दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, लेकिन आपको उन्होंने उस जर्नी पर देख लिया है कि व्हेन यू बिगैन विद इट एब्सोल्युटली रॉ, ओम शांति यू वर सेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड टुडे व्हेन दे कैन सी दैट इट वर्क्स, तो आपको देखकर हर एक को बहुत प्रेरणा मिल रही है कि यस, दिस कैन वर्क।
0: वेरी ट्रू। एंड इनफैक्ट ये हमें अनुभव तब होने लगता है जब हमारी सिचुएशंस जब आती हैं उनमें हमारा रिस्पॉन्स अलग होने लगता है, हम सिचुएशंस के ऊपर उतने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो ऐसा ही आप सबके साथ भी बहुत लोगों के साथ होता जा रहा है, और आज सिस्टर शिवानी के साथ हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान है जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, आप ही में से एक थी, समझा और फिर वो स्टेप उठाया। हम बार बार ये बात करते हैं कि हमें अच्छा लगता है सुनना, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ सुनते हैं, लेकिन क्या ये मेरे जीवन में हो पाएगा जब मेरे जीवन में सिचुएशन आएगी। वो एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया। हमारे साथ खास सिंगापुर से भारत आई हुई, इन दिनों भारत में है, समीना जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति।
2: ओम शांति।
0: आप ही की तरह के गेस्ट हैं, मतलब हमारे साथ, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं समीना जी, और एक परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कैसे हुआ ये सब, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे प्रोग्राम देखा?
2: आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कैसे हुआ, लेकिन एक बार चैनल सर्फिंग करने के टाइम पे ये प्रोग्राम देखा और मुझे लगा दिस इज डिफरेंट, यू नो, ये रिलीजियस टॉक नहीं है, ये कुछ और है। तो फर्स्ट एपिसोड देखा तो यू नो इट वॉज अ गुड थिंग, यू नो समथिंग डिफरेंट, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये कहाँ क्या बोल के आ रहा है इन लोग। And then I felt कि this is just talking about life, जो हमारी ज़िंदगी है, हम उसे कैसे अलग बना सकते, बेहतर बना सकते, या you know, if she is looking so calm, मैं ऐसे बन सकती हूँ, because you know, हमारे ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल होती है, you know, so I felt कि all right, then I thought कि okay, ये एक ही बार होगा, तो कभी और यू नो अनदर डे और टू टाइम वापस सर्व करने के टाइम पे वही वो उसी टाइम पे प्रोग्राम था. सो आई थॉट ओके दिस इज़ अ डेली शो, यू नो दिस इज़ नॉट अ वन टाइम शो, लेट मी सी. एंड एक फिर हैबिट बन गई. आप लोग अभी जो कहते हैं संस्कार, वो संस्कार बन गया कि नहीं मुझे देखना ही है, किसी भी तरह से मुझे ये टाइम निकाल के देखना है. एंड एवरी डे दैट आई सॉ मुझे लगा दिस इज़ डिफरेंट. ये जो कह रहे हैं ये शायद अगर ये कह रहे और वर्क करता है तो इट इज़ इट कैन बी सच अ ब्यूटिफुल लाइफ. एंड आई थॉट ओके नथिंग टू लूज, नहीं काम करेगा तो नहीं काम करेगा, काम करेगा तो अच्छा ही है. तो स्लोली वेरी ग्रेजुअली आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग रोज जो आपके प्रोग्राम आते उसमें से एक बात पकड़ के मैंने बोला ट्राई करते हैं इसे, ये वर्क. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक जो ट्राई करना था कि कैन यू समहाउ conquer your anger.
0: I know. That's the biggest thing.
2: Because that is such a immediate reaction. Jab kuch garbad hota hai, the first reaction is anger, stress. Kya, you know, whether we have some sort of control over that situation. And every time a situation came,

0: जहाँ हम वॉलेटाइल हो सकते हैं या गुस्सा हो सकते हैं या एजिटेट हो जाते हैं, तो तब क्या हम वो सिचुएशन को संभाल सकते हैं. एंड आई फेल्ट दैट एक बार किया, दो बार किया, जब बहुत बार किया तब लगा इट इज़ सो मच बेटर कि तब नहीं होना है गुस्सा, सोचना है करना क्या है. एंड अब गुस्सा अंदर ज़रूर आता है लेकिन बहुत धीमे आता है. एक बात को जो हम भड़क जाते थे बहुत बात पे, अभी थोड़ा वक्त देते हैं. ओके, इट्स चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग है ये टाइम. कि गर्मी, ठंडी में सब काफ़ी काम रहते हैं लेकिन गर्मी में
1: गर्मी में
0: सबकी
1: गर्म ना
0: सबके
1: हो, गर्मी
0: टेम्परेचर्स
1: में
0: बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो इट इज़ इट्स रियली चैलेंज बट इट्स वेरी नाइस, क्योंकि जब हम थोड़ा शांत होते हैं तो सामने वाला भी शांत हो जाता है. आई डोंट नो, आई फील इट दैट जब हम आराम से बात करते तो सामने वाला अगर गुस्से में भी होगा तो उसे बुरा लगेगा,
1: See,
0: और
1: we have been talking about it. Wonderful.
0: जब वो हमारे से गुस्से से बात कर, फिर उसको खुद को लगता है कि बट शी इज़ नॉट स्क्रीमिंग, तो कोई ज़रूरत नहीं. और हमारे आदत है, एक्चुअली आदत ये भी है कि एवरीबडी नोज मी एज अ पर्सन हुज
1: स्क्रीम्स
0: हु रिएक्ट्स वेरी क्विकली. सो दे फील के ये ड्रामा
1: करेंगे.
0: करिए या क्या हो रहा
1: Why
0: है,
1: isn't she
0: या
1: reacting?
0: वाई हर रिएक्शन नॉट स्पॉन्टेनियस एनी मोर. लेकिन आई थिंक स्लोली आई थिंक दे गेट यूज टू इट, आई एम श्योर. एटलीस्ट आई फील गुड.
1: No, but it's so beautiful, Samina, and so you coming over and sharing this, which is actually so real. लेकिन पहला कदम आपने उठाया, that was so important. So, Shivani.
2: I think it would be nice if you share how did you actually get the gyan to work, because I'll tell you, a lot of us watching the program, but then one is कि हमने प्रोग्राम देखा सुना, लाइक यू बहुत सारे भाई बहन रेगुलर भी देख रहे हैं, बट समवेयर दैट लिटिल गैप इज देयर बिटवीन प्रोग्राम को देखना सुनना, परमात्मा से जो ज्ञान मिल रहा है समझना भी, लेकिन टू टेक इट बैक टू माई लाइफ टुमारो. So what is it that probably inspired you to do it? And what did you do to do that,
1: How
2: to
1: did
2: get
1: you
2: it to
1: get into
2: work?
1: it?
2: Because otherwise, गुस्सा नहीं करना तो अभी पहली बार थोड़ी सुना आपने. आई एम श्योर इफ यू वर अ हॉट टेम्पर्ड पर्सन तो आपको बचपन से राइट फ्रॉम योर पेरेंट्स टू एवरी वन मस्ट हैव बीन टेलिंग यू कि गुस्सा नहीं करना चाहिए. तो वॉट इज इट दैट गॉट यू टू वर्क ऑन इट नाउ, एंड हाउ डिड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ?
0: फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्ट दैट आई वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट ऑन दिस इज बिकॉज आई न्यू आई हैड नथिंग टू लूज. इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, इट डजंट वर्क ठीक है, आई विल बी बैक टू माई नॉर्मल सेल्फ. अ लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम, दे अग्री विथ इट बट दे डोंट मेक एन एफर्ट टू ब्रिंग इट इन टू देयर लाइव्स. इसमें एफर्ट चाहिए, यू हैव
1: What
0: टू.
1: was that effort?
0: द एफर्ट वॉज दैट द टाइम वेन आई स्टार्टेड आई वॉन्टेड दिस सो मच इन माई लाइफ इज देयर वर मेनी थिंग्स फैक्टर्स गोइंग रॉन्ग इन माई लाइफ एंड आई हैड नो कंट्रोल ओवर इट. मुझे लगा कि जैसे जिन आई एम होल्डिंग, जैसे रेत पकड़ी हुई हाथ में, सब फिसलता जा रहा है, मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ. आई वॉन्टेड टू होल्ड ऑन टू थिंग्स,
1: चीजें सिचुएशंस हैं वो
0: सिचुएशंस
1: हैं.
2: एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इन दिस होल सीरीज दैट वी बीन डूइंग, इट्स अ न्यू सीरीज, वी बीन टॉकिंग कि जब जब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है तो जो फर्स्ट फीलिंग आती है दैट इज पावरलेसनेस, कि मेरे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू कंट्रोल अदर पीपल एंड सिचुएशंस एंड दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल एनी मोर. तो सडनली यू फील कि मेरी पूरी जीवन ही मेरे हाथ से निकल, माई हस्बैंड इज नॉट इन माई कंट्रोल, माई चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप नाउ दे आर नॉट इन माई कंट्रोल, एंड सबसे बड़ी बात आई एम नॉट इन माई ओन कंट्रोल. सो यू जस्ट फील देन वॉट इज इन माई कंट्रोल, यू नो नथिंग सीम्स टू बी इन माई कंट्रोल, एंड उससे एक बहुत फीलिंग ऑफ कहें डीमोटिवेशन, यू नो लाइफ इज नॉट इन्जॉयबल एनी मोर वेन यू फील कि नथिंग इज इन योर कंट्रोल. सो दैट्स ट्रू, दैट्स द टाइम वेन इट्स रियली नीडेड, सो दैट वेन आई कम बैक इन टू कंट्रोल everything comes back into
0: yes.
2: control.
0: I think that was the key thing, that if I fell, I, like Sister Shivani said many times, don't try to change everybody around you, try and change yourself. I said, okay, let me work reverse direction abhi. Ki agar mere mein thoda, if I can change a little bit and mere mein badlaav aa jayega, to shayad wo thoda reflect hoga jo mere aas paas hai. Ye waise bhi mere control mein nahi hai, to main let it flow. I don't want to try very hard to change something that's going against me. If I let it go, let me see what happens. And when I did that, when I let go, of all possibility to control things, I felt, and I just talked to God, and I said, now you help me from here. Maine aapka haath pakda hai, aap ab mera haath pakdo. And jab maine wo kiya, to I felt that he actually held on to me. And he said, okay, I'll show you the first step. Chalna tumhe hi hai, lekin steps main sikhaunga. And once I did that, I felt, now I know my path. And what happens is, religion, baki sare, I'm a Muslim, and it gets complicated. Jo religions cheeze, wo complicated. मुझे कुछ बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल जो मेरे समझ में आए ऐसा मुझे चाहिए था जिससे मेरी जिंदगी यू नो हम एवरीबडी हम जो भी यहाँ जो भी प्रोग्राम्स देख रहे एवरीबडी वांट्स इन देयर न्यूक्लियर फैमिली टू बी हैप्पी कोई ये सोचता नहीं है कि मुझे दुखी होना है आई डोंट थिंक एनीबडी थिंक्स दैट एवरीबडी वांट्स जस्ट टू बी हैप्पी
1: राइट ट्रू हर कोई अपने एफर्ट्स जो है वो खुश रहने के लिए ही कर रहा है
0: बेसिकली यस सो आई जस्ट वांटेड टू बी हैप्पी आई वांटेड माय फैमिली टू बी हैप्पी कंटेंटेड And I feel I'm already on that journey. I feel ke jo bhi mere haath se phisla ja raha tha, phisal gaya tha, jo chala gaya tha, wo dheere, I don't know, main samjha nahi pa rahi hu, lekin wo wapas lot kiya. It's a tide. It went and it's returning.
2: But what all do you feel? You want to share? What do you feel had gone on that's come back?
0: A lot of things. A lot of that particular phase jab maine ye experiment kiya tha, business mein bhi my husband's ko losses थे फैमिली में भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट एंड वी वर बोथ डिप्रेस्ड वी बोथ वर फीलिंग दैट यू नो वी आर गुड पीपल हमें सब लगता है हम सब लोगों को ऐसे लगता है कि वी आर गुड पीपल
2: हमारे साथ गलत क्यों हो रहा
0: है हमारे यू नो व्हाई शुड इट हैपन मैंने हम लोग ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया है ना किसी को चीट किया है ना कुछ भी तो हमारे साथ ये ये ये इतनी पनिशमेंट्स हमें क्यों मिल रही है लेकिन नाउ आई रियलाइज दैट दीज वर लेसन्स एंड दिस वाज जैसे परमात्मा हमें ईश्वर कहो ऑलमाइटी कहो अल्लाह करो जो भी यू नो ही वाज एक्चुअली काइंड ऑफ ट्यूनिंग अस ट्रेनिंग अस फॉर बेटर टाइम्स टू कम एंड एज यू स्टार्ट द जर्नी एंड नाउ आई एम अ लॉन्ग वे इन टू द जर्नी आई फील दैट There is no other way to live. You know, we are peaceful souls. We are happy souls. We don't have to be sad. You know, ye rona dhona is not our life.
1: Very true. How beautiful. This is what I think.
2: This is what we've been saying every time.
1: We've been wanting people to come out and say.
2: Yeah. Because pain is not a part of your life.
0: No. Don't give pain to anybody, but don't accept pain also.
1: Yeah. You know, and
2: this is, you know, she's not even realized what she said, but this is what Shiv Baba says. Na dukh do, lekin na dukh lo. Majority लोग हम कहते हैं कि हमने दुख नहीं दिया हम कुछ गलत नहीं कह रहे लेकिन दुख लेना नहीं है दैट पार्ट वी डिडंट नो वी न्यू दिस के दुख देना नहीं है वो भी कभी कभी गलती से दे ही देते थे लेकिन दुख ना लो वी डिडंट नो दैट वी हैड अ चॉइस देयर वी ऑलवेज थॉट कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो दुखी तो
0: बट इफ यू इन सोल कॉन्शियसनेस इफ यू आर कॉन्शियस ऑल द टाइम मुझे 24 आवर्स लगता है कि द डिवाइन फोर्सेस विथ मी वो मेरे साथ ही है He is with me and therefore I will not do wrong and I will not be wronged. Wo hai, he's protecting me. Wo mere saath hi hai. Agar kuch, something goes wrong, I feel he's teaching me something now.
1: Mm-hmm.
0: I never see it negatively.
2: So it becomes a very personal relationship with God.
0: Yes, I mean now I have found ke I have a mechanism for by which I can actually talk to him. I am sharing my life daily basis jab when I'm in meditation that's when I'm very quiet but uske baad I talk to him I tell him agar if I've done something by mistake I've done something wrong ya mujhse kuch you know wo spontaneous jo pehle ke sanskar the wo gussa kahin kisi pe aa gaya ya kuch bhi I will tell him ki I have this is what I did today but I will make sure that I will be more careful next time so the conscious like soul consciousness I am in that soul consciousness. And because I'm in soul consciousness, you cannot do wrong. That's the thing.
1: See, that's like, drishti agar hamari theek rehti hai, ya hamara pura ehsaas rehta hai, toh actually nothing can go wrong also. यू नो ये भी आपके ऊपर पूरा स्ट्रॉन्ग आपको एहसास रहता है कि कभी कुछ गलत हो भी नहीं
0: सकता.
1: बहुत सुंदर. अब तो मैं आपको सिस्टर समीना भी कह सकती
0: हूँ. बिकॉज़ आई फील
1: सो मच पार्ट ऑफ द फैमिली.
0: यस आई एम. दैट्स ट्रू. आई एम अ पार्ट ऑफ द फैमिली.
1: अपने सभी दर्शकों के साथ हम ये भी शेयर करना चाहेंगे कि समीना जी भारत जो इस बार आई हैं वो अपने परिवार के साथ आई और माउंट आबू गई ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स. वो एक्सपीरियंस कैसा रहा?
0: या इट वॉज आई डोंट एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि मैंने सोचा मैं एक आश्रम में जा रही हूँ. पहले तो मुझे वही लगा जब मैं गई और इट इज़ बिग, यानी इट्स ऑन अ बिग स्केल एंड इतने इतने लोग आते हैं वहाँ पे, इतने सारे भाई बहन हैं, यू नो, एंड इट्स इज़ ब्यूटिफुल. एक्चुअली जस्ट सीइंग एवरीबडी इन द वाइट, इट मेक्स यू फील वेरी, यू फील लाइक एंजल्स, यू नो, फ्लोटिंग अराउंड द प्लेस. यू फील सो ब्यूटिफुल. I had a chance to do meditation for many hours that way, you know, and it was jab sab milke meditation karte wo energy alag hoti hai. Wo hum mujhe khud nahi laga ki main, you know, 40 45 minute baith sakti hu ek bar, you know, I'm very fidgety. To aisa laga ki main hat jaungi, log mujhe dekhenge ki kitni shift ho rahi hai yahan se wahan. Nobody is bothered over there because even the, you know, senior dadis जिससे मैं मिली वो कहते हैं कि ये अपनी personal journey है, कोई आपको जज नहीं करने वाला है, आप जिस स्पीड से जाना चाहते हो जाओ, you know. एक बिल्कुल भी एक religious feeling नहीं था, सिर्फ spiritual feeling थी that I am here and he is there and I am just connecting with him. That's all. I was just there for this connection.
1: Wonderful. And you felt that connection?
0: Yes, all the time. When meditation, all the time.
1: Achha, how about your family's response? I mean, not only your immediate family, but ab to ek kafi time baad aap apne parivar se milonge jab Mumbai gaye, that becomes more important. Ki wo jab aap keh rahe ho ki wo kehte hai acting kar rahi hai ya abhi bolegi ya abhi ye shor machane wali
0: hai. My mother doesn't say it, but she herself feels good, you know, and she herself now is toned down. यानी क्या होता है कभी कभी हम जब शांत हो जाते, सामने वाला खुद ब खुद शांत हो जाता है, यू नो. हम जब भड़कते तो वो ज्यादा भड़केगा. हम जब चिल्लाएंगे तो उससे ज्यादा वो चिल्लाएगा, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी हर्ड.
1: और दूसरी बात ये भी है, वो आपको शांत करने के लिए भी और चिल्ला रहे होते हैं,
0: राइट,
1: यू नो, कि आपको कहते हैं आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, तो खुद भी बहुत हाइपर हो चुके.
0: आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एनी मोर, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा बोलना ही नहीं है, यू नो. व्हाट एवर आई वांट टू से, आई विल जस्ट से इट. आई डोंट हैव टू रेज माय वॉल्यूम टू बी हर्ड. व्हेन यू हैव अराइव्ड एट वेयर आई वांट टू गो, आई डोंट केयर व्हाट समबडी थिंक्स ऑफ मी. आई नो व्हाट आई एम नाउ. मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ पहुँचना है, ये मेरी जर्नी है, मुझे पता है. आई डोंट नीड समबडी टू एंडोर्स इट. It's not important.
1: Yes, that's a beautiful. Actually, we are spellbound. I am really happy.
2: This is high self-esteem. You see, now I'm not dependent on other people's opinion about me, because now I know who I am. This is what meditation does, and this is what the gyan does. It hits first on the self-esteem. Because low self-esteem is the cause of the whole list, which comes after that, whether it's anger or pain. And low self-esteem means ego. And when we don't say finish ego. But what Baba's Gyan does is raises my self-esteem, what I feel about myself. And like you say, you know, now I don't care anymore. So it's not in the negative sense that now I don't care anymore. But it's actually that even if some people are still going to take their time, I'm okay. Yes. I don't need to prove anything to anybody. And that wo sirf wohi keh sakega jo andar se bhar gaya hai. You know, jab hum andar se khali hote hain, so we need to make noise. Like, lekin jab andar se bhar jate hain, now you take your time, I'll wait for you till you come to normal.
0: But also ego, that's another thing.
2: Yeah.
0: We all celebrate ego, actually. We feel, agar ego nahi hai, toh kuch nahi hai. This is, but we confuse ego with self-respect. My self-respect is where it is. But I have no ego issues. The reason I can say this is because somebody tells me I'm an idiot. Earlier, I would immediately react. Today, it's not important, because if he says I'm an idiot, doesn't make me an idiot. They may say many things about you. They may say, you know, they may call you a failure. They may call you many, many things, you know. And that's the time, in the earlier times, it used to bother me. That, you know, it is they're inflicting pain on me by saying this thing.
1: You know why it used to bother us, actually? Because somewhere deep within, we used to think we are.
0: Yeah.
2: Somewhere deep within, we didn't even know, actually. हमें पता भी तो नहीं था. I don't know myself. तो आप जो मेरे बारे में बोलोगे, I'm going to take that only as the truth. And अगर आपने मुझे कहा, जैसे उसने कहा कि आपने कहा you're a failure, suddenly I feel like a failure. अगर आपने कहा बहुत अच्छे हो, suddenly I feel very good. So then I'm just waiting for people to say nice things about me. And if somebody is not going to say very nice things,
1: everything goes down. Samina, बहुत कुछ हुआ जो आपने अपने में परिवर्तन किया. घर परिवार में भी definitely होना शुरू हुआ होगा. रास्ते में अब कुछ कुछ सवाल, कुछ कुछ बातें अभी भी हैं.
0: Now I feel that this is the way I want to go, and I want to work more because there is so much knowledge out there that I feel ke it's not enough time. I just hope that we don't run short of time. We have to you know, get that should be in a hurry, that hamein jitna gyan mil sake,
1: yes,
0: about us, about the divine, ke kya hai. First of all, to samajh mein nahi aata tha ke wo hai kahan, jab hum unko bulate the to hai nahi. And now we feel, no, he's there. So now we want to know more about him. It's like you've discovered a friend, but you want to know more about
2: that. That's the journey. Yes. That's what we try to do through this program, is introduce the two.
0: Yes.
2: You know. And then after that, it's each one's own journey
0: that's
2: with him.
0: Yeah.
2: Absolutely.
0: Yes,
2: so aapne introduction stage bhi cross ki aur relationship bhi start ho gaya hai. And now this relationship will only grow.
0: Yes.
2: Jitna aap us relationship mein time or energy invest karte hain, it's like any other relationship. Jitna time or energy aap us relationship mein invest karte hain, it will only take you further. Yes. How did this help in relationships?
0: My relationship with
2: anybody. With closest family.
0: Actually, my husband, let's talk about him. You know, the first realization that I got, you know, from one of the shows is that the fact that we are together as a couple is already predestined. Ki hame saath mein hona hi tha, aur hame ye journey complete karni hai. You know, divorces,
1: it is actually so important. But I'm like, everything starts falling in place.
0: Yes,
1: first realization.
0: Because you know, with divorces at the rate that they're going, and you know you have another alternative, if this doesn't work, something else will work. But on the other hand, when I feel if this is the journey that I have to complete with him, then I spoke to my husband also, and then he started watching, and we both got involved at the same time, me a little bit more than him. We both realized that if this is the journey that we have to complete, then why not make it a beautiful journey?
1: I know.
0: Then why fight and end it and fight and go on with it and daily cribbings and all? Why can't he change a little and I change a little? We have to make it work in such a way that we as a family collectively can have this journey, which is together, and have events, have experiences that are enriching our lives.
1: And somewhere, Samina, aapko kabhi ye lagta hai ki why you want to make him happy? Because it makes you happy.
0: Yes, it does. You know, now it does. Now it used to not be that way. I used to just do it because, okay, just to keep the shanti in the house. Kar lo, because nahi karenge to bahut tata tata hogi. To kar lo. Abhi lagta nahi, you know. And also, if it is meant to be this way, if it is predestined.
2: आपको ये नहीं लगा कि आपका focus अब shift हो गया है, and that's what's made all the difference.
0: Yeah.
2: See, it's the same husband, the same you. Mm. Married for how many years?
0: 24
2: years. Mm. So what is that one thought which changes, because of which so many changes take place? See, we've talked about so many things changed. And not that we didn't know about these changes before. Ye sari baatein ki hame agar kisi ke liye kuch karna hai to khushi se karna hai, bajaye ki theek hai kar lo, lekin andar hi andar hum dard create karte hain. Aaj din tak hum auron ke liye karte the, लेकिन इट वॉज मोर लाइक अ कॉम्प्रोमाइज.
1: दैट्स व्हाट यू नो, लाइक
2: इसीलिए अगर आप किसी से भी पूछो कि रिलेशनशिप्स क्या हैं, तो वो कहेंगे एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइस, यू नो, द वर्ड्स आर आल्सो ऑल वेरी निगेटेड. द सैक्रिफाइस आएगा सबसे पहले, एडजस्टमेंट आएगा, कॉम्प्रोमाइज आएगा, क्योंकि मैंने आपकी खुशी के लिए तो कर लिया, लेकिन मैंने अंदर खुद क्या एक्सपीरियंस किया? That was pain, or you know, I'm not very happy with
0: resentment,
2: anger, or hatred sometimes, or whatever. So, usse kya hoga? Fir bhi wo ghar mein khushi nahi hogi. भले हमने वो किया भी, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मेजॉरिटी ऑफ अस, कि हमने बहुत कुछ एक दूसरे के लिए किया. इट्स नॉट दैट वी आर नॉट एडजस्टिंग, हम बहुत करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन बाहर से करते हैं. अंदर से हम अपने ही थॉट को पकड़ के बैठे हैं. तो क्या हुआ, बाहर से हमने किया, अंदर से हमें फील हो रहा है मैंने इतना किया. तो इट्स मोर लाइक सहन किया. एंड घर का वाइब्रेशन फिर भी कैसा बना. एंड देन वी से मैंने आपके लिए इतना किया, फिर भी खुश नहीं हुआ. You know, you still didn't have the happiness in the house that we were looking for, in spite of having addressed it so much and compromised so much. But here what happened was the focus shifted. And the focus was, what I feel in what happened in your case is, you stopped working on him and started working on yourself.
0: That's right.

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: मैं हूँ उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे कार्यक्रम नई किरण। आज है फ्राइडे 31 जुलाई 2026, 8:31 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। कल गुड मॉर्निंग अबू कार्यक्रम के अंतर्गत तो मिलेंगे ही, लेकिन आज नई किरण में भी पधार चुकी हूँ। मेरा नाम है आरजे शुभा। कैसे हैं आप सभी और आपके यहाँ बारिश का क्या हाल चाल है, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 इस नंबर पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM और यह है कार्यक्रम नई किरण।

0: महिषार्दिनीति संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।
1: भाव स्वभाव और संभावनाओं का अनूठा संगम, ये है नई किरण।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। और पंचांग के अनुसार आज शक संवत 1948 से श्रावण कृष्ण द्वितीया शुक्रवार है, विक्रम संवत है 2083 और अंग्रेजी तारीख है 31 जुलाई सन 2026। सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु है। राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक है। द्वितीय तिथि रात्रि 10:31 तक, उपरांत तृतीय तिथि का आरंभ है। धनिष्ठा नक्षत्र शाम को 7:26 तक, उपरांत शतभिषा नक्षत्र का आरंभ है। सौभाग्य योग रात्रि 11:54 तक, उपरांत शोभन योग का आरंभ है। तोतिल करण प्रातः 10:04 तक, उपरांत गरज करण का आरंभ है। चंद्रमा प्रातः 6:38 तक मकर राशि और उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय का समय प्रातः 5:42 पर था। सूर्यास्त का समय शाम को 7:17 तक है। चंद्रोदय का समय रात्रि 8:26 पर है। चंद्रास्त का समय कल प्रातः 6:58 तक है। सूर्यदेव कर्क राशि में स्थित हैं। चंद्रदेव मकर राशि में प्रातः 6:38 तक थे, फिर कुंभ राशि पर प्रवेश कर चुके हैं। तो ये कुछ पंचांग के अनुसार जानकारी। और इस्लामी हिजरी के अनुसार 1448 है, 16 सफर जुमा और बुल्ला आज के दिन है। आज प्रेमचंद जी की जयंती है और मोहनलाल सुखाड़िया जी की भी आज के दिन जयंती है। ये कुछ महान हस्ती जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ करके गए हैं, उनमें से प्रेमचंद जी और मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में हम आगे जानेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है नई किरण।

माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर. मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी. मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं. माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम. एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा. और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है.

0: मैं आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। आइए जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में चंद कथाएं। इनका जन्म 31 जुलाई को आज ही के दिन 1880 में हुआ था और इन्होंने शरीर त्याग किया था 8 अक्टूबर 1936 को। भारत के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, जिनके युग का विस्तार सन 1880 से 1936 तक है। ये कालखंड भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इस युग में भारत का स्वतंत्रता संग्राम नई मंजिलों से गुजरा। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव जी था। वो एक सफल लेखक, देशभक्त नागरिक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। 20वीं शती के पूर्वार्ध में जब हिंदी में काम करने की तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी इतना काम करने वाला लेखक उनके सिवा कोई दूसरा नहीं हुआ है। प्रेमचंद जी उनका साहित्यिक नाम था और बहुत वर्षों बाद उन्होंने ये नाम अपनाया था। उनका वास्तविक नाम जैसे कि धनपत राय था। जब उन्होंने सरकारी सेवा करते हुए कहानी लिखना आरंभ किया, तब उन्होंने नवाब राय नाम अपनाया। बहुत से मित्र उन्हें जीवन पर्यंत नवाब के नाम से ही संबोधित करते रहे। उन्होंने हिंदी में शेख सादी पर एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी और उसके साथ साथ टॉलस्टॉय की कुछ कहानियों का हिंदी में अनुवाद भी किया और प्रेम पचीसी की कुछ कहानियों का रूपांतर भी वो हिंदी में कर रहे थे। यहाँ पर एक श्रोता मित्र हमसे जुड़ना चाहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं, फिर वापस लौटते हैं, प्रेमचंद की कहानी के बारे में जानेंगे। हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
1: दीदी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से। ओम शांति, कैसे हो दीदी?
0: ओम शांति, मैं बढ़िया सुरेश भाई, आप कैसे हैं?
1: बस अच्छे हैं, बैठे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, कार्यक्रम और काम भी कर रहे हैं। तो आज आप आए तो मैंने सोचा चलो आपसे बात ही कर लूँ आज।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल किया। आपका वहाँ पर माहौल कैसा है, बारिश या धूप?
1: अभी तो कोई ऐसा कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा है बारिश का, लेकिन बता रहे हैं हवामान वाले कि बहुत जोर से बारिश आने वाली है 2-3 दिन में
0: जी।
1: क्योंकि आज सरकारी कई जगह पे आज जो कॉलेज और स्कूल है सभी को आज छुट्टी दी गई है कि
0: जी।
1: हवामान बता रहे हैं कि ज्यादा कोई बारिश आने वाली है, कोई ऐसा प्रॉब्लम होने वाला है, अनहोनी आने वाली है, तो सभी को आज छुट्टियां दे दे रही हैं। कोई सरकारी स्कूल में है सभी जगह पे,
0: ओके सभी जगह पे
1: छुट्टियां। हवामान वाले बता रहे हैं कि जोरों से बारिश आने वाली है और बहुत सूरत है, अहमदाबाद है, मुंबई है, कई जगह पे बहुत जोर से बारिश आने वाली है
0: जी।
1: तो आज के दिन की ये जो हवामान वाले बता रहे हैं कि आज संभल के रहना, कहीं बाहर जाना हो तो संभलना, तो ऐसे बता रहे हैं
0: जी। जी
1: वो तो कुदरती है, शायद होगा भी नहीं होगा भी, क्योंकि वो तो हमको सजाग करते हैं कि हम कहीं बाहर जाए तो फंस ना जाए, इसलिए बता रहे हैं हवामान वाले
0: जी। तो सावधानी पूर्वक चलना है जी।
1: हमारे तो यहाँ कुछ नहीं है, हवामान साफ है, मौसम साफ है, लेकिन फिर भी तो कुछ कह नहीं सकते दीदी। तो अभी अच्छा है, थोड़ी देर में पता नहीं कहाँ से बारिश आ जाती है, पता ही नहीं चलता
0: जी। जी राइट राइट, इसीलिए बारिश के मौसम में रेडी रखना है छाता, रेनकोट, है ना
1: जी।
0: धन्यवाद धन्यवाद,
1: क्योंकि हम बाहर जाए कहीं बारिश आ जाए तो भीग जाए,
0: पूरी तैयारी के साथ चलना है, चाहे कोई भी मौसम है ना
1: जी।
0: धन्यवाद धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई फ्रॉम जोटाना से। उनके यहाँ मौसम तो साफ है लेकिन कुछ अंदेशा है कि बारिश हो सकती है, इसलिए हमें तैयारी अपना रखना ही है। तो हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जान रहे थे। शायद कम लोग जानते हैं कि प्रख्यात कथाकार मुंशी प्रेमचंद अपनी महान रचनाओं की रूपरेखा पहले अंग्रेजी में लिखते थे और उसके बाद वो उसे हिंदी अथवा उर्दू में ट्रांसलेट करते थे और विस्तारित करते थे। तो आज इनकी जयंती पर हम इन्हें शत नमन करते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं जहां कहीं भी वो हो, और आगे बढ़ते रहें और बुलंदियों को छूते रहें, और सलाम करते हैं, जितने उनके बारे में कहा जाए उतना ही कम है। आइए बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में, जिनका जन्म आज ही के दिन, राजस्थान के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक थे। बीकानेर में आज के दिन जन्म हुआ था इनका। आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। इनका जन्म 1916 को 31 जुलाई को राजस्थान के झालावाड़ा में हुआ था और वो एक जैन परिवार से संबंध रखते थे। सर्वाधिक समय लगभग 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया उन्होंने। 1954 से 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे। आज उन्हें भी शत-शत नमन करते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जी को, जो आधुनिक राजस्थान के निर्माता रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक अल्पविराम लेते हैं, मिलते हैं इस भजन के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। और ये गाना है डॉक्टर दामिनी जी की आवाज में। आज शुक्रवार, चलिए शक्तियों को याद करते हैं।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं गीता चिकारा करनाल से। आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: 9 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। आइए मौसम का मिजाज जान लेते हैं जल्दी जल्दी। राजधानी जयपुर की ओर चलते हैं। यहाँ पर 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है और बारिश होने की बिल्कुल संभावना है, लेकिन रात्रि के समय कम बारिश होने की संभावना है, दिन के समय बारिश जोरदार होने की संभावना है। उदयपुर में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 98% जोरदार बारिश होने की संभावना है रात्रि के समय भी और दिन के समय भी। 25 डिग्री न्यूनतम, अधिकतम 35 डिग्री तक जा सकता है, बादल छाए रहेंगे। आबू रोड में 35 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 25 डिग्री तक जा सकता है, 80% बारिश होने की संभावना है दिन के समय और रात्रि के समय जोरदार बारिश होने की संभावना है आबू रोड के अंचल में। माउंट आबू में 20 डिग्री तक न्यूनतम, अधिकतम 26 डिग्री तक जा सकता है, जोरदार बारिश होने की संभावना है रात्रि के समय भी और दिन के समय भी, बादल छाए रहेंगे आसमान पर। पाली जिले में 37 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक जा सकता है, यहाँ पर भी जोरदार बारिश होने की संभावना है रात्रि के समय और दिन के समय लगभग 50% तक जोरदार बारिश होने की संभावना है। जोधपुर के अंचल में 37 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 29 डिग्री तक जा सकता है, दिन के समय 50% तक बारिश होने की संभावना है जोरदार और रात्रि के समय लगभग 96% तक संभावना है जोरदार बारिश होने की। सूरत में 29 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है, दिन के समय और रात्रि के समय जोरदार बारिश होने की पूर्णतः संभावना है। मेहसाना की बात करें, 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 36 डिग्री नहीं उल्टा है, अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है, यहाँ पर जोरदार बारिश होने की संभावना है दिन के समय भी और रात्रि के समय भी, भारी बरसात और रेड अलर्ट है पूरे अंचल में। बात करें अगर राजकोट के बारे में, तो यहाँ पर 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है और रात्रि के समय दिन के समय जोरदार बारिश होने की बिल्कुल संभावना है, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है दिन के समय भी रात्रि के समय भी। गांधीनगर अहमदाबाद के अंचल में 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है, दिन के समय रात्रि के समय भी यहाँ पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। और इसके साथ साथ दिल्ली में 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है और कम बारिश होने की संभावना है आज के दिन दिल्ली में। कोलकाता में 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, न्यूनतम 26 डिग्री, यहाँ पर 91% बारिश होने की संभावना है दिन भर। बेंगलुरु में 29 डिग्री तक अधिकतम, न्यूनतम 21 डिग्री तक जा सकते हैं, कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, प्लीजेंट मौसम रहेगा आज बेंगलुरु में। मुंबई में 28 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है, यहाँ कम बारिश होने की संभावना है लगभग 60% तक। तमिलनाडु की बात करें, चेन्नई में 36 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 28 डिग्री तक जा सकते हैं, थोड़ी सी बारिश होने की संभावना है आज। जिला सिरोही के बारे में बात करें, यहाँ पर 55% तक बारिश होने की संभावना है, 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। 9:01 रेडियो मधुबन की घड़ी पर आइए कुछ पल शांति में ठहरेंगे, शांति की शक्ति के साथ, और उसके बाद सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रवाह। जब हम शांति में ठहरेंगे तो जरूर हम इस विश्व के लिए शांति की कामना करेंगे।
1: अभी बजे हैं सुबह के 9, 1 मिनट का समय स्वयं को दे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता।

0: Da. अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डेटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर दर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
4: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग उनको बक्सा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
5: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदेब जलडमरो मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फिलिस्तीनी सरकार शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द ही आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ हैं हमारी संवाददाता।
6: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आणंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
7: The reality of life is that everything has a beginning.
8: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
0: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए।

0: अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गो में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर नई किरण। आइए चलते हैं आबू रोड रेलवे स्टेशन की ओर, जानते हैं आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियां। 20694 संख्या वाली गाड़ी जोधपुर एक्सप्रेस 9 मिनट देरी से लगभग 9:26 पर अभी पहुंचने वाली है आबू रोड रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी संख्या है 19269 और ये गाड़ी वर्तमान समय आबू रोड रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 2:11 देरी से चल रही है ये गाड़ी। वहीं पर जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस 19224 9:57 पर 12 की मामूली देरी से चलती हुई पहुंच रही है, क्योंकि बारिश के मौसम को देखते हुए ये गाड़ी ज़्यादा देर से नहीं चल रही है, सिर्फ 12 लेट चल रही है। वहीं पर अजमेर मैसूर एक्सप्रेस 16209 10:14 पर 4 देरी से चलती हुई पहुंचने वाली है। 10:30 अपने राइट टाइम के अनुसार जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंचने वाली है 20496 संख्या वाली गाड़ी। और वहीं पर गाड़ी संख्या है 19032 योगा एक्सप्रेस 10:54 पर पहुंचने वाली है। 11:40 को साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस 14822 11:40 पर पहुंचने वाली है। 19412 दौलतपुर गांधीनगर एक्सप्रेस 16 देरी से चलती हुई 11:46 को आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। और गांधीनगर से दौलतपुर तक जाने वाली एक्सप्रेस 12:55 को पहुंचने वाली है आबू रोड रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी संख्या 19411 दौलतपुर से गांधीनगर जाने वाली 11:46, गांधीनगर से दौलतपुर जाने वाली 12:55 को पहुंचने वाली है। तो ये कुछ जानकारियां जो अभी से 4 तक आबू रोड रेलवे स्टेशन पर आने वाली गाड़ियां रेलगाड़ियों के बारे में जानकारियां। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। आइए यहां पर लेते हैं एक भजन वाला ब्रेक, मिलते हैं भजन के उस पार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते, फिर से स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आइए कुछ बातें जो हमारे आसपास के साथ जुड़ी हुई है जान लेते हैं। जिले में मानसून की दस्तक को 24 दिन हो चुके हैं और बारिश की फुहारों के साथ ही अरावली की पहाड़ियां हरियाली की चादर ओढ़ चुकी है। ब्यावर पिंडवाड़ा हाईवे पर उत्मन टोल से लेकर आबू रोड तक दोनों जो हरियाली फैली है वो राहगीरों का ध्यान आकर्षित कर रही है। और ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं दैनिक भास्कर के जरिए। जिले का करीब 32% हिस्सा वन क्षेत्र होने और अरावली की पर्वत श्रृंखला के कारण यहाँ मानसून का असर अधिक दिखाई देता है। पूरे जोधपुर संभाग में सिरोही सबसे अधिक हरियाली वाला जिला माना जाता है। बारिश औसत से कम होने के बावजूद पहाड़ियों की चट्टानों और मिट्टी में बड़ी संख्या में प्राकृतिक रूप से पौधे उगाए हैं। जिले में 30 जुलाई तक लगभग 304.70 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जबकि इस अवधि तक 371.41 मिलीमीटर सामान्य बारिश होनी चाहिए थी, यानी अब तक करीब 18% कम बारिश हुई है। हाल ही के दिनों में हुई अच्छी बारिश से अरावली की पहाड़ियों पर मौसमी झरने बहने लगे हैं। नदियों में पानी की आवक बढ़ रही है और जिले के 7 से 8 बांधों में भी पानी पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अच्छी बारिश की संभावना के बीच जिले में हरियाली और बढ़ने की उम्मीद भी है। इस मोड़ पर एक साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे करते हैं। हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका।
2: नमस्ते दीदी जी। नमस्ते, मदन भाई बोल रहा हूँ।
1: जी मदन भाई, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया से बढ़िया हूँ, और बस रेडियो मधुबन को बहुत मस्त मजेदार रेडियो मधुबन को याद कर रहा हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन को याद करने के लिए।
2: जी जी, नवीकरण को, और आप नवीकरण में दीदी आई है, सब नवीकरण लेके, तो आपको नमस्कार है बहुत बहुत।
1: नमस्ते, धन्यवाद।
2: रमेश जी भी कहीं है तो उनको भी नमस्कार है।
1: जी रमेश जी, आपको सुन ही रहे होंगे इस वक्त, बिल्कुल आपकी बात उन तक पहुंच गई होगी।
2: जी जी जी, और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार है, और आज का सभी का जिनका भी जन्मदिन है उनको भी नमस्कार।
1: धन्यवाद आपका सबको नमस्ते करने के लिए। और आपने आज क्या नाश्ता किया है? आपने नाश्ता क्या किया है आज?
2: आज नहीं किया।
1: नहीं किया, देख लीजिए, पकड़े गए आप। तो नाश्ता जरूर से कर लीजिएगा। जब आप कार्य क्षेत्र में जाते हैं ना तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना?
2: जी जी जी, नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल नाश्ता चाहिए। और
1: कुछ ना कुछ नाश्ता कर लीजिएगा। पोहा है तो बहुत अच्छे से बिहार और उड़ीसा में खाया जाता है। पोहा को जस्ट भिगो दीजिए, उसमें थोड़ा दही डाल दीजिए, गुड़ है तो गुड़ डाल दीजिए, केला है तो केला डाल दीजिए, और खा के देखिए कितना मजा आएगा।
2: जी जी जी, मेरे को जब छुट्टी होती है जब खाने पीने का बहुत शौक है
1: जी,
2: तो मैं खाना बनाता ही हूँ, नाश्ता अच्छा बनाता हूँ और खाता हूँ, ईश्वर को याद।
1: बढ़िया बढ़िया, भोग लगा के खाते हैं तो एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर कभी टाइम नहीं मिले तो ऐसे भी आप फटाफट खा सकते हैं, पोहा हो या फिर आप चावल से बने हुए नाश्ता भी कर सकते हैं, जिसे मुरमुरे भी कह सकते हैं। मुरमुरे से पहले भी एक चीज बनती है धान से, उसको आप लोग क्या कहते हैं? हम लोग लैया बोलते हैं, तो उसे भी आप खा सकते हैं।
2: जी, जब मैं नाश्ता बनाता हूँ ना
1: जी,
2: तो मुझे मधुबन का किचन याद आता है, वो किचन को देख देख के मैं बनाता हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है,
2: मजा आती है कि भाई हमारे सब ब्राह्मण परिवार खाते हैं और मजा अच्छा लगता था।
1: क्या बात है, उन स्मृतियों के साथ बनाते हैं और स्वादिष्ट बनता होगा खाना, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जो बच्चा आया खा रहा है, पापा एक निवाला खाता और बोले पापा सब्जी अच्छी बनी, और मैं बाबे की तरफ देख के मुस्कुराता हूँ।
1: ग्रेट, ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खुशियाँ ही हमें जीवंत बना देता है, हम लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं।
2: जी जी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।
2: आज शुक्रवार है
1: जी,
2: तो चल रहा है आज हमारा प्रोग्राम, फिर सोमवार को आएंगे, तो बस आपको नमस्कार है हमारे।
1: नमस्ते, आपका दिन अच्छा।

0: बीते और नाश्ता जरूर से करिएगा।
1: जी जी कल हमने
0: दोस्तों तक आपकी बात पहुंच रही है। जी
1: जी जी कल हमने मुखी साहब को सुना था।
0: जी कल आपने क्या सुना था?
1: मुकेश जी कलाकार है ना?
0: हाँ हाँ मुकेश जी को सुना था। जी
1: गम भरे गाने सुने थे
0: जी।
1: तो वो तो नहीं रहे मगर उनकी आत्मिक जो कोई बहुत अंदर के थे ना वो गा रहे थे
0: जी।
1: तो वो सब मुकेश साहब के गीत गाए थे। तो फिर वो जो बोलने वाले थे वो बोले गार बोले अब मैं अंतिम में आपको बता रहा हूँ कि कैसे कि अब जितने भी मुकेश साहब के गाने हैं आपको अंतकड़ी में गाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि चलो गाएंगे। तो उन्होंने बोला कब पर गाइए? कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है? फिर रा आया तो रा पर बोला के बोले रा पर गाइए। तो वो गाया रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया।
0: क्या बात है जी जी जी जी जी।
1: रास्ते का पत्थर फिर रा पर आया तो बोला अब रा पर और भी गाना पड़ेगा। तो गाते हैं बड़ी खुशी से

0: बड़ा अच्छा लगा था और हमें
1: हमें भी बड़ा अच्छा लगा आपकी सुरीली आवाज में मुकेश जी के गाने सुनने में बड़ा अच्छा लगा। और यूं ही आप गाते मुस्कुराते हुए अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते रहिए। धन्यवाद।
0: ये आपकी हिम्मत हौसला हमें बढ़ाता है और हम बहुत खुश रहते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा जाए।
1: आपका दिन भी।
0: अब चलते हैं। ओम शांति।
1: ओम शांति। नमस्ते नमस्ते। तो हमारे मदन लाल जी और बहुत जीवंत रहते हैं, यानी कि लाइफ को अच्छे से जीते हैं, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते हैं, गाना गाते रहते हैं। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों, ऐसे ही तो जीवन जीना चाहिए। और आप सभी भी अच्छे से जीवन जीते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। आइए कुछ सूचनाएं अब तक पहुँचाते हैं दैनिक भास्कर के जरिए। आज जवाल में पाड़िव GSS क्षेत्र से जुड़े विभिन्न गाँवों में शुक्रवार को यानी कि आज के दिन रख रखाव कार्य के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। JEN नवीन कुमार जी ने दैनिक भास्कर को बताया, सिरोही से आने वाली 33 KV लाइन में नया जियो स्विच लगाने का कार्य किया जाएगा और इसके चलते गांवों में सुबह 8 से 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। सिरोही में दिन भर की तपन और उमस के बाद रात करीब 8 बजे अनादरा क्षेत्र में बारिश शुरू हुई। करीब एक घंटे तक अनादरा, पामेरा, नागणी और उड़वारिया समेत आसपास के कई गांवों में अच्छी बारिश हुई। बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा बैठक 31 जुलाई को सुबह 11 बजे संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के VC हॉल में आयोजित की जाएगी। ये जानकारी सचिव एवं ADM डॉक्टर राजेश गोयल जी ने दैनिक भास्कर को दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से सुरक्षा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक मंडा शाखा ने KCC खाताधारक किसानों से जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी करने की अपील की है। शाखा प्रबंधक अनिल कुमार सालवी ने कहा कि जो किसान फसल का बीमा कराना चाहते हैं वो तय समय सीमा में अपनी गिरदावरी और लिखित आवेदन बैंक शाखा में जमा कराएं। और वहीं पर गुलाबगंज में लेक्चरर नहीं शिक्षकों की कमी पर स्कूल के बाहर धरना। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गुलाबगंज में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों और अभिभावकों और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। जुलाई में अब तक शिक्षकों की कमी के चलते विरोध प्रदर्शन 7 जुलाई को वासा, 13 जुलाई को नागाणी और 14 जुलाई को सिरोड़ी और 28 जुलाई स्वरूपगंज क्षेत्र के रामपुरा गांव में 2 स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आज दैनिक भास्कर में जरूर पढ़िए, हर शुक्रवार को एक गांव या पंचायत की कहानी आती है। आज पढ़िए माड़ानी गांव के बारे में। जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर जावाल कैलाशनगर मार्ग पर स्थित माड़ानी गांव इतिहास, शौर्य और आस्था की अनूठी विरासत समेटे हुए हैं और कभी छोटी सी बस्ती रहा ये गांव वर्ष 1683 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। अभी जनसंख्या है 2500 और साक्षरता दर है 55.22%। मंडी के ऊपर नजर डालते हैं। मंडी में आज अरंडी के भाव है 6500 से 6758 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं है 2550 से लेकर 3200 रुपये प्रति क्विंटल। जो है 2600 रुपये से 2700 प्रति क्विंटल। मक्का है 2350 से 2650 प्रति क्विंटल। और वहीं पर घी की बात करें, डालडा घी के तो 2060 रुपये से 2075 रुपये प्रति टन या प्रति टीन, क्षमा करें, यानी कि 15 लीटर। गुड़ शक्कर की बात करें तो यहाँ पर 5000 से 5025 रुपये। और मूंगफली के तेल है 2875 से 3100 रुपए। और किराना में तेल की बात करें सरसों तेल के बारे में, तो यहाँ पर 2651 रुपए से 2861 रुपए, ये 15 लीटर का भाव है। दलहन के बारे में, मूंग के बारे में बात करें 6500 से 8000 प्रति क्विंटल है, और चना है 5400 से 5913 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द दाल है 7000 से 8000 रुपए प्रति क्विंटल। पर आबू रोड ग्राम पंचायत आमथला में ग्रामीण सेवा शिविर शुरू हुआ है, और शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। विभिन्न सरकारी योजनाओं में स्वीकृतियां जारी की गई। शिविर में 15 म्यूटेशन स्वीकृत किए गए और एक बंटवारा प्रकरण निपटाया गया। 7 खातों का शुद्धिकरण किया गया, 10 फार्म रजिस्ट्रेशन के प्रकरण के लिए गए और 83 जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए। एक रास्ते का प्रकरण निस्तारित किया गया, तो बीवीजी रामजी में 2 प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए भेजे भी गए। 25 आवासीय पट्टे जारी किए गए हैं और 25 व्यक्तिगत शौचालय स्वीकृत किए गए हैं। तो ये बातें हम आपको पहुंचा रहे हैं दैनिक भास्कर के जरिए।

आइए जान लेते हैं कुछ बातें, कुछ सूचनाएं। ब्रह्मा कुमारीज का 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान 2 से 20 अगस्त के देश भर में 6000 सेवा केंद्रों पर होंगे कार्यक्रम। चलेगा नशा मुक्ति महाअभियान 2 को वर्चुअल शुभारंभ करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी। स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर दिलाई जाएगी शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को सुबह 10:30 बजे नशा मुक्ति युवा फिर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर में आयोजित हजारों कार्यक्रमों को वर्चुअल संबोधित करेंगे। और वहीं पर आबू रोड में सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का अभिमुखीकरण और शपथ ग्रहण समारोह हुआ। प्राचार्य डॉक्टर हनुमान सिंह जी ने NSS के उद्देश्य और महत्व बताए। और वहीं पर आबू रोड में पीएम श्री स्कूल में बांटी गई स्टेशनरी किट। महात्मा गांधी विद्यालय में शुक्रवार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारी भंवर चौहान जी ने विद्यार्थियों को स्टेशनरी किट वितरित किया। और वहीं पर सिरोही में महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक योगेंद्र देथा जी के निर्देश अनुसार नगर पालिका सिरोही के फॉलोअप शिविर में आयुक्त की अध्यक्षता में बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम हुआ और इसमें केक काटकर बच्चियों को माला पहनाकर विभाग ने बेबी किट का वितरण किया। और वहीं पर DMP सेवा फाउंडेशन की ओर से मंडवारिया में दलपत मंडवारिया की स्मृति में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के प्रथम चरण में 4000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है, जबकि फाउंडेशन आगामी समय में 40,000 पौधे रोपण का और उसका संरक्षण करने का संकल्प लिया है। अबू रोड में आर्य गुरुकुल महाविद्यालय अबू पर्वत के तत्वावधान में संचालित संस्कार शिक्षा कार्यक्रम के तहत बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के ओर से विशेष कार्यशाला हुई। प्रकल्प संयोजक राजेश देव ने मनुष्य बनने के महत्व पर बात की। उन्होंने वैदिक प्रेरक प्रसंगों से विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों और चरित्र निर्माण संस्कार का महत्व समझाया। वहीं पर शिवगंज में गोपेश्वर महादेव मंदिर में आया सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। आबू रोड में रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध हालत में दिखे बच्चे की 1098 पर दे सूचना, यात्रियों से अपील की गई।

बसिरोई में शहर के पुराने बस स्टैंड के समीप इन दिनों जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर लगने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यस्ततम इलाके होने के बावजूद नियमित सफाई ना होने से आसपास बदबू फैल रही है और ये जनता की आवाज़ दैनिक भास्कर के जरिए हम अब तक पहुंचा रहे हैं। शहर के हाईवे स्थित अंबिका होटल के बाहर बड़ी संख्या में गांवों की सड़क पर खड़े रहने से दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन और रात के समय गोवंश सड़क पर जमा रहते हैं और जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। और वहीं पर मांडवाड़ा खालसा में 25 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रोन सीडिंग और बारिश के बाद स्थानीय प्रजातियों के पौधे उगने की उम्मीद है। जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए वन विभाग ने आधुनिक तकनीक का उपयोग शुरू किया है। वन मंडल सिरोही की पिंडवाड़ा रेंज के मुनिराज पहाड़ी और लौटाना ब्लॉक नाका मांडवाड़ा खालसा क्षेत्र में पहली बार ड्रोन के जरिए 25 हेक्टेयर वन भूमि पर 300 किलो बीजों का बीजारोपण किया गया है। ये कार्य उन दुर्गम और पथरीले इलाकों में किया गया जहां पैदल पहुंचना कठिन और जोखिम भरा है। बीजारोपण के लिए बीजों को मिट्टी और गोबर और आवश्यक पोषक तत्वों से तैयार सीड बॉल्स में रखा गया। ड्रोन की सहायता से इन्हें पहाड़ियों की चोटियां और ढलानों और उपयुक्त मिट्टी वाले स्थानों पर गिराया गया। बारिश के बाद सीड बॉल्स की बाहरी परत गलने पर बीज अंकुरित होकर पौधा में विकसित होंगे। बहुत ही अच्छा प्रयास है ये कि ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल्स गिराए जा रहे हैं जहां पर जाना मुश्किल है। ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के साथ। आइए यहां पर मैं आप सभी से लेती हूँ विदाई, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो माधुबन 107.8 FM। आप सभी का दिन अच्छा हो, मंगलमय हो, ये शुभकामनाओं के साथ यहीं पर रुकते हैं। नमस्ते।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। विचार पर करेंगे विचार और नुस्खों का देंगे जरूर साथ। खुशनुमा जीवन की करेंगे बात तो नई नई व्यंजन भी बनाएंगे साथ। और प्रश्न पूछने वाली हूँ आज, प्रश्न का जवाब दे सकते हो। हमारे नंबर है 94-1415-1415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो। तो आइए सुनते हैं एक गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना एक कला है। लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। कैसे, तो आज के विचार का विस्तार एक छोटे से दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी कि बहुत समय की बात है, एक बहुत धनवान राजा था, उसका नाम था मिडास। धनवान होने पर भी वह संतुष्ट बिल्कुल नहीं था, उसे पैसे और सोने का बहुत ही अधिक लालच था। एक दिन उसके सपने में एक परी आई, वह जाग उठा। उसने देखा कि वह परी उसके सामने खड़ी है। अपने बिस्तर से उठकर के राजा परी के चरणों में गिर गया। उसने परी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप कितनी सुंदर हो, मैंने सुना है कि परियां मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण करती हैं। परी मुस्कुराते हुए बोली, हे राजन, कहिए आपकी क्या इच्छा है, हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। राजा को कुछ समय तक तो समझ में ही नहीं आया कि वह क्या मांगे। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा कि हे परी, आप मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं जिस चीज को भी छूं वह सोना बन जाए। परी ने राजा की इच्छा पूर्ण कर दी। धीरे से राजा एक पत्थर के पास गया। राजा ने अपना हाथ जब पत्थर को लगाया तो पत्थर सोना बन गया। राजा तो जैसे खुशी से नाचने लगा। राजा ने एक फूल को देखा, उसे छुआ तो वह भी सोना बन गया। राजा अपने बगीचे में जाकर के सब फूल पौधों को छूने लगा। वह जिसे भी छूता वह सोने में परिवर्तित हो जाता। राजा तो जैसे खुशी से पागल हुआ जा रहा था। कुछ देर बाद जब उसे भूख लगी तब उसने फल और पानी मंगवाया और जब खाने के लिए हाथ लगाया तो फल सोने में बदल गए। पानी के जग को छूते ही वह भी सोना हो गया। राजा अब न कुछ खा सकता था, नहीं पी सकता था। अपनी मूर्खता पर राजा को बहुत ही दुख हुआ। राजा को दुखी देख करके राजा की बेटी उसके पास आई तो राजा ने बड़े प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा तो वह भी सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा और भी ज्यादा दुखी हो गया। पश्चाताप के आंसुओं में राजा जब डूबा हुआ था तब वही परी उसके सामने पुनः प्रत्यक्ष हो गई। उसने कहा, हे राजन, मैंने तो सोचा कि आप बहुत खुश होंगे, लेकिन आप तो बहुत दुखी दिख रहे हैं। क्या आपको मिली हुई शक्ति से आप खुश नहीं हैं? क्या आपको और कुछ चाहिए? तब राजा ने परी के पांव पकड़े और माफी मांगते हुए कहा, कृपया आप ये शक्ति वापस ले लीजिए और मुझे, मेरी बेटी तथा मेरा सामान्य जीवन वापस दे दीजिए। मेरे पास बहुत धन है और आज से मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, अपना धन गरीबों में बांटूंगा। ये सुनकर के परी ने अपनी दी हुई शक्ति वापस ले ली। राजा बहुत खुश हो गया और सदा के लिए उसने सोने के प्रति अपने लालच को छोड़ दिया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कि लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

ये संसार एक विशाल कुरुक्षेत्र है और हमारा जीवन एक महाभारत। हमारा कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अपनी महाभारत कभी हम शस्त्र के बिना लड़ते हैं, कभी शस्त्र के साथ, कभी अपने शत्रु के विरुद्ध और कभी अपने विरुद्ध। न्याय के लिए, सत्य के लिए, अधिकार के लिए, इस संघर्ष में हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा विश्वास है, सबसे बड़ा शस्त्र हमारा कर्म है।

0: मैं हूं जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। छाती का दर्द हो, पसली का चलना हो, अगर ये सारी समस्याएं हैं तो बहुत ही अच्छा आपको नुस्खे देने वाली हूँ कि अजवाइन एक चम्मच आप 250 ग्राम पानी में उबालिए, ठीक है। एक चौथाई भाग रह जाए फिर आप इस काढ़े को छान करके रात को सोते समय गरम गरम पी करके ओढ़ करके सो जाइए। दिन में दो बार इस तरह आपको पीना है। इससे 5-7 दिन में ही छाती का दर्द खत्म हो जाएगा और काढ़ा 2 चम्मच की मात्रा से दिन में 2 बार निरंतर कुछ दिन लेने से पसली का चलना भी ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर नुस्खा है, फिर से दोहरा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि अजवाइन एक चम्मच 250 ग्राम पानी लीजिए और उसमें डाल करके उबालिए, फिर एक चौथाई रह जाए तो इस काढ़े को छान करके रात को सोते समय गरम गरम पी करके ओढ़ करके सो

मैं अभी बच्चों के लिए दे रही हूँ, 6 महीने से 12 महीने वाले जो साल भर के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए। ठीक है, 10 से 12 दाने अजवाइन के डालिए और उबालिए। आधा रहने पर इसे कपड़े से छान लीजिए और ये अजवाइन पर काढ़ा, थोड़ा सा ये जो अजवाइन का काढ़ा बनाया है, थोड़ा सा गरम गरम पर सहता सहता, ऐसे नहीं कि एकदम गरम, बच्चे बड़े नाजुक होते हैं इसलिए सहता सहता एकदम नवसेका हो जाए ना कि बच्चे को अब पिलाने की स्थिति में है ये काढ़ा, तब पिलाइएगा। गरम गरम एकदम जलता हुआ नहीं देना है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर आप कहेंगे उषा दीदी ने कहा है कि गर्मा गर्म देना। अरे भाई, अब बड़े तो हम पी सकते हैं थोड़ा सा गर्म, चाय दूध कैसे पीते हैं, गरम गरम पीते हैं ना, इस तरह काढ़ा भी पी सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं पी सकते हैं, इसलिए बच्चों को बच्चे के हिसाब से नवसेका देना है, दिन में 2 बार। ठीक है, और रात में सोने से पहले देना है और सुबह देना है, दिन में 1-2 बार दे सकते हैं, इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर होगा। तो इस तरह बच्चों को भी सर्दी जुकाम या पसली, छाती में दर्द जो भी है, उसमें आप इस अजवाइन के काढ़े को दे सकते हो। साथ ही अजवाइन का काढ़ा यकृत, तिल्ली, हिचकी, वमन, मिचली, फिर खट्टी डकारे आना, पेट की गुड़गुड़ाहट, इन सभी समस्याओं में भी ये फायदा करता है। तो कहते हैं ना कि एक वस्तु और फायदे अनेक, तो ज़रूर आप आजमा सकते हैं। अगर दमा है, दमा की शिकायत है, तो सुहागा का फुल्ला और मूल हड्डी को अलग अलग खरल या फिर इसको कूट पीस करके कपड़ छन कर दीजिए और मैदे की तरह बारीक इसका चूर्ण बना लेना है। फिर इन दोनों औषधियों को बरोबर वजन मिला करके किसी बोतल में कांच की शीशी में सुरक्षित रख लीजिए। बस सांस खांसी जुकाम के ये सफल दवा है। अब इसको आप कैसे लेंगे, तो आप क्या करेंगे, साधारण मात्रा 0.5 ग्राम से 1 ग्राम तक दवा दिन में 2-3 बार शहद के साथ चाटिए या गर्म जल के साथ लेना है। ठीक है, बच्चों के लिए आप 0.5 ग्राम माने रत्ती भर की मात्रा आप आयु के अनुसार दे दीजिए। परहेज में दही, केला, चावल, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, बड़े हैं तो मात्रा को बढ़ा दीजिए, बच्चे हैं तो रत्ती भर ही दीजिएगा। फिर से दोहरा रही हूँ कि सुहागा का फुल्ला और मूल हटी, इनको अलग अलग खरल या फिर खरल में बांटिए या हमानदस्ते में कूट पीस करके कप्पड़ छन करके मैदे की तरह बारीक चूर्ण बना लेना है। ठीक है, फिर इन दोनों औषधियों को बरोबर वजन मिला करके किसी कांच की शीशी में सुरक्षित रख दीजिए। बस सांस खांसी जुकाम इन सब के लिए ये सफल दवा है। लेना कैसे है, जो आपको बता रही हूँ कि साधारण मात्रा 0.5 ग्राम से 1 ग्राम तक दवा दिन में 2-3 बार शहद के साथ चाटिए या गर्म जल के साथ लीजिएगा। और बच्चों के लिए 1 रत्ती, ठीक है, मात्रा आयु के अनुसार इसी तरह देना है। परहेज में दही, केला, चावल, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। तो ये सारे ही नुस्खे फायदेमंद है और आप चाहो तो आजमा सकते हो। अब आइए ले लेते हैं एक अल्पविराम, पुनः लौट करके आ रही हूँ, फिर आपको मैं प्रश्न भी पूछूंगी, खुशनुमा जीवन की बातें भी आपके साथ करेंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: तो ये आज का प्रश्न है, जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 94-14-15-14-15। बहुत ही सरल प्रश्न है और अगर आप जवाब देंगे तो साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यह कब आने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर आज का प्रश्न है कि ऐसी तिथि आने वाली है, चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे, गरबा रास भी करेंगे। तो ऐसी कौन सी तिथि आने वाली है और कब ये तिथि है? हेलो,
1: जय माता
0: दी, जय श्री हरि। जी जय श्री हरि, जय माता दी। नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: और सबसे पहले तो हमारे कंचन पर यात्रा में गए, तो बस बाबा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी यात्रा सफल हो, मंगलमय रहे।
0: जी,
1: और आपका सवाल तो बहुत ही सुंदर है, आंसर दे दो।
0: हाँ जी, बिल्कुल दे दीजिए। अगर आप ऑफेयर देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। ऑफेयर देंगे तो अच्छा रहेगा, हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी थोड़ा सोचने का अवसर मिलेगा।
1: तो कोई बात नहीं,
0: आज के विषय में बोल रही हूँ। तो गरीब पर मत हंसना साहब, कहीं ऊपर वाले ने सुन लिया तो कटोरा बदलने में देर नहीं लगेगी। तो गरीबों पर अक्सर हम कमेंट करते हैं, अक्सर उन पर हंसते हैं, हीन भावना से उनको देखते हैं, उनका मतलब समय प्रति समय वो कहते हैं ना कि लोग बाग अपमान भी करते हैं, क्या कहेंगे आप?
1: देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी मतलब ऊपर से कोई अमीर बन के नहीं आता है।
0: जी,
1: ऊपर से तो सब खाली हाथ ही आते हैं।
0: जी,
1: तो मतलब जो वो गरीब है ना, उनको उनका सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि देखिए हर एक इस धरती माता के ऊपर तो सब उनके पुत्र समान है।
0: जी,
1: वो देखिए मतलब जो पैसे वाला होता है उसको भी अन्न उगा के खिलाती है।
0: जी,
1: और जो गरीब होता है ना उसको भी अन्न मिलता है। प्रभु ने कितनी अच्छी बात बताई है कि देखिए मतलब जो सोते हैं तो कोई भूखा नहीं सोता है।
0: जी,
1: उसको बोले कोई सूखी रोटी खाता है, कोई माल पानी खाता है।
0: जी,
1: मगर उठते हैं तो सब भूखे उठते हैं, पैसे वाला हो या गरीब हो।
0: हाँ जी, बिल्कुल। तो कहते हैं कि भूखे उठते सभी हैं, लेकिन ईश्वर सभी को मतलब भूखा सुलाता नहीं है, उठाता जरूर है लेकिन सुलाता नहीं है,
1: कुछ ना कुछ खिला के सुलाता है।
0: जी जी,
1: तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए आज के मंदिरों पे भी अपन देखते हैं तो कितने गरीब लोग बैठते हैं कटोरा लेके।
0: जी,
1: तो आपने सही बात की कि किसी की गरीब पे हंसना अच्छी बात नहीं है। जो भी आपके हाथ में लगे तो दे दो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है।
0: जी बिल्कुल,
1: मगर उसके ऊपर हंसोगे ना तो वो कल उठ के वही कटोरा अपने हाथ में आ सकता है, क्योंकि पलक झपकते ही करोड़पति रोड़पति बन सकता है।
0: जी जी, हो रहा है, देख रहे हैं समाज में। बहुत बहुत आभार।
1: बस तो यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ये कुछ भी नहीं है, बस मतलब उसके कुछ पिछले कर्मों का होगा तो उसको मिल रहा है, बाकी अपन को मतलब उसके प्रति अच्छी भावना रखनी है।
0: जी,
1: ताकि अपना जीवन सुधर सकेगा।
0: बहुत सुंदर, बहुत
1: और अपन सच
0: जी
1: अपने अंदर से जो भी अच्छे विचार निकले वो उसको भी मतलब हिम्मतवान बनाए और उसको भी अच्छी राह दिखा सके।
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने स्पष्ट किया है कि भाई देखिए, कुछ नहीं कह सकते, आज बीज है तो कल तीज है, कब किसकी परिस्थितियां बदल जाए। हेलो, हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो?
2: कार्यक्रम कार्यक्रम तो हम सुनते थे लेकिन आज आपसे रूबरू बात हो रही है तो बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी,
2: और बहुत अच्छी बात हो रही है, विषय भी अच्छा है, प्रश्न भी अच्छा है। प्रश्न तो मैं बाद में दूंगा।
0: जी,
2: लेकिन विषय बहुत अच्छा दिया है, गरीब और अमीर
0: जी
2: बहुत फर्क है, माने तो
0: जी,
2: वरना कुछ नहीं है।
0: जी
2: वो कहता है कि हम भी कभी कभी ऐसे पहले थे, लेकिन आज हम थोड़ा सा जो पैसे वाले बन गए, तो आज हम गरीब को बोल नहीं सकते।
0: जी
2: कहते हैं कि हर किसी को ऐसा दिन आता है और उसको मजा करना, उस पर कुछ बोल देना तो सही बात नहीं है। आज देखते हैं हम कई परिवार ऐसे हैं तो खाने का भी नहीं मिल रहा है, ऐसे परिवार है
0: जी।
2: लेकिन इसको हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन उसकी मजाक तो जरूर नहीं करना चाहिए कभी।
0: बिल्कुल
2: तो मदद नहीं करो तो चलेगा, लेकिन मजाक नहीं करना कभी
0: जी।
2: आज कई गरीब है परिस्थिति वाला ऐसे लोग होते हैं, तो इसके ऊपर लोग फंसते हैं, उसको ताना बाना मारते हैं, उसके कहते हैं कि भी आप कुछ करो, पैसा क्यों मांग रहे हो, सारी लड़की कर रहे हो, तो ऐसा तो बोलना सही नहीं। आपके पास हो तो दो, वरना तो आपके पास थोड़ा सा ले जाएगा। तो ऐसे ना करके हम कुछ ना कुछ मदद करेंगे तो ही सही है, क्योंकि सब तो अमीर नहीं होता
0: जी।
2: तो सबका हाल ऐसा आता है, सबका दिन ऐसा आता है कभी कभी, तो ऐसा पर हम हंसने से नहीं, तो हम कुछ मदद करें, इसको कोई मदद करे, इसके साथ कोई मजाक करे तो अच्छा नहीं है
0: जी।
2: तो बस ऐसे मजाक नहीं करना, क्योंकि कभी कभी ईश्वर भी सुनता है और ईश्वर भी कहता है कि चलो भाई वो तो आज ऐसा है, आप पैसे वाले, कभी कभी आपका भी दिन ऐसा आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, आपके पर लोग भी हंसेंगे। तो ऐसे ना करके हम जो हमारे पास हो उसकी मदद करें।
0: बिल्कुल, वो कभी कभी नहीं रोज सुनते हैं, लेकिन कहते हैं ना खुदा की लाठी की आवाज नहीं होती है,
2: नहीं होती। और कई लोग कई किस्से दीदी देखे हैं हमने कि बहुत पैसे वाले थे, आज वो भी ऐसे हालत में हो गए, बहुत गुस्सा करते थे गरीबों पर
0: जी,
2: अत्याचार करे
0: जी,
2: और गरीबों को ताना उडाना मारे
0: जी।
2: तो वो सही नहीं है, वो इसके हिसाब से गरीब है, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि किसी का घर में जाके ले जाए, ऐसा तो है नहीं। इसको चोरी करे, गरीब चोरी नहीं करता है कभी, ये हमने देखा है
0: जी।
2: तो बस कुछ ना कुछ हम तो ऐसा चाहते कुछ मदद कीजिए और मजाक नहीं करना बस।
0: जी जी, बहुत सुंदर,
2: ठीक है
0: जी,
2: नमस्कार,
0: आभार आपका। तो देखिए सुरेश भाई बाहर है, फिर भी देखे जिनको रुचि है रेडियो के प्रति, वो कहीं पर भी जाते हैं तो भी रेडियो से जुड़े रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप सुनते ही नहीं है, अमल भी करते हैं, और रेडियो को कितना आप दिल में बसाए रखते हैं इस बात से पता चलता है। तो बात चल रही थी कि भाई गरीबी का, जैसे कि सुरेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं गरीब की तो उसकी मजाक भी मत करिए, बहुत अच्छी बात है। कितनी बार हमारे घर के बाहर जैसे कोई मांगने आते हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई देव पूजक दानेरा।
0: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
3: बस अच्छे है, और पहले जो रेडियो हमारे यहाँ पता नहीं क्यों फ्रिक्वेंसी बिल्कुल नहीं पकड़ रहा था, अब तो बात भी हो रही है, सुरेश भाई ने अभी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हम
0: जी जी जी,
3: और अभी रेडियो ऑन किया है जब सुरेश भाई का कॉल था, तो किस बारे में चर्चा हो रही है,
0: बात हो रही है कि गरीब पर, देखिए कि मैं एक शेर बोलती हूँ, गरीब पर मत हंसना साहब, कहीं ऊपर वाले ने सुन लिया ना तो कठोरा बदलने में देर नहीं लगेगी। मतलब जो गरीब के हम हंसी मजाक उड़ाते हैं, उनको तुच्छ नजरों से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं, ये जी तो क्या कहेंगे।
3: सुरेश भाई ने जैसे बात बताई उस पर और मैं ऐड करना चाहूंगा कि कई भी ऐसे गरीब थे जो आज अपनी मेहनत से, मैंने देखा है जो अपनी मेहनत से वो कुछ अपने कदम पर चल रहे हैं, और वो कभी कभी पुराने याद करते हैं, पुरानी बात, जब वो गरीब थे, इधर ठोकरे खाई, ऐसे ठोकरे खाई, तो एक संदेश देते हैं कुछ लोगों को कि आप जो गरीब होते हैं खास करके उन लोगों को
0: जी।
3: पहले हमारी ऐसी परिस्थिति और हम हमने ऐसा किया, जब हम अपने कदम पर खड़े हुए, आप भी ऐसा कीजिए, अगर हम अपने कदम पर चले और मेहनत और अपनी नीति धर्म सब कुछ अच्छे रखे तो गरीबी दूर हट सकती है, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और हम जो वैसे ही परिस्थिति में रहे और जैसे कि अभी बताया कि चोरी चकारी ऐसे कुछ करते हैं, तो ऐसे ही करते रहेंगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही, और हम कुछ ना कुछ बातें करते ही रहेंगे।
0: जी जी,
3: तो मेरी राय ये है दीदी।
0: जी बहुत बहुत आभार
3: दीदी। अब तो रेडियो चालू हो गया तो हम हर रोज जुड़ेंगे।
0: जरूर जरूर, प्रश्न का जवाब देंगे आप?
3: प्रश्न सुना नहीं दीदी, क्या है?
0: अच्छा, प्रश्न है कि ऐसी तिथि आने वाली है, चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे सब खाएंगे और गरबा रास भी करेंगे, ऐसी कौन सी तिथि आ रही है और कब है वो तिथि?
3: वो अभी कुछ ही दिन है, शायद आज 12-13 से 2-3 ही बाकी है अभी आने वाली पूनम की बात करती है शायद आप।
0: अच्छा ठीक है, आप आशना सुनिए, हम जरूर जवाब देंगे आपका। ठीक है,
3: थैंक यू दीदी, नमस्कार।
0: जी वेलकम, नमस्कार। तो आइए यहीं पर एक छोटा सा गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो 1।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इतना इतना इतना क्या पहुँचा दोगे हैं? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
3: माता रानी कहती है, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो, भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इनको देना, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। मेरे दर पर मांगने वाले, तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि गरीब लोगों पर अक्सर हम छिटाकसी करते, हीन भावना से देखते, उनकी मजाक उड़ाते हैं, और उनको वो कहते हैं ना कि अगर चार जनों के बीच कोई गरीब रिश्तेदार, कहते हैं ना चार जने रईस बैठे हुए होते और कोई गरीब रिश्तेदार आकर के बैठ जाता है तो उसको ऐसे नकारने की कोशिश करता है कि अरे नहीं नहीं, इनसे तो हमारा कोई लेना देना ना, ये तो बहुत दूर से है। भले सगे भाई भी होगा तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये तो दूर से भाई है, हमारा कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं है। मतलब गरीब लोग इतने आपको ऐसे लगते हैं कि उसमें भी बहुत लोगों को अपने इंसल्ट महसूस होती है कि मेरा रिश्तेदार इतना गरीब है तो मैं कैसे दूसरे लोगों के सामने इसके साथ रहूं। अंदर भले वो काम लेंगे, अंदर ही अंदर उनसे कहेंगे आपसे, और देखिए आप देखिए गरीब लोग जल्दी से आपकी मदद करेंगे, पैसे वाले मदद नहीं करेंगे। फिर भी पैसे वालों के पीछे सभी दीवाने होते हैं, उनके गुणगान करेंगे बिना कारण, उनकी तारीफ करेंगे। और गरीब भले आपकी मदद करता होगा लेकिन चार जनों के बीच में खुल करके उसके आप तारीफ भी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ। हेलो,
4: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति।
3: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति। कुपाराम जी बोल रहे हैं?
4: हाँ जी कुपाराम।
3: हाँ जी कुपाराम जी, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
4: चलो प्रश्न तो आपका है वो शरद पुनमारी है
3: जी, चलिए हम जवाब जरूर देंगे, सही है या गलत आपको इंतजार करना पड़ेगा जी।
4: गरीब, पहली बात तो थोड़ा ये उल्लेख करना, वास्तव में गरीब किसको मानेंगे? और मेरे यहाँ कई भी मांगने वाले जो आते हैं ना
3: जी,
4: उनके मैं आपको बता रहा हूँ, इनको हाँ सरकार राशन दे रही है
3: जी,
4: वो राशन तो यहाँ किराने की दुकान में आके गेहूँ बेचते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने।
4: मांग के खाते हैं
3: जी।
4: मेरे पास कभी आते हैं, मैं पूछता हूँ मेरे को बीड़ी पीते हो? जगह हाँ
3: जी।
4: तो मैंने कहा अब आज तो कुछ देता एक दो रुपया, लेकिन आज नहीं दूंगा जी, क्यों? बीड़ी छोड़ के आना मैंने
3: जी।
4: अब उसको बीड़ी की क्या जरूरत है
3: जी, अब गरीब है तो बीड़ी सिगरेट पीने की क्या जरूरत है। सही कहा,
4: दो रुपए इनकी पीता है ना
3: जी,
4: 20 साल के अंदर 54,000 रुपए होते हैं उसके
3: जी। क्या बात, जब
4: वो भीख मांगने वाला बीड़ी पीता है
3: जी।
4: अच्छा उसको बोलेंगे कि थोड़ा धंधा करो, मजदूरी चलो, तो वो कभी मजदूरी नहीं करेगा वो
3: जी,
4: क्योंकि उसको एक तो आदत पड़ गई है मांगने की
3: जी।
4: मानता हूँ गरीबी है, ऐसी बात नहीं, मजबूरी में भीख मांगता है तो वो बरोबर है
3: जी,
4: लेकिन जब उसे समझ आ जाएगी फिर तो उसको भीख मांगना बंद करना चाहिए, फिर धंधा मजदूरी करना पड़ता है
3: जी।
4: हाँ जी,
3: बहुत
4: मेरा ये विचार था।
3: हाँ जी, हाँ
4: अच्छा
3: जी।
4: दूसरी बात ये रही, अब वो एक सुबह उठ के आता है तो वो स्नान करके क्यों नहीं आता, जब पानी का तो पैसा लगता नहीं है
3: जी। बिल्कुल सही कहा आपने।
4: मेरे हिसाब से उनको गरीब को थोड़ा, ये गरीब जिसको मानते हैं उनको थोड़ा विचार देना है कि वो भीख ना मांगे, वो सफाई से रहे
3: जी,
4: तो अपना विचार बदल जाएंगे
3: जी। जी क्या बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत बहुत आभार कुपाराम जी, आपके आपके इन विचारों ने मुझे भी कुछ बातें याद दिला दी है, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर बात कही है कि देखिए गरीबी मतलब गरीब किसे कहते हैं, कोई दिल से होते हैं तो कोई वो नेचुरल गरीब होते वो बात अलग है, वो खुददारी से जीवन जीते, वो हाथ नहीं फैलाते किसी के सामने, खुददारी से वो अपने रोजगार करते रहते, छोटा मोटा जो भी उनको मिला है मजदूरी करके पेट भरते, लेकिन हाथ नहीं फैलाते। और जो इस तरह के बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो हाथ फैलाने की आदत हो जाती है, वो उनके कितने भी सरकार मदद करे लेकिन वो मदद उनको मतलब लेना ही नहीं आती है, ले लेते। जैसे कि कुपाराम जी ने बताया कि राशन से जो उनको अनाज मिलता है बेच देते हैं, थोड़े से 2-4 रुपये दुकान वाले ज़्यादा दे देते तो उस लोभ में बेच देते हैं, और भले बेच करके वो सिगरेट बीड़ी पियेंगे, शराब के भी आदि होते हैं, बहुत सारे गरीबों को देखा है शराब के भी आदि होते हैं, लेकिन उनको वही जीवन अच्छा लगता है। रेडियो मधुबन की टीम कभी आपने सुना भी होगा, पहले भी हम बोल चुके हैं इस बात को कि हमारे आबू के अंचल में ही कुछ कचरे बीनने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को हमने पढ़ाया, उनको जैसे कि कुपाराम जी ने कहा ना कि वो गंदे रहते हैं, नाना तो कम से कम हैंडपम्प लगे होते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है, तो हमने देखा है कि उन गरीब बच्चों के घर के बाहर ही हैंडपम्प लगा हुआ है, लेकिन वो स्नान ध्यान नहीं करते, इतने गंदे रहते हैं, और कपड़े तो देख लो कि क्या डिज़ाइन है क्या कलर है समझ में ही नहीं आता। तो उन बच्चों को नहलाना धुलाना सब सिखाया, कपड़े धुलाना भी सिखाया। उन बच्चों का कहना था कि उनकी माताएं क्या करती है, कपड़ों को जला देती है, 8-10 दिन पहने रहते फिर उन कपड़ों को जला देती, फिर मांगने चले जाते हैं और लोग देते भी हैं, क्योंकि अब बच्चों के जो कपड़े छोटे हो जाते हैं, बच्चे की हाइट बन जाती है, तो वो फिर इस तरह गरीब बच्चों को दे देते हैं, तो उनको नए नए कपड़े मिल जाते हैं पहनने के लिए, और कीमत तो उनको पता नहीं, क्योंकि खरीदते हैं पैसे दे करके खरीदते हैं, तो उस चीज़ की कीमत नज़र आती है, और भीख में मिल गई ना, दान में मिल गई, उस चीज़ की क्या वैल्यू। तो उन बच्चों को उस वैल्यू का एहसास कराया कि आपकी माताएं जला देती है जाने दो, लेकिन आपको खुद को नहा धो करके स्वच्छ होकर के पढ़ने के लिए आना है, कपड़े धुलाई करके आना है, तो बच्चे अच्छी तरह आने लगे। लेकिन माता पिता की आदत है ना, कुछ पिता लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग जो कचरे बीनते हैं उसमें से 50-60 रुपये वो कमा लेते हैं पूरे दिन के, और पिता लोग शराब पी करके पड़े रहते हैं, ऐसा भी हमने इन आँखों से देखा है, और उनको काफ़ी समझाने की भी कोशिश की कि आपके बच्चों का भविष्य इस तरह आप क्यों खराब करते हो। उनका स्कूल में एडमिशन भी कराया गार्जियन के तौर पर, लेकिन नहीं समझते हैं ना, वो बदलना ही नहीं चाहते अपनी परिस्थितियों को, उनको ऐसे कि बस 50-60 रुपये वो, फिर 50-60 रुपये उनकी बीवी कमा के लाती है कचरा बीन करके, 100-150 रुपये आ गए हो गए, आप पूरे दिन का आराम से गुजारा चल जाएगा, इससे आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप। इसलिए ये भी सही है कि जानबूझकर के लोग अपनी आदतों से मजबूर होकर के भी लोग कुछ काम धंधा नहीं करना चाहते, लेकिन चलिए ये तो बात हो रही थी भाई गरीबों की कि वो अपनी आदत से मजबूर है, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे गरीब जो अपने स्वाभिमान में रहते हैं, आप उनकी मदद लाचार स्थिति को देख करके अगर मदद करेंगे तो वो मदद भी नहीं लेंगे, खुददारी से जीवन जिएंगे, नहीं नहीं साहब हमारे पास कोई कमी नहीं है, वो नहीं लेते हैं, तब ऐसा लगता है कि कोई कोई तो उसको गलत समझ लेते हैं कि अरे देखो गरीब है फिर भी इतरा रहा है, लेकिन इतरा नहीं, वो स्वाभिमानी है। और कहीं कहीं पर मजबूरी भी होती है, माताएं बहनों को देखिए आप, कहीं कहीं पर पति गुजर जाता है या फिर शराबी कबाबी होता है, बच्चे हो जाते हैं तो माताएं मजबूर हो जाती हैं, वो खुद के लिए फिर भीख नहीं मांगेगी लेकिन अपने बच्चों के लिए वो भीख मांगेगी, क्योंकि उनको काम अगर नहीं मिलता है तो। बहुत सारी माताओं को तो जैसे कि कुपाराम जी ने कहा कि भाई काम के लिए कहते हैं कि आइए और काम करिए, लेकिन बहुत सारे गरीब को कोई काम, ऐसे भी लोग हैं जो देना नहीं चाहते कि अरे भाई बहुत गरीब है, कहीं घर से कुछ उठा के ले गया तो, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको परखना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, गरीबों के लिए ये ज़रूर करना चाहूँगी कि भाई वो स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहेंगे, कपड़ों की शर्म नहीं है कि उन्होंने फटा पहन रखा है या पुराना पहन रखा है, फटे है तो आप सिलाई कर लीजिए, लेकिन स्वच्छ कपड़े पहनिए, धुलाई करके पहनिए। अगर आप स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे तो लोग आपको 2 नहीं 4 काम देंगे। घर पर देखिए आजकल माताएं बहनें भी क्या है, सर्विस ज़्यादा करती है या फिर घर पर भी रह करके बिजनेस करती है, तो उनको सारा काम करने का समय नहीं मिल पाता है, तो झाड़ू पोछे बर्तन में भी माइयों को रखते हैं, तो ऐसा काम तो कर सकते हैं ना। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं है हमारी, हम गरीब हैं तो कोई सा भी काम शर्म नहीं, काम करने की कभी ऐब या शर्म नहीं रखनी चाहिए, चोरी झूठ छल कपट इनकी शर्म होनी चाहिए, इसलिए काम का शर्म नहीं करनी है। जैसे कि एक बार शुक्रवार को जब हम स्पेशल कोई माता बहन से आपको मिलवाते हैं, तो एक बहन से भी मिलवाया, नेपाल की बहन थी, किस तरह वो झाड़ू पोछा करके 6-7 हज़ार महीने के कमा लेती हैं। और देखिए अच्छे घर होते हैं, वहाँ से फिर बच्चों के कपड़े है, फिर खाने पीने का है, वो भी देते हैं। वो देखिए ऐसे नहीं कि उनका दया देख करके, कि उन पर दया करके दे रहे, नहीं, स्वाभाविक है। 4 जनों का खाना बनाते हैं तो 5वें का बन ही जाता है, 1 जनों का ज़्यादा बनता ही है, और लास्ट में भोजन करने के बाद बचता है तो वो हम अपनी माइयों को ही देते हैं कि भाई ये बच्चा है जो ले जाओ, तो वो तो ताज़ा खाना ही है ना, बच्चा इसलिए दे रहे हैं और उनको पता है कि बच्चा है इसलिए दे रहे हैं, स्पेशल नहीं बनाया हमारे लिए, या फिर हम उनके लिए स्पेशल नहीं बना रहे हैं, तो वो बात अलग है। तो गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन स्वाभिमान से जीना ये अच्छी बात है। कि गरीबी तो परिस्थितियां सभी के अंदर आती है, और बात रही हंसने की, कि गरीब को देख करके हंसी मजाक नहीं करना है। वो कहते ना कि कभी भी ये पहिया घूम करके, ये चक्र घूम करके हमारे तक भी आ सकता है। हेलो
5: हेलो, नमस्कार दीदी, मैं फिर से सुरेश भाई दानेरा से। मुझे एक सच्ची घटना याद आई है
3: जी,
5: कि एक गरीब जो तो वो मांग रहा था, तो जो ज्यादा भीड़ में फुटपाथ पर, तो उनका जो मांगने का जो वटका होता है ना, वो लोगों को पैरों से इधर उधर हो रहा था, पैसे भी गिर रहे थे। तो एक इंसान ने देखा और वो बोला कि तुम इधर ऐसे ही हर रोज रहते हो, कुछ पैसा इकट्ठा करके क्यों कुछ काम नहीं करते, कि मेरे पास इतने पैसे है नहीं। तो उन्होंने पैसा 500 रुपया दिया और कुछ कुछ काम कर लो ऐसा बोलकर वो तो चला गया
3: जी।
5: और लगभग 4-5 साल बाद जब वो 500 रुपया देने वाला जा रहा था, तो एक इंसान ने पकड़ा और पैरों में गिर गया और के अपने साथ ही चलो, अरे भाई मैं आपको पहचानता नहीं, आप है कौन। तो बहुत छोटा मोटा घर था, उनके घर में ले गया और अच्छी सी खातिरदारी की, लेकिन आप बताओ तो सही है कौन
3: जी।
5: तो क्या आपको याद हो 4-5 पहले जो आपने 500 रुपया दिया और मैं भीख मांग रहा था ना, वो फुटपाथ पर, वो मैं ही हूँ। आपने सिर्फ उन दिन 500 रुपया ही नहीं दिया, लेकिन मुझे जीने की तरकीब सिखाई है। तो ये सब कुछ आपका ही है और आप बहुत धन्यवाद दिया, सब कुछ किया। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि गरीब को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए।
3: जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बड़े जी। तो ऐसा भी होता है कि देखिए गरीब के अगर हम समय रहते उनकी मदद करते हैं तो वो भी ऊपर आ सकते हैं, उड़ सकते हैं ऊपर, क्योंकि उनके अंदर कला है कुछ करने की। जैसा कि आपने बताया कि 500 रुपए से उनको इतनी मदद मिली कि कुछ ही सालों में वो थोड़े से योग्य बन गए, छोटा मोटा घर भी खरीद लिया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। पैसों का सदुपयोग करना आना चाहिए। पैसे तो सभी के हाथ में मिल जाते हैं, लेकिन कितनी बार क्या है उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। तो बात चल रही थी कि गरीब है, ठीक है वो गरीब है, लेकिन हमें उसकी हंसी मजाक उड़ाने की कहाँ आवश्यकता है। कभी कभी इंसान बेमतलब ही गरीबों की हंसी उड़ाते हैं, उनके ऊपर कमेंट कसते हैं, न जाने कितने व्यंग मार देते हैं। मांगने वाले के भी आप देखना, कोई मांगने हमारे दहलीज पर आता है तो बहुत सारे लोग तो उसका पूरा ही अपमान कर देते, अरे भाई अच्छे खासे हो, कुछ काम धंधा करो ना, ऐसे मतलब व्यंग में। नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो आया है हमारे द्वार पर तो उसकी कुछ मजबूरी होगी। अगर आप मदद कर सको तो ठीक है, नहीं तो मत करिए, क्योंकि आजकल किसी का कुछ नहीं कह सकते कि कोई मदद मांगने आता है और अपना ही चेन वगैरह खींच के ले जाता है, ऐसा भी हो रहा है अभी वर्तमान में। तो मत करिए, लेकिन हंसना नहीं है, उसके ऊपर छींटाकसी नहीं कसनी है कि अरे तुम क्या करते हो, तुम तो काम धंधा कर सकते हो। प्यार से कहो कि भाई काम धंधा करके अपना गुजारा करो, मांगना अच्छा नहीं है, ये बात तो अलग है, एक सलाह देना हुए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि ऐसे ताने मारते, ऐसे डांटते कि जैसे उसने कोई गुनाह किया हो। हमने दिया भी कुछ नहीं और बहुत कुछ सुना दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा करने से भी सामने वाला अगर वो मजबूरी से आया, हमें नहीं पता कि वो किस आशय से, किस मतलब भाव से आया है, लेकिन हमने उसका अपमान किया और उसका दिल दुख गया, उसको ताने मारे, उसके ऊपर व्यंग कसे और उसका दिल दुख गया, तो भी पाप के भागीदार तो हम हो जाएंगे ना। इसलिए कोई मांगने आ रहे हैं, देना न देना अपने हाथ में है, लेकिन अपमान नहीं करना है गरीब का, क्योंकि कब समय पलटी खाए, कब परिस्थितियां हमारे पास आ जाए, तो उस समय हम क्या करेंगे। हो रहा है समाज में, देखिए करोड़पति के रोडपति बन रहे और रोडपति के करोड़पति बन रहे, जैसे योग्य बच्चे निकलते हैं पढ़ लिख करके होशियार बन जाते हैं, अच्छी ऊंची पोस्ट पर विराजमान हो जाते हैं, तो उनकी परिस्थिति अच्छी संभल जाती है, तो वो अच्छा जीवन जीने लगते हैं। बहुत सारे लोग जो अहंकार में रहते हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता, वो देखो आप भीख मांगते नजर आते हैं। वो कहते हैं ना, कुछ कुछ रॉयल भिखारी भी होते हैं कि लोगों से पैसे मांगने की आदत होती है और देना नहीं होता है, तो दरअसल गरीब तो उनको ही कहेंगे जो पैसे तो ले लेते हैं लोगों से कि धंधे में डालना, उसमें डालना, इसमें डालना, और फिर उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। जो मांगने आते हैं ना, उनको मुंह भी नहीं दिखाएंगे और घर परिवार में समझा देंगे कि बता देना भाई, वो आवे तो बोल देना कि घर पर नहीं हूँ, और वही जवाब मिलता है। बेचारे लोग कितना धक्का खाएंगे, 10-15-20 धीरे धीरे फ़ोन कॉल्स भी बंद, उठाना बंद, नंबर बदल देंगे। गरीब वो है जो इस तरह लोगों का मांग मांग करके खाते, मेहनत करने वाले कभी गरीब नहीं होते। इसलिए स्वाभिमान का जीवन जीना है और स्वाभिमान में रहना है, यही दरअसल दिल के अमीर कहलाते हैं। और आज के प्रश्न है कि ऐसी तिथि आने वाली है, चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे और गरबा रास भी करेंगे, तो ऐसी कौन सी तिथि आती आने वाली है अभी जो ये सब हम करने वाले हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए सुनेंगे फिर से एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। परंतु आज के प्रश्न का जवाब बहुत सरल है। पहले मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, जो भी आशियाना कार्यक्रम सुन रहे हैं आप प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये तिथि बहुत ही जल्दी आने वाली है। ऐसे

0: तो भाई ऐसी कौन सी तिथि आने वाली है? नवरात्रि तो देखिए बहुत सभी ने गरबा रास किया, डांडिया किया, मजा आ गया सभी को, है ना। तो गरबा रास अपने अपने सोसाइटी में हुए हैं और किए भी होंगे, लेकिन फिर से गरबा रास करेंगे परंतु कौन सी तिथि को? जवाब दीजिएगा। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब आशियाना की किचन में आज बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट वानगी, गुजराती में वानगी कहते हैं, और वैसे हम कह सकते हैं कोई भी एक अच्छे से डिश, तो बनाएंगे राजस्थानी कचौरी चाट। राजस्थानी कचौरी चाट का नाम सुनते ही तो पानी आ ही गया होगा, और वो भी जोधपुरी कचौरी चाट, उसका तो कहना ही क्या है। जगह जगह पर भले मिष्ठान वालों की दुकानें होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे दुकानों पर लिखा होता है कि जोधपुरी कचौरी, लेकिन चलिए जोधपुरी कचौरी आज हम सभी को बनाना सिखाएंगे ताकि आप सभी बना करके आनंद ले सको। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: ओम शांति।
0: हाँ जी, नमस्कार लीला जी, ओम शांति, कैसे हो आप?
1: एकदम बढ़िया है मैडम जी, आपकी इतनी

0: अपनी फर्स्ट क्लास आवाज आज बराबर आई है, क्योंकि एक तो नहीं रहा आवाज बराबर नहीं सुनाई दे रहा था।
1: अच्छा
0: हाँ, थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, बराबर गुर गुर गुर गुर करते तो मजा नहीं आ रहा था सुनने में।
1: चलिए आज तो आवाज एकदम क्लीन आ रही है क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल, अभी पूनम में गरबे के लिए तैयारी कर रही हूँ रात की।
1: अच्छा तो आ जाइए, फिर करेंगे हम सभी रेडियो मधुबन में धमाल।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पूनम आ रही है फर्स्ट क्लास।
1: जी जी जी, चलिए हम देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं है। आ रही है तो कब आ रही है?
0: जल्दी जल्दी खीर, पौवे की खीर बनाएंगे और फिर चांदनी रात में रख देंगे और फिर चंदा मामा से अमृत गिरेगा अंदर।
1: जी जी, क्या बात है। बहुत अच्छा,
0: तो सरस बुनमनी रात जो चांदनी है उगियो सखी सखी मारा चौक में।
1: क्या बात है। बहुत खूब। तो लीला जी, हम जरूर आएंगे इस बार, भाई ज्यादा बनाना ठीक है?
0: बहुत देर बनाएंगे अपन, कमी नहीं पड़ेगी।
1: ठीक है चलिए, अच्छी बात है। और उस दिन हमारे श्रोता बंधु को आप ही सिखा देना, ठीक है? दूध पोहे।
0: ठीक है मैडम
1: जी। ओके जी, बहुत बहुत आभार आपका जी। तो आज आपको कचौरी, राजस्थानी कचौरी चाट बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है? तो पहले मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ, पेन और डायरी आप तैयार होगी आपके हाथ में, सामग्री लिख लीजिए, क्योंकि देखिए ये चीज़ें ऐसी है कि लिख लेना अच्छा है। आप रोज़ कुछ ना कुछ सिखाते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं, तो लिख लीजिए कि सामग्री है मैदा 250 ग्राम, फिर आप धुली हुई मूँग की दाल ले लीजिए 100 ग्राम, और हरी मिर्च ले लीजिए 3-4, अदरक भी एक छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं, एक चम्मच जीरा ले लीजिए, हींग चुटकी भर लेना है, पीसी हुई लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, अमचूर पाउडर आधा चम्मच लेना है, मोटा कुटा हुआ गरम मसाला आधा छोटा चम्मच ले लीजिए, और मोयन और तलने के लिए तेल आवश्यकता के अनुसार लेना है। भरने की सामग्री दोहरा रही हूँ, 4-5 उबले हुए आलू लेना है, और हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया ये आप आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, चाट मसाला भी लेना है, हरी चटनी और इमली की सौंठ ये भी आपको तैयार रखना है, बीकानेरी भुजिया और फेटा हुआ दही, और ये सब आपको तैयार रखना है, ठीक है? तो फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, ध्यान दीजिएगा कि राजस्थानी कचौरी चाट, वैसे तो देखिए राजस्थान के लोग चटपटा खाने के बहुत ही प्रसिद्ध है, जोधपुर की स्पेशल कचौरी की चाट खाने के बाद तो दिनों तक, बहुत दिनों तक उसका स्वाद याद आता रहता है। अक्सर आपने देखा ही होगा, क्योंकि कोई ऐसे नहीं होंगे हमारे श्रोता बंधु जिन्होंने जोधपुरी कचौरी चाट नहीं खाई होगी, और उसका आज मैंने याद दिला दिया होगा तो उसका टेस्ट भी याद आ गया होगा कि कैसा उसका स्वाद रहता है। लेकिन अब ये रोज़ तो बाहर से ला के नहीं खा सकते हैं, इसलिए घर पर बना करके आप ज़रूर खा सकते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी रहती है। तो मैदा 250 ग्राम लीजिएगा, दाल लेना है 100 ग्राम मूँग की दाल, ठीक है? हरी मिर्च, अदरक सब अपने आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, जैसे 3-4 हरी मिर्च है, एक अदरक का टुकड़ा है, जीरा एक चम्मच है, चुटकी भर हींग है, पीसी हुई लाल मिर्च और नमक दोनों ही अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, और अमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच लेना है, और मोटा कुटा हुआ गरम मसाला भी आधा छोटा चम्मच ले लीजिए, और मोवन के लिए और तलने के लिए आवश्यकता के अनुसार तेल लेना है। फिर भरन की सामग्री है भरने की, कि उबले हुए आलू 4-5 ले लीजिए, और हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया ये सब आपको आवश्यकता के अनुसार लेना है, इसके साथ चाट मसाला भी आपको लेना है थोड़ा सा। अब इसमें आप तैयार रखेंगे हरी चटनी, इमली की सौंठ, बीकानेरी भुजिया और दही आपको लेना है, ठीक है? तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए गीत सुनेंगे, उसके बाद राजस्थानी कचौरी चाट कैसे बनाई जाती है वो ज़रूर सिखाएंगे। परंतु आज का प्रश्न है, हमारे जो भी श्रोता बंधु सुन रहे हैं दे सकते हैं आज के प्रश्न का जवाब। प्रश्न है, ऐसी तिथि आने वाली है चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे तो गरबा आरास भी करेंगे। जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है रेडियो मधुबन के 94-14-15-14-15 और सुनते हैं गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे हैं राजस्थानी कचौरी चाट। सामग्री आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, आप लिख चुके होंगे। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि आप क्या करेंगे। मैदे को छानिए, छान करके एक बड़ा चम्मच तेल इसमें डालिए और थोड़ा सा नमक मिला करके नरम नरम इसको गूंदना है और गूंद करके गीले कपड़े से ढक करके रख देना है, ठीक है। फिर एक कढ़ाई रखिए गैस पर, कढ़ाई में तेल डालिए

और अच्छी तरह इसको मेश करिए। गरम मसाला और अमचूर मिलाइए, थोड़ा हरा मसाला भी मिला दीजिए। मैदे की छोटी लोइया बना करके बीच में मूंग का मिश्रण थोड़ा सा फैलाना है लोइया बना करके, ठीक है। फिर मूंग के दाल की ये पिट्ठी रखिए और इस मिश्रण को भर करके चारों ओर से मोड़ करके गोलाई में बंद करिए। हथेली से हल्का सा दबा करके कचौरी की तरह बनाइए, ठीक है। फिर गरम तेल में इसको डाल दीजिए, मंदी आंच पर करारी होने तक तलना है, तो कचौरी फूलना अवश्य। देखिए कचौरी आप डाल रहे हैं, तल रहे हैं, तो कचौरी फूलनी ज़रूर चाहिए, ठीक है। अगर नहीं फूली बैठ जाएगी तो फिर वो कचौरी की तरह दिखाई नहीं देगी, इसलिए इस बात पर आपको पूरा ध्यान देना है। एक आध बिगड़ जाए तो दूसरी पर अच्छी मेहनत करनी है। अच्छी तरह इसका लुआ बनाना है, लुआ बना करके इसको हथेली से ही चौड़ा चौड़ा बना करना है। फिर मसाला जो पिट्ठी बनाई है दाल की बीच में रख करके गोल गोल फिर से लुआ बना करके हल्के हाथ से दबा देना है कचौरी की तरह। फिर तेल गरम हो जाए उसको मध्यम करके मध्यम आंच पर कचौरियाँ तलिए, दोनों तरफ से सुनहरी सुनहरी हो जाए फिर आप निकाल दीजिए और दूसरी कचौरिये तल दीजिए। कचौरिये फूलनी ज़रूर चाहिए। कचौरी को ऊपर से थोड़ा फ्राई करके उसमें कटे हुए आलू, हरा मसाला, जैसे कि हमने सामान लिया ना भाई, उबले हुए आलू 3-4 लिए, उसके आप थोड़े से कटके कर लीजिए, काट लीजिए, ठीक है। और उसमें ये हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, कटा हुआ चाट मसाला, ये सभी आपको बताया था तो लीजिए। फिर आलू डाल करके हरा मसाला और चाट मसाला अपने स्वाद के अनुसार डालिए, और हरी मिर्च, बीकानेरी भुजिया ये भी डाल दीजिए, इमली की सौंठ भी इसमें डालनी है, इमली की सौंठ बोले तो चटनी, ठीक है। और दही और नमक सब छिड़क करके पिरसिए, तो ये बन गई कचौरी, राजस्थानी कचौरी चाट। इसके खाने का जायका ही अलग है, बनाने का भी तरीका और खाने का भी स्वाद पूरा ही आपको अलग ही लगेगा, और बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी। बच्चे, बुजुर्ग, किशोर सभी इसको पसंद करते हैं और सभी खा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कचौरी चाट तैयार है, अब देर किस बात की, लीजिए एक प्लेट। प्लेट में ये सब रखिए और अच्छी तरह इसमें सब कुछ मसाला डालिए और एक थाली में रख दीजिए, स्वच्छ थाली में। और भी आपने कुछ बनाया है वो भी रखिए, तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, और ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो कचौरी चाट का। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था कि भाई आप सभी ने सुना ही होगा कि ऐसी तिथि आने वाली है चंदा में सभी झूमने वाले हैं, दूध पोहे भी खाएंगे तो गरबा रास भी करेंगे। तो आज के प्रश्न का जवाब सभी ने सही दिया है। नाम मैं पहले सुना रही हूँ, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई जोटाना से, सुरेश भाई दानेराव से, कुपाराम जी कोजरा से और लीला जी माउंट आबू से, सभी ने सही जवाब दिया है शरद पूर्णिमा जय। तो सही जवाब आप सभी के लिए तालियां। और अब खाली दो लाइन में गीत की सुनाऊंगी, क्योंकि समय भी होने को आ चुका है, इसलिए सिर्फ दो लाइन गीत की सुनाऊंगी। आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी

0: रुको। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: और मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई, हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे, और बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे, और रोड पे कोई हो न हो सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे, और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम लेकर के आप सभी के बीच में आते हैं और कुछ नई अनोखी बातें सीखने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों, जीना इसी का नाम है कब कहा जाता है? जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो और वो चीजें शायद हमें जीवन में कभी और हासिल नहीं कर पाते हैं, और यही वो जीवन है जो हम जीना चाहते हैं और हम उस चीज को हासिल कर लेते हैं। जब ऐसे पल आते हैं तो फिर जीवन की जो संतुष्टता है वो बढ़ती जाती। ऐसे ही कुछ अनुभवों के साथ आज हमारे बीच में है सूरज भाई। सूरज भाई शांतिवन ब्रह्म कुमारी के परिसर में कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और एक योगी जीवन जीते हुए कैसे वो स्थूल कार्य को भी करते हैं, आइए आज के इस बातचीत में हम जानते हैं। सूरज भाई, आपको रेडियो मधुबन में और जीना इसी का नाम है कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी मुझे इन्वाइट करने के लिए।
3: जी तो सूरज भाई, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपका बचपन, आपका परिवार कहाँ बीता और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और बचपन से ही आपकी धार्मिक प्रवृत्ति रही या फिर बाद में आपको ये आध्यात्मिकता के प्रति रुचि आया?
4: सभी श्रोताओं को मेरा ओम शांति। बचपन से, वैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जन्म हुआ नासिक महाराष्ट्र में, बिलोंग्स हम महाराष्ट्र से ही करते हैं। तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, कोपरगाँव करके एक तहसील है, तो वहाँ पे हमारे पिताजी जॉब करते थे, तो वहीं पे हमारी पढ़ाई शुरू से लेके आखिर तक सब कुछ वही हुई। बचपन भी कोपरगाँव एक छोटा तहसील है, उसमें भी तिलक नगर करके एक जगह है, तो जहाँ पे हम रहते थे वहीं पे हमारा सारा बचपन बीता, वहीं पे हमारी सारी पढ़ाई पूरी हुई। और रही आध्यात्म की बात, तो घर में ही आध्यात्म का वातावरण पहले से रहता था। बड़े चाचा थे जो हमेशा भक्ति मार्ग में रहते थे, छोटे चाचा भी भक्ति मार्ग करते थे, पिताजी भी भक्ति मार्ग करते थे, हम तीन चाचा, मतलब दो चाचा भाई, मेरे पिताजी माताजी, हम साथ एक सिंगल परिवार हमारा एक ही था उस समय जब तक दादाजी थे। तो बड़े चाचा को मैं हमेशा देखता था कि सवेरे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, घर में जितने भी भगवान है सबकी पूजा करेंगे, उनको नहलाएंगे, फिर वो खुद सबकी पूजा आरती करके फिर काम पे चले जाते थे। तो ये हम बचपन से देखते आ रहे थे, तो वही संस्कार थे। फिर कभी कभी ऐसे भी मौके आए कि घर में कोई नहीं, मतलब बड़े चाचा नहीं, छोटे चाचा नहीं, पिताजी भी नहीं, सिर्फ मैं होता था, मेरा छोटा भाई। भाई काफी छोटा होने के कारण उसको नहीं, फिर माँ मुझे बोलती थी कि आज तेरी बारी है, तुम पूजा कर। तो इतने सालों से जो देखा हुआ था वैसे ही नहा के आओ, सिर्फ एक वस्त्र पहनो, पूरे शरीर पे इधर उधर सब जगह पे भस्म लगाइए, और फिर शुरू करते थे जो भी देखा होता। तो माँ बैठ के हंसती थी, तो लेकिन इस तरीके से हमारे में भक्ति मार्ग भी रहा। माँ हमें बताती थी कि जब हम काफी छोटे थे तो माता पिता दोनों भक्ति मार्ग में थे, तो महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी बहुत प्रचलित है, जैसे पूरे भारतवर्ष में गीता है तो उसी का मराठी में अनुवाद ज्ञानेश्वरी होता है, तो ज्ञानेश्वरी के पारायण होते हैं 7 दिन के, तो उसमें अपने को पूरी ज्ञानेश्वरी पढ़नी होती है। तो माँ कहती थी कि आप लोगों ने वैसे भक्ति मार्ग तो अपने हाथों से नहीं किया होगा, लेकिन आप जब छोटे थे तो हम आपको हमारी गोदी में लेके बैठते थे और ज्ञानेश्वरी पढ़ते थे, तो हमारे साथ साथ आपका भी वो भक्ति मार्ग पूरा हुआ। फिर जब नवरात्र आती थी तो हम पूरे जो गली में रहने वाले थे, सवेरे 4 बजे 5 बजे उठो नंगे पैर, जो हमारे गांव की ग्राम देवी थी वहां तक पैदल पैदल जाते थे, सवेरे की आरती करना, प्रसाद खाके फिर घर में आना, तो गणपति का जब सीजन आता था तो गणपति का स्थापना करना, 10 दिन उनकी पालना करके, पूजा आरती करके, विसर्जन करना, ये सब चीजें हमने बचपन में की हुई है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि भक्ति मार्ग का बीज जो है वो बचपन से ही था, घर से ही, और ज्ञान मार्ग में आने के लिए भी परिवार वाले ही निमित्त बने हुए हैं।
3: सो आप इस राजयोग मेडिटेशन कहे या इस ईश्वरीय पढ़ाई के संपर्क में कैसे आए और ब्रह्म कुमारी से परिचय कैसे मिला?
4: संपर्क में वैसे बचपन में पिताजी के साथ सिर्फ गुरुवार गुरुवार सेंटर पे जाता था, क्योंकि दीदी मीठी मीठी टोली खिलाते थे तो वो बस
3: क्या उम्र रही होगी?
4: उस समय मेरी उम्र थी शायद 11 साल,
3: जी
4: 10-11 साल के आसपास, मतलब 5th-6th standard में ऐसा कुछ होगा, समझ बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन पिताजी के साथ सिर्फ जाने का, दीदी खिलाएंगे, अपने पास बिठाएंगे, प्यार करेंगे, इतना ही अच्छा लगता था, उसके बाद कभी नहीं। फिर बाकी पिताजी ज्ञान में चलते थे, उसके बाद हमारे माताजी आए, तो जैसे माताजी ज्ञान में आए तो घर में खाना बनना ब्रह्म कुमारी के हिसाब से बिना प्याज लहसुन का होने लगा, और हमें उस समय तक आदत तो थी नहीं वैसे कुछ खाने की, तो मैं जाता था बाजू वाले घर में खाना खाने के लिए क्योंकि बाजू वाले भाभी को हमें पता था कि सूरज को ये सब चीज़ें पता है, हम छोटे छोटे थे तो भाभी हमें प्यार से बुलाती थी कि आजा तेरे आज पसंदीदा मेथी की सब्जी बनाई है, तो वो लहसुन डाल के बनाते थे, तो वो मुझे बड़ी पसंद होती थी, तो मैं खाने के लिए उनके पास, भेल खाने की आदत, तो वो भेल जो है वो बिना प्याज की तो खाई नहीं जा सकती, तो वो सब शुरुआत में ऐसा रहा। फिर छोटा भाई ज्ञान में आया और फिर धीरे धीरे मैं ज्ञान में आया, सबसे लास्ट मैं अपने परिवार में हूँ ज्ञान में चलने वाला। तो मेरे पिताजी को ज्ञान मिला हमारी मौसी से, मौसी ने बाद में चलो बाबा का हाथ छोड़ दिया लेकिन पिताजी ने पकड़ के रखा, फिर पिताजी माताजी भाई और लास्ट में मैं आया, तो इस तरीके से हमें ज्ञान मिलता गया। तो ज्ञान में चलता तो था लेकिन हर चीज़ फॉलो नहीं हो पाती थी, जो धारणाएं हैं अपनी ज्ञान की वो सब नहीं हो पाती थी। लेकिन 10th के बाद उन सब चीज़ों पे मैंने थोड़ा सा गौर भी किया, क्योंकि मेडिटेशन करने से स्टडी में मुझे बाकी काफ़ी फ़ायदा मिला। मेरे छोटे भाई को हम सबसे ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा छोटे भाई को ज़्यादा फ़ायदा हुआ मेडिटेशन का अपनी स्टडी में, क्योंकि उसकी हर साल ग्रोथ होती गई, तो वो था। और उसके बाद जब प्रैक्टिकल में इंजीनियरिंग पूरी की, बाहर जॉब के लिए गए, तो और भी चीज़ें हुई जिसमें हमें ज्ञान में काफ़ी मदद की, तो उस वजह से ज्ञान काफ़ी पक्का हो गया और फिर इसमें ही आगे चल पड़े।
3: जी, सो जैसे आपने कहा कि बचपन में माँ बाप के साथ आप आश्रम जाते थे और टोली खाने से आपको अच्छा लगता था लेकिन ज्ञान इतना आपको समझ में नहीं आता था, तो ऐसे कौन सा वो पॉइंट आया जब आपको लगा कि हाँ यही सत्य ज्ञान है और मुझे इस पे विश्वास करना चाहिए, इसी से मेरे जीवन की उन्नति होगी? कौन सी बात थी जिससे निश्चय हुआ?
4: वो बात मेरे लाइफ में काफ़ी देरी से आई, ज्ञान तो बहुत पहले मिल चुका था। तो सेंटरों पे जाता था तो बहनें बोलती थी सूरज ये सेवा करनी है, वो सेवा करनी है, प्रदर्शनी समझानी है, वो सब समझाता था, आत्मा का नॉलेज, झाड़ वगैरह हर चीज़ में सबको प्रदर्शनी में समझा सकता था। लेकिन जब मेरे उम्र का लगभग 23 साल के आसपास का था मैं, जब पूना में जॉब करता था, तो ज्ञान में तो चलता था लेकिन धारणाएं उतनी नहीं हो पा रही थी। तो जैसे जब जॉब करता था तो लौकिक जीवन वाले जैसे चीज़ें करते थे वैसे मेरे साथ भी हुआ, किसी लड़की से प्यार किया और जब उस चीज़ में रिजेक्शन मिला तो काफ़ी लगभग 3 महीने तक मैं डिप्रेशन में था। उस समय वो पूरा 3 महीना कोई भी मेरे साथ नहीं था, कोई चीज़ नहीं, मतलब अपने घर वाले नहीं, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पाता था। उन 3 महीने में सबसे अच्छी एक चीज़ यही रही कि मैं 3 महीना कंटिन्यू सेंटर को जाता था, रोज़ मुरली पढ़ता था, छोटी गीता पाठशाला थी पूना में, तो वहाँ रोज़ जाता था, शाम को योग करता था, मुरली पढ़ता था। भले ज्ञान इतना उस समय नहीं वो हो पा रहा था लेकिन ज़रूर पढ़ता था, और उसी ज्ञान में मतलब मुरली पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगी कि भगवान अपने को ये चीज़ बता रहा है। तो उस समय निश्चय हुआ, क्योंकि वो मेडिटेशन और वो मुरली पढ़ना ही मुझे उस डिप्रेशन से बाहर निकाला, उस हीलिंग, वो पूरी हीलिंग हुआ और उस समय उस चीज़ से मैं बाहर निकला। उस समय मेरा निश्चय पूरा हो गया कि यही वो चीज़ है जो मुझे आगे भी और ले जा सकती है और मुझे इसी मार्ग पे आगे चलते रहना है।
3: जी, तो वो कौन सा पल आया जब आपकी लाइफ तो सेट हो गई, ज्ञान भी समझने लगे, धारणाएं आ गई और लाइफ को आपने सीरियसली लेना या समझना बेहतर तरीके से, फिर नौकरी भी चल रहा था, तो कब ऐसा फील हुआ कि आपको नहीं मुझे अभी समर्पित होना है?
4: जब मैं पूना में जॉब कर रहा था तो मैं साथ साथ इंजीनियरिंग के कुछ एग्जाम्स है जो एक्सटर्नली हम दे सकते थे वो भी दे रहा था, तो उसके लिए एग्जाम आए थे 1 महीने के बाद, तो मैंने हमारे बॉस से छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दिया, तो उन्होंने छुट्टी मना कर दी। मैंने कहा कम से कम 7 दिन की छुट्टी दे दीजिए ताकि मैं साल भर की पढ़ाई करके पेपर पास कर सकूं, पेपर में पास हो सकूं। उन्होंने वो भी मना किया, तो मैंने रिजाइन कर दिया, पेपर वगैरह दिए। फिर पिताजी ने कहा कि अगर आपने अभी जॉब कर ही नहीं रहे हो, रिजाइन किया है, तो घर अपना बनना है, बाबा का नया घर बना रहा है, तो आप आके मदद कीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर 6 महीना घर पे रहा, घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह देखा, तो 6 महीने बाद मैं बहुत बोर हो गया था, उब गया था उन सब चीज़ों से। तो फिर मेरे दीदी ने फ़ोन किया सेंटर के कि शांतिवन में 1 महीने की सेवा है, तुम जाओगे क्या ज्ञानामृत में सेवा है? मैंने कहा बहुत अच्छा है दीदी, मैं ज़रूर जाऊँगा। क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मुझे ऐसे किसी जगह पर जाना है जहाँ पर मुझे कम से कम काम करना हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सो सकूँ और खाना भी मुझे आराम से मिले, ये सब चीज़ें। और लौकिक वालों को जब मैं सोचता बहुत थक गया था, लौकिक वालों के बारे में सोचता था तो किसी के घर में भी जाऊंगा तो वो दिन भर काम कराएंगे, सोना हो नहीं पाएगा। फिर मेरे दिमाग में आया था कि हमारे दीदी का यहाँ फ्लैट है बाहर योगीनगर में, दीदी से बात करके मैं वहां रहूंगा, यहाँ थोड़ी सेवा कर लूंगा, खाना हो जाएगा और ज्यादा सो जाऊंगा। ये मेरे विचार चल ही रहे थे तो 8-10 दिन में दीदी का ही फोन आया कि शांतिवन में सेवा है, तुम 1 महीने के लिए जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल जाऊंगा दीदी। 1 महीने की सेवा के लिए आया था ज्ञानामृत में निमिचंद भाई जी के पास, 3 महीना रुका। उस 3 महीने में मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मुझे अभी यही समर्पित होना है। तो उस समय
3: ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आपने तो ऑलरेडी लाइफ को सेट कर लिया था, पैसे भी कमा रहे थे और घर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था।
4: उस समय जब मैं यहाँ आया ना, मुझे बहुत बहुत अच्छा अनुभव हुए, बहुत अच्छा अनुभव। मैं यहाँ सेवा कैसे करते है, किस तरीके से, कंप्यूटर ऑपरेशन आता था क्योंकि इंजीनियरिंग के जो सॉफ्टवेयर से वो सीखा हुआ था तो वो सब कुछ जानता था, लेकिन यहाँ किस तरीके से क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, क्या क्या चीजें करनी होती है, वो ज्यादा पता नहीं था। उस कारण से यहाँ आने के बाद जब मुझे भाई जी सिखाते थे, मैं जाके कमरे में दोपहर में जब रेस्ट करता था तो बाबा से बात करते हुए कुछ चीजें बाबा को बोलता था कि ये भाई जी ने आज सिखाया है, इसके लिए मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ।
3: बाबा मतलब परमात्मा से
4: ऐसी बात करता था कि मेरे को आज ये सीखने को तो मिला है, लेकिन इसको और बेटर तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ चीजें या कुछ आइडियाज आती थी कि हम ये कर सकते हैं। फिर मैं ऑफिस आने के बाद शाम को फिर से वो आइडिया एक्सपेरिमेंट करके देखता था और वो ठीक हो जाता था, और मैं हमारे भाई साहब को बताता था, भाई साहब मैंने ये किया। वे बोलते ये तो अच्छा है, तूने कम समय में बहुत अच्छी चीजें कर ली। तो 3 महीने में मैंने वो सारी सब चीजें सीख ली थी जो उनको आती थी, और जो वो हर बार से किसी और भाई को दूसरे डिपार्टमेंट से बुला के करवाते थे वो सारी चीजें मैं करने लगा। वो काफी खुश थे टेक्निकली सब चीजें, तो भाई जी मेरे से काफी खुश थे। मुझे बोले भी कि आप तो अभी सब सीख गए हो तो आप अभी यहाँ रुक जाइए, फिर मैं आपको और भी जो जिम्मेदारियां दे

0: करूंगा। तो उस समय मैंने भाई जी को फिर रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे समर्पित कर लीजिए, फिर मैं आपके पास ही रहूंगा। तब उन्होंने मुझे जो आंसर दिए तो वो थोड़े से नकारात्मक टाइप के थे, या फिर वो नहीं कर पाएंगे इस तरीके से थे। मैंने कहा कोई बात नहीं। और उस समय देखिए मतलब ड्रामा ऐसा था कि जिस दिन मुझे भाई जी ने मना किया, दूसरे दिन हमारे दीदी ने फोन किया कि यहाँ पे एक शरद भाई जी है जो वेल्डिंग डिपार्टमेंट संभालते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनसे मिलेंगे? मैंने कहा हाँ दीदी मिलूंगा। और वो भाई से, शरद भाई से, मैंने दूसरे दिन रात को 9:30 बजे बड़े डाइनिंग में मुलाकात किया। और मैं कुछ बोलने से पहले ही वो भाई ने बोला कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको समर्पित करता हूँ। जो मेरी दिल थी
1: जी,
0: जो मैं परमात्मा को बोला था, हमारे भाई जी को बोला था कि मेरी ये दिल है, तो मुझे कुछ कहने से पहले ही उन्होंने ये शब्द बोल दिए कि आप मेरे पास सेवा कीजिए, मैं आपको समर्पित करवा सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे पूछा आपको क्या क्या आता है। जब बाहर रहता था तब मैंने कुछ लैंग्वेजेस सीखी थी, जैसे ड्वाइच लैंग्वेज है, जर्मन वो सीखा हुआ था, कंप्यूटर सब आता था। मैंने उनको बताया तो वो उन्होंने भी कहा कि यार मैं भी बाबा को बोल रहा था कि मुझे भी ऐसे एक हैंड्स की ज़रूरत है। तो फिर मैंने कहा कि मैं इस तरीके से यहाँ सेवा कर रहा हूँ, तो आपके पास आऊँगा तो वो भाई जी को बुरा लगेगा। तो उन्होंने मुझे तरीका बताया कि यहाँ पे किस तरीके से आप डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, क्या करना है, वो सब बताया। फिर मैं उस हिसाब से यहाँ से छुट्टी लेके घर गया। वैसे घर बन गया था तो घर का इनॉग्रेशन भी था, तो पूरा हमारा जो कास्ट है, समाज है, सबको बुलाया था, जो भी रिलेटिव्स थे सबको बुलाया। और सबके सामने मैंने ये चीज किसी को बोली नहीं थी पहले। जब सबके सामने मैं आके खड़ा होके कुछ बोल रहा था, तब मैंने उस समय बोला कि मैं अपना जीवन परमात्मा के यज्ञ में समर्पित करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता भी सरप्राइज हो गए और जो भी रिलेटिव्स बैठे थे सारे सरप्राइज हो गए कि ये ऐसा कैसे बोल रहा है। तो मैंने उनको उनकी भाषा में समझाया कि मैं शादी नहीं करने वाला हूँ और अपना जीवन भगवान ईश्वरीय कार्य में समर्पित करना चाहता हूँ। तो इस बात से उनको काफी शौक लगा। वो इस बात से, उनका प्रॉब्लम नहीं है कि तुम ईश्वरीय कार्य करते हो, उनको इस बात से प्रॉब्लम हो गई कि मैं शादी नहीं करना हो, इस बात से उनको काफी दिक्कत होगी। तो ये बताने के बाद माता पिता को काफी समय तक बहुत चीजें फेस करनी पड़ी, रिलेटिव्स का बहुत सुनना पड़ा, क्योंकि कोई भी मुझे आके डायरेक्ट नहीं बोल सकता था। बोलते भी थे तो मैं अपना जवाब तो मेरा रेडी रहता था हमेशा, तो वो बोलने के बाद वो मुझे नहीं बोलते थे लेकिन माता पिता को काफी बोलते थे। लेकिन आज अभी तो वो भी खत्म हो गया, ना उनको कुछ फेस करना पड़ता है ना मुझे। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये थी कि घर से सपोर्ट होने के कारण माता पिता ने कभी इस चीज को अपोज नहीं किया, उन्होंने ये मेरी बात तुरंत एक्सेप्ट कर ली कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम्हें समर्पित होना है, ईश्वरीय जीवन जीना है तो तुम वो कर सकते हो। फिर वहां पे इनॉग्रेशन वगैरह करके 15 दिन बाद फिर यहाँ आया निर्माण भवन में सेवाएं की, तो आज तक निर्माण भवन में ही है और 14 साल से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहा है, स्टिल कंटिन्यू।
1: जी बहुत सुंदर। सो जैसे आपने सारी परिस्थितियों को जब सामना किया, ऐसे तो नहीं है कि आपने बोला और उन्होंने रिजेक्ट किया तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट कुछ तो आपने अपने आप को हिम्मत करने के लिए या फिर उनको सामना करने के लिए आपने अपने आप को सिखाया होगा, तो वो कौन सी चीज थी आपने अपने आप को स्टेबल किया?
0: बिल्कुल, वो चीज उस समय बस एक ही चीज थी, ड्रामा। ड्रामा में जो है वो अच्छा था और वो चीज उस दिन से आज तक इतनी पक्की हुई है, इतनी पक्की हुई है लाइफ में कि उसके साथ साथ और भी काफी बातें हैं जो मैंने अपने जीवन में धारण की एक प्रकार के। तो परिस्थिति कैसे भी आए तो उससे निकलने का, उतने आपको स्टेबल करने का तरीका आ जाता है कि ड्रामा में जो होगा वो सही है, अच्छे के लिए ही हो रहा है, या जो हो रहा है उसमें कुछ कल्याण ही होगा, भले मुझे वो कल्याण अभी तुरंत नहीं नजर आ रहा। क्योंकि अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट नहीं किया होता तो मैं शायद किसी और से मिलने भी नहीं जाता, और उनसे नहीं मिलता तो आज इस जगह पे नहीं होता। क्योंकि यहाँ आने के बाद भी मैंने हर एक स्टेप किया है, मतलब जिस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट के भाई साहब ने भी हमें काफी समय तक ट्रायल में रखा, मतलब उन्होंने पहले परखा,
1: टेस्ट किया, मतलब हर चीज कितना सर्वाइव कर सकते हैं,
0: हर चीज के लिए उन्होंने हमसे गाड़ी चलवाया, उन्होंने हमको मतलब ऑफिस बॉय जैसा भी एक तरीके से वो सीख थी कि आप ऑफिस में भी सरवाइव कर सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हो। उन्होंने मुझे ये तक सिखाया कि गाड़ी चलाते समय अगर आपके साथ में कोई बैठा है तो आपको किस तरीके से गाड़ी चलानी है। फोन पे बात करने की स्किल भी उन्होंने सिखाई कि अगर आप किसी बड़ों से बात कर रहे हो, आपको किसी से काम करवाना है तो किस तरीके से बात की जाती है। अगर आपको किसी को आज्ञा देनी है, ऑर्डर करनी है, या आपको किसी को बताना है कि ये काम करके दो, तो उस समय कैसे बात किया जाता है, ये सब चीजें उन्होंने मुझे सिखाई। तो इस वजह से आज स्टेप बाय स्टेप आके आके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये बात उस समय से आज तक है कि जो होता है वो कल्याण ही है उस चीज में। बस कभी कभी कल्याण तुरंत नजर नहीं आता, लेकिन बाद में समझ में आ ही जाता है कि वो चीज जो हुई वो सच में कल्याणकारी थी।
1: मतलब लाइफ में टफ सिचुएशंस आते हैं, लेकिन अगर उसको सामना कैसे करना है और हम क्यों कर रहे हैं उस चीज का अगर अंडरस्टैंडिंग होता है तो फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगती।
0: बिल्कुल मुश्किल नहीं लगती, और टफ सिचुएशंस तो आनी ही है क्योंकि वो टफ सिचुएशन ही आपको मजबूत बनाती है, आपके टेस्ट लेती है कि हाँ आप इस समय इस सिचुएशन में भी सर्वाइव कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अगर आप सर्वाइव कर लोगे तो आप औरों को भी सर्वाइव करवा सकते हो, करके आगे ले जा सकते हो। तो वो सिचुएशंस तो आनी है और वो आती है तो अच्छी है। मुझे तो सिचुएशंस ने ही बहुत कुछ सिखाया।
1: तो जैसे एक होता है वर्क लाइफ बैलेंस, दूसरा है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, इन द सेंस आश्रम में रहते हुए या ब्रह्म कुमारी में इस संस्था में रहते हुए मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि स्व उन्नति, कोई भी चीज है पहले मैं अपने आप को जान छूं या फिर यू नो खुद को हमें समझना और खुद को निखारना, अपनी गलतियों को सुधारना और हमें बेहतर से बेहतर दैवी जीवन जीने की संस्कारों को एडॉप्ट करना। फिर उसके साथ साथ स्थूल कार्य भी है, जैसे एक जिम्मेवारी है आपके पास कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। तो जैसे आपने कहा कि जब आप युवावस्था में या जब नौकरी कर रहे थे उसमें जब घर के कंस्ट्रक्शन के काम आई, यू फेल्ट दैट कि इट इज टू मच ऑफ वर्क। तो ये चीजों का बैलेंस कैसे करते, क्योंकि अभी फिर से वही जैसा ही लाइफ है, बट इतना है कि आप भगवान के घर में है और यहाँ पे माहौल आपको बहुत सहयोग करता है, फिर भी आपका अपना एक पुरुषार्थ अगर वो नहीं होता है तो फिर वो बैलेंस नहीं बन पाता।
0: बेसिकली जैसे यहाँ रहने वालों के लिए तीन चीजें तो मस्ट एंड शुड होनी चाहिए, जो मैक्सिमम लोग करते भी है। सवेरे अमृत वेला है, मुरली क्लास है, नुमा शाम का योग है। ये तीन चीजें अगर आप ठीक से करते हैं बैलेंस, तो आपका वर्क भी बैलेंस रहता है। और जैसे परमात्मा ने, मैंने एक चीज को अपने आप में ढालने के लिए काफी कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे परमात्मा ने बोला कि अंतिम समय में आपको जैसे यहाँ पे रहते हुए, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पे रहते हुए हर चीज की फैसिलिटी है, एनवायरमेंट भी अपने को मदद कर रहा है, भले हम बाहर में लौकिक जैसा जॉब भी नहीं करते लेकिन वर्क यहाँ पे भी है, सेवा यहाँ पे भी है जो दिन भर चलती है, तो भी वर्क बैलेंस करना है। तो जैसे परमात्मा ने भी कहा हुआ है कि आपको अंतिम समय में हर चीज का वो नहीं हो पाएगा और आपको एक लंबा समय का अभ्यास चाहिए। 8 घंटा मेडिटेशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसके लिए भी परमात्मा ने ये बता के रखा है कि अगर आप चलते फिरते उस चीज का अभ्यास करो तो भी आपका काफी समय मेडिटेशन में आप व्यतीत कर सकते हो, जिससे आपको उन्नति में मदद मिलेगी। तो मैं उस चीज का अभ्यास अपने आप पे इम्पोज करने की कोशिश करता हूँ कि मैं उस चीज की धारणा करूँ, चलते फिरते भी मुझे याद रहे कि मैं एक आत्मा हूँ और एक परमात्मा की संतान हूँ और परमात्मा मेरे साथ हमेशा है। जैसे सूरज की किरणें हम कहीं पे भी जाओ अपने ऊपर आती ही रहती है, बारिश में जाते तो पानी बरसता ही बरसता है, तो वो एक सिचुएशन है या वो एक विजुअलाइजेशन है जो मैं करने की कोशिश में रहता हूँ कि जब भी वॉक पे हूँ या फिर अदर देन, मतलब अगर दिमाग में मुझे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है तो मैं उस समय वो चीजें करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ तो मैं वो चीज करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा चलते फिरते भी मेडिटेशन या परमा की साथ कनेक्शन जुड़ा रहे। ये वर्क लाइफ बैलेंस करने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे करूंगा वैसे वैसे वो अभी और पक्का होता जाएगा।
1: बहुत सुंदर। सो सूरज भाई, जैसे आपने कहा कि अभी ये 14-15 साल से आप मधुबन में हैं और ये योगी जीवन जी रहे हैं या फिर सादगी का जीवन जी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप अपने अंदर किस प्रकार के परिवर्तन को देखते हैं? हो सकता है वो चीजें अगर लौकिक दुनिया में रहते तो फिर वो चीजें आप हासिल नहीं कर पाते।
0: बहुत परिवर्तन आया लौकिक में। जो मैं अपना युवा अवस्था मतलब स्कूल डेज में देखता हूँ अपने आप को, तो बहुत गुस्सा था जो अभी नल के बराबर है, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो खत्म हो गया है, लेकिन ना के बराबर। पेशेंस पहले 0 थे, अभी 100% के आसपास पेशेंस लेवल बढ़ गई है। जो मेरे लौकिक दोस्त है जिनसे मेरी कभी बातें होती है, मतलब जो कभी सभी की शादियां होगी, सबके बच्चे, सबके लाइफ में कोई ना कोई क्राइसिस है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और सबको पता है सूरज एक ऐसा व्यक्ति है जो सुनता है, जिसके पास हम बोल सकते हैं, वो बातें औरों तक फैलाएगा नहीं और कुछ ना कुछ अपने को सांत्वना जरूर देगा, भले सोल्यूशन शायद ना मिले लेकिन वो बात सुन लेगा, अपना दिल हल्का होगा। तो काफ़ी सारे मेरे दोस्त मुझे कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो वो ये बात हमेशा बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे से सुन लेता है और तेरे से बात करने के बाद अच्छा लगता है। तो मेरे में ये चीज़ आई है, पेशेंस और लिसनिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होगी कि सामने वाले का सुन लो, वो जो भी कहना चाहता है जिस भी आवाज़ में, जिस भी भाषा में, जिस भी स्वर में, वो जो भी कहना चाहता है उसको सुन लो ताकि उसका आधा दर्द कम हो जाए। तो क्वालिटीज़ बड़ी है, एक तो पेशेंस अच्छे बड़े हुए हैं, मेडिटेशन करना और गुस्सा, वो सबसे ज्यादा कम हुआ है। खाने पीने में मोह नहीं है, किसी चीज में ज्यादा मोह नहीं है, क्योंकि ये चीज भी ज्ञान से अंदर आ गई है कि जो अपने पास है वो पर्याप्त है, तो वो चीज खुशी देती है। अगर मैं ये समझूं ये मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो चाहिए चाहिए वाली बोल या चाहिए चाहिए वाली सोच मुझे परेशान करेगी। लेकिन जब मैं वो सोच को पूरा खत्म करता हूँ, क्योंकि इस चीज का भी एक छोटा सा अनुभव, जब शुरुआत में मैं जब इस कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में आया, तब हमारे जो भाई साहब थे उनकी एक आदत थी कि वो मंथली एक पूरे डिपार्टमेंट की मीटिंग्स बुलाते थे, सबको बुलाते थे, पूछते थे, और उसके साथ साथ वो क्या करते थे, उनके पास जो भी गिफ्ट आए हैं, जो भी चीज़ें अच्छी होंगी, कभी कप होगा, कोई बुक्स होंगी, शेविंग किट्स होंगी, कोई भी चीज़ अच्छी, वो सारा टेबल पे ला के रख देंगे। वो काम मेरा ही था कि सब ला के रख दो, वो जो जो बोलेंगे वो सब, कोई ओढ़ने वाला है, कोई बेडशीट है, कुछ भी है, सब ला के टेबल पे रख दो। मीटिंग्स होगी, किसकी क्या परेशानी है, क्या है, कैसा चल रहा है, सेवाएं वगैरह सब होगा, और उसके बाद वो बोलेंगे जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से लेता था। तो वैसी मेरी जब पहली मीटिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में हुई, तो सब मीटिंग पूरी हुई, जो सफाई वगैरह करनी थी वो करके मैं लॉक करके बस जा ही रहा, तब हमारे भाई साहब ने मुझे पूछा कि कैसा रहा तुम्हारा मीटिंग एक्सपीरियंस। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा भाई साहब। तो आपने क्या लिया? मैंने कहा भाई साहब लास्ट में एक दादी का फोटो बचा था, मैंने वो लिया। क्यों, आपने बाकी का कुछ नहीं लिया? मैंने कहा भाई साहब हमारे सब भाइयों ने ले लिया, वो खुश तो मैं भी खुश। तो उनको वो बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने उस दिन मुझे यहाँ यज्ञ का एक छोटा सा मोबाइल और एक सिम कार्ड, जो पहले CUG चलते थे, वो गिफ्ट किया था। वो मेरा पहला एक एक्सपीरियंस था कि कुछ न मांगने के बाद आपको अपने आप मिल जाता है। आप अगर किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं रखोगे तो जो ज़रूरी है वो आपको आपके पास तो ज़रूर आएगा, अगर आपने अपेक्षा नहीं रखी है। फिर जैसे जैसे मेरे दिन आगे बढ़ते गए, तो मुझे ये संकल्प आते थे कि मुझे समर्पित होना है। मैं कब समर्पित होऊंगा? समर्पित लोगों को ये मिलता है, वो होता है, ये होता है। वो संकल्प 2 साल तक ऐसा था कि मैं किसी परछाई की पीछा कर रहा हूँ, उसके पीछे जा रहा हूँ, और वो मेरे आगे, तो मेरे हाथ में ही नहीं आए। लेकिन जिस दिन मैंने वो संकल्प छोड़ दिया, तो जो चीज़ ज़रूरी है वो अपने आप मिल जाती है। फिर उसी प्रकार समर्पित भी हो गए। ये एक मंत्र मैंने अपने जीवन में इतना धारण किया हुआ है कि मैं लगभग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रहती है, मैंने अपने मन को ये बात बता के रखी, अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो और वो चीज़ नहीं मिलती है तो भी आपको दुख नहीं होना चाहिए। तो वो रहता है, इस कारण से मुझे कई बार वो जो फीलिंग्स आती है दुख की, वो बहुत कम होती है, क्योंकि एक तो एक्सपेक्टेशन रहते ही नहीं, और जिस चीज़ से या जिस किसी कार्य से या किसी व्यक्ति से एक्सपेक्टेशंस रहती है, वो लेवल एक्सपेक्टेशन भी बहुत कम होती है। अगर वो पूरी भी नहीं हुई तो भी उस चीज़ का जो दुख होना है वो बहुत कम हो जाता है मेरे पास। तो मैं सफ़र बहुत कम करता हूँ और खुश ज़्यादा रहता हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत कम कर दी तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल खुशी से, तो खुशी बढ़ जाती है अपने आप।
1: वेरी ब्यूटीफुल। एक मैथमेटिशियन लाइफ में भी हर चीज़ का मैथमेटिक्स के साथ देखता है, और आपकी जो लाइफ की मैथमेटिक्स है आपने अपने हिसाब से उस चीज़ को सेट किया है और सेट किया है। तो एक योगी जीवन जीना क्यों है और जीने से आपको क्या मिलता है, उसका भी एक कैलकुलेशन है आपके पास।
0: लौकिक जीवन में मैथ्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा था।
1: अच्छा,
0: सबसे फेवरेट सब्जेक्ट,
1: इसीलिए आपको जीवन की कैलकुलेशंस भी अच्छे से आते।
0: बहुत अच्छे से।
1: बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सूरज भाई, आज आप हमारे बीच में आए हैं और अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। अंत में एक सवाल, एक शब्द में, अगर आपके पूरे जीवन को एक शब्द में अगर कहना चाहते हैं, या कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगता है कि मुझे यही जीना था और इसे ही कहते हैं जीना, इसी का नाम है, वो कौन सा मोमेंट था?
0: ये चीज़ मैं एक शब्द में तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ज़्यादा शब्दों में बताना चाहूँगा। ये चीज़ मुझे बहुत बार फील हुई जब मैं मेडिटेशन में, स्पेशली जब मेडिटेशन में बैठता हूँ, अमृत वेले हो या नुमा शाम का योग हो, तो ये चीज़ का मुझे काफ़ी बार अनुभव हुआ है, अपने इस देह से परे होने की अवस्था। उसको काफ़ी लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब भी किया हुआ है, मेरा अपना एक डिस्क्रिप्शन है उसके लिए, कि मैंने ये चीज़ नोटिस की हुई है कि जब आप मेडिटेशंस करते हो और आपका मेडिटेशन सच में परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ता है ना, तो आपकी सांसें जो चलती है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है, आपका हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो एकदम ही पल्स डाउन हो जाएंगे, लेकिन जो नॉर्मल है उससे कम होता है। आपकी सांसें बहुत धीमे तरीके से चलती है, समय बहुत धीमा हो जाता है, क्योंकि आप इस देह से परे हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने खुद अनुभव की है कि अगर आप 7 बजे आपका मेडिटेशन लगा है, आपको फीलिंग ऐसी आएगी कि आपने घंटा भर मेडिटेशन किया है, और जबकि आप अगर थोड़ी देर बाद देखोगे तो 10 या 15 मिनट ही हुए होता है, लेकिन फीलिंग आपको 1 घंटे की आती है। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि जब वो अवस्था पूरी हो जाती है, अपने देह से परे होने की अवस्था पूरी हो जाती है, उस समय जो खुशी मिलती है वो कभी भी नहीं मिलती, किसी भी चीज से नहीं मिलती, ना किसी मतलब लौकिक व्यक्ति वस्तु या कोई सिचुएशन किसी से वो चीज नहीं आती जब जो देह से परे होने का अनुभव है उसमें ना अपने आप मतलब इस देह का कोई भान ही नहीं रहता, वो चीज ही पूरी अलग हो जाती। तो फिर वो चीज मैंने नोटिस की है कि जब आप उस अवस्था से बाहर आते हो तो आपको उबासी ज्यादा आती है, और साइंस ये कहता है आपको उबासी आ रही है इसका मतलब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, तभी आपका मुंह खुलता है ज्यादा इनटेक ऑक्सीजन का होने के लिए, और उसके बाद से ही समय तेजी से भागने लगता है। जब तक आप देह से परे अवस्था में, उस समय स्लो डाउन होता है, सांसें स्लो डाउन होती है, फिर शरीर अपने आप वो जो कमी है ऑक्सीजन की उसको पूरा करने के लिए उबासी करता है। ये मेरा जीवन का अनुभव है जो मैंने सीखा है, और सबसे ज्यादा अच्छा मेडिटेशन के समय ही लगता है।
1: सो आपको लगता है कि यही है जो जीवन है, मतलब इसी को जीना कहते हैं?
0: बिल्कुल, अगर आप अपनी मेडिटेशंस को सुधार सके, अच्छा कर सके, तो इस जीवन से अच्छा कोई जीवन नहीं। संसार के सारे सुख जितने मैंने भोगे हैं आज तक, जो चीज संसार के हिसाब से ये बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत बड़ी, बहुत बड़ा बंगला, विदेशों में घूमना, इन सारे चीजों से वो 10-15 मिनट का जो देह से परे होने का अभ्यास है, जो देह से परे होने की जो फीलिंग है ना, वो इन सारी चीजों से बहुत बढ़िया, वो जो सुख दे के जाता है वो शायद ही कभी मिलता है, और वो शायद मुझे कब मिला है वो भी याद नहीं, लेकिन वो आज तक मुझे एज इट इज याद है वो चीज।
1: बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच सूरज भाई, आज आप हमारे बीच में आए, और जीना इसी का नाम है, इस चीज का एक नई परिभाषा आप हमारे श्रोताओं को दिया आपके जीवन के अनुभव से। दोस्तों यहीं पे हम विराम लेते हैं और फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब है कार्यक्रम जीवन रोशनी का वक्त, जहां हम बात करते हैं रियल लाइफ की, रियल वैल्यूज की। और आज का टॉपिक है इंटीग्रिटी, यानी कि जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है तब हम क्या काम सही से करते हैं, वो है इंटीग्रिटी। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे हम। हमारे पास हमारे एक्सपर्ट भी पधार चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों, कि आज की दुनिया में जहां शॉर्टकट्स बहुत आसान है, वहां इंटीग्रिटी रखना एक्चुअली एक सुपर पावर जैसा है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में है हितेश जी, जो एक ऑथर है, इंजीनियर है, मोटिवेशनल स्पीकर है और डिजिटल इन्फ्लुएंसर भी है, जो आज के यूथ को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से लाइफ के वैल्यूज सिखा रहे हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है जीवन रोशनी। बहुत बहुत स्वागत है बीके हितेश जी आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: जी। तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि आज जो तीव्र गति से हम भाग रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है, तो इंटीग्रिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, अगर एक सिंपल लाइन में?
1: फास्ट पेस लाइफ है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो स्लो ही होती हैं। जैसे प्रकृति लें, नेचर लें, दिन लें, है ना, धीरे धीरे ही मौसम बदलता है। कुछ चीजों का शॉर्टकट कभी नहीं होता
0: जी।
1: और नहीं होना चाहिए। अगर उनका भी शॉर्टकट लेंगे तो फिर जो रियल रीजन, कारण पता नहीं लग पाएगा कि क्यों मुझे अजीब फील हो रहा है, क्यों बेचैनी आ रही है, एकदम से नेगेटिव फील हो रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि लाइफ से इंटीग्रिटी चली गई है। जो आपने कहा कि शॉर्टकट्स आ गए हैं, ऑप्शंस बहुत हैं
0: जी
1: डिस्ट्रैक्ट होने के। आप कुछ गलत करना चाहो तो आपके पास पूरा मेन्यू है। तो उन बातों में भी सेंस बनाकर रखना और वो करना जो सही है, उसके लिए हिम्मत तो चाहिए, उसके लिए बहुत इनर क्लैरिटी चाहिए, मैं बिल्कुल कहूँगा, बट इट्स वर्थ इट।
0: मतलब इनर क्लैरिटी और हिम्मत,
1: यस,
0: ये दोनों हम ले सकते हैं इंटीग्रिटी को डिफाइन करने के लिए। अगर हम ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, ईमानदार रहना चाहते हैं, तो ये दोनों कोर वैल्यूज भी चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी, जी।
1: और ये अवेयरनेस चाहिए कि दुनिया तो है, दुनिया के पास बहुत से मेन्यू है। अगर आप भटकना चाहो, गलत करना चाहो, तो आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। एग्जांपल, जैसे आज के समय में, जैसे मैं देख रहा था कि डेटिंग वेबसाइट्स हैं
0: जी,
1: उसमें भी वैरायटी है। मैरिड लोगों के लिए अलग से है, सोचिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए कि मैरिड लोग हैं
0: जी,
1: उनके लिए भी है, तो ऑप्शंस तो बहुत है। मुझे तो वो एक लाइन याद आती है कि

0: मान लीजिए किसी का कमजोरी है आइसक्रीम खाना, तो पहले आइसक्रीम थी, आज आइसक्रीम में कुछ ना कुछ मिक्स करके देंगे
1: जी,
0: तो वो ज्यादा टेम्पटिंग लगेगा, वो लगेगा कि अरे यू नो, फिर दुनिया में कहते हैं ना कि अरे एक्सपीरियंस तो हर चीज का होना चाहिए ना, आए हैं लाइफ में तो अनुभव करने आए हैं, किस चीज का अनुभव मुझे कभी नहीं करना, उसकी भी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक वही इंटीग्रिटी है
1: जी, तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है आपको इंटीग्रिटी की तरफ बढ़ने के लिए
0: जी।
1: तो ये एक माइंडसेट है या हम इसे डेली हैबिट्स में भी ला सकते हैं?
0: ये दोनों है, मतलब जैसा माइंडसेट होता है, जैसे माइंड को हम तैयार करते हैं वैसा ही हैबिट्स में आता है, और दूसरा भी कि जैसे हैबिट्स में आ गया तो हैबिट को भी चेंज करने से माइंडसेट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल

0: एग्जाम्पल कि इट्स अ माइंडसेट, कि एक माइंडसेट होता है कि मुझे सही चीज़ करनी है, मैं एक रिलेशनशिप में हूँ तो मुझे उस रिलेशनशिप की वैल्यू रखनी है, चाहे वो इंसान मुझसे पूछे नहीं पूछे, उसे पता लगे या नहीं लगे, स्टिल मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो उस रिश्ते की मर्यादा में नहीं आता है, उसकी गरिमा जो कहती है रिश्ते की रखने के लिए। अब दूसरी चीज़ है कि एक तो ये माइंडसेट हो गया कि चलता है एटीट्यूड ना, कि किसे पता लग रहा है, ये होता है कि कौन कौन पूछ रहा है। वही बात कि हमारे अंदर कुछ है जिसे अहम अहंकार कहते हैं, कि वो जानबूझकर ये गलत चीज़ें करना चाहता है, वो गिल्ट में रहना चाहता है, वो कहते हैं बाद में देख लेंगे, गिल्ट विल्ट फेस कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो जो फ्लो में है ना वो कर लेते हैं। दूसरा, जैसे ये तो माइंडसेट हुआ कि मुझे क्या करना है, मतलब मुझे कंज्यूम करना है या मुझे अपनी इंटीग्रिटी, मतलब अपनी सही चीज़ को बरकरार रखना है, जो अब मेरा जो कैरेक्टर है उसे सही रखना है। और दूसरा बिहेवियर हो गया, जैसे कि व्यवहार में आ गए कि किसी से ऐसे ही बात कर ली। कितना केसेस सुनने को मिलते हैं, मेरे पास कितने आते हैं कि कुछ मैरिड फीमेल्स हैं, वो कहते हैं कि मेरे पति बात करते हैं किसी लड़की से, बात करते हैं, हेलो हाय लिखते हैं, ये तो उनको पता है, पता नहीं कितना रियलिटी है, लेकिन ये भी तो एक आदत है ना, एक आदत ही तो है ये, कि ये भी तो जैसे बोलते हैं कि फिजिकल चीटिंग नहीं है तो इमोशनल तो है ही ना।
1: जी, और बिल्कुल, और इसको हमने स्वीकार भी कर लिया कि ये होता रहता है, शायद सब करते हैं, मैं भी कर लूँ तो क्या फर्क पड़ता है।
0: बिल्कुल, ये है। मतलब मान लीजिए वही इंसान ऑफिस में गया, अब ऑफिस में वैसे ही चार लोग यही कह रहे हैं कि अरे मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, तो वो एक वही बात कि जब अंदर क्लैरिटी नहीं है और अंदर पता नहीं है करना क्या है, तो फिर हम भी कैरिड अवे हो जाते हैं कि अरे मैं ऐसे ही इतना लॉयल बन के घूम रहा हूँ, है ना, मैं ऐसे ही इतना शरीफ होकर चल रहा हूँ, नहीं दुनिया में तो ऐसे नहीं चल सकते, ये भी होना चाहिए, वो फिर वो प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है गलत संगत से।
1: तो अपने आप से पूछना चाहिए हमें कि हमें लाइफ में चाहिए क्या, ऑनेस्टी से।
0: हाँ, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाना है मुझे, ये दो क्वेश्चन तो पूछने बहुत ज़रूरी है कि ये मैं हूँ क्या असली में, वास्तव में मैं ये करना चाहता हूँ या आई एम जस्ट गेटिंग कैरिड अवे। ये मैं अपने आप से बार बार पूछता हूँ कि सच में मैं ये चाहता हूँ या कैरिड अवे हो रहा हूँ, किसी और की बात से प्रभावित होकर कर रहा हूँ, तो वो बहुत ज़रूरी है पूछना,
1: क्योंकि लगता है कि ये भी स्किल है और हम ये सब करेंगे तो हम दोस्तों के बीच में कूल लगेंगे,
0: कूल लगेंगे
1: नहीं तो फिर दोस्त बोलेंगे तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुमने तो लाइफ की कोई टेस्ट ही नहीं लिया।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ ये बहुत होता था, सभी इतना बोलते थे कि अरे छोटा बच्चा है क्या, इतना शरीफ नहीं होना चाहिए। आई रिमेम्बर मैं ऑफिस में था तो मेरे बॉस मुझे बोलते थे कि हितेश आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, मैंने कहा हाँ सर, कहते बीच में ना एक दो बोल दिया कर
1: जी
0: कि काम निकल जाएगा। तो ऐसा मतलब वही है कि एक एक माइंडसेट वही बैठा हुआ है कि इट्स कूल अगर हम चीट करें, अगर हम एक्स्ट्रा पैसा गलत तरीके से कमाएं,
1: अगर हम बातों को बोलते हैं कि मोल्ड करके या तोड़ मोल्ड, हाँ मैनिपुलेशन करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे फिर?
0: उससे बड़ी चीटिंग तो असली में कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज
1: उसको तो युक्ति कहते हैं।
0: हाँ, लेकिन वही बात है ना कि ये बहुत बड़ी चीज जो आप कह रहे हैं ना कि ये बहुत सटल होती है।
1: ओके,
0: बाकी चीजें तो पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन ये जो है इसमें हमें लगता है कि हम ऐसी घुमाकर बात कर रहे हैं, पर उसमें बहुत ज्यादा एजेंडाज मिक्स हो जाते हैं हमारे, हमें लगता है कि हम बुद्धिमानी से काम ले रहे हैं, ओवर स्मार्टनेस में काम ले रहे हैं, लेकिन असली में वो बहुत अलग डायरेक्शन में ये चीज़ जाती है कि मैनिपुलेट करना,
1: एक घुमाना बातों को,
0: एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी होती है कि रिश्तों में आजकल ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और स्टैट्स बोलते हैं हर पांचवें इंसान में ये पाई जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कि गलती खुद की होती है लेकिन दूसरे पर ब्लेम करते हैं, कि मान लीजिए किसी ने कुछ कहा कि आपका ये बिहेवियर ठीक नहीं है, तो उसी को ही गलत प्रूफ करना शुरू कर देते हैं कि अरे आप अपने आप को ठीक करो ना, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, ये कोई बात थोड़ी है। तो वो भी बहुत एक मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा, मैं यही कहूँगा कि ये भी चीटिंग में ही आ सकता है
1: जी। और अगर स्टूडेंट के बारे में बात करें, कोई स्टूडेंट को चीटिंग करने का मौका मिला, मार्क्स ले सकता है, अगर नहीं करेगा तो शायद फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसे करना चाहिए नहीं करना
0: मुझे,
1: चाहिए?
0: मुझे वो मूवी याद आ गई, 12th फेल, अगर आपने देखी हो, तो उसमें वो जो बच्चा होता है, रियल स्टोरी है, तो वो 12th क्लास का एग्जाम देता है, गांव में था शायद बिहार के, तो उसमें पूरी चीटिंग, खुलेआम चीटिंग हो रही थी, और वो पुलिस वाला आए, बड़े ऑफिसर थे, तो उन्होंने उस लड़के को कहा, अब पूरी कहानी मुझे याद नहीं आ रही उसी को क्यों कहा, पर उसने उनको कहा कि चीटिंग कभी मत करना लाइफ, और वो बात ना उसके अंदर बैठ गई। अगले साल पूरी क्लास चीटिंग कर रही थी, उसने चीटिंग नहीं की, और आज वो IAS ऑफिसर बन गया, जस्ट बिकॉज उस दिन के बाद उसने एक चीज ठान ली कि मुझे चीटिंग नहीं करनी। वही मैं जो बात कह रहा था कि मैं जब जॉब करता था, मेरे पास बाकी स्किल्स अच्छी थी, पर आप कह सकते हो कि कम थी, इतना मैं ओपन अप होकर बात नहीं कर पाता था, जिस तरह का, जैसे कहा ना, लोग मिक्स हो जाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, वो मैं नहीं, मुझे नहीं आता था, पर ऑनेस्टी ने, सच्चाई ने मुझे बहुत दूर तक हेल्प की लेकर जाने में। मेरा इंटरव्यू भी एक इसीलिए सिलेक्ट हुआ क्योंकि उनको एक ऑनेस्ट पर्सन चाहिए था, ना कि कोई स्किल चाहिए थी। तो एक आपका वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा ना लाइफ में, हमें पता भी नहीं है। हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, छोटा सोचते हैं कि ये चीट कर लिया। चीटिंग एक हैबिट बन जाती है, और कोई भी हैबिट जब बहुत डीप हो जाती है, जिसे एडिक्शन कहते हैं, कुछ लोगों को झूठ बोलने की एडिक्शन, कुछ लोगों को किसी से बात करने की एडिक्शन, चीट करने की एडिक्शन, एक बार वो एडिक्शन या बहुत डीपली आदत बन गई ना, तो उसे चेंज करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है
1: जी।
0: इसलिए जैसे कहते हैं ना कि जब भी कोई पैटर्न बने तो शुरू में ही उसे चेंज कर देना चाहिए। तो पौधा जब अगर अनवांटेड है, अगर वो ज़रूरी नहीं है, तो जितना छोटा हो उसे तभी निकाल देना चाहिए, अदरवाइज उसकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं, बहुत मुश्किल होता है
1: जी।
0: इसलिए चीट नहीं करना चाहिए,
1: नहीं करना चाहिए। आगे हम आपसे जानेंगे कि कैसे कोई भी संस्कार हो, हैबिट्स हो, अगर वो गलत है उसे कैसे हम निकालें, उसके बारे में आपसे जानेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहूँगी, जैसे आप कह रहे थे कि जब आप ऑफिस में थे, वर्क कल्चर में थे, तब आप अपने आप के साथ, उन वैल्यूज़ के साथ चल रहे थे, तो अगर जब हमें कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, तब सेल्फ डिसिप्लिन हो या इंटीग्रिटी हो, उससे कैसे मेंटेन करना चाहिए?
0: मुझे एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी और मुझे बहुत उसने हेल्प की इस बात को प्रैक्टिस करने में, कि असली फ्रीडम का मतलब क्या है। असली फ्रीडम का मतलब वो नहीं है कि जो मन में आए करूँ। हम ज़्यादातर यही बोलते हैं ना, मेरा मन है जो मैं करूँ, मैं फ्री हूँ, आई एम अ फ्री पर्सन। रियल फ्रीडम इज डूइंग व्हाट इज राइट,
1: ओके,
0: वो करना जो सही है, चाहे फिर आपको कोई मॉनिटर कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, आइडली ये मैटर नहीं करता, बिकॉज जिस दिन हम ये समझ जाते हैं ना कि मैं जो कर रहा हूँ वही मुझे वापस मिलेगा, अगर मैं चीट कर रहा हूँ किसी भी लेवल पे, एक रिलेशनशिप में, एग्जाम में, तो किसी ना किसी तरीके से वापस आएगा। मैंने चीट किया, मैंने रूल को फॉलो नहीं किया, कुछ और किया, तो कोई ना कोई मेरी लाइफ में आएगा जो रूल को फॉलो नहीं करेगा और मेरा नुकसान होगा।
1: मतलब कर्म बन जाता है,
0: कर्म बन जाता है, जो बोलते हैं ना कि समय बहुत बलवान है, ये ऐसी कहावतें नहीं बनी हुई है, इसी वजह से बनी हुई है, कि जिस दिन हमें ये समझ आ जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना, कोई और देख रहा हो या नहीं, यूनिवर्स देख रहा है, मेरे कर्म दुनिया में फैल रहे हैं और लोग उसे देख रहे हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई आंखों से देख रहा हो, आपकी एनर्जी से पता चल जाएगा और वही वापस हमारे पास आएगा। तो जो भी अगर कोई यूथ है सुन रहे हैं और कूलनेस में मान लीजिए चीट कर रहे हैं, सो थिंक अबाउट इट कि वो वापस मेरे ऊपर आया
1: तब कैसा लगेगा,
0: तब आपको कैसा लगेगा, और वो होगा ही होगा अगर हम कर रहे हैं। ये डरने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। मुझे एक लाइन याद आती है, किसी ने कहा था कि अगर कोई कहे ना आपको कि आपके कर्मों का हिसाब किताब आपको ज़रूर मिलेगा, और अगर मैं खुश महसूस करूँ कि वाह
1: जी,
0: कि वाह मेरे कर्मों का हिसाब किताब मिले।

0: यू नो हाई स्टैंडर्ड लिविंग, एक बोलते हैं हम सोसाइटी में रहते हैं, कल्चर्ड लोग हैं. कल्चर का मतलब क्या है वो खुद से चेक करना बहुत ज़रूरी है. कि कल्चर्ड का ये मतलब है कि बाहर बाहर से तो पढ़े लिखे दिख रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, चश्मा पहने हुए हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है. अंदर वो है ट्रूथफुलनेस, नहीं तो स्टैट्स तो हर जगह है जो बहुत ऐसी चीज़ें बताते हैं सोसाइटी के बारे में जो अदरवाइज हम लोग बात करना नहीं चाहते उस बारे में. तो वो कौन कर रहा है, वो चीज़ें कौन कर रहा है? वो वही लोग कर रहे हैं जो ऊपर से कल्चर्ड दिख रहे हैं, वेल एजुकेटेड दिख रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ तो है जो इंटीग्रिटी नहीं है.
1: बहुत ही सूक्ष्म है और उसे सही तरीके से और अपने आप के साथ बैठ कर के ही हम इसका समाधान खोज सकते हैं या फिर जान सकते हैं कि हमारे अंदर है कि नहीं है इंटीग्रिटी.
0: जी जी, इसमें मतलब एक चीज़ आ जाती है ना कि हमें ऐसे एक बर्डन फील होता है
1: इंटीग्रिटी अगर नहीं है.
0: अगर इंटीग्रिटी है मतलब कि इतना सच्चा रहना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी.
1: जी,
0: बट अल्टीमेटली खुद को अच्छा फील होता है ये सब चीज़ें करने के बाद. जैसे हम खुश रहने के लिए कितना कुछ करते हैं, ग्रेटिट्यूड कर प्रैक्टिस करते हैं या घूमने जाते हैं, क्या नहीं करते. बट रियल हैप्पीनेस या अच्छा फीलिंग गुड, हाई सेल्फ इस्टीम तभी होती है जब हम अलाइनमेंट में है, जब हम सही चीज़ कर रहे हैं, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. तो ये मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूँ, ये मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं खुद की हैप्पीनेस के लिए ही कर रहा हूँ. कि मुझे अच्छा फील होगा, मुझे बर्डन, मुझे गिल्ट, मुझे नेगेटिव ओवरवेलमिंग फीलिंग नहीं होगी अगर मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ. तो ये जैसे कहते हैं कि सच से मिला कुछ नहीं, बस मज़ा आ गया.
1: जी ओके ओके. तो कई बार मज़ा आने की जगह पे ना हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो सामने वाला जो है वो भी मेरे साथ सही करना चाहिए क्योंकि मैं अच्छा कर्म कर रही हूँ तो मुझे तुरंत वो फल मिलना चाहिए. अगर सामने वाला नहीं करता तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं.
0: हाँ, तो ये तो वही बात हो गई कि मैं गया शेर के पास, मैंने कहा शेर मैं तो आपको नहीं खाता हूँ तो फिर
1: आप मुझे मत खाओ,
0: आप भी मुझे मत खाओ. नहीं, ये जो दुनिया है ये इतना सिंपल नहीं है. इसे थोड़ा सा अलग लेवल से समझने की ज़रूरत है. और वो ये कि अगर कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा है ना, एक्चुअली में उसको कुछ एक कोई उसको प्रेरित करता है, कोई रोल मिला हुआ है. चाहे वो आप कार्मिक अकाउंट्स कहें, सटल में जो हमारे पेंडिंग हैं, बहुत सी फोर्सेस एक साथ लगती हैं उस इंसान को वो करने के लिए जो वो कर रहा है. तो जब हम ये अवेयरनेस में होते हैं कि मुझे अपना कर्म बेस्ट करना है, जो मुझे जितनी समझ है उसके बेसिस पे करना है, ना कि दूसरों के बेसिस पे कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं. तो जब वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती, समझ आ जाती है, और जब वो बहुत डीप हमें महसूस होता है, रियलाइज होता है कि मुझे अपना कर्म श्रेष्ठ करना है, तब जाकर इंटीग्रिटी आ पाती है कि मुझे ऑनेस्ट रहना.
1: जी.
0: और कोई रहे या ना रहे, प्यार से रहे या ना रहे, अच्छे से उसे ले या ना ले, बट मुझे करना है.
1: जी, और आप ऑनेस्ट होते हैं और अगर आपके साथ कोई मैच नहीं कर रहा है और उसके बारे में आप दूसरों को बोलते रहते तो फिर वो भी इंटीग्रिटी नहीं हुआ.
0: बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि वही बात कि मैं कर रहा हूँ तो अगर मुझे इसका भी एक ईगो आ गया कि मैं तो सच बोलता हूँ, तो फिर हमने क्या किया, हमने उस बात को भी अपने ईगो में ले लिया. हमने कहा मैं तो सच बोलता हूँ, बाकी सब झूठे हैं. नहीं, तो फिर ये क्या किया हमने, हमने बाकी चीज छोड़कर इसको अपना आइडेंटिटी बना लिया. करना वो भी नहीं है कि मुझे सिर्फ खुद को देखना है. और बस ये याद रखना है कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ ना, तो आज नहीं तो कल इस इंसान पर फर्क पड़ेगा मेरे बिहेवियर से, मैं जो कर रहा हूँ. क्योंकि लोग अनकॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं एंड एब्जॉर्ब करते हैं. कि वो आपको कहेंगे कुछ नहीं, पर आपके एक एक बिहेवियर से उनको वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे सच बोल सकते हैं जैसे ये इंसान बोल रहा है सबके सामने. तो फिर वो अपने आप धीरे धीरे सीखने

0: अच्छा, आपको बोलने की भी जरूरत
1: जरूरत नहीं। राइट जी, अभी ये सोशल मीडिया पर बात करते हैं। आज के यूथ तो सब सोशल मीडिया पर ही है, वहाँ पर हम परफेक्ट लाइफ देखते हैं, और रियल और फेक कैसे हम पहचाने फिर?
0: ये बहुत, एक तो वही बात है कि थोड़ा सा इसमें अवेयर रहने की ज़रूरत है कि मैं सोशल मीडिया पर क्यों जा रहा हूँ। अभी ही किसी बहुत फेमस कोई कॉमेडियन है, उन्होंने बहुत बिल्कुल क्लियरली बोला कि जो हम सामने आपको दिखाते हैं ना, वैसे हम असली में होते ही नहीं हैं। कि मैं अपना रियल सेल्फ आपको दिखा ही नहीं सकता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं ये बात, लेकिन वही बात कि हम इतना कैरिड अवे हो जाते हैं, आसपास फ्रेंड्स भी वही कर रहे हैं और दुनिया में जो देख रहे हैं, मूवीज़ में देख रहे हैं, तो वो बहुत ब्लरी हो जाता है। सही क्या है, गलत क्या है, ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, रियल क्या है, अनरियल क्या है, उसके लिए वही इनर कंपस सही होना बहुत ज़रूरी है। कि वैसे तो सही बताऊं तो अगर मैं खुद की भी बात करूं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोशल मीडिया पर, मैं खुद बिल्कुल सच्चा नहीं बोल सकता हूं जो बात है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल कुछ चीज़ें होती हैं, आप 100% तो नहीं कर सकते
1: जी।
0: तो मैं सोचता हूं मैं नहीं कर सकता, तो कितने लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए, बचने के लिए, सेफ्टी के लिए, वायरल होने के लिए
1: सोशल मीडिया का
0: यूज करते हैं, तो वो तो पता ही नहीं क्या करते होंगे, रियल वर्ल्ड से बिल्कुल ही अलग है चीज़ें। तो अगेन बहुत अवेयर रहना है कि मैं वहाँ क्या करने जा रहा हूँ। सब खोखला है, कुछ भी रियलिटी है ही नहीं। आज के समय में वही बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात ही ये है कि हम बस देखते हैं और मान लेते हैं उस बात को, और अभी तो AI है तो अभी तो
1: और भी मुश्किल है,
0: और भी मुश्किल
1: हम
0: है,
1: इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं बहुत जल्दी।
0: सीधा वीडियो देखा, स्क्रीनशॉट देखा, चैट देखा, वॉइस नोट सुना, सीधा जज कर लेते हैं वन साइड ऑफ द स्टोरी। कुछ भी रियल नहीं है, सीधी बात तो माननी ही नहीं है किसी की, कोई भी। अगर आपका कोई रोल मॉडल भी है सोशल मीडिया पर और वो कुछ भी कहते हैं, सीधी बात नहीं माननी है, अपनी लाइफ की सिचुएशन को देखना होता है, फिर फैक्टर्स को देखना होता है, फिर उस बात को देखना है, ऐसे नहीं कि सीधा सीधा मान लो उस बात को।
1: जी बिल्कुल। और जब पीयर प्रेशर में होते हैं हम, तब कई बार हम अपनी इंटीग्रिटी को साइड में रखते हैं, क्योंकि हमें नो कहना टफ लगता है। तो इससे आसान कैसे बनाया, आपने कैसे बनाया था अपने स्टूडेंट लाइफ में या अपने वर्किंग लाइफ में?
0: वो बोलते हैं ना कि अकल बादाम खाने से तो नहीं आती, ठोकर खाने से ही आती है। तो ऐसा है कि मैंने भी गलती करके सीखा और यही ऑब्जर्व किया कि ये जो पीयर प्रेशर हम कहते हैं, ये जो डर है टू बी लेफ्ट अलोन कि सब छोड़ जाएंगे मुझे, और जो सही चीज़ है करने के लिए, इवन किसी इंसान को मुझे छोड़ना भी पड़े, अगर मैं सही काम कर रहा हूँ तो सही काम करते हुए अगर कोई इंसान मुझसे दूर भी जा रहा है, मेरे दोस्त मुझसे दूर जा रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं,
1: अच्छे दोस्त आएंगे
0: वो दोस्त समझेंगे और फिर से वापस आएंगे, अगर वो सच में आपके दोस्त हैं, वो सच में प्यार करते हैं तो। लेकिन जब हम इसका ऑपोजिट करते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं कई बार, अपनी बात नहीं रखते, और हमें डर लगता है कि अगर मैं इस रास्ते पर चला, मैंने सच बोला या कुछ भी किया, तो पता नहीं वो कैसे लेंगे, जैसे फैमिली में होता है, तो फिर हम अवॉइड करते हैं। ये असली में ये कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये फिर बाद में और ख़राब करता है, है ना, फ्रस्ट्रेशंस क्रिएट करता है। उसके लिए एक ही चीज़ याद रखनी है कि पहले तो चेकिंग मुझे सही चीज़ करनी है, व्हाट इज़ राइट, जो ट्रुथफुल है, जो सबके लिए फ़ायदेमंद है, मेरे लिए, सभी के लिए, जब वो करना है मुझे, तो फिर जो उस में अलाइंट होगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, और जिसमें नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेट गो भी प्रैक्टिस करना है
1: और ईमानदारी से करना है सारी चीजें।
0: बस करना ईमानदारी से है, अपने आप को खो नहीं देना है दूसरों को खुश करने के चक्कर में।
1: वो भी अपने आप के ऊपर ईमानदारी नहीं होगा अगर हम दूसरों की बातों में
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल जी। जैसे एक वो बहुत फेमस बुक है टॉप 5 रेग्रेट्स ऑफ द डाइंग, उसमें जो नर्स है उन्होंने लिखी, तो उनका काम ही ये था कि जो लोगों का केयर करते थे वो पेशेंट्स का, जो जिनके पास 6 महीने 1 साल ऐसी बीमारी थी उनको लाइक कैंसर, तो वो उनसे पूछती थी कि व्हाट इज योर मोस्ट यू नो फर्स्ट रेग्रेट इन योर लाइफ, सबसे ज्यादा किस बात का रेग्रेट है। तो सबसे पहला रेग्रेट जो उन्होंने देखा लोगों का सबसे ज्यादा रेग्रेट होता है नॉट एबल टू डू द थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू डू, आई वॉज मोर इन टू पीपल प्लीजिंग, वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, मैं ये सोचता रहा कि
1: लोगों को कैसे खुश
0: रखना है, अवॉइड करना है कॉन्फ्लिक्ट को, अपनी बात रखने में डर लगता है, जजमेंट्स आती हैं, क्रिटिसिज्म आता है। लेकिन हुआ क्या फिर, अल्टीमेटली वो धीरे धीरे ना फ्रस्ट्रेशंस में बढ़ता रहता है, और इसीलिए फिर हम कहते हैं इनको एकदम से इतना गुस्सा कैसे आ गया, एकदम से हाइपर कैसे हो गए। वो बात नहीं थी, वो फ्रस्ट्रेशंस कैरी हो रहा है इतने वर्षों से, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए, जो सही है, जो इंटीग्रिटी है। इस वजह से वो जब दुविधा आती है तो वो बढ़ती रहती है और केओस क्रिएट कर देती है।
1: राइट तो क्या हम छोटे छोटे झूठ नहीं बोल सकते? झूठ तो नहीं है, कोई युक्ति रच ले, कोई एक्सक्यूजेस बहाना देते हैं क्या ये हमारी इंटीग्रिटी को धीरे धीरे डैमेज करता है?
0: हाँ, मतलब बोलते हैं कि एक इंसान एक दिन में 11 झूठ बोलता है, एक रिसर्च कहती है, और वो कहती है कि जब दो लोग नए मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, तो पहले 30 मिनट में एक झूठ जरूर बोलते हैं। अब हम क्या बात करते हैं, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, कितनी सैलरी है एक्सेट्रा, तो उसमें एक आधा झूठ बोल ही देते हैं।
1: सैलरी पे तो बोल ही देते हैं।
0: हाँ, सैलरी पे, एज पे,
1: एज पे,
0: हाइट पे
1: जी,
0: हाइट एक आधा इंच ज्यादा बताते हैं, एज 1-2 साल कम बताते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: अब ये क्यों है? ये इसीलिए है, इतने वर्षों का ये प्रोग्रामिंग है कि हमें आदत है छोटा मोटा भी झूठ बोलने की। छोटे बच्चे बोलने लग जाते हैं, आजकल छोटे बच्चे बोलने लग गए, पहले उन्हें इतना बोलते थे कि इतने इनोसेंट होते हैं, आजकल वो इनोसेंस भी कम हो रही है ना? तो कहने की बात वही है कि ये भी एक एडिक्शन से कम नहीं है। और फिर वही बात की
1: छोटे छोटे झूठ, मतलब जैसे हम किसी से कोई बात एग्जैक्टली बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अभी बता देंगे तो शायद वो रिजल्ट सही नहीं आएगा।
0: आपने जो ये बात कही ना कि अभी बता देंगे, इसमें एक लाइन मैंने सुनी थी बहुत अच्छी लगी थी मुझे, किसी ने एग्जांपल दिया कि उनकी एक फ्रेंड ने ना कुछ प्रोग्राम किया सिंगिंग का, एंड बिल्कुल अच्छा नहीं गाया उन्होंने, तो कहते कि वो मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि मैंने कैसा गाया, तो कहता अब सोचो क्या कहना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि वाओ, मतलब गुड टू सी यू, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, ये सब ठीक है। कहते मैंने उनको ये नहीं कहा कि आपने बुरा गाया, मैंने ओवरऑल कहा कि लुक एट यू, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना, सब कुछ अच्छा है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली कि यू डोंट हैव टू बी ऑनेस्ट राइट अवे, तभी आपको ऑनेस्ट होना ज़रूरी नहीं है, तब आप थोड़ा सा झूठ भी नहीं बोलना, तब आपको क्या करना है, जनरल कुछ वैसे बात करनी है, और बाद में जब वो उस स्टेट ऑफ माइंड में हो तब आप सच बोल सकते, ना
1: जी।
0: तो इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि ट्रूथफुलनेस तो होनी चाहिए, बट कल्चर्ड ट्रूथफुलनेस, है ना, सत्यता के साथ सभ्यता होनी जरूरी है, कि झूठ भी नहीं बोलना आपको। कभी कभी मैं समझता हूँ होता है कि मान लीजिए कोई सीनियर है, वो कुछ बोल रहे हैं, ये कैसा लगा, ये मैंने कैसा बनाया, मम्मी ने पूछा, है ना, तो ऐसा नहीं कि हमने तो सीखा है सच बोलना, नहीं, आपको बहुत प्यार से बोलना है कि आपने इतनी मेहनत की, आपने इतना कुछ किया, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बाद में तब आप बोल सकते हो कि इसे थोड़ा बेटर कर सकते,
1: राइट।
0: ये तो छोटी सी बात है, लेकिन जब आप ये आदत डाल लेंगे ना तो आप शिफ्ट देखेंगे। रिसर्च बोलती है कि जैसे एडिक्टेड लोग होते हैं ना
1: जी,
0: तो उनका 12-step प्रोग्राम होता है, उसमें एक स्टेप होता है कि आपको ना सच बोलना है, सच बोलना है, पूरा सच बोलना है। आपने जैसे रिकवरी में होते हैं वो, तो आपको सच बोलना है कि आपने फिर भी कहीं से कुछ कंज्यूम किया क्या, फैमिली से सच बोलना है। तो उस रिसर्च में मिला कि जब जब हम सच बोलते हैं ना तो हमारे ब्रेन में स्पार्किंग होती है।
1: ओके,
0: स्पार्किंग इन द सेंस कि यहाँ जो हमारी बुद्धि है, हमारी जो क्षमता है निर्णय करने की, वो डेवलप होती है, न्यूरो प्रोग्रामिंग होती है नई। तो जब हम धीरे धीरे धीरे धीरे हर बात पे सच बोलना शुरू करते हैं तो न्यूरो पाथवेज बन जाते हैं, पावर बढ़ जाती है, माइंड पावर। और यहाँ जैसे ग्रे मैटर जो बोलते हैं ब्रेन में, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो जिसका ज़्यादा होता है, कहते हैं उनकी बुद्धि, उनकी जजमेंट्स पावर ज़्यादा होती है, तो वो ग्रे मैटर बढ़ता है इन सब चीज़ों से, अगर आप साइंटिफिक वे में समझे। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों में सच बोलना बहुत ज़रूरी है, ये एक आदत है। जस्ट लाइक एडिक्शन, डी एडिक्शन, ये भी एक बहुत बड़ी एडिक्शन हो चुकी है, तो उसे ठीक करने के लिए छोटे छोटे को भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इनसाइड आउट, आउटसाइड इन, बाहर से भी अंदर से भी, दोनों तरह से, व्यवहार में भी और माइंडसेट में, दोनों जगह से चेंज करना। तो व्यवहार में क्या चेंज कर सकते हैं कि आज ना मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा।
1: सच बोलूंगा जी। ओके, कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि आप सच तो बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, मतलब डाउट करते हैं लोग, इतना भी कोई सच नहीं बोलता है, बड़े आई सच बोलने वाले, तो उस समय हमें कैसा माइंडसेट रखना है?
0: मतलब ये तो वही बात हुई ना कि मान लीजिए मैं सच में जेन्युइनली सबके लिए अच्छा सोचता, लेकिन दुनिया ऐसी है वो कहेगी कि आपका कोई मतलब होगा इन सब।
1: यस,
0: है ना। मुझे ना एक कविता याद आती है, बहुत बहुत फेमस है, जो हम बात कर रहे हैं मदर टेरेसा की, डू इट एनीवेज
1: जी।
0: तो वो इतनी अच्छी है, आप ये पोएम आप पूरा पढ़ेंगे ना आपको इतना क्लैरिटी मिलेगी। तो उसमें एक लाइन है कि इफ यू आर काइंड टू समवन, इफ यू आर ऑनेस्ट सिंसियर, सो सी उसमें क्या है, पहला इफ यू आर काइंड, अगर आप अच्छे हो तो फिर भी लोग आपको कहेंगे, पीपल में एक्यूज यू ऑफ सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स, है ना। वो कहेंगे कि इतना कहते नहीं, ये इतना प्यार से क्यों बात कर रहे थे, इनको क्या चाहिए मुझसे,
1: कुछ तो होगा,
0: कुछ तो है ना। बट बी काइंड एनीवेज, है ना। इफ यू आर ऑनेस्ट एंड सिंसियर, पीपल में डिसीव यू, मतलब उनको पता है ये सच बोलते हैं, हो सकता है आपकी सच्चाई का फायदा उठाए हो, आपने सच सच सब कुछ बता दिया, वो कहीं जाकर कुछ बता दे,
1: राइट,
0: फिर भी बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर एनीवेज, है ना। ऐसे ही नीचे है कि इफ यू डू समथिंग गुड एंड समवन विल कम एंड डिस्ट्रॉय ओवरनाइट, बट डू गुड एनीवेज। क्यों? क्योंकि जो लास्ट लाइन है ना वो बहुत सुंदर है कि जो फाइनल एनालिसिस होगा, इट इज बिटवीन यू एंड गॉड, इट वाज नेवर बिटवीन यू एंड देम एनीवेज।
1: वो चार लोगों के बीच में नहीं होगा,
0: वो चार लोगों के बीच में, हाँ।
1: जी,
0: वो फाइनल एनालिसिस कहो या फाइनल का वेट ही क्यों करें, रोज जो हमारी जो मन की संतुष्टता है, खुशी है, तो वो एनालिसिस तो मेरे और वही परमात्मा या मेरे कार्मिक अकाउंट के बीच है ना। तो इट वाज नेवर बिटवीन मी एंड देम एनीवेज,
1: मी एंड मी होगा,
0: मी एंड गॉड, कि मुझे अपने लिए करना है
1: जी।
0: तो जो आपने कहा कि आप सच बोलोगे तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं सच नहीं, इतना ये वो फिर अपने ही तरीके से बोलेंगे ना, वो उनकी प्रोग्रामिंग है, वो उनका माइंडसेट है। कोई भी इंसान, आप किसी इंसान के पास जाइए जो गलत करता है, गलत मतलब गलत खाता है, नॉनवेज खाता है या अल्कोहल लेता है, अगर वो नहीं छोड़ना चाहता तो वो तो आपको कन्विंस कर देगा कि आपको भी लेना चाहिए,
1: ना? क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है लोगों के साथ।
0: वो आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताएंगे कि आप भी चकरा जाएंगे।
1: रिश्वत लेने के टाइम में वैसा ही होता है।
0: यस,
1: ये ले लो, अब सैलरी से घर नहीं चलता,
0: हाँ.
1: ये चाहिए, आज के एक्सपेंसेस देख लो, बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे, आज तो सब CBSE में पढ़ते हैं या फिर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना चाहिए सब.
0: हाँ. जी. तो फिर वही बात है ना कि फिर मुझे क्या करना है, वो वही क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, क्योंकि लोग तो आपको अप्रिशिएट करेंगे अगर आप गलत काम करेंगे.
1: यस, आजकल ऐसा है,
0: आजकल ऐसा,
1: जैसे अगर हम स्पिरिचुअलिटी को अपना रहे हैं तो अभी एज ही क्या है.
0: हाँ, फिर वही बात, फिर वही वो कितना सुनने को मिलेगा कि इनका ना कुछ
1: गड़बड़ है और ये कुछ तो लाइफ में ब्रेक डाउन हुआ होगा,
0: कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो चाहिए इनको, इसीलिए ये सब कर रहे हैं, फ्री में क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं. तो वो उनका फिर थॉट प्रोसेस है, उसमें हमें नहीं
1: जाना. लेकिन इंटीग्रिटी से आपको संतुष्टि मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रहा है, तो आपको ये अपनाना चाहिए.
0: यू हैव अ पर्पस बिफोर एनीवन हैज एन ओपिनियन अबाउट यू. ये बात मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ शुरू से, कि मेरा पर्पस है वो ज्यादा जरूरी है रेदर देन कि कोई और क्या कह रहे हैं. और वो ओपिनियन भी वो लोग बोलते हैं आपको गलत भी, वो जो उनमें नहीं होता ना वो उनको इरिटेट करता है.
1: ओके ओके, इसीलिए वो आपके ऊपर सवाल उठाते हैं या फिर आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करने
0: की कोशिश करते हैं. दो तरीके हैं ना, जो चीज मुझ में नहीं है अगर मैं उस बात से संतुष्ट नहीं हूँ, तो मुझे किसी में वो चीज दिखी और मुझे दिखा कि वो अच्छे से कर रहे हैं, तो या तो मैं इंस्पायर हो जाऊंगा कि मुझे भी ये करनी है, वो मुश्किल है, वो मेहनत है ना,
1: या फिर जेलसी,
0: या फिर क्या करें कि मैं चार लोगों को उनकी बात बताकर मैं उनको पुल डाउन करने की कोशिश करूं कि मेरे लेवल तक आ जाए.
1: राइट,
0: ये अहंकार का काम है.
1: अगर ये ऐसा हो रहा हो आपके लाइफ में, हाँ. चल रहा हो, तो फिर इंस्पायर करते हुए अपने आप को स्टे मोटिवेटेड रहते हुए आपकी अच्छाई को नहीं छोड़ना. ये बहुत चैलेंजेस है,
0: ये चैलेंजिंग है, बट इट्स वर्थ इट. चैलेंजिंग क्या नहीं है लाइफ में, दूसरों की चुगली करना कोई कम चैलेंजिंग थोड़ी है. उसमें भी मेहनत लगती है.
1: बट आपको इजीली वैसे लोग मिल जाते हैं रादर देन कि वो शायद आपको दुख दे रहे हैं, आपको गिरा रहे हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आप अपने आप को स्ट्रांगली मोटिवेट करते हुए उसको पार करते हो.
0: यस, एंड सिर्फ ये बात नहीं है, अगर ये आदत है तो हर जगह वो आदत रहेगी. मान लीजिए हम डीमोटिवेट करते हैं, दूसरों को गलत बोलते हैं, तो मैं कभी सेटिस्फाई रहूँगा ही नहीं, मैं पूरा दिन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूँगा, ऐसी आदतें अपनाऊँगा जो अनहेल्दी हैं, तो वो भी मुश्किल है. वो कौन सा आसान है, बीमारी के साथ रहना, इरिटेशन के साथ रहना, गुस्से के साथ रहना, जो करते हैं उनसे पूछो, इतना आसान नहीं होता ये सब करना.
1: सही बात है, इसीलिए सिंपल रहो वैल्यूज के साथ. मान लीजिए कोई अपनाना चाहता है, रीबिल्ड करना चाहता है इंटीग्रिटी को फिर से, बहुत सारे गलत काम हमने किया है, डिसीजंस लिया है, वैल्यूज भी बहुत सारे गलत चुना है, तो फिर कैसे रीबिल्ड कर सकता है.
0: बस एक ही चीज़ करनी है कि आज से एक नई शुरुआत करते हैं. आप मुझसे पूछोगे जैसे जैसे मैं गलती करता था, सीखता था अभी भी, तो फिर खुद को फिर से उठा कर कहता था कि चलो अब से एक ब्रैंड न्यू बिगनिंग करते हैं, जो हो गया हो गया, पास्ट हो गया, ठीक है, खत्म, उससे मैंने सीखा है, अब मुझे सब कुछ सही करना है. और सब कुछ सही करना मतलब बिल्कुल बाइट साइज में अपने टास्क को डिवाइड कर लीजिए कि आज क्या करना है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये मैं सबको ही कहता हूँ कि आज से काम करो प्रैक्टिकल डूएबल, कि आज ना मुझे एक भी झूठ नहीं बोलना. आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ माइंड झूठ बोलने की कोशिश कर रहा होगा, बट आप पकड़ लोगे कि नहीं आज झूठ नहीं बोलना. फिर आपको तरीका आएगा कि सच भी बोलना है लेकिन तरीके से बोलना है, सभ्यता से बोलना है, प्यार से बोलना है, ये कर सकते हैं. दूसरा वही खुद से बातचीत करते रहना है कि मैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बिकम, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, मेरा पर्पस क्या है. तो कुछ भी काम करना है तो ये चेक करना है ये उससे अलाइनमेंट में है. अगर मैं इंसान बनना चाहता हूँ विद द पावरफुल माइंड, पीसफुल माइंड, क्लियर माइंड, तो रील्स देखना क्या ये अलाइनमेंट में है. 2 घंटे सोशल मीडिया पर रहना, मैं चाहता हूँ कि मैं लॉयल पर्सन बनकर रहूँ, पहले जो हुआ छोड़ देते, लॉयल बनूँ, तो क्या किसी से बात करना चाहिए मुझे? चेक करना है क्यों क्यों चाहिए, फिर अपने आप को बताना है कि नहीं चाहिए ना, ये मेरे मुझसे अलाइन नहीं है जो मैं चाहता हूँ, मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ कुछ। सबसे बड़ा आज जो पीस ऑफ माइंड का जो ऑपोजिट है वो ये है कि हम ना कुछ ढूंढ रहे हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, तो खुद को कहना पड़ेगा कि बस हो गया मेरा सर्च, हो गया डन, अब मुझे पीसफुल कंटेंटेड फील करना है
1: जी
0: अंदर से ही, और किसी से बात करके कुछ भी करके गलत करके मुझे नहीं मिलने वाला है, नहीं करना है मुझे। छोटी सी बात कि आज एग्जांपल, आज झूठ नहीं बोलना, आज पूरा दिन मुझे किसी से बात नहीं करनी, आज मोबाइल को 3 घंटे मुझे बंद रखना है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, और उस समय पर मुझे खुद से बात करनी।
1: जी बिल्कुल, तो खुद से बात करते हुए आपको आंसर्स मिलेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, टूल्स आपके पास है, आपने क्वेश्चन अपने आप से पूछा, आंसर ऑलरेडी हमारे अंदर है, बहुत अच्छे अच्छे आंसर आपको मिलेंगे, बस उसको नॉक नॉक करने की ज़रूरत है, वो अपने आप बाहर आना शुरू हो जाएगा।
1: लेकिन आपने बोला कि डेली एक प्रैक्टिस करनी है, या फिर अपने मन को ये बोलना है कि आज मैं ये करती हूँ।
0: हाँ,
1: अगर मैंने सोच लिया कि मैं पूरे साल भर झूठ नहीं बोलूँगी तो शायद नहीं होगा,
0: थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारा माइंड एक साल की बात छोड़ देता है। मतलब रोज करना चाहिए, माइंड को क्लैरिटी चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए, और खुद पे काम करना, ये जो आदतें गहरी आ गई हैं वो उसको सफाई रोज करनी पड़ेगी, तो अपने ऊपर काम करना इट्स एन एवरीडे थिंग।
1: जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल यूथ बहुत सारे जैसे पोर्न एडिक्टेड हैं, और क्योंकि हम बात करें इंटीग्रिटी के बारे में, जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है तब जो काम हम करते हैं ईमानदारी से, तो वो चाहकर भी शायद इस हैबिट को नहीं, मतलब इसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, रिबिल्ड नहीं कर पा रहे, तो कैसे कर सकता है, क्या स्टेप यूथ उठा सकता है?
0: एक तो वही बात कि जो भी ये हम एक्सटर्नल, पहले तो सबसे पहले तो एक काम करना है कि अपने ट्रिगर्स को अवॉइड करना है,
1: फोन की नोटिफिकेशन एंड ये सब।
0: हाँ, मतलब आजकल जैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम है और स्नैपचैट है, और तो मुझे नहीं पता, जितना मुझे पता है पर इतना जितना मैंने देखा उसमें ऐसी ऐसी वीडियोस लोग डालते हैं, है ना, और वो हर बार रियल भी नहीं होती। मतलब कोई लड़की की प्रोफाइल बनाकर मॉफ्ट करके उसे चेंज करके करते हैं, और अब कुछ करने को नहीं है, मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, तो उनको पता है कि कहाँ से एंगेजमेंट ज्यादा आएगा, तो फिर वो जानबूझकर बीच में एक आधी ऐसी वीडियो डाल देते हैं जिससे ट्रिगर हो जाता है। अब वो ट्रिगर हुआ तो फिर वही बात कि इंसान गूगल क्रोम खोलता है और वो शुरू करता है। पहली चीज तो वही कि ट्रिगर्स को जितना अवॉइड हो उतना पॉसिबल अवॉइड करना है, और उसके लिए पहले तो इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए ना, खुद के वेस्ट टाइम नहीं होना चाहिए कि हम घंटों घंटों देख रहे हैं, है ना, पहले तो ये। दूसरी चीज कि ये भी एक ट्रैप है, ये भी रियलिटी नहीं होती है जो दिखाई जाती है, और उस वजह से ही ये प्रॉब्लम आती है कि लोगों
1: रियल लाइफ में
0: प्रॉब्लम आती है, और आजकल जितने केसेस सुनने को मिलते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। मूवी देखी मैंने, जो भी नई मूवी है, एक मूवी आई थी एनिमल, और जो भी लेटेस्ट मूवीज आई ध्यान से देखो तो उसमें ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, शुरू से ही किया जाता है एक फीमेल को, तो चलो मूवी अच्छी बनानी है, एक आइटम सॉन्ग डाला और ये किया वो किया। धीरे धीरे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारा माइंड बिल्कुल करप्ट हो गया है, हमें लगता है कि वो इंसान नहीं है, वो
1: ऑब्जेक्ट है
0: ना, तो उस वजह से ये गैप आना शुरू हो जाता है, और रियल लाइफ में जब ऐसा होता नहीं उनको कुछ ऐसा मिल नहीं पाता तो फिर वो एग्रेसिव हो जाते हैं।
1: ओके,
0: तो ये भी समझना ज़रूरी है कि ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जो लोग मिलकर कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया वाले करते हैं जानबूझकर ऐसी वीडियो, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स वाले जानबूझकर, अच्छा स्कूल के बच्चे हैं चलो ऐसे करो, कुछ वेब सीरीज बनाते स्कूल के बच्चों के लिए। बच्चे तो देखेंगे कि अरे स्कूल जैसा है, कॉलेज वालों के लिए कॉलेज, ऑफिस वालों के लिए ऑफिस, तो उनको गेम समझ आ गई है कि लोगों के पास ज्यादा करने को कुछ नहीं है, इनको भर भर के कॉन्टेंट दो। तो ऐसे ही फिर वो पोर्न एडिक्शन का हो जाता। तो अगेन एक पर्पस, एक क्लैरिटी कि मुझे क्या करना है।
1: लोग खाली हैं अंदर से, आपको लगता है इसी कारण ये सब हो रहा है?
0: इसी कारण से भी खाली और खाली होते जा रहे हैं, ये लेयर ऐड कर रहा है। रियल रीजन है खाली है, इस वजह से ये चीज चल रही है,
1: वाइस वर्सा।
0: वाइस वर्सा, जैसे मैंने कहा कि लगते सब अच्छे हैं लेकिन कितनी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, और कभी कभी तो मुझे लगता है 90% तो बातें बाहर आती नहीं है, पर रियलिटी में सोसाइटी में परिवार में क्या चल रहा है, कोई भी आजकल कहते हैं कोई सेफ नहीं है, कोई बच्चा सेफ नहीं है,
1: तो अंदर से सब खोखले हैं, मतलब वैल्यूज है नहीं।
0: हाँ, और वो मानने को रेडी नहीं
1: है कि हमारे अंदर वैल्यूज नहीं। हाँ, ओके।
0: मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक पब्लिक प्रोग्राम में इसी बारे में बात कर रहा था
1: जी।
0: कि हम कहते हैं कि इतना ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, इतना ऐसे प्योर नहीं होना चाहिए, फिर मैंने उनको यही सब स्टैट्स बताए कि फिर ये कौन लोग हैं जो 70% पीपल वॉच पॉर्न, ये स्टैट्स है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो ये कौन लोग हैं फिर देख रहे हैं जो हम में से ही है। तो एड्रेस उसको करना जरूरी है और ये अवेयर होना जरूरी है कि ये मेरे अंदर के खालीपन को दूर नहीं करेगा और खाली करेगा। खालीपन दूर करने की वही बात कि जितना ये छोटी छोटी बातों में चीट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सैड है, परेशान है, दुखी है, गलत आदतें हैं, माइंड से अपने आप से दूर है, तो फिर ये हर तरह की वो जो हमने शुरू में बात की कि मेन्यू पूरा है, जितना डिस्ट्रैक्ट होना चाहो हो सकते हो, इतना कंटेंट है आज ये नेटफ्लिक्स पर सिर्फ कि 100 साल अगर आप 4 घंटे भी देखो ना तो भी खत्म नहीं होने वाला, सिर्फ नेटफ्लिक्स, बाकी तो छोड़ ही देते। तो वो उसका कुछ अंत नहीं है, हमें लगता है कि ये मूवी देख ले, वो मूवी देख ले, ये देख ले, नहीं कुछ रखा नहीं है उसमें। अपनी स्किल्स पर काम करना, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, वो बहुत ज़रूरी है
1: जी। तो आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अंतिम मोड पर तो हम पहुँच चुके हैं, कि ऐसे कौन सी आदत है जो हम आज से अपनाएं ताकि अगर हम अकेले भी रहें तो भी हम मौज में रहें, वो अलग बात है, लेकिन हम सही काम करें, सही तरीके से काम करें।
0: सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आज के समय में है वो है कि ज़रूर टाइम निकालना चाहिए हमें खुद के लिए, जो मैं करता हूँ रोज़ 1 घंटा 2 घंटा अपने टेरेस पर जाता हूँ और खुद से बात करता हूँ।
1: सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है।
0: सेल्फ टॉक बिना किसी चीज़ के,
1: बिना कोई फिल्टर के,
0: बिना कोई फिल्टर के, बिना एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के, मतलब कोई उस समय मुझे ना कुछ म्यूजिक सुनना है, ना कुछ वीडियो देखना है, ना कुछ कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं, मेरा नोटबुक पेन, वॉक किया और खुद से बात की। चाहे आप कितना भी ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो इस समय लाइफ में, कोई सिचुएशन चल रही हो, अंदर कोई बात खा रही हो, गिल्ट हो, अनकंफर्टेबल,
1: सब कुछ लिखना है या बात करनी अपने आप से,
0: दोनों, सब कुछ लिखना है। और ये आदत बनानी है जो मैं पिछले कुछ दिन से दोबारा से शुरू किया है, पहले भी करता था, रोज 1 या 2 पेज जरूर लिखने हैं, व्हाटएवर,
1: क्या बात करनी है अपने से, क्या पॉइंट्स, ऐसा होना चाहिए,
0: मेरा आज का दिन कैसा गया,
1: ओके,
0: आज मैंने क्या किया, आज क्या है। आप इतना भी लिखोगे ना, अपने आप देखना आपकी गाड़ी ऐसे स्टार्ट होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको खुद को रोकना पड़ेगा कि बस हो गया एक बार, बस कि आज का मेरा दिन कैसा गया। क्योंकि हम जब लिखते हैं तो रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं तो बहुत सी बातें, थॉट्स जो है वो वर्ड्स में आ जाती है। जैसे कभी कभी हम कुछ गाना सुनते हैं ना तो हमें क्यों अच्छा लगता है, हम कहते हैं सेम फीलिंग मेरी थी, बस मुझे वर्ड्स नहीं पता थे. तो वो इट्स अ गुड फीलिंग. तो जब आपके अंदर वो थॉट्स चल रही हैं, जब आप वर्ड्स में उसको ट्रांसलेट करते हो ना, तो बड़ा अच्छा फील होता है. तो इसलिए खुद से बात करें बिना किसी चीज़ के, खुद को चाहे वो अनकंफर्टेबल हो कितना भी, पर अवॉइड नहीं करें. भागे नहीं. भागना, अवॉइड करना, इट्स एन ईजी एंड लेजी थिंग. वो मुझे नहीं करना. मुझे खुद को ऑनेस्टली चेक करना है. मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि उसमें क्या होता है. आपको इतना कुछ दिखेगा कि जैसे मैं खुद को बोलता हूँ, हितेश ये तो फिर ईगो है ना, हितेश ये तो फिर गलत बात है ना, ये तो फिर आप सोच ही सही नहीं है आपकी, ये तो ईगो आ रही है, आप क्यों ये चाहते. मतलब आपको इतना लेयर दिखेगा ईगो का कि आप कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहते हो लाइफ ऐसी हो, फ्यूचर में ऐसा हो. कुछ भी कंट्रोल में हमारे होता नहीं.
1: कहीं ना कहीं ईगो फैक्टर की वजह से, अहंकार की वजह से भी
0: ये ईगो होता है.
1: इंटीग्रिटी को भी नहीं समझ पाते. कर भी नहीं पाते शायद.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो उस ईगो को समझना और उसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी.
1: तभी आप इंटीग्रिटी को अपना सकते हो, फिर आप मेंटल पीस और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हो.
0: हाँ, वो चीज़ें साथ साथ चलेंगी,
1: दोनों साथ साथ.
0: क्योंकि कॉन्फिडेंस कुछ एक अलग चीज़ नहीं होती. मैं आपको कहूँ आपको अपने दोस्त से बात करनी है, आप ये नहीं कहते मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए. वो तो होता ही है, नेचुरल है. जब आप क्लियर होते हो, जब आप कंफर्टेबल होते हो, रिलैक्स्ड होते हो, तो आपको कुछ भी अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं है. कॉन्फिडेंस आप नेचुरल होते हो, ऑटोमेटिक आता है. तो क्लैरिटी पे काम करना है, पर्पस पे काम करना है कि मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है. मतलब मुझे कैसा इंसान बनना है, मेरा पर्पस क्या है.
1: तभी ऑटोमेटिक जो भी वैल्यूज हम ऐड करना चाहते हैं अपने जीवन में वो कर सकते हैं.
0: वो अपने आप ऐड होती जाएगी.
1: ऐड होती जाएगी जी, बिल्कुल. तो अभी तो वक्त हो गया है अलविदा कहने का, तो लास्ट लाइन क्या बोलना चाहेंगे आप यूथ को, एक पावरफुल मैसेज क्या देना चाहेंगे?
0: वही कि अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, एक्शंस को इतना इतना क्लियर, इतना प्योर बनाए कि जब हम ये सोचें कि ये वापस आएगा तो अच्छा फील होना चाहिए कि I'm okay to get it. अगर वापस भी आता है तो मेरे लिए ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है.
1: अगर मेरा कर्म वापस आए तो
0: हाँ, बस मुझे ये करना है कि अगर वो वापस आए I should be okay with it. मैं comfortable होना चाहिए. अगर नहीं तो फिर वही करूँ जिससे मैं comfortable हूँ, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं. मुझे वो करना है कि वही देखकर मेरे आसपास के लोग, मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे क्लोज वंस हैं, वो करेंगे मेरे साथ. तो बस इसको याद रखना है.
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा इंसाइट्स है ये, और हमने आज बहुत कुछ सीखा आपसे. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए.
0: जी जी, धन्यवाद धन्यवाद.
1: तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में. तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM.

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें
1: बिल्कुल
0: मुलाकात के कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ इस शो के खास गेस्ट नितिन नैन गिरिजा गिरकर हमारे साथ उपस्थित हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। आप दोनों को यहाँ बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। इसके साथ में रेशमा जी हमारे साथ उपस्थित है। आप बहुत ही अच्छी तरह से गीत हमारे सामने पेश करने वाले हैं। तो वही आज के इस कार्यक्रम में हम लोग नितिन जी और गिरिजा जी के कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस को सुनेंगे, जहाँ पर हर व्यक्ति की जीवन कहानी में उतार चढ़ाव होते हैं, कभी दुख कभी सुख आते जाते रहते हैं। तो ऐसे में हम आज कोशिश करेंगे कि नितिन जी एंड गिरिजा का जीवन के कुछ खूबसूरत अनुभवों को साझा करेंगे, वो हमारे साथ में तो आपको सुनेंगे। और चलिए रेशमा जी, स्वागत है आपका और एक छोटा सा गीत जरूर पेश कीजिए।

0: वाह रेशमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुनाया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं, और अभी हम नितिन जी से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को। नितिन जी कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, ईश्वर कृपा है।
0: जी, और मैं चाहूंगा कि वर्तमान में अभी कहाँ पर है, थोड़ा सा करंट सिनेरियो के बारे में बताइए आप।
1: तो ये है कि हम फिलहाल पुणे में हैं और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, और हालांकि हम रेकी हीलर्स भी हैं हम दोनों, और बस जिंदगी के संघर्षों के बावजूद मजे ले रहे हैं। हमारी जो धर्म पत्नी है वो हमारी सहधर्मचारिणी है, हम दोनों ऐसे होके जीवन के मजे उठा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं चाहूंगा कि कुछ बचपन की यादें ताजा कराइए आप अपने, स्कूलिंग वगैरह की, कहाँ पर हुई,
1: जी,
0: कैसे रहा। जी
1: स्कूलिंग हमारी मुंबई में हुई और वहाँ पे लोकल सबर्ब्स में हुई हमारी स्कूलिंग, और स्कूल जैसे हम स्कूल के बाद कॉलेज भी हमारा जो है मुंबई में ही हुआ है। और क्योंकि हम थोड़ा सा अध्यात्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो लगभग 7वीं 8वीं कक्षा से ही कुछ हमें मुझे अनुभव होते गए, जैसे एस्ट्रल ट्रैवलिंग जो कहते हैं इत्यादि, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अध्यात्म के बारे में होता ही रहा है। तो उसके बाद कॉलेज के बाद फिर जो होता है हर एक के साथ ऐश करना, मजे करना, और वैसे करते गए हम, मस्ती में पढ़ाई करते गए, और एक ऐसे कोई लक्ष्य नजर नहीं आ रहा था। तब फिर ये महसूस हुआ कि कुछ तड़प हो रही थी और कुछ करना है, कुछ सीखना है, कुछ जो है हमारे विश्व के प्रति कुछ कंट्रीब्यूट करना है।
0: बिल्कुल
1: तो ये
0: बिल्कुल,
1: हम कह सकते हैं थोड़ा सा बेस हो गया था मेरे लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आगे जैसे आप बड़े एजुकेशन के बाद, तो आपको क्या लग रहा था कि हाँ करियर आपका कैसे शुरू करें? कई सवाल होते हैं हमारे पास, नौकरी करें या बिजनेस करें, ऐसी चीजें। आप तो आपके पास एज ए युवा आपने क्या सोचा था और क्या चीजें आपके साथ हुई?
1: तो कॉलेज के बाद मैं जुड़ गया, HSBC बैंक था, उसमें मैं 15 साल सर्विस की मैंने, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस लिया उस वक्त। और काम करते करते फिर एक ऐसा दौर आया कि अब ये कहना चाहूंगा, मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैं रोज मतलब नॉनवेज खाता था, फिर पढ़ाई भी अच्छी हो रही थी उस वक्त, जैसे मैं काम कर रहा था पढ़ाई भी हो रही थी, नॉनवेज, फिर शायद हम जो ड्रिंक्स करते हैं, स्मोकिंग, वो सब जिंदगी का की मौज मस्ती जो होती है वो चल रहा था, और करियर भी था, जो प्रमोशंस है ऑफिस में मिलते गए पैसे, लेकिन फिर भी वो जो तड़प थी, वो कशिश थी, वो कुछ मिल नहीं रही थी। ये सफर का शुरुआत था। बहरहाल तो ऐसे
0: बिल्कुल
1: चलते, तो एक दौर ऐसा आया कि हमारी जो धर्म पत्नी है वो हमें हमारे गुरु से मिलाई,
0: अच्छा।
1: और बस वैसे सफर चलता गया। और फिर उसके बाद जो जिंदगी में एक जबरदस्त मोड़, एक जबरदस्त घुमाव आ गया, 360 डिग्री टर्न, कंप्लीट जीवन हमारा सुधर गया।
0: तो वो जो कंप्लीटनेस या फिर वो जो चेंज हुआ, वो कैसे हुआ, उसके लिए आपने क्या किया? क्या गिरिजा जी ने ही आपको वहां लेके गया, उसके बाद फिर कैसे चीजें समझने लगे आप, थोड़ा सा वो बताइए कहाँ पर ऐसा लगा कि आप इन चीजों को कर सकते हैं?
1: तो ऐसे लगता है ना, जो हम कहते हैं तालाब के बाहर मछली होती है, वैसे कभी महसूस नहीं किया। जब गुरुजी के साथ हमारी मुलाकात हुई, तो ये सारी जो मेरी आदतें हैं, जो एक चुटकी में, एक पल में छूट गई मुझसे, और फिर बस धारणा, ध्यान, और फिर हमारे जो कहते हैं वो तीर्थ यात्रा, फिर चाहे बनारस हो, काशी हो, गिरनार हो, या फिर डेरा करे जंगलों में, हम करते गए, बहते गए, ग्रंथों को पढ़ना, ध्यान करना, ये समझ गए हम कि लोगों को कैसे हम एक्सेप्ट करें, उनमें जो खामियां हैं, कमियां हैं, उन्हें स्वीकार करें। प्रेम हमारा मूल मंत्र, प्रेम बन गया उस वक्त, सभी से प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। तो ऐसे ये जो छोटी छोटी कड़ियां हैं, ये जो मूल मंत्र है, हमने हमारे जीवन में आचरण, सो ग्रंथ पढ़ना ठीक है, सुनना, संतों को सुनना अच्छा है, लेकिन उनका हमारे रोज के जीवन में आचरण करना, वो हमें बहुत बड़ी सीख मिली हमारे गुरु से, और वो हम करते गए, जिससे हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत बहुत, और दूसरों, हमारे जुड़े हुए जो हमारे रिलेटिव्स थे, के जीवन में भी काफी परिवर्तन आया।
0: नितिन जी काफी अच्छी बात आपने बताया, जब व्यक्ति समझने लगता है, जीवन को गहराई से जानने लगता है, तो उनके जीवन में परिवर्तन निश्चित तौर पे सहज हो जाता है। लेकिन कभी कभी लगता है ना, हमारी पूरी मौज मस्ती वाली दुनिया खत्म हो जाएगी और एक नई दुनिया की शुरुआत। तो उसमें कुछ संघर्ष नहीं लगा आपको छोड़ने में?
1: यकीन मांगे आगे जितना पैसा मैं शराब में, सिगरेट में, नॉनवेज में खर्च करता था, और जो नशा जो टेम्पररी होता है, ये थोड़ी देर के लिए होता है, ये कायम स्वरूप होता है। जब ये ऊर्जा हम में आ जाती है, ईश्वरी रूपी ऊर्जा, ईश्वर का जो चैतन्य हमें समा जाता है हमारे में, तो उसमें जो मजा आता है उसका कोई अंत नहीं, सतत निरंतर परिपूर्णत्वम सतत रहता है। तो संघर्ष उसमें अगर टेम्पटेशन के वो थोड़ी देर आया बस और यूं चला गया। मैं हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछता था, मुझे ये चाहिए या मुझे ईश्वर ज्यादा चाहिए, प्रसन्न है? तो द आंसर वॉज वेरी सिंपल, ईश्वर ही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था।
0: बिल्कुल,
1: तो संघर्ष लगा ही नहीं, सहज हो गया।
0: चलिए नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए। और जो आपने कंपनी वगैरह छोड़ के आपके बायोडाटा में आपने बताया कि कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया, तो ये कैसा ख्याल आया, इसके पीछे का रीजन क्या है?
1: ये सवाल जो है मेरे ख्याल से हमारी धर्म पत्नी जो है वो
0: गिरजा जी आप बताइए।
2: रमेश जी, एक्चुअली क्या हुआ कि हम तो बहुत अच्छी तरह से सेटल हो गए थे शादी के बाद, ये HSBC में काम कर रहे थे, और फिर बाद में सडनली उन्होंने एक दिन कहा मुझसे, चलो मुंबई छोड़ते हैं और पुणे जाते हैं घर। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि पुणे में जाके करेंगे क्या। तो मैंने सोचा कि शायद उनका HSBC का वहाँ पे ब्रांच आ रहा होगा, इसीलिए वो मुझे पूछ रहे हैं करके। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि उनके पास नौकरी भी नहीं है, HSBC का ब्रांच जो आने वाला है वो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, तो
0: अच्छा
2: करेंगे क्या अभी। तो बच्चे तो छोटे थे, एकदम छोटे, मतलब बेटा तो मेरा सिर्फ 2.5 साल का था और बेटी 6 साल की। तो 98 में जब हम यहाँ पुणे में शिफ्ट हुए तो नौकरी ढूंढने की कोशिश की बहुत, उन्होंने यहाँ वहाँ बहुत सारा नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिला ही नहीं। तो अभी 6 महीना हो गया नहीं मिल रहा है, साल हो गया नहीं मिल रहा है, 2 साल हो गया नहीं मिल रहा है, तो अभी कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारना पड़ेगा ना। और मुझे घर पे बैठे हुए हो गया था, मुझे 6-7 साल हो गया था, तो मैं बोली बापरे मैं यहाँ जाके मैं क्या करूंगी क्या। तो मैंने अपने गुरु से कहा कि गुरु ने मुझे पहले ही कहा तुम पुणे जा रहे हो तो तुम्हें अपना स्थान बनाना पड़ेगा वहां पे। बोली मैं कैसे बनाऊ, मुझे नहीं आता, अब ऑफिस जाके काम करो और ये सब कुछ मुझे नहीं संभालने आता है, मुझे घर गृहस्थी संभालने बोलो मैं वो संभाल सकती हूँ, बस मुझे ऑफिस नहीं आता। तो बोले ठीक है। तो मैंने तो डांस सीखा था और काउंसलिंग भी सीखा था, साइकोलॉजी किया था, BA किया था। तो गुरु बोले कि देखो अपने आप को एक साल दो, आप देखो क्या करना चाहते हो, आप डांस करना चाहते हो या ये करना चाहते हो, आपको उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। बोले ठीक है एक साल देखते हैं करके। तो ऐसी परिस्थिति आई थी घर में, रमेश जी मैं आपको बोलूं कि बच्चे इतने छोटे और घर में मैं ढूंढती थी कि कहाँ पे मैंने पैसा छुपा के रखा है, वो 10 रुपया 20 रुपया कहाँ पे मिले के कहीं से तो मिल जाए 10 रुपया ताकि मैं कोई सब्जी खरीदूं और बच्चों को खाना खिलाऊं करके। बहुत सारा दिन रात ऐसे गुजरते थे कि पूछो नहीं, पता ही नहीं चलता था। कभी कभी तो हम पानी पी के ऐसे सो जाते। तब जाके हमारे बिल्डिंग में ही एक महिला है जो मुंबई से आती थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि देखो मैं मुंबई से आती हूँ तो मुझे एक टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना आप अगर दे सको तो मुझे दे दो। बोली ठीक है, लेकिन वो खाना देने के लिए भी पैसा चाहिए ना, वो सब्जी खरीदने के लिए, दाल खरीदने के लिए, रोटी बनाने के लिए वो आटा चाहिए, तो कहाँ से लाऊ। तो मैं उसे कहा मुझे 50 रुपया एडवांस दे दो, मैं आपको 30 रुपया में मैं आपको खाना बना के दे दूंगी, डब्बा टिफिन दे दूंगी। अब तो सिर्फ 50 रुपया लिया और सब्जी वगैरह खरीदा, उससे जो खाना बनाया था उसका आधा खाना मैंने उनको दे दिया, आधा खाना मैंने बच्चों के लिए बचा के रखा था। बस यही एक भगवान ने मुझे एक जरिया दिखाया था कि जहाँ पे मैं अपने खुद को उस पे क्या बोलते हैं कि मैंने पूछा नहीं था कि मुझे ये करना है करके, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी, एक सिंपल सा पापड़ तलना भी मुझे नहीं आता था, तो मैं कहाँ से कैटरिंग करूँ। तो ऐसे ऐसे लगता था कि भगवान ने शायद वो सिखाने के लिए वो स्किल बोलते हैं ना कि एक जन्म में एक्चुअली 64 स्किल्स आपको सीखना पड़ता है, तो ये एक स्किल था जो मुझे सीखना था, तो इसलिए वो और ये बनाते बनाते फिर हमारे सोसाइटी में और एक महिला थी, वो इसका बड़ा ऑफिस था, तो उसका संकल्प था कि मैं ऑफिस वहाँ पे उसके ऑफिस में वगैरह मैं उसको खाना पहुंचाऊं करके. वो हमेशा, मैं अभी साउथ इंडियन हूँ और ये महाराष्ट्र ने, तो मैं इडली डोसा वगैरह सब कुछ अच्छा बना देती हूँ, तो तो उसको मेरा इडली डोसा वगैरह सब कुछ अच्छा लगता था, सांबार अच्छा लगता था, चटनी भी अच्छा लगता था. तो बोले कि नहीं, हमारे ऑफिस में मुझे ऐसे चाहिए कि आपका खाना वहां पे पहुंच जाएगा. बोली ठीक है. तो बोले कि देखो, लेकिन मैं मदद नहीं करूंगी. तो मैं बोला ओके ठीक है. तभी तो हमारे पास ये तो कभी 1998-2000 का बात कर रही हूँ मैं, तभी तो हमारे पास लैपटॉप भी नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो कहाँ से मैं कोटेशन ये करूँ, कि मुझे कोटेशन कैसा देना है वो भी पता नहीं था. तो मैं जब गई उस कंपनी में, तो वहां पे देखा तो ऐसे केटरर्स कचाकच भरे हुए पूरे हॉल में, और मेरा हृदय ऐसे धड़ करने लगा. मैं बोली बाप रे, अभी इन सब केटरर्स में मैं क्या बोलूं वहां पे. मैं कुछ नहीं बोल सकती थी, मेरा तो बोलती बंद हो गई थी वहां पे.

0: का खाना ही अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप 7 दिन का ट्रायल दे दो और फिर आप देखो, उनको अगर पसंद आ जाए आपका खाना तो आप कर सकते हो। बोली ठीक है। तो 7 दिन ट्रायल दिया, तभी 7 दिन ट्रायल देने के लिए भी पैसा नहीं था हमारे पास, और ये तो तभी बाइक चलाते थे। तो हम बाइक पे, आप देखो सोचो, गरम गरम खाना डब्बे में डाल के बाइक के सामने, यहाँ पे एक बैग होता था और मेरे गोदी में एक बैग होता था, तो वो गरम गरम जो चक्का लगता था हमें, वो मैं तो सिर्फ शिव जी को तभी मैं नमन करती थी कि हाँ भाई ये दिन भी हमारे गुजर जाए करके अच्छी तरह से। और बिलीव मी, सब इतने लोगों में से मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया,
1: मिला
0: खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। और वो जो खेर साहब थे, उन्होंने एक्चुअली वर्ड ऑफ माउथ, उन्होंने हमें 3 कंपनियां दिलाई। फिर 3 कंपनियां दिलाई, एक कंपनी में हम पूरे कैफेटेरिया चलाते थे वहां पे, मतलब दिन ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और रात का डिनर। तो ये पूरा जो 4 प्रहर का खाना होता है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। तो एक डब्बे से लेके 350 लोगों का खाना बनाने का जो प्रयास, ये था सफर था, वो शिव जी ही हमें उससे पार लगाए बस।
1: क्या
0: और इसमें एक्चुअली एक बड़ी सीख हमारे बच्चों को मिली, बच्चों को हमारे एक बड़ी सीख मिली कि कौन सा भी आप जॉब करो, भले वो एक छोटा सा छोटा जॉब हो, कुछ भी हो, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए और अपना जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, उस प्रिंसिपल पे डटे रहना चाहिए। और भगवान हमारे, सिर्फ भगवान ही हमारे साथ देते हैं, भगवान ही हमारे साथ देते। क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली देखा गया तो मेरे रिलेटिव्स, इनके रिलेटिव्स, सब लोग मुझे ही बोल रहे थे कि मेरी वजह से ये अध्यात्म में चला गया, मेरी वजह से ये अध्यात्म में चला गया, अभी तुम संभालो उसको। बोली ठीक है,
1: चलिए
0: संभाल दे।
1: आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपना जो है जीवन के अनमोल अनुभव को साझा करने के लिए गिरिजा जी, थैंक यू। आइए मैं नितिन जी से कहूंगा कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाइए। आप कई अच्छा गाते हैं आप दोनों, तो मैं चाहूंगा कि एक नितिन जी पहले अभी गा दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में गिरिजा जी।
2: तो ये हुआ कि गीत से पहले कि जब मैंने HSBC बैंक छोड़ी, एक दिन में छोड़ी या निर्णय लिया और आए हम पुणे, तो मन में ये गीत हमेशा हम दोनों गाते थे। आई लिख दी तेरे नाम अर्जी, मुझको सुख दुख दे जो तेरी मर्जी,
1: क्या बात,
2: वस्त्र तन

0: मुझको सुख दुख दे जो तेरी मर्जी, हमको सुख दुख जे दे जो तेरी मर्जी। और यकीन मानिए, ईश्वर ने हमें ऐसे पकड़ा है। कहते हैं ना, सोना तप तप के सोना होता है, वही हमारा अनुभव है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मिलन जी ने मैसेज किया है, गॉड हैज ओन वेज टू पुटिंग हिज चिल्ड्रन टू हार्ट ऑफ बेस्ट बिफोर मेकिंग राइज इन लाइफ। जी मिलन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि जीवन के कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जो हमें टाइम लगता है समझने में, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो वो अपने आप जो है एक नया रास्ता खुलते जाता है। बस वो अंधेरा आता है एक नई सुबह को ले आने, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सुबह का इंतजार नहीं कर पाते या सुबह के बारे में नहीं सोचते, तो अंधेरा घना होता है। टाइम तो उतना ही लगेगा अंधेरा खत्म होने में, लेकिन हमारे लिए वो अंधेरा कई जन्म का लगता है। लेकिन अगर हमें याद रहे कि सुबह आने वाला है, तो निश्चित तौर पे अंधेरा भी छोटा लगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि जैसे रेखी की बात कर रहे हैं, अब आपने रेखी भी सीखा है दोनों ने, तो मैं चाहूंगा कि रेखी का थोड़ा सा डेफिनेशन कर सकते हैं या बता सकते हैं आम लोगों को, जैसे

0: लोग बोलते हैं डिस्टेंस हीलिंग है, ये है वो है, और आपके लिए रेकी क्या है थोड़ा सा बताओ।
1: बिल्कुल, रेकी एक्चुअली प्योर एनर्जी है, एनर्जी ही रेकी है। आप भले इसको रेकी कहे, ईश्वर कहे, गुरु कहे, शिव कहे, कुछ भी कहे, लेकिन ये प्योर लाइट, प्योर एनर्जी जो है वो ही रेकी है। रेकी वस्तु पे किया जा सकता है, परिस्थिति पर किया जा सकता है, इंसान पे किया जा सकता है। एक अगर एक रिलेशनशिप टूट रहा है तो उस रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए भी हम रेकी दे सकते, उस रिलेशनशिप में एक मोड़ आने के लिए भी हम रेकी दे सकते हैं। रेकी इज बेसिकली प्योर इंटेंशन। आपका इंटेंशन जो है वो प्योर होना चाहिए। आप दिल में कुछ सोचे और बाहर कुछ बोले तो वो रेकी काम नहीं करेगा। दिल में भी आपका प्योरिटी होना चाहिए, बाहर भी प्योरिटी होना चाहिए। बेसिकली आपका थॉट प्रोसेस और आपका वाक जो है ये दोनों सेम होना चाहिए। जब ये दोनों सेम होते हैं तब जाके वो रेकी इंटेंशन जो है वो बराबर उस पेशेंट को, उस वस्तु को, उस परिस्थिति को पहुंच जाती है। डिस्टेंस हीलिंग जो है, हम रेकी में एक पेशेंट जो है आमने सामने भी हो सकता है, पेशेंट जो है वो डिस्टेंस हीलिंग में भी हो सकता है। डिस्टेंस हीलिंग यानी क्या, हम यहाँ पे बैठे हैं, पूना में बैठे हैं, रमेश जी आप बैठे हैं राजस्थान में, ओके, तो हम यहाँ पे बैठे बैठे आपको वहां पे अगर आपका सर दर्द कर रहा है या आपका हाथ दुख रहा है तो हम यहाँ से डिस्टेंस हीलिंग देके हम रेकी कर सकते। तो पेशेंट भले कहीं भी हो, कैंसर पेशेंट भी हो सकता है, गैस्ट्रो भी हो सकता है, उसको शायद कुछ भी हो, डायबिटीज भी हो सकता है, वो भी हील हो सकता है। तो रेकी इज बेसिकली प्योर एनर्जी, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। उस व्हाइट लाइट का आवाहन करके हम उस सामने वाले बंदे को जो चाहिए उसमें हम भर देते हैं, ताकि उसमें जो ब्लॉक्स है यानी फियर है। अभी किसी किसी लोगों में छोटा सा फियर होता है कि अभी इतने सारे ऑडियंस के सामने कैसे हम बात करें, तो हमारी वाक ही नहीं खुलती है, तो ब्लॉकेज होता है। हर एक का ब्लॉकेज अलग अलग अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम उसको काम करते हैं, रेकी का देके हम उसके जीवन में हम परिवर्तन लाते हैं। नेगेटिविटी से भरे हुए रहेंगे तो हम उसे पॉजिटिविटी में भर देते हैं।
2: और उसमें अगर मैं इजाजत हो तो ये ऐड करना चाहूंगा कि इसमें हमें भी एक प्रक्रिया होती है हमारे लिए भी, जिसमें हमें भी मेडिटेशन करना होता है,
1: यस
2: प्राणायाम करना होता
1: यस
2: है, जिससे हमें भी अटैचमेंट की भावना, यानी हम जिसे हील कर रहे हैं उससे अटैच न हो, उससे एक साक्षी भाव के द्वारा
1: यस
2: हम उनको एनर्जी दे। तो हम हर एक चीज में हमारा अस्तित्व हम मिटाते हैं। सब कुछ करने वाला कर्ता सर्व यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर शिव भी और कुछ भी नहीं। सो अगर हम किसी को माध्यम बनते हैं हील करने के लिए, हमारी भी ऊर्जा होनी जरूरी है, आवश्यक है। तो ये
0: बिल्कुल
2: हम
0: बिल्कुल
2: वो जो क्रिया है हमें करनी
1: हमें
2: पड़ती
1: अपना मेडिटेशन किए बगैर हम किसी को हील भी नहीं कर सकते हैं।
0: है। बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी आपने रिसीव किया, फिर उसको स्टॉक किया और फिर वापस उसको जिनकी जरूरत है उनको आपने सेंड किया, ऐसा होता है।
1: यस यस
0: बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूंगा कि जैसे अभी मुझे अगर रेकी सीखना हो, कितना टाइम लगता है, क्या इसको कोई टाइम बॉन्ड में बांध सकते हैं या नहीं, या सबके बस में है या नहीं, क्या हो? क्योंकि कई बार लोग जो है उसको ठीक से नहीं समझ पा रहे या वो पूरा नहीं हो पा रहे उनका टारगेट एचीवमेंट्स।
1: देखिए, सभी सभी सीख सकते हैं और सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन ये हर एक का एक्चुअली स्वभाव होता है कि अपने आप में रहे। जब हम अपने आप में रहते हैं तो हम मेडिटेटिव मूड में रहते। आप देखो, अगर आप समुद्र के किनारे जाओ और समुद्र की लहरों में आपका मन डूब गया है, दूसरा कुछ आपको थॉट नहीं आता उस टाइम पे, तो आप बोलेंगे कि आप मेडिटेटिव मूड में गए हो, है ना? तो ये रेकी जो है, रेकी हर एक कर सकता है और हर एक को सीखना चाहिए। सीखने के बाद ये फर्स्ट लेवल, इसमें होते हैं 4 लेवल्स, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, 4 लेवल्स होते हैं इसमें। तो फर्स्ट लेवल जो है, इसमें बेसिकली हम पूरा आपको आपका बॉडी में जो आपके चक्र चक्रस रहते हैं, ये 7 चक्र जो होते हैं वो बॉडी में, उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। ये 7 चक्रों का इंट्रोडक्शन कराने के बाद फिर हम अपने आप को पहले हील करते हैं फर्स्ट लेवल में अपने आप, क्योंकि हम हर एक दिन अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो
0: बिल्कुल,
1: हम आंखें बंद करने के बाद हम ये मोमेंट जो है हम वापस से देख सकते हैं, तो इसको कहते हैं इम्प्रेशन। तो ये हमारे मन पे इम्प्रेशन बन जाता है। वैसे हम जब से जन्म लिए हैं तब से लेके अब तक, यानी कितने सालों का इम्प्रेशन हम लेके बैठते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि हम ऐसे आंख बंद करके बैठे तो हमें सब थॉट्स आने लगते हैं, ये थॉट वो थॉट, इसका याद आता है उसका याद आता है, फिर आंख बंद नहीं कर सकते, आंख खोलना पड़ता है, हमको डर लगता है। तो यही है, अगर आपने एक बार आंख बंद कर ली और अपने आप के साथ रहने की कोशिश की तो आप ये रेकी बिल्कुल सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं।
0: कितना टाइम देना पड़ता है डेली, या फिर कैसे इसका सीक्वेंस अपन कैसे समझ ले कि इतने दिन में आप सीख जाएं?
1: देखिए, फर्स्ट लेवल जो है वो हम 21 दिन का प्रयास कराते हैं, 21 दिन।
0: अच्छा।
1: तो 21 दिन उनको अपने आप पे वो रेकी पॉइंट्स जो है उनको सिखाया जाता है, तो वो 21 दिन वो को प्रैक्टिस कराना पड़ता है। 21 दिन के बाद वापस मैं उनको बोलती हूँ कि 41 डेज का एक ये रहता है, हाँ मॉड्यूल है, हाँ तो वो आप 41 डेज का आप स्व प्रयोग करिए और करते जाएं, अपने आप को हील करते जाएं, ताकि आप अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सके, अपने बच्चों के साथ आप सही रह सके, अपने बड़ों के साथ आप सही रह सके, अपने हस्बैंड के साथ आप सही रह सके, आपके गुरु के साथ आप रहे। तो ये प्रयास मैं उनको कराती हूँ और उसके बाद सेकंड लेवल पे उनको एंट्री दे, सेकंड लेवल पे वापस 10 दिन का उनका प्रयास होता है, तो वो कोर्स उनको पूरा कराना पड़ता है 10 दिन का। और थर्ड लेवल जो है वो बेसिकली 4 दिन का है, पूरा दिन, 4 पूरा दिन आपको करना पड़ता है। तो बहुत इंटेंस मेडिटेशन होता है, और जिस बंदे को मेडिटेशन की आदत नहीं है तो वो मैं उनको बोलती हूँ कि आप करो ही मत। हाँ, क्योंकि आप अगर ईश्वर से नहीं जुड़ सकते हैं तो आप कैसे दूसरों को आप हील करोगे? आप एक डॉक्टर बन जाते हो, है ना, तो दूसरों का जो स्वभाव है, दूसरों का जो सेल्स है, जो बॉडीली सेल्स है, वो सेल्स को भी आप उसमें ऑक्सीजन भर के उनको परिवर्तन लाने की कोशिश करते हो। तो अगर ये आप करना चाहते हो तो आप डॉक्टर से भी कम नहीं होते, है ना। तो उनका इमोशनल बैलेंस आप कराते हो, उनका स्टेबिलिटी कराते हो, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। मेडिटेशन इम्पोर्टेंट होता है, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट होता है, और फिर मैं पेशेंट्स पे भी उनको प्रयास कराती हूँ कि सामने पेशेंट को बिठाओ और उनको हील करो, डिस्टेंस हीलिंग कराने की उनको प्रयास कराती हूँ, फिर ऑनलाइन हीलिंग कराने की प्रयास करा। तो ये सब कुछ हमारा कोर्स में ये सब मॉड्यूल्स चलता है।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रेकी के बारे में, डिटेल उनके कोर्सेस और मॉड्यूल के बारे में आपने बताया। और जब आपने बहुत अच्छी बात कहा कि खुद अगर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो दूसरों को हीलिंग नहीं दे सकते, तो पहला काम है कि हम खुद को रिचार्ज करें, हम खुद को एक्सपीरियंस करें, खुद का अनुभव को ईश्वर के साथ जोड़ें, उसके बाद फिर एनर्जी हम रिसीव करना शुरू करेंगे तो वो कन्वर्ट करके डाइवर्ट करना आसान होगा। रिसीव स्टॉक ही नहीं है तो फिर हम कहाँ सेल करेंगे चीजों को, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, दूसरों को देना बना खुद के पास भी हो तब हम दे सकते। तो निश्चित तौर पर हमें जो है खुद को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में रखना है। और 21 और 41 डेज का जो दो मॉडल आपने बताया है, प्राइमरी स्टेज पे आप 21 डेज का मॉडल सीख सकते हैं, बाद में फिर एडवांस में 41 डेज, और फिर आगे एडवांस कोर्सेज भी आप चालू रख। तो चलिए गिरिजा जी, बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपना रेकी का अनुभव शेयर किया। और आपको कैसे रेकी में जाने का मौका मिला? क्या आपने पहले से सोच के रखा कि मुझे सीखना है, या फिर क्या इंसिडेंट बना कि आप वहाँ सीखने चले गए?
1: नहीं नहीं, मैं बोलूँ आपको सच में, ये हुआ ऑलमोस्ट 89 में।
0: अच्छा।
1: हमारी शादी होके 2 साल हुआ होगा और बस मैं डिप्रेशन में चली गई थी उस टाइम पे। इतना जबरदस्त डिप्रेशन हुआ था कि मेरी सहेली थी जो मुझे पकड़ के बोली कि चलो आज अष्टमी है, अष्टमी के दिन हमें गुरु से मिलना है करके। मैं बोली चलो ठीक है, उसके साथ जाते हैं, अभी कहीं जाना नहीं है तो उसके साथ चले जाते हैं। तो वहां पे गई, गुरु से मिली और मुझे तो पता भी नहीं था ये गुरु है, ये क्या है, गुरु क्या होते हैं ये भी पता नहीं था। लेकिन वहां बैठने के बाद फिर मेरे आंखों से गंगा जमुना बहने लगे और मेरी सहेली मुझे देख के हंसने लगी। वो बोली क्या हो गया तुझे? फिर बोली वो मेरे लाइफ के पूरे हिस्ट्री बता रहे हैं वो, तो मैं क्या करूं, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेरे पूरे हिस्ट्री उन्होंने बता दिया, मेरे जीवन में क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सब उन्हें पता है, कैसे क्या पता है। तब वो गुरु उठे और मुझे गले लगाए और बोले कि रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और वहीं से हमारी प्रयास शुरू हुई। फिर उनके पास से मंत्र जब, फिर स्तोत्र, फिर जो भी हमें प्रैक्टिसेस हमें बताया गया सभी कुछ हम करते गए करते गए करते गए। और फिर ऐसा वक्त आया जहाँ पे हमें किसी को अगर पीड़ा हो रही हो, अभी इनका एक शोल्डर टेयर हो गया था तो मसल टेयर इधर, तो मुझे एग्जैक्टली पता चल रहा था मेरे शरीर पे कि इनको कहाँ पे पीड़ा हो रही है। तो मैंने डॉक्टर ये बता नहीं सक रहे थे तभी उस टाइम पे, तो मैं डॉक्टर को बता रही थी देखो इनको यहाँ पे नहीं, इनको यहाँ पे पीड़ा हो रही है, मुझे पता है क्योंकि मुझे भी पीड़ा हो रही है। तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो है ये है उनके एनर्जी से मैं एक हो गई और मुझे वो पीड़ा का एहसास होने लगा है। और ये मुझे समझ में आया कि ये मैं आसानी से कर सकती हूँ, कोई भी अगर आए तो मैं उनको आसानी से एक हल दे सकती हूँ, कुछ मैं उनका पीड़ा समझ सकती हूँ और उनको हल दे सकती हूँ और उससे वो अच्छा भी होने लगता है। तो ये मुझे बात समझ में आई, ये प्रैक्टिस जो मैं कर रही थी। फिर हमारा जो ये सत्संग हुआ था तभी उस टाइम पे, तो एक हमारी स्टूडेंट है तो वो बोली कि दीदी आप हमें सिखाओ ना प्लीज, रेकी सिखाओ। तो मैं बोली देखो मुझे अनुमति तो नहीं है रेकी सिखाने के लिए, तो मैं तो नहीं आता मुझे रेकी सिखाने के लिए, मुझे करना आता है लेकिन रेकी सिखाने के लिए नहीं आता। बोले नहीं नहीं आप सिखाओ, मुझे जो आप सिखाएंगे हम सीख लेंगे। तो उनका एक्चुअली जोर था पीछे से कि तब मुझे लगा कि जाके गुरुदेव मुझे बोल रहे हैं कि अभी सिखाने चालू करो, ठीक है। तो तब मैं जाके सिखाने लगी। और ये ऐसा है कि इन सभी लोगों से मैं जुड़ते जुड़ते जुड़ते जुड़ते एक्चुअली उनका पर्सनल प्रॉब्लम्स उनका सॉल्व करते गए। तो एक उदाहरण देती हूँ कि मेरी एक स्टूडेंट थी जो राजस्थान में ही रहती है वो, और घर से बाहर निकलना उसका मुश्किल हो गया था। घर में सीसीटीवी लगा के रखा था कि घर से बाहर निकलो, वो बाजू में जो रहती है वो बाहर ना निकले, तो वो जब अंदर जाएगी तभी ये बाहर निकलेगी। मैं बोली ऐसे क्यों? तो बोले नहीं वो ना मुझे देखते ही गाली गलौज करती है। तो मैं बोली ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये सिर्फ ऐसे देख के गाली गलौज कैसे कर सकती है? मैंने उसका नाम भेजो और उसका फोटो भेजो क्या है कर। तो गुरुदेव ने एक हीलिंग कराया और तीसरे दिन वो आके मुझे बोले दीदी चमत्कार हो गया। बोले क्या चमत्कार हो गया? तो ये नहीं वो जो बाजू वाली रहती है ना, तो उसके सामने ही मैं बाहर निकली और वो मुझे देख के हंसने लगी और मुझसे बहुत बात करने लगी। बोली अच्छी बात है चलो ठीक है, फील हो गई वो। तो ये ऐसे परिस्थिति को भी हम सुधार सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुभाष जी ने याद किया है आप दोनों को वेरी यूजफुल नॉलेज, एक्सप्लेनेशन ऑफ रेकी फॉर एवरीवन। ये ऊर्जा शक्ति की सभी को जरूरी है। थैंक यू कीर्तिकर जी एंड आजरन। चलिए सुभाष जी धन्यवाद, शुक्रिया याद करने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। आपने सेशन को बड़े प्यार से सुन रहे हैं और कमेंट भी लिख के भेजा आपने, धन्यवाद। नितिन जी मैं चाहूंगा कि एक ऐसा रेकी का आपका खुद का अनुभव बताइए, एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप भी शेयर की।
2: तो रेकी में हम लोग ने मास्टर्स किया है, सीखा है हम लोग ने, और फिर हम लोग ने परिवर्तन किया, उसमें जो हमें सीख मिली है उसमें थोड़ा अपने आप में आ जाता है ऊर्जा द्वारा कि भाई ऐसे भी हम कर सकते और ऐसे प्रैक्टिस करते। अब एक किस्सा ऐसा है कि हम जब केटरिंग करते थे तो जो मैनेजर थे उस कंपनी के मैनेजर, उन्होंने हमें आमंत्रित किया था एक उनके बेटे के जो नामकरण होता है उसके लिए, और संबंध अच्छे थे तो हम उस वक्त नहीं जा पाए किसी कारणवश। और जब दूसरे दिन मिले वो बहुत ही गुस्से में था वो, और एकदम ऐसे आक्रोश से देख रहा था मुझे भाई। अच्छा। मैनेजर हूँ सनी का और आप आए भी नहीं। तो मैंने ये किया कि भाई ठीक है, मैं समझ गया उनकी भावना, समझ गया मैं। हाँ। और जब वो चले गए बाहर, उन्होंने उस वक्त हमारा खाना भी नहीं खाया, बाहर चले गए खाना।
0: अच्छा।
2: और मैंने अंदर ही अंदर कोने में बैठ के बस प्रेम ही प्रोजेक्ट किया उनपे, प्रेम का वर्षाव किया मैं। मैंने नहीं किया, बस ईश्वर ने मुझसे करवाया, बस प्रेम ही प्रेम का वर्षाव किया मैंने। और यकीन मानिए वो जब खाना खा के लौटे, हमारी तरफ देखा और ऐसे मुस्कुराए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अनेक ऐसे अनुभव है जो, लेकिन इसमें से ये एक मात्र है। दूसरा, अगर समय हो तो पाबंदी ना हो तो एक और अनुभव। हम काफी जंगलों में जाते थे जहाँ पे हम गुफाओं में मेडिटेशन करते थे। हाँ। और रात भर भी होता था, कभी जंगली जानवर भी हुआ करते थे, तो हमें किसकी फिक्र नहीं। जब ईश्वर है भाई, क्या डर है, डरना मना है। तो ऐसे वक्त हम आग बंद करके बैठे थे, हमारी धर्मपत्नी नहीं थी, हमारे दूसरे आत्मबंधु थे। और उस धर्मपत्नी गलत बात है नहीं थी, वो जरूर थी, लेकिन ऐसे थी हमारे साथ। हमारे हर एक चीज में हमारी पत्नी होती है। तो उस वक्त हमें महसूस हुआ कि कुछ एक जंगली जानवर हमारे पास आया और जोर जोर से हाँफ रहा था, जैसे हर एक जानवर हाँफता है। शुरू में डर लगा, लेकिन फिर डरना मना है। तो ईश्वर का नाम लेके सांस धीमी कर दी और बस ईश्वर के चरण में लीन हो गए। तो यकीन मानिए उस समय के बाद वो चला गया प्राणी। फिर भी हमने उस पे वर्षा प्रेम का किया, हमने ये नहीं सोचा कि वो प्राणी अलग है मुझसे या और मैं वो प्राणी है, मुझसे हानि करेगा, बिल्कुल नहीं। बस वो भी प्रेम चाहता है, मैं भी प्रेम दे सकता हूँ, प्रेम ही प्रेम, माध्यम प्रेम। और कुछ देर में चला गया। कुछ देर के बाद किसी ने कहा, आप जानते हो कौन आया था? एक भालू था भाई, वो आया था। तो देखिए, संतों की कहानियां भी आप अगर पढ़े तो मगरमच्छ के पास भी, शेर के पास भी वो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ये सारे अनुभव है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है, अलग अलग एक्सपीरियंस आपने किया। और रेकी के सीखने से, या जब हम लोग उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो फिर हम लोग उसका प्रयोग लोक हित में, लोक कल्याण अर्थ करते हैं। तो आइए, जाते जाते मैं गिरिजा जी को यही कहना चाहूंगा कि एक छोटा सा गीत जरूर सुनाइए, आप भी अच्छा गाते हैं। और सभी जितने भी हीलर्स हैं उनका यही है कि भाई आप सीखे, रेखी सीखे, योग सीखे, और सीखने के बाद उसे अनुभव करें, अनुभव करने के बाद फिर आपसे अपने आप ही विश्व कल्याण, लोक कल्याण, हर कार्य होते रहते। जी,
1: पढ़ के सुनाती हूँ।
0: बिल्कुल।

0: धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। चलिए, मीनल जी ने याद भेजा है बड़े प्यार से, और आपके लिए टू गुड ग्रीजा, यू आर अम्बेसडर एक्सेलेंट एंड मीनिंगफुल, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं, और शीतल गोयल भी मेस्मराइजिंग लिख के भेजा है। शीतल जी धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो चलिए, नितिन जी एंड गिरिजा जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये चंद तालियां मेरी ओर से। और बड़ा अच्छा लगा आपसे रूबरू होते हुए, खुशी हो रही है हम सभी को, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ हमारे मित्र जो हमें सुन रहे हैं, उन सभी को रेखी के बारे में, रेखी के एक्सपीरियंसेस को आपने पूरी तरह से समझ लिया है, जान लिया है, अब कहने की जरूरत नहीं है ना। तो कुछ चीजें हैं जो हम सभी को पता चल जाता है बताने से, और जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का समर्थ भी बढ़ा दे, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवान बने। तो निश्चित तौर पर जब आप दिल से किसी चीज को सीख लेते हैं तो वो कला आपके अंदर विकसित हो जाता, उसमें आपकी मास्टरी हो जाती। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा परीक्षा है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कुछ मेहनत तो लगता है ना, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा कोशिश आपकी रहेगी तो ईश्वर जो है सारा संसार आपके हाथ में रखने के लिए तैयार है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना कैपेबल है और कितना चाहते हो और कितना आपको चाहिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने सारी बातें सुनी समझी, और मैं चाहूंगा कि आपको अगर कहीं कुछ अच्छा लगा हो तो जरूर उसे अपने से दूसरों को बांटिए, और प्रैक्टिस भी कीजिए और दूसरों को हील भी कीजिए। शुभकामनाओं के साथ सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत।

सुख तो जो के गट में हो। अरे तोता ज्ञान दाई नी आवे न जैसे मन में देनु चरावे दिन भर।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं, जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते दोस्तों, आज पता है मेरे साथ क्या हुआ? क्या कहा? नहीं सुनना। आप सब मीना से मिलना चाहते हैं? ठीक है, मैंने कब मना किया, चलो मिलते हैं मीना से। मीना? वो रही मीना, अपने आंगन में बैठी एक कविता याद कर रही है और पास ही उसका भाई राजू झूला झूल रहा है।
1: बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
2: मीना!
1: अरे सबीना, तुम कब आई?
2: जब तुमने देखा।
1: सबीना, ये आवाज कैसी? अरे तुम्हारे हाथ में ये नया फोन?
2: मीना, ये फोन तो मेरे बाबा का है।
1: चाचा जी का फोन तुम्हारे पास?
2: हाँ, माँ और बाबा आज सुबह ही कुछ दिनों के लिए शहर गए हैं। जाते हुए बाबा ने अपना मोबाइल फोन मुझे दे दिया ताकि वो जब चाहे मुझसे बात कर सके।
1: ओह अच्छा।
2: अब देखो ना मीना, पता नहीं मुझसे कौन सा बटन दब गया और इस मोबाइल फोन की आवाज बंद ही नहीं हो रही है।
1: दिखाओ तो जरा।
2: अरे वाह मीना, ये तुमने कैसे किया?
1: ये देखो सबीना, इस वाले बटन को दबाया तो आवाज शुरू, और जब इस वाले बटन को दबाया तो आवाज बंद।
3: आवाज बंद, मीना है अकलमंद।
1: राजू, माँ, राजू झूले से गिर गया, जल्दी आइए।
0: ओहो, झूला टूटने की वजह से राजू नीचे गिर गया। मीना अपनी माँ और सबीना की मदद से राजू को घर के अंदर ले गई। मीना की माँ ने राजू के घुटने पे दवा लगाई और पूछा,
4: राजू बेटा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा?
1: नहीं माँ।
4: झूला अचानक टूट कैसे गया?
1: माँ, बहुत दिनों से झूले की एक रस्सी चटक रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी टूट जाएगी।
4: राजू, हमें खतरे के पहले संकेत पे ही होशियार हो जाना चाहिए।
3: होशियार हो जाना चाहिए, समझदार हो जाना चाहिए।
1: मिठू चुप। माँ, खतरे के पहले संकेत का क्या मतलब होता है?
4: मीना, अक्सर खतरा अपने आने से पहले हमें चेतावनी देता है, और अगर हम उस चेतावनी यानी खतरे के पहले संकेत को समझ के होशियार हो जाएं, तो उसे टाला जा सकता है।
1: मैं कुछ समझी नहीं माँ।
4: मैं समझाती हूँ। अभी जैसे राजू ने कहा कि झूले की एक रस्सी बहुत दिनों से चटक रही थी, अब अगर राजू ये बात मुझे या तुम्हारे बाबा को पहले बता देता तो हम वो रस्सी बदल देते और आज ये ऐसे गिरता नहीं।
1: आप ठीक कह रही हैं माँ।
4: मीना, राजू, सबीना, अब तुम तीनों मुझे बताओ कि तुम किसी खतरे के पहले संकेत को कैसे पहचानोगे?
2: पहले मैं बताऊँ चाची जी?
4: हाँ हाँ सबीना बताओ।
2: मान लीजिए मेरी माँ ने घर के आंगन में मिर्चें सुखाने के लिए रखी हैं, और थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, यानी कि बारिश आने वाली है और मिर्चें भीगने का खतरा है। तब मैं फौरन अपनी माँ को बताऊंगी और मिर्चें गीली होने का खतरा टल जाएगा।
4: बिल्कुल सही सबीना, शाबाश। अब तुम बताओ मीना।
1: मैं, हाँ, अगर मुझे कभी खांसी आए तो मैं तुरंत आपको बताऊंगी, ताकि आप मुझे नर्स बहन जी के पास ले जाएं और मुझे बुखार ना हो।
4: हाँ राजू, अब तुम्हारी बारी।
5: खतरे का पहला संकेत? हाँ, अगर कभी मेरे जूते में छेद हो गया तो मैं तुरंत उसे ठीक करवा लूंगा, ताकि वो और बड़ा ना हो और मेरा जूता ना फटे।
4: शाबाश। अब मैं तुम्हें एक गीत सुनाती हूँ। राजू, मीना और सबीना ने खतरे के संकेत को पहचाना, पहले ही चतुराई दिखाई, बाद में पड़ा नहीं उन्हें पछताना।
2: अच्छा चाची जी, अब मैं चलती हूँ, माँ और बाबा शहर गए हुए हैं, मेरी दादी जी घर पे मेरा इंतजार कर रही होंगी।
0: सबीना अपने घर चली गई, और फिर शाम को जब मीना अपने आंगन में मिट्ठू के साथ खेल खेल रही थी तो उसने देखा कि सबीना अपने मोबाइल फोन का चार्जर वहीं भूल गई थी।
1: अरे ये तो सबीना के फोन का चार्जर है, मैं अभी उसे देकर आती हूँ, चलो मिट्ठू।
0: मीना मिट्ठू को लेके सबीना के घर पहुंची। वहां उसे मिली सबीना की दादी।
6: मीना बेटी तुम? सबीना कहाँ है?
1: सबीना दादी जी वो तो सुबह आई थी मेरे घर, वो अपना ये चार्जर मेरे घर पे ही भूल गई थी, इसलिए मैं ये लौटाने।
6: यही चार्जर लेने तो वो तुम्हारे घर गई थी यही कोई आधा घंटा पहले।
1: लेकिन वो तो मेरे घर नहीं आई। दादी जी ध्यान से सुनिए, सबीना के मोबाइल फोन की आवाज, इसका मतलब वो कहीं आसपास ही है। आइए देखते हैं।
6: हाँ हाँ चलो।
0: मीना और सबीना की दादी जी जल्दी से बाहर गए।
1: दादी जी फोन की आवाज तो उस घर के अंदर से आ रही है।
6: वो घर तो सुरेश का है। लेकिन सबीना सुरेश के घर में क्या कर रही है?
0: सबीना की दादी सुरेश के घर की तरफ चली ही थी कि तभी सुरेश के घर का दरवाजा खुला और सबीना रोती हुई बाहर निकली।
1: सबीना क्या हुआ?
7: दादी जी।
6: अरे चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा, मुझे बता तो बात क्या है।
7: दादी जी मैं अपने फोन का चार्जर लाने मीना के घर जा ही रही थी कि तभी सुरेश भैया मुझे मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके फोन का चार्जर इस्तेमाल कर लूं। मैं उनके साथ उनके घर गई और फिर।
6: रो मत बेटी, मुझे बता क्या किया उसने?
7: सुरेश भैया ने मुझे अपने मोबाइल फोन पे गंदी गंदी तस्वीरें दिखाई और मुझे जबरदस्ती अपने बहुत पास बैठा लिया।
6: क्या?
7: हाँ दादी जी मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मुझे चाची जी की सुबह वाली बात याद आई कि खतरे के पहले संकेत को पहचानो।
6: फिर
7: तब मैंने जल्दी से अपने फोन का बटन दबा दिया जिसकी आवाज सुनकर सुरेश भैया घबरा गए और मैं वहाँ से भाग गई।
6: सबीना बेटी तुमने बिल्कुल ठीक किया, इस सुरेश को तो मैं सबक सिखाऊंगी। सबीना तुम जल्दी से 10-9-8 पे फोन करो।
7: 10-9-8?
1: तुम्हारी दादी जी ठीक कह रही हैं सबीना, बहन जी ने हमें बताया था कि 10-9-8 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है।
6: मीना सबीना मेरी एक बात याद रखना, अगर कभी तुम्हें कोई बुरी नीयत से छूने की कोशिश करे या फिर कोई गंदी बात करे या गंदी तस्वीर दिखाए तो तुरंत किसी बड़े से इस बारे में बात करना।
1: जी दादी जी।
6: एक बात और याद रखना, किसी को भी अधिकार नहीं कि वो हमारे शरीर को हमारी मर्जी के बिना छू सके, समझी बिटिया?
1: जी दादी जी।
0: और फिर सबीना ने 10-9-8 पे फोन किया और सुरेश की शिकायत की। चाइल्ड लाइन ने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए सुरेश को गिरफ्तार कर लिया। उस रात मीना और राजू सबीना के घर पे ही रुके।
1: क्या हुआ सबीना?
7: नींद नहीं आ रही मीना।
1: मेरे पास एक उपाय है, तुम्हें लोरी गा के

0: पछताना।
1: दोस्तों आप सब भी ये गीत याद रखना, क्योंकि जो लोग खतरे के पहले संकेत पे ही होशियार हो जाते हैं उन्हें कभी पछताना नहीं पड़ता। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक प्यारी सी कविता।
2: कभी जो आए खतरा तुम बिल्कुल मत घबराना,
3: डर के चुप मत रहना, अपनी आवाज उठाना,
2: किसी बड़े से कहना तुम जरा भी ना शर्माना,
3: कोई ना हो तो सीधे 10-9-8 पे फोन मिलाना।
1: भाई वाह, क्या कविता लिखते हैं अपनी मीना और मिट्ठू। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।

0: गाना सुन के तो मजा आ गया। चलो अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं तुम सबको एक शब्द बताऊंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है
2: जी बहन जी।
1: तो आज का शब्द है सहारा। चलो बच्चों अब सहारा के हर अक्षर से नए शब्द और उन नए शब्दों से जुड़े मुहावरे बनाओ।
3: बहन जी सहारा का पहला अक्षर है स और स से होता है सब्र।
1: शाबाश सबीना। और सब्र से जुड़ा मुहावरा
3: सब्र का फल मीठा। यानी जो काम धैर्य से किया जाए उसमें सफलता जरूर मिलती है।
1: बिल्कुल ठीक सबीना। चलो चलो अब अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा।
4: बहन जी स के बाद सहारा में आता है ह और ह से होता है हाथ।
1: सही जवाब दीपू। और हाथ से जुड़ा मुहावरा
4: हाथ बटाना मतलब किसी की मदद करना।
1: बिल्कुल ठीक।
3: बहन जी अगला शब्द मैं बताऊं?
1: हाँ हाँ रीता बताओ।
3: स और ह के बाद सहारा में आता है र और र से होता है रंग।
1: शाबाश रीता। और रंग से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा।
5: मैं बताऊंगी बहन जी।
1: हाँ मीना बताओ।
5: रंग बदलना और इसका मतलब होता है अपनी बात से मुकरना।
1: शाबाश मीना। तो बच्चों मजा आया ना।
2: बहुत मजा आया बहन जी।
0: मजा तो आपको भी खूब आया होगा है ना। फिर ठीक है जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना। चाहे वो आपके सुझाव हो आपके विचार हो या आपके अनुभव।
5: दोस्तों मुझे चिट्ठी जरूर लिखना मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया यूनिसेफ पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड HPO नई दिल्ली 110003

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: डिटेक्टिव गोपीचंद, पात्र परिचय आकाश, दृष्टि आदित्य, वेदांत। जाड़े की सुबह गोपीचंद अपने पड़ोसन जैनी के साथ चाय पी रहे थे। जैनी इंडियन एयरलाइंस में एयर होस्ट्रेस है।
3: जैनी, क्या बात है, आज तुम ड्यूटी पर नहीं गई?
4: क्या बताओ गोपी जी, आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। वैसे तो मुझे दोपहर में जॉब पर जाना था, लेकिन मैंने रीना से अपना टाइम एक्सचेंज कर लिया है।
3: क्या बात है जेनी, तुम थोड़ा परेशान लग रही हो, पहले तो तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा।
4: बताती हूँ गोपी जी, आज इसी सिलसिले में मुझे सलाह लेनी है। असल में मेरे दादाजी ने अपनी जायदाद मेरे नाम की थी, लेकिन कल मुझे दादाजी के सेक्रेटरी बत्रा ने बताया कि उन्होंने उसे बदलकर अपने भाई के नाम पर कर दी है।
3: आगे क्यों, क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ है?
4: जी हाँ, हम दोनों में झगड़ा हुआ है।
3: आखिर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, ठीक से बताओ बात क्या है।
4: जाने दीजिए सर, अब क्या कहूँ।
3: नहीं जैनी, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ, मुझे पूरी बात बताओ।
4: सर असल में मैं अपने सहयोग अशोक से शादी करना चाहती हूँ। मैंने अपने दादाजी को इस बारे में बताया तो वे बड़े नाराज हुए।
3: जैनी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जायदाद से बेदखल किए जाने का यह कारण होगा।
4: सर आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही समझती हूँ।
3: जैनी यह बताओ कि उन्होंने अपनी वसीयत कब बदली?
4: सर बत्रा कहता है कि दादाजी ने 31 जून को वसीयत में फेर बदल किया, और अगर मैं उसे 2.5 लाख दूँ तो वह दूसरी वसीयत को मेरे नाम पर बदल सकता है।
3: क्या मतलब वह वसीयत बदल सकता है?
4: मैंने उसे आज सोचकर जवाब देने को कहा है, इसलिए वह मिलने आ रहा है।
2: तभी सीढ़ियों से उतरकर बत्रा वहां आता है।
5: ओह, आपके घर मेहमान हैं, क्या मैं किसी और समय आऊं?
3: मैं डिटेक्टिव गोपीचंद हूँ, जैनी ने मुझे वसीयत के बारे में सब कुछ बता दिया है।

0: दो गोपी जी, आपसे मिलकर खुशी हुई।
1: लेकिन माफ करना, मुझे आपकी नीयत खराब लग रही है, क्योंकि आप ज्ञानी को ब्लैकमेल कर रहे हैं।
0: सर गोपी जी, माना कि आप एक डिटेक्टिव हैं, लेकिन एक शरीफ आदमी पर शक करना ठीक नहीं।
1: तो बताइए, आपने जेनी से 2.5 लाख रुपए क्यों मांगे?
0: यह तो मेरी फीस है। आखिर बेकसूर जेनी को वह बुड्ढा 10 लाख की जायदाद से बेदखल कर रहा था।
1: जेनी को दादाजी ने जायदाद से बेदखल किया ही नहीं, तो आप वसीयत कैसे बदलेंगे?
0: आप ये कैसे कह सकते हैं?
1: क्योंकि जून का महीना 30 का होता है, 31 का नहीं। आपने कहा था वसीयत 31 जून को बदली गई थी। क्यों, पकड़े गए ना?
2: झूठ कभी न कभी पकड़ा ही जाता है, और इसलिए सेक्रेटरी बत्रा भी एक भूल होने के कारण पकड़ा गया।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज़ हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

0: इस प्रोग्राम में पेश खदमत है एक नज्म। उन्वान है बिल्ली और शेरनी। शायर है जियाउर रहमान जिया। इस नज्म को पहले तहत में पेश किया जा रहा है। आवाज है मोहतरमा सादिया रहमान की।
1: एक दिन ये शेरनी से जाके बिल्ली ने कहा, तेरा रुतबा मुझसे हो सकता नहीं हरगिज बड़ा। देख, मैं एक झोल में देती हूँ बच्चे किस कदर। एक से जायद नहीं तूने किए पैदा मगर। शेरनी बिल्ली से बोली, खा के फौरन पेच उताब। कुछ दिनों के बाद दूंगी मैं तुम्हें इसका जवाब। कुछ ही मुद्दत बाद दोनों फिर अचानक ही मिली। साथ बिल्ली के मगर था, एक भी बच्चा नहीं। शेरनी ने पूछा, खाला आपके बच्चे नहीं? मुब्तिला कोई मुसीबत में तो बेचारे नहीं। आह, ठंडी भर के बिल्ली इस तरह गोया हुई, मेरी कुछ औलाद कुत्तों का निवाला बन गई। बच रहे थे जो उन्हें इंसान के बच्चे ले गए। सब्र ही करती हूँ मैं, किस्मत में मेरी वो न थे। शेरनी के सामने था उसका बच्चा नौजवान। देखकर बच्चे को अपने हो रही थी शादमा। शेरनी बिल्ली से बोली, ए मेरी खाला सुनो, किस लिए तुम कोसती हो अपनी किस्मत को? कहो नाज जिन पर था तुम्हें कमजोर वो औलाद थी। कितनी आसानी से वो दुश्मन के हत्थे चढ़ गई। इस कदर औलाद से क्या शान तेरी बढ़ गई। 8-10 से तो है बेहतर, एक हो लेकिन जरी।
0: और अब ये नज्म तरन्नुम के साथ पेश की जा रही है। गुलकार हैं देवाशीष और अनुजा बिसारिया। इस नज्म को मौसीकी से आरास्ता किया है राकेश पंडित और उनके साथियों ने।

0: ये गीत तो आप लोगों ने सुना होगा।
1: क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है?
0: इसीलिए अपनी बच्चे की कम उम्र में शादी ना कराएं।
1: उनके स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य के लिए उन्हें खूब पढ़ाएं। बेटी कुदरत का है उपहार, नहीं करो उसका तिरस्कार।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस प्रोग्राम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और अभी हम लोग जो है पिछली बार जो विषय लेकर बातें कर रहे थे, पति पत्नी के व्यवहार में मधुरता लाने की बातें, संस्कार परिवर्तन की बातें हमने शुरू की थी। और पिछली बार हमने देखा संस्कार परिवर्तन की विधि एक, जिसके लिए हम दूसरों के संस्कारों को मानते हैं, ये था। अब थोड़ा सा उसमें अपग्रेड करते हैं अपने आप को, और वही पार्ट जो है संस्कार परिवर्तन की विधि टू में हम लोग आते हैं। और जिसमें तो यहाँ पर हम दूसरों के संस्कारों को बदलने का या परिवर्तन करने के लिए कार्य करेंगे। तो आइए इस विषय को लेकर बातें करेंगे। और पिछले एपिसोड में भी हमने बहुत अच्छी बातें की हैं, जहाँ पर संस्कारों का टकराव या फिर जो हमारी सोच है उसमें कितना बदलाव करने की ज़रूरत है, वो सारी बातें हम करते आ रहे हैं। तो आइए आज संस्कार परिवर्तन की विधि टू की बातें हम लोग करेंगे राजेश जी से। तो आप सभी की तरफ से राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका।
0: जी जी जी नमस्कार। और मैं चाहूँगा कि आज जैसे कि संस्कार परिवर्तन की विधि वन हमने पूरा किया, अभी टू में आ रहे हैं, तो इसमें क्या बात हम लोग करने वाले हैं, किस लिए हमें इस विषय पर वापस चर्चा करना है?
1: अभी तक हमने जो भी बात की है, हमने एक ऐसी विधि के बारे में चर्चा की है जिसमें हम दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने में मदद करते हैं। लेकिन जो हमारी विधि है उसको हम कहेंगे कि पॉजिटिव है, जिसमें कि हम दूसरों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और बड़े प्यार से करते हैं, खुशी से करते हैं, जिसमें कि हम स्वयं को भी बदलते हैं ताकि हमको देख करके दूसरे बदलें, और उनकी मदद भी करते हैं, बड़े प्यार से बातचीत करते हैं, उनसे हम गुस्सा नहीं करते, उनसे हम अपना अधिकार नहीं जमाते, उनके ऊपर क्रोध नहीं जमाते, उनके ऊपर, और उनको कोई ना कोई रिवॉर्ड के रूप में ऊपर, जैसे गिफ्ट के रूप में ऊपर, जैसे हम उनसे प्यार से बात करते हैं या उनको कोई काम दे देते हैं, जिसके हम कहते हैं हम उनको उत्साहित करते हैं शब्दों के द्वारा, या जैसे नॉर्मली दुनिया में किया जाता है कि किसी व्यक्ति से कोई काम कराना हो तो हम उसको गिफ्ट के रूप में कुछ चीज़ ला के देते हैं, उपहार देते हैं, तो व्यक्ति जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन ला देता है, आदतों में परिवर्तन ले आता है।
0: जी, जी, जी।
1: तो ये तो है पॉजिटिव वे, जिसको हम कि एक अच्छा तरीका मानते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में पूरी ज़िंदगी में अगर हम किसी व्यक्ति की मदद करते हैं पॉजिटिव वे से, तो उसका जो अवचेतन मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें वो ज़िंदगी के अच्छे पल छप जाते हैं, और वो समझता है कि मेरी ज़िंदगी जो है सफल रही। और उसके ऊपर उसके बाद भी उसके मन में जब वो क्षण याद आते हैं तो उसको खुशी होती है, शांति मिलती है, और उसकी सेहत भी ठीक रहती है। लेकिन इसका एक उल्टा तरीका है, एक उल्टी विधि है, जिसको हम नेगेटिव वे कहते हैं। क्योंकि व्यक्ति दो तरीके से सीखता है, या तो आप उसको मोटिवेट करें, उसको प्रोत्साहन दें, या दूसरा ये है कि हम उसको मोटिवेट नहीं करते बल्कि गुस्सा यूज़ करते हैं, या उसके ऊपर रोब को यूज़ करते हैं, या आप नहीं कहेंगे कि कुर्सी का, अगर मैं बड़ी कुर्सी पे बैठा हूँ तो मुझे किसी एम्प्लॉई से काम कराना है तो मैं उसको दबका मारूंगा, गुस्सा करूंगा, या अपनी कुर्सी का रोब दिखाऊंगा, ना कि एक भाईचारे के तरीके से प्यार से बात करके करूंगा। तो ये दूसरी विधि है जिसको हम कहते हैं कि साइकोलॉजी में हम इसको बोलते हैं पनिशमेंट, कि किसी व्यक्ति को पनिश करना, उसको सजा देना, तो दूसरा व्यक्ति उस सजा से बचने के लिए वो कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हम गुस्से के, हम हमारे जैसे आम प्रैक्टिकल लाइफ में गुस्से को यूज़ किया जाता है, तो दूसरा व्यक्ति इसलिए अपने आप में बदलाव लाता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे वो व्यक्ति के अपशब्दों को सहन करना पड़ेगा, इसलिए वो अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आता है, आदतों में परिवर्तन ले आता है। लेकिन ये जो परिवर्तन होता है ये नेगेटिव होता है, ये बुरा होता है। क्यों नेगेटिव होता है, क्यों बुरा होता है? क्योंकि जब वो परिवर्तन लेके आता है तो सामने वाले व्यक्ति ने अगर उसे कुछ बुरा बोला है तो वो शब्द उसके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, तो वो उसके ज़िंदगी के क्षण दुख वाले होते हैं, अशांति वाले होते हैं, उदासी वाले होते हैं। और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर व्यक्तियों को बीमारियाँ होती हैं, ख़ासकर वो बीमारियाँ जिनका कारण कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन वो बीमारियाँ जो कि हमारे मन में जो बुरे संकल्प हैं, हमारे जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हम जिनको कहते हैं, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, उनका मुख्य कारण होता है तनाव, चिंता, दुख, परेशानी। तो अगर उस व्यक्ति ने अपने आप को उस तनाव में आकर के, चिंता में आकर के, दुख में आकर के बदला है, तो उसके मन में वो रह जाता है, और आगे जैसे ही वो उसका जीवन आगे बढ़ता है, 40-50 साल की उम्र आती है, तो वो जब उसको नेगेटिव क्षण याद आते हैं तो वो उसके जीवन में बीमारी के तौर पर बाहर निकलते हैं। इसलिए बहुत लोग ये समझ नहीं पाते कि बीमारी होने का कारण क्या है, और उसका कारण मुख्यतः वो बचपन में उसके साथ हुए वो इंसिडेंट्स होते हैं जिसके कारण वो होता है, क्योंकि उनको जो बदला गया वो पॉजिटिव वे से नहीं बदला गया, नेगेटिव वे से बदला गया। उनको खाना नहीं दिया गया, उनका तिरस्कार किया गया, उनको अपशब्द बोले गए, उनके ऊपर गुस्सा किया गया, भले अपनों ने किया हो, माँ बाप ने किया हो, टीचर ने किया हो, या उनके कोच ने किया हो, तो इसलिए हम उसको नेगेटिव वे से मानते हैं। लेकिन आज हम जिस विधि की बात करने वाले हैं
0: जी, जी।
1: वो नेगेटिव वे है, लेकिन इसको हमने कब प्रयोग करना है, ये हमारा लास्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमारा, अगर आपके पास कोई तरीका बचा ही नहीं है, आपने प्यार को यूज़ कर लिया, हर तरीके को यूज़ कर लिया, उसको मोटिवेट करने के लिए गिफ्ट भी दे दिए, टाइम भी बहुत हो गया, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, दो पार्टनर्स रह रहे हैं, एक दूसरे को बदल ही नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर इस विधि को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पर यूज़ करना, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए एक टीचर है, एक टीचर मान लीजिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका पास होना बहुत ज़रूरी है, और आप जो है बड़े प्यार से बच्चों से बात कर रहे हैं, और आपने देखा एक ऐसा बच्चा है उसमें वो मल्टीपल इंटेलिजेंस है भी, जैसे मैथ्स की हम बात करते हैं
0: जी,
1: कि एक बच्चा मैथ में बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा होने के बाद भी उसके बचपन में ये गुण है, उसमें लॉजिक इंटेलिजेंस है, उसमें वो बुद्धि तत्व है, लेकिन वो फिर भी पढ़ता नहीं है, और साल ख़त्म होने को आ गया, अब एक महीना बचा है, एक महीने को एग्ज़ाम है, अगर अभी भी उसने 11 महीने वेस्ट कर दिए, अभी भी बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो एक तो बच्चा भी फेल हो जाएगा, दूसरा टीचर के ऊपर भी बुरा इंप्रेशन आएगा कि इसने स्टूडेंट को पढ़ाया नहीं। फिर वहाँ टीचर यूज़ करता है इस विधि को, उसने पॉजिटिव उससे बात की, हर तरीके को यूज़ कर लिया, म्यूज़िक को भी क्लासरूम में यूज़ कर लिया, डांस के तरीके को भी यूज़ कर लिया, खेल की विधि को भी यूज़ कर लिया, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं पढ़ पा रहा। उसके पीछे उसका कारण है कि बच्चा आलसी है, वो टाइम नहीं दे रहा है, वो समय नहीं दे रहा है। उसके पीछे हो सकता है उसको यूट्यूब देखने की आदत हो, टीवी देखने की आदत हो, या कुछ और उसको बुरी आदतें हों जिसके कारण उसने समय नहीं दिया, वहाँ पर फिर वो टीचर यूज़ करेगा लास्ट तरीका कि अगर मैं ये नहीं करूँगा। लेकिन उसके पीछे उसका भाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीचर अगर बच्चे के ऊपर गुस्सा करता है, उसको पनिशमेंट देता है ताकि वो पास हो जाए, लेकिन पनिशमेंट देने के पीछे या गुस्सा करने के पीछे भाव ये है कि इस बच्चे का कल्याण हो जाए, ये पास हो जाए, इसके अच्छे नंबर आ जाए, या ये क्लास में टॉप कर जाए, तब हम इस विधि को यूज़ कर सकते हैं। तो इस विधि को तभी हमें जो है वो यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसको यूज़ भी कर लिया, मान लीजिए जो व्यक्ति उसको यूज़ कर रहा है वो तो इस भाव से यूज़ कर रहा है कि मैं ये विधि उस बच्चे के, उस व्यक्ति के कल्याण के लिए यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसको तो ये नहीं पता, उसने आपसे गुस्से से, आपने उससे गुस्से से बात की, आपने उसको पनिशमेंट दिया, बच्चे के मन में आपके प्रति एक नेगेटिव जो है भाव बैठ जाता है, तो उसके जो अवचेतन मन में वो जाता है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, भले उसके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, भले वो पास भी हो जाएगा, लेकिन कल को जब वो बड़ा होगा तो अपने टीचर को कभी भी पसंद नहीं करेगा, तो उसके मन में टीचर के प्रति वो नेगेटिव भाव रहता है, और ये जो नेगेटिव चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं वो बीमारी के रूप में उभरती हैं। तो फिर जिस व्यक्ति ने इस विधि को यूज़ किया है, जब उसका वो पर्पज़ पूरा हो गया, जैसे मान लीजिए बच्चा क्लास में पास हो गया, बच्चे के अच्छे मार्क्स आ गए, तो ताकि वो लॉन्ग लाइफ तक उसके मन में नहीं रहे, तो वो जो है क्योंकि उन्हें अच्छे भाव से किया था, इसमें थोड़ा सा एक ईगो क्लैश भी आ जाएगा, तो उस बच्चे के पास जाके वो टीचर कह सकता है कि आई एम सॉरी, ये जो मैंने विधि अपनाई, तुम्हें पनिश किया, ये मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हें नफरत करता हूँ, तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि बच्चे के मन में ये रहेगा हमेशा सारी ज़िंदगी कि टीचर मुझे पसंद नहीं करता था, नफरत नहीं करता था, तो आई एम सॉरी अगर वो बोल दे कि बेटा मैंने ये तुम्हारे कल्याण के लिए किया, अगर मैं नहीं करता तो तुम भी आगे नहीं बढ़ पाते और मेरी भी तरक्की नहीं हो सकती, तो एक शब्द जो आई एम सॉरी का उसने बोल दिया, तो वो जो एक शब्द बोला वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में जो एक छवि चली गई थी कि ये तो बुरा है, वो निकल जाएगा और उसका टीचर के प्रति रिस्पेक्ट, रिगार्ड, प्यार बन जाएगा और सारी उम्र वो जो उदासी वाले उसके जो क्षण थे वो प्यार में बदल जाएंगे। तो इस विधि को अगर हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करना है? नंबर वन कि भाई आपने उसके कल्याण के लिए यूज़ करना है। नंबर टू, यूज़ करने के बाद जब आपको उसका फल मिल जाता है तो आई एम सॉरी बोल करके, ताकि उसके अवचेतन मन में जो नेगेटिव बातें चली गई वो निकल जाएं और आगे जाकर के वो बीमारी का रूप ना लें, आगे जाकर व्यक्ति में बुरा व्यवहार ना आए, वो एक बुरे व्यक्तित्व के रूप में उसकी पहचान ना बने, ये करना बहुत ज़रूरी है। इस विधि को हमारे माँ बाप भी यूज़ करते हैं, इस विधि को कोचिज भी यूज़ करते हैं। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में कहा जाता है कि माँ का जो मार होती ना वो मार नहीं होती लेकिन उसमें प्यार छुपा। उसके उसका कारण क्यों है? क्योंकि माँ अगर मारती भी है तो उसके पीछे उसका शुभ भाव है। उसका शुभ भाव ये है कि अगर मैं इसको मारूंगी नहीं तो ये सुधरेगा नहीं, क्योंकि माँ ने सारे तरीके यूज़ कर लिए। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, जैसे मान लीजिए सारे तरीके यूज़ कर लिए, माँ ने उसको अच्छा खाना भी खिलाया, गिफ्ट लेके भी दिया, उससे प्यार से बात भी की, लेकिन वो देख रही है कि पिछले 5 साल से बच्चे के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और अगर इसमें परिवर्तन नहीं आएगा तो सारी उम्र ही अगर ऐसा ही रहा तो जीवन में असफल हो जाएगा। जैसे बच्चे आलसी होते हैं, अपना काम नहीं करते हैं, लेकिन माँ ने सारे तरीके अपना, लेकिन कई माएँ ऐसी भी होती हैं वो उनको ऐसे शब्द बोलती नहीं है, माना कि उनमें कोई बदलाव आता ही नहीं है, फिर सारी उम्र बच्चों को वो भुगतना पड़ता है। लेकिन माँ अगर इस भाव से यूज़ करती है तो फिर वो पॉजिटिव वे जो है हो सकता है। लेकिन हाँ, इसको हमेशा फर्स्ट एंड पे यूज़ नहीं करो, लेकिन लोगों में क्या हो जाती, आदत पड़ जाती है, फिर अच्छा मैंने ऐसे शब्द बोले तो ये फट से बदल गया, तो इसका मतलब हर समय मुझे यही करना चाहिए ताकि मुझे समय, मेरा समय जो है बच जाए। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ ये आएगी, फिर वो आपको भी दुख देगा क्योंकि वो आपकी आदत बन गई कि आप हमेशा ही गुस्से से बोलेंगे, अपशब्द बोलेंगे, बुरे शब्द बोलेंगे, किसी के ऊपर रोब डालेंगे, तो आपका जो समाज में व्यक्तित्व बन जाएगा वो बुरा बन जाएगा, आपकी जो छवि बन जाएगी बुरी बन जाएगी। एक तो छवि आपकी बुरी बन गई, फिर आपसे लोग डरेंगे, आपके साथ दूसरों के संबंध इतने अच्छे हैं वो तब तक ही आपका काम करेंगे जब तक आप उनके ऊपर प्रभाव है, आप बॉस हैं तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरा, आपके शरीर के ऊपर भी प्रभाव आएगा, दूसरे व्यक्ति के शरीर के ऊपर तो प्रभाव आएगा, लेकिन जो आपका वो स्वभाव बन गया गुस्से वाला, रोब वाला, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने वाला, वो स्वभाव जब आप लॉन्ग रन में जाएंगे 50-60 साल तक होंगे तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के रूप में, या जिन्हें हमें कहते हैं मनोवैज्ञानिक बीमारियों के रूप में बाहर उभरेगा। फिर आपको समझ लगेगी कि मैं तो बीमार क्यों हुआ, क्या कारण था मेरा बीमार होने का, वो कारण वही था जो आपकी नेचर थी। वो नेचर पहले आपके अंदर थी, फिर जब शरीर के ऊपर आती है तो बीमारी के रूप में जो है वो बाहर निकलती। इसलिए कभी भी इसको फर्स्ट स्टेप के रूप में नहीं यूज़ करना चाहिए। लास्ट स्टेप, आप कहें कि 99% तरीके यूज़ कर लिए, अब केवल 1% बचा है, अगर नहीं इसको यूज़ करेंगे तो या तो वो बच्चा मर जाएगा या फेल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एक कोच था, उस कोच ने कि ये जिम्मेवारी थी कि बच्चों को स्विमिंग सिखानी है, उसने बहुत सारे बच्चों को सिखा ली, लेकिन एक ऐसा बच्चा था जो स्विमिंग सीखता ही नहीं था, और कंपटीशन जो है वो 20 दिन के बाद कंपटीशन है। उसने सारे तरीके यूज़ कर लिए, सारी चीज़ें अपना ली, एक दिन उसने क्या किया, बच्चे को पकड़ के स्विमिंग पूल में फेंक दिया, क्योंकि वो सीखता ही नहीं था। अब वो क्या करता, बच्चा हाथ पैर मारता, लेकिन उसको ये था कि अगर बच्चा स्विमिंग पूल में गिरेगा, प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसको जा करके बचा लूँगा। लेकिन कहते हैं कि बच्चे ने जैसे ही हाथ पैर मारने शुरू किए उसने स्विमिंग करना सीख लिया। तो ये विधि हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई और चारा नहीं होता है, जिसको माँ बाप भी यूज़ करते हैं, कोचेस भी यूज़ करते हैं और दूसरे भी यूज़ जो हैं वो करते हैं।
0: राजेश जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया, प्रैक्टिकल हमारे जीवन में किस तरह से हम लोग जो हैं कहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होती हैं और कैसे इस्तेमाल होता है, उसके पीछे का हमारा जो कल्याण की भावना देखा जाता है। अगर भाव कल्याण का है बच्चे के प्रति, तो माँ का प्यार भी उसमें जो है अच्छा लगता है और बच्चे के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो बदलाव नहीं ला पाते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या सोचना है, किस तरह से, क्या और कोई तरीका है या कोई और चीज़ है? जैसे कि आजकल एक काउंसलिंग वाला जो चैप्टर है बड़े स्कूलों में शुरू किया है, क्योंकि बच्चे को ये जो करियर काउंसलिंग की बात होती है या स्किल्स की बात होती है, बच्चा किस स्किल्स के अंदर बहुत ही अच्छा है, ये पैरामीटर जो है मापदंड देखा जाता है बच्चों में, और वो एक बढ़िया अच्छा काउंसलर जो है क्वेश्चंस और फिर उसके स्किल्स को या कुछ ऐसे ड्रामेटिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं ताकि वो बच्चे उसमें उसके गुण समझ में आ जाए, उसका स्किल समझ में आ जाए, तो वहाँ पर उसको एस्केल करने के लिए फिर उसको बहुत आसान हो जाएगा अगर बच्चा किस सब्जेक्ट में या किस जगह पे रुचि रख रहा है। बच्चा डांस अच्छा करना चाहते हैं, डांस में कुछ करना चाहते हैं, गाने में कुछ करना चाहते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट एजुकेशन से थोड़ा अलग भी है, आर्टिस्टिक है, तो वो भी चीज़ें देखी जाती हैं ताकि बच्चा उसमें अच्छा हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज इसके पर भी आप दें।
1: आपने भी स्किल की बात की तो मैसेज तो हम यही देना चाहेंगे कि माँ बाप को अपने बच्चों की प्रेज करनी चाहिए और बच्चों को भी माँ बाप की प्रेज करनी चाहिए ताकि दोनों में आपसी संबंध जो है वो
0: बना रहे।
1: जैसे आपने बात की कि बच्चों में जो स्किल है अगर वो म्यूज़िक में अच्छा है तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उसका टेस्ट करवाएं और उसको उस फील्ड में प्रोत्साहित करें
0: जी।
1: और प्रोत्साहित करने के लिए हम रोज़ उनको एक या दो लाइनें बोलें। जैसे नॉर्मली माँ बाप के ये मन में होता है कि लॉजिक हमारा बच्चा मैं इंजीनियर बनाऊं तो ये भी इंजीनियर बने,
0: हाँ।
1: लेकिन साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, उसने कहा नहीं ये सिंगिंग में बहुत अच्छा है, इंजीनियर नहीं बनेगा। तो आप फिर उसकी, जब आपने उसकी उस क्षमता को समझ लिया, आपको पता लग गया कि इसमें ये वाली मल्टीपल इंटेलिजेंस है या ये वाला बुद्धित्व है, तो रोज़ उसको आप एक या दो लाइनों में उसकी प्रेज करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और उसको सहयोग भी करें। जैसे अगर उसने बता दिया तो उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो इंस्ट्रूमेंट लेके आए, या उसके लिए वो स्थान बना दे ताकि बच्चा वहाँ बैठकर वो गा सके। भले आपको गाना नहीं आता लेकिन उसके लिए एक स्थान बना दें और उसको रोज ऐसी एक दो लाइनें बोलें जिससे वो जिस प्रोफेशन में जाना चाहता उसको मोटिवेशन मिले। भले उसको गिफ्ट नहीं ला के देवें, आप अमीर हैं तो भले, लेकिन शब्दों के द्वारा बोला गया प्रोत्साहन जो है ये उसके जीवन को बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। और बच्चों की जो जिम्मेवारी बनती है कि माँ बाप उनके लिए इतना कर सकते हैं तो उनके गुणों को देख करके उनको भी अच्छे शब्द बोलें ताकि वो उनको प्रोत्साहन देते रहें। और क्योंकि माँ बाप बच्चों को देख कर जीते हैं और बच्चे माँ बाप को देख कर जीते हैं, जब हम एक दूसरे का प्रोत्साहन करेंगे तो वैसे ही नेचुरली परिवार में अच्छा संबंध बनेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करूंगा कि जहाँ पर हम लोग संस्कार परिवर्तन विधि 2 की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम दूसरों को देखते हुए संस्कारों में परिवर्तन चाहते हैं, समझो माँ और बच्चे की बात यहाँ पर हो रही है, और एक बच्चा अगर माँ के सपनों से अलग कुछ करना चाहता है तो बाद में बच्चा चेंज नहीं कर पाएगा कोई भी चीज़ आपके इच्छा के अनुसार, लेकिन आपके अंदर ये मैच्योरिटी है कि आप बड़े हैं तो आपको बच्चे के परिवर्तन को देखकर आप अपने शब्दों का परिवर्तन अवश्य कर सकते हैं और बच्चों की खुशी में आप अपनी खुशी को देखें, ये सिंपल है। लेकिन बच्चे को अपनी खुशी में देखने का चक्कर में बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये ध्यान में रखिए। इन्हीं चीज़ों के साथ फिर आगे बढ़ते हैं और अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह के नए विषय को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रोशन, पता है आज ना मुझे एक बहुत अच्छा सपना आया।
3: अच्छा, क्या आया?
2: मेरे सपने में आया कि मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है।
3: अरे वाह, ये सपना सपना ही तो नहीं रह जाएगा।
2: ये सपना सपना नहीं रहेगा, देखना मैं सच करके दिखाऊंगा। क्लास क्या, मैं स्कूल टॉप करूंगा।
3: अच्छा।
2: स्कूल तो क्या, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल टॉप करूंगा। डिस्ट्रिक्ट छोड़, अच्छा इंटरनेशनल।
3: अरे बस बस,
2: यूनिवर्स टॉप करूंगा मैं।
4: अरे कौन यूनिवर्स टॉप कर रहा है भाई?
2: दीदी ये कह रहा है मैं क्लास टॉप नहीं कर सकता। मैंने ऐसे कहा कि मैं यूनिवर्स टॉप कर सकता हूँ।
4: ओह माय गॉड, यूनिवर्सल कंपटीशन। कौन आ रहा है आयुष को यूनिवर्स से कंपटीशन देने के लिए? वैसे
2: एलियंस।
4: ओह,
2: आया था सपने में, कह रहा था तेरे से कॉम्पिटिशन करना है, मैंने कहा आ जाना।
4: अच्छा अच्छा भाई, अब ये आपका सपना तो मुझे लग रहा है काफी दूर तक चला गया है। तो हम इसको थोड़ा पास लेकर आते हैं और बात करते हैं आज आप लोगों के सपनों के बारे में।
2: तो क्लास टॉप पे ही आ जाते हैं।
4: हाँ, तो पहले सब लोग अपना नाम तो बता दो जल्दी से।
2: मेरा नाम है आयुष और मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ, जिसे मैं टॉप करने वाला हूँ। हकीकत में, ना कि सपनों में।
4: ना कि सपनों में।
3: और मेरा नाम है रोशन, मैं भी 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
5: मेरा नाम है शिवानी और मैं क्लास 6th में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम है अमन और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ।
4: और मेरा नाम है आरुषि और मैं अब नहीं पढ़ती हूँ। मतलब पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, लेकिन क्लास में नहीं पढ़ती हूँ। पता है बच्चों, जब मैं छोटी थी ना तो मैं सोचती थी क्लास 12 के बाद क्लास 13 होती है, 14 होती है और हमें पूरी लाइफ पढ़ना पड़ता है।
2: मैं भी दीदी, मैं पता है आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं छोटा था तो मैंने एक अपनी बड़ी बुआ से पूछा था कि आप कौन सी क्लास में हो, तो उन्हें पता था कि इसको तो सिर्फ क्लास पता है, ऐसे एम ए बी ए कुछ नहीं पता। तो उन्होंने मेरे को कहा सोच के थोड़ा कि मैं ना 14 क्लास में हूँ। फिर पता चला वो सेकंड ईयर कर रही थी किसी चीज का।
4: पहले में पता नहीं होता है ना।
6: हाँ। मुझे लगता है 16 तक क्लासेस होती हैं अभी।
4: हाँ, लेकिन क्लास 12 तक ही होती है। अच्छा चलो भाई, आज आपके सपनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप लोग ढेर सारे सपने देखते हो कि नहीं?
3: बहुत सारे।
6: मुझे तो सपने देखना बहुत बहुत बहुत ज्यादा।
4: अच्छा, बंद आंखों से कि खुली आंखों से? अच्छा, आप लोगों को सब लोग एक एक करके बताना कौन से वाले सपने अच्छे लगते हैं, बंद आंखों वाले या खुली आंखों वाले?
2: मुझे खुले आंखों वाले।
4: ओके, आयुष को खुली आंखों वाले सपने अच्छे लगते हैं और रोशन को?
3: मेरे को तो बंद आंखें वाले।
4: ओके,
5: मुझे भी बंद आंखों वाले।
4: और अमन?
6: मुझे दोनों टाइप के सपने अच्छे लगते हैं,
4: बंद आंखों वाले भी और खुली आंखों वाले भी।
5: अच्छा, तो खुली आंखों वाले कौन से होते
4: हैं? ओह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। यानी खुली आंखों वाले सपने वो होते हैं जो हम सोचते हैं ना, हम ये कर रहे होंगे, हम वो कर रहे होंगे।
5: हाँ, वो तो मैं भी करती हूँ।
4: हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, खुली आंखों वाला आप लोगों का फेवरेट सपना कौन सा है?
2: कि मुझे नेवी ऑफिसर बनना है।
4: आयुष को नेवी ऑफिसर बनना है।
2: और जब मैं खुद के पैसे कमाऊंगा तो फिर दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना है।
4: क्या बात है, अरे वाह।
2: लद्दाख वद्दाख जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, पार्टी करेंगे।
4: अच्छा, क्या
2: पूरी ऐश है, जिम में रखा कैश है। ये वाला डायलॉग बोलने के लायक बनना है।
4: ये डायलॉग बोलने के लायक बनना है। ओह, कैसे जाओगे लद्दाख?
2: गाड़ी से।
4: अच्छा,
2: बोड़ी होगी मेरे पास दीदी।
4: यूनिवर्सल कंपटीशन के बाद।
2: और यूनिवर्सल कंपटीशन के बाद तो मैं जेट प्लेन ले लूंगा।
4: और उससे कहाँ जाओगे?
2: वो मतलब वो सपनों की बात आता हूँ, मैं जेट में ले लूंगा, फिर मैं मार्स पे जाऊंगा, सब जगह जाऊंगा, मर्क्यूरी वर्क्यूरी सब जगह।
3: कभी अपने को भी ले जाना।
2: जरूर जरूर दीदी, आप भी चलोगे?
4: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो डेफिनेटली चलूंगी। अब आयुष लेके जाएगा तो जाना पड़ेगा ना दोस्तों। हाँ। भले फिर वो प्लैनेट कितना भी ठंडा क्यों ना हो, हम अकड़ के फिर वही पे ना रहना पड़ जाए।
2: हाँ। कोई बात नहीं, मर्क्यूरी चलेंगे, बहुत गर्म है।
4: ओ
2: दीदी, वो ले लेना, एसी वैसी लेके चलेंगे।
4: अच्छा, हाँ इसी लेके चलेंगे यहाँ से, ठीक है। अच्छा, और रोशन का खुली आंखों वाला फेवरेट सपना क्या है?
3: मैंने एक बार बैठा था, स्कूल में ही था, फ्री पीरियड था और मेरे काम भी खत्म हो गए थे, तो मैं एक बार सोच रहा था कि अगर मैं आउट ऑफ स्पेस, मतलब आउट ऑफ अर्थ जा सकता तो कैसे लगेगा।
4: ओके, तो आपका भी मतलब
3: उड़ना है।
4: आपको उड़ना है
3: तो उधर तो ग्रेविटी नहीं देता, तो उड़ लो।
4: हाँ, जैसे मून पे जाते हैं।
3: हाँ, हाँ।
4: है ना, देखा है आपने एस्ट्रोनॉट के वीडियोस देखे हैं कभी?
2: हाँ दीदी, हाँ, मैंने बहुत देखे हैं। दीदी मैंने देखा है वो चांद पे, पता है कभी कभी गिर भी जाते हैं, पर उन्हें प्रैक्टिस होती है, वापिस उड़ जाते हैं,
3: वो उल्टा हो जाते।
2: और स्पेस स्टेशन है ना जो अपना नासा, वहाँ पे तो हम ये एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, पर बहुत पैसे लगते हैं। हाँ। मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है, ग्रेविटी नहीं है बिल्कुल भी, अब आप जाओगे उड़ने लग जाओगे।
4: अच्छा, इसरो में नहीं है ऐसा सिस्टम?
2: शायद होगा, पता नहीं, मैंने बस वीडियो देखी।
3: वो मतलब अर्थ में भी है, जहाँ एक क्यूब क्यूब जैसा होगा एक रूम, जिसके अंदर तुम जाओगे, फिर वो क्यूब घूमते रहेगा, तो आप गिरते रहोगे, आपको लगेगा आप उड़ रहे हो, पर आप गिर रहे हो नीचे।
2: तो वो नेचुरल है?
3: नहीं, मतलब आर्टिफिशियल है जो ह्यूमन ने बनाया।
4: ओके, तो आपको स्पेस में उड़ना है। अच्छा, तो खुली आंखों के दोनों के सपने तो भाई आसमान छू रहे हैं। तो अमन और शिवानी का खुली आंखों वाला फेवरेट सपना क्या है?
6: मुझे ना एक बार रियल शेर को अपने पास बैठाना है और उसको बहुत प्यार करना है। मुझे शेर बहुत पसंद है।
4: ओके, आपको कोई और एनिमल नहीं पसंद है?
6: नहीं।
4: मतलब
2: मतलब जो आपको खाना पाए वो ऐसे एनिमल पसंद
6: है? मुझे, मैं ना जैसे डिस्कवरी में दिखाते हैं ना, जैसे बड़े बड़े लोग शेर पालते हैं, वो भी दूसरे देश के, वो बहुत प्यार करते हैं शेर को, और शेर उनको कुछ बोलता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता, बहुत प्यार, वो भी उनको बहुत प्यार करता है।
4: अच्छा, तो आपको शेर को प्यार से बिठाना है?
6: शेर को, टाइगर को, जैसे भी जो भी है ना बिल्ली की प्रजाति के, सबको
4: सिवाय बिल्ली के।
6: नहीं, बिल्ली के भी, बिल्ली भी मुझे पसंद है।
4: ओके, ठीक है। और शिवानी का खुली आंखों से फेवरेट सपना क्या है?
5: मैंने एक बार देखा था बहुत पहले,
4: जब शिवानी बहुत छोटी थी,
5: तब मैंने देखा था कि मैंने बहुत पैसे कमा लिए, मैंने इतना बड़ा आलिशान बंगला ले लिया है, मेरे पास कार है, सब कुछ है, और उसमें बस मैं और मेरी बहन रहते हैं।
4: अच्छा।
6: वैसे मुझे भी मेरी बहन के साथ रहना ज़्यादा पसंद है।
4: ओह, मतलब आप दोनों को तो साथ साथ रहना है जब आप बड़े हो जाओगे उसके बाद भी ना?
6: हाँ।
4: क्या बात है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सपना है शिवानी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
5: मेहनत, मेहनत करनी पड़ेगी।
4: हाँ, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी।
6: हाँ।
4: ओके, अच्छा अच्छा, बंद आंखों वाला फेवरेट सपना क्या है? बंद आंखों वाला बताना जो आप लोगों ने सोच के नहीं देखा लेकिन बस आ गया,
6: आ गया
4: था।
6: हाँ।
5: मेरा तो डरावना,
4: डरावना सपना क्या है शिवानी, बताओ तो।
5: मैं एक बिल्डिंग से नीचे गिर गई।
4: ओह,
2: तो ये फेवरेट है।
4: मतलब हमेशा याद रह जाता है, कोई कोई सपना ऐसा आता है ना जो हमको बहुत याद
5: आ जाता है। मुझे बहुत बार आता है यही वाला,
4: क्या बिल्डिंग से नीचे गिर गए, फिर क्या होता है?
5: फिर मेरी आंखें खुल जाती है।
4: और फिर आपको डर लगता रहता है या डर चला जाता है?
5: मतलब कि मैं लेटती हूँ ना, तो तब भी ऐसा लगता है कि मैं नीचे गिर रही हूँ।
3: वो मैंने भी ऐसा एक फैक्ट पढ़ा था, अगर तुम सोते समय गिर रहे हैं जैसे फीलिंग करते हो ना, तो तुम डीप स्लीप में हो।
4: पैर भी चलाने लगते हैं ना कभी कभी।
2: दीदी घुटने अगर ऐसे फोल्ड करके सोते हैं ना और हम गिरने का सपना आता है, तो उस वक्त हमारा जो घुटना होता है ना वो नीचे गिर जाता है। घुटना मतलब ऐसे ऐसे होता है मुड़ा हुआ, तो वो ऐसे
4: सीधा हो जाता है। शिवानी, फिर डर लगता रहता है या डर ठीक हो जाता है?
5: डर लगता है, फिर मैं मम्मी को पकड़ के सो जाती हूँ या तो पापा को पकड़ के,
4: फिर नहीं लगता।
5: हाँ, फिर नहीं लगता।
4: ओके, और अमन आपका क्या है?
6: मेरा
4: जो सबसे याद रहता है आपको सपना?
6: मुझे एक बार मुझे एक सपना आया था, मतलब बहुत अजीब सा सपना था, वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं थी, वो भी क्लाउड्स के ऊपर एक महल था, और मैंने मतलब एक राजकुमारी जैसी ड्रेस पहनी हुई थी, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था उस टाइम सपने में, मैं उड़ रही थी उस टाइम, वो भी पता नहीं कैसे उड़ रही थी, बस उड़ रही थी, कहीं भी जाके घूम रही थी और क्लाउड्स से खेल रही थी, हर तरफ कोई भी नहीं था, और फिर मुझे छोटी सी लड़की दिखी, छोटी सी, बहुत छोटी सी, मैं उसके पास गई और वो छोटी सी लड़की से मैं खेलने लगी। बहुत अच्छा सपना था दी।
4: क्या बात,
6: मतलब उड़ते हुए, मतलब किसी क्लाउड के ऊपर उड़ो ना तो इतना अच्छा लगता है, इसीलिए मेरा मन करता है कि मैं एरोप्लेन में एक बार बैठूं, मैं देखूं क्लाउड के ऊपर कैसा लगता है।
4: वाओ, मतलब राजकुमारी अमन।
6: हाँ दी।
4: और राशिद,
3: एक बार मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं एक स्लाइड में बैठा हूँ, मतलब वो आसमान तक है, उसमें कूद रहा हूँ ना, मैं तो बहुत छोटा हूँ, जो भी मेरे आसपास है सब बड़े बड़े।
4: अच्छा।
3: इतने बड़े, मैं उनका अंगूठा जैसा हूँ, उतना छोटा।
4: इतने छोटे हो गए थे?
3: हाँ।
4: बाप रे, और फिर क्या हुआ?
3: मैं तो गिरते जा रहा हूँ, वो एक एक करके जा रहे हैं मेरे आगे से।
4: तो डर लग रहा होगा फिर तो आपको?
3: नहीं, डर तो नहीं लग रहा था,
4: मजा आ रहा था।
3: इतने बड़े थे सब।
4: अच्छा, तो जो बड़े बड़े लोग थे उनको आप पहचानते थे या किसी को जानते नहीं थे?
3: वो मेरे को याद नहीं है कौन थे।
4: अच्छा। ऐसी तो कोई फिल्म भी आई थी ना,
6: कौन सी?
3: पता नहीं,
2: मैंने देखी है।
4: जावेद जाफरी की शायद जजंतरम ममंत्र ऐसा कुछ तो नाम है, मुझे भी ठीक से याद नहीं है,
2: उसमें तो सब व्यक्ति छोटे छोटे होते हैं और वो अकेला बड़ा होता है वो वाली,
4: हाँ शायद ऐसे कुछ होता है,
2: वो पानी है नहीं वो फाइट करता है, फिर
4: रोशन के सपने को डायरेक्टर ने देख लिया होगा और फिर पूरी मूवी बना
6: दी, थोड़ा अपोजिट था वो, एक आदमी बड़ा था सब छोटे थे,
4: अब कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना, कॉपीराइट है। अच्छा ओके, और आयुष आपका क्या सपना है ऐसा?
2: मेरा दीदी बहुत ही अद्भुत सपना है, पता नहीं वर्ल्ड में किसी को ऐसा आया भी होगा कि नहीं।
4: ओके
2: ऐसे सपने मेरे को 2 से 3 बार आए हैं। उस सपनों में क्या होता है कि मैं होता हूँ कहीं पे भी होता हूँ, कोई भी लोकेशन मान लो, लेकिन उसकी खास बात यह है सपने की कि मुझे पता रहता है कि ये सपना है।
4: ओके
2: और दीदी जब मुझे पता रहता है, आप मान लो आपको पता है सपना, तो इसका मतलब आप अपनी फेवरेट चीजें करोगे आपको, है ना, तो मैं भी वही करता हूँ, मैं किसी के भी घर में जाता हूँ कोई मुझे कुछ नहीं कहता क्योंकि मुझे पता है सपना है। और मैं गाड़ी, फिर मैं बाइक चलाने लग जाता हूँ, फिर सामने कार होती है, फिर मैं कार में यूं करके यार ठोक देता हूँ और मैं गिर भी जाता हूँ, पर मुझे पता है सपना है इसलिए मुझे लगेगा। फिर मैं एक दुकान पर जाता हूँ, सबसे महंगे वाली डेयरी मिल्क उठाता हूँ, खाने लग जाता हूँ उसके सामने ही, और आ जाता हूँ, वो पैसे भी नहीं मांगता क्योंकि वो एक सपना है। इतने मजे करता हूँ, इतने मजे करता हूँ, इतने मजे करता हूँ।
5: और मैंने भी देखा था।
4: अच्छा ओके, एक बार कंप्लीट कर ले आयुष का सपना, फिर शिवानी का सुनेंगे।
2: फिर पता है मुझे ना नोविता मिला, मजा आ गया। मैंने कहा वो वाला गैजेट दे दे, वो सिर पे लगा के उड़ना है। दीदी वो हमारे यहाँ पे जो पहाड़ है ना, मैं उसकी तरफ उड़ने लगा, घूम रहा हूँ। फिर मैं साइकिल चलाने का हूँ, साइकिल चलाते मैं एक ऐसी जगह पहुँच गया जो मुझे रास्ता पता ही नहीं है, मुझे फिर नोबिता भी घूम गया मेरा सॉरी डोरेमोन भी घूम गया,
6: वही डोरेमोन।
2: हाँ तो फिर मैं साइकिल का रास्ता पूछते पूछते आया, मतलब सपना बहुत बड़ा हो गया था। वैसे ये 2-3 सपनों का मिक्सर बताया क्योंकि तीनों सपनों में यही था कि मेरे को पता था।
4: तो आपको पता था कि आप सपना देख रहे हो?
2: हाँ दीदी।
4: और आंखें बंद थी आपकी?
2: हाँ।
4: और आप नींद में भी थे?
2: जी दीदी। ऐसा हुआ किसी के साथ?
3: मल्टी टैलेंट।
2: देख लो दीदी कितना कमाल, मैं कहता हूँ पता नहीं किसी को आता भी होगा नहीं, अपनी फेवरेट चीजें कर सकते हैं। पर वो अब देखो मैं मुझे पता नहीं था एयरपोर्ट का, वरना मैं एरोप्लेन में उड़ता
4: मतलब उसमें जो जो आपको पता होगा वो आप सब कर सकते हो।
6: हाँ, कुछ भी
2: कर सकता हूँ दीदी दुनिया में।
4: अब मुझे लगता है हम सबको मिलके आयुष के सपने में जाना पड़ेगा।
2: और दीदी पर बुरी बात ये है कि वो सपना मिनिमम बहुत कम और मैक्सिमम सिर्फ 20 मिनट्स का होता है।
6: ज्यादा मिनट?
4: अच्छा आपको टाइम भी याद रहता है?
2: नहीं दीदी वो मैंने फैक्ट पढ़ा था।
4: अच्छा
2: 20 मिनट से बड़ा नहीं होता, मजा आ जाता है 20 मिनट में।
6: दीदी हम जब सपने में होते तो हमें टाइम का नहीं पता चलता ना, सपना बहुत बड़ा होता है
2: ऐसा लगता है।
6: जब हम सपने में होते तो हमें लगता नहीं कि ना बहुत देर तक कि सपने में, मतलब टाइम बहुत, मतलब सपना बहुत बड़ा होता है, टाइम बहुत छोटा सा थोड़ा सा लगता है।
4: तब हमें पता नहीं होता ना, हम तो नींद में होते हैं
6: सपने में टाइम।
4: और वैसे भी जब हम नींद में होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं, हमारा सबकॉन्शियस
6: माइंड चल रहा होता है।
4: और सबकॉन्शियस माइंड में तो बहुत चीजें होती है। मान लो मैं आयुष से बात कर रही हूँ, मैंने आसपास नोटिस नहीं किया क्या रखा हुआ है, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने नोटिस किया।
6: हाँ।
4: तो सपना तो कुछ भी आ सकता है, वो 3-4 सिचुएशन को मिला देता है।
6: जी हाँ, ऐसा मेरे साथ होता है, स्कूल का सपना भी मेरे साथ ऐसे ही आता है
4: ना।
6: स्कूल वाले सपने आते हैं कभी
4: कभी, कभी कोई हमारे साथ डर होता है।
6: हाँ।
4: या हम कुछ किसी बारे में बहुत सोच रहे होते हैं,
3: जो सोने के पहले सोचते हैं वो ही सब आता है।
4: ऐसा हुआ है
3: ज्यादातर?
4: कब हुआ है? जब आप किसी बारे में सोच रहे हो और रात को वही सपना आ गया, फिर ऐसा हुआ है?
5: मेरे साथ हुआ।
4: क्या हुआ है बताओ?
5: वो मैं स्कूल के बारे में सोच रही थी, मेरा काम कंप्लीट नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, फिर मुझे वही आ गया सपने में कि मेरा पूरा काम कंप्लीट है और मेरे सर मुझे शाबाशी दे रहे हैं।
6: दीदी मेरे सर ऐसा बहुत है।
5: और जब मैं उठी तो मुझे लगा है मेरा काम भी नहीं कम्प्लीट।
4: सपना ही अच्छा था।
6: मेरे सर बहुत बार हो चुका है ऐसा, जो भी मैं रात को सोच के सोती हूँ ना, फिर जिसके

0: बस पहुंच
1: ऐसा
0: गया,
1: होता है।
0: अच्छे से पहुंच गया, और फिर वो सपना टूट गया। फिर मैंने देखा, मैं लेटा हूँ, मैंने कहा अभी नहाना भी है, इतना सब कुछ करना है।
2: कभी रात को ऐसा हुआ है कि कुछ सोच रहे हो और कुछ किसी बात के लिए आप ज्यादा सोच रहे हो और फिर रात को सोच गए, सोचते सोचते सो गए और वही सपने में आया?
1: पेपर रिटर्न होता है।
2: क्या हुआ है रोशन दादा?
3: मैं एक बार रात को तो नहीं, दोपहर को मैं पुराना एल्बम्स देख रहा था, मेरे छोटे बचपन के फोटोस। मैं अच्छा था तब।
2: अभी भी
3: क्यूट लग रहा था मैं।
2: अभी भी आप लोग क्यूट लगते हो।
3: थैंक यू। हाँ, तो फिर देखते देखते मैं सो गया। तो फिर मैं क्या था, मैं मतलब अभी जैसे सो रहा हूँ उसी समय पे था, और मेरे को एक गाड़ी मिली जिसमें मैं बैठा और टाइम ट्रेवल कर लिया।
1: वाह।
3: मैं मतलब मेरे को ही देख रहा हूँ जो छोटा है।
2: अच्छा।
1: ओ
2: तो आप क्योंकि एल्बम देख रहे थे पहले से।
1: तो हाँ होता है दी, हम जो देख के सोते हैं, फिर कभी कभी हॉरर फिल्म में देखते हैं ना, तो वैसा सीन हमारे साथ भी होता है।
2: अच्छा,
1: तो उसमें हम आ जाते हैं।
2: अब ये बताओ डरावने सपने किस किस को आए हैं?
0: पहले मेरा क्वेश्चन है।
2: हाँ बताओ
0: दीदी। आप कह रहे हो सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है, जब अगर मुझे पता रहता है सपना है तो मेरा कौन सा माइंड जगा रहता है? दोनों
2: कॉन्शियस माइंड, जब हमारी बॉडी रेस्ट कर रही होती है तो वो भी रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गायब हो गया कहीं पे, है ना, वो तो वहीं पे है। थोड़ा इनपुट उसका ऐसा नहीं है कि, अब देखो कई बार ऐसा भी होता है हम सपनों में थोड़े जग जाते हैं और कुछ चीजें हमें याद देते हो, कुछ सपने ऐसे होते हैं हमें याद ही नहीं रहते। अब डरावने सपने किस किसने देखे जल्दी से?
0: मैंने भूत का डरावना नहीं देखा था, दूसरा डरावना
2: क्या
0: बताऊँ? क्या पहले
2: बताओ।
0: हाँ, तो हुआ यूं कि मैं था कमरे में और पता नहीं कि शेर आ गया, इसका फेवरेट वाला, और वो मेरी तरफ आ रहा है उस, लेकिन उसने मुझे देखा नहीं। तो मैं तो बहुत डरा हुआ था। दीदी आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे शेर आ जाए ना तो कितना डर, इतनी तेज धड़कन हो गई रियल में भी। क्योंकि वो मुझे जब पता चला मैं उठा, तो मैं सपने में गया और कुर्सी के पीछे छुप गया, कुछ जगह ही नहीं थी छुपने के लिए, तो मैं कुर्सी के पीछे छुप गया। फिर वो आया, मतलब झपट्टा मारने वाला था, इतना डर गया, इतना डर गया, इतना डर गया कि वो झपट्टा मारा और मेरी आँख खुल गई, और फिर मैंने ऐसे हाथ लगाया, उतना डर गया था मैं।
2: बाप रे, आप शेर के बारे में कुछ देख तो नहीं रहे थे उससे पहले?
0: नहीं, इतना तो कुछ याद नहीं, बस शेर का
2: शेर आ गया था। ओके, और किसको कोई डरावना सपना आया?
1: मुझे डरावना नहीं, मतलब डरावने आए हैं वो भूत टाइप के, ऐसा कुछ।
2: वो क्या है भूत वाले बताओ।
1: हाँ, तो ना मैं ना एक अकेले जैसे जगह में थी, बहुत सुनसान था, कोई भी नहीं था वहाँ पे, मतलब मम्मी पापा कोई, मेरी बहन भी नहीं, तो मैं अकेली, और वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ से कहाँ निकले, खंडर की बहुत ज़्यादा जगह थी, खंडर पूरा टाइप का था सब। मैं आगे जा रही थी, आगे जाके ना मुझे थोड़ी सी वॉइस आई किसी चीज़ की, बहुत डरावनी वॉइस थी वो, मुझे कोई दिख नहीं रहा था, बस थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, इतना डर रही थी, इतना डर रही थी, डर डर के आगे बढ़ रही थी। फिर ना मैंने आगे जाके ना किसी को देखा, फिर मैं उसके पीछे पीछे गई, पीछे पीछे जाके क्या हुआ मुझे पहले बताओ, किसी के पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए था, और जा गई ना, गायब हो गई। गायब हो गई, फिर ना मुझे किसी ने अचानक से आके पकड़ लिया, और इतना तेज डरी मैं उठ के बैठ गई, बहुत तेज डर गई, तो ज्यादा डरी। और मतलब हॉरर फिल्म में तो हम देखते ही रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ, तो मैं डर के, बहुत डर के उठ गई, उठ के बैठ गई। फिर मेरे माइंड में वही सपना बार बार बार।
2: उसके बाद नींद आई?
1: हाँ, मैं रात को तो सोई थी, उसके बाद
2: सोई थी
1: अगली।
2: ओके, और रोशन को क्या सपना आया ऐसा?
3: हाँ, मेरे को तो भूत का रिलेटेड आया एक बार, जहाँ मैं मतलब रिपोर्टर हूँ।
2: ओके,
3: जिसके हाथ में एक कैमरा है।
2: अच्छा,
3: रिपोर्टर तो नहीं बोल सकते, मेरे हाथ में कैमरा था।
2: ओके,
3: तो मेरे को बोला गया था कि तुम कुछ इंटरेस्टिंग बनाओ, कुछ भी इंटरेस्टिंग कैमरा में रिकॉर्ड करो। तो मैं गया एक असाइलम में।
2: ओके,
1: हाँ क्या होता है
2: असाइलम? मतलब आप मेंटल असाइलम की बात कर रहे हो, जहाँ पे जो पेशेंट्स जिनको कोई भी मानसिक बीमारी होती है उनको रखा जाता है ना, जो बिल्कुल ट्रीट नहीं हो पाते हैं, रखना पड़ता है जिनको,
1: वहाँ पे रखते हैं,
2: एक ऐसी जगह होती है।
1: ओके,
3: हाँ, तो मैं जा रहा हूँ अंदर, मैं अंदर जा रहा हूँ और असाइलम बंद है, अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा? तो मैं पीछे से घूम के गया ऊपर, ऊपर मैं जाते जा रहा हूँ, मेरे पास कैमरा है, पूरा अंधेरा है और बस कैमरा में थोड़ा दिखाई दे रहा है जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। तो मैं आगे जाते जा रहा हूँ, मेरे मतलब मेरे तो पूरा मैं तो पूरा डर गया था।

0: बापरे मतलब आप अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे हो? नहीं जा रहे हो ऐसी सिचुएशन, पता है कि डरावनी है और तब भी जा रहे हो?
1: सपना
2: सपना तो सपना होता है।
0: तो नींद खुली या फिर नींद नहीं खुली इससे?
2: हाँ, उसके बाद क्या हुआ, मैं आगे जा रहा था तो मेरे हाथ में तो कैमरा था, मैं उसी से देख रहा था, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे को अचानक से पीछे से आवाज सुनाई दी, मैं कैमरा को नहीं घुमाया, मैं खुद घूम के देखा क्या हो रहा है। फिर मैंने कैमरा घुमाया, फिर था वहाँ एक बिल्ली था वैसे।
0: ओके चलो,
2: जैसे ही मैंने घुमाया उसी में डर के मैं उठ गया। इतना डरावना था वो बिल्ली ने मेरे को डरा दिया।
0: उस बिल्ली मतलब ऐसे में अंधेरे में और अचानक से एक आवाज आए तो वो बिल्ली की भी काफी होती है।
3: और बिल्ली की आईज भी कितनी ग्लो करती है ना कैमरे का,
0: अंधेरे में
3: वो पड़ता है टॉर्च ऐसे कुछ भी, भूतनी तो वही लगने लगती है।
0: और आयुष आपको भी कुछ ऐसा सपना आया था?
1: बताया ना दीदी।
0: अच्छा हो गया, सबका हो गया ना, चारों
1: शिवानी
0: रह गई।
4: मेरा तो डरावना नहीं था, मतलब मैंने खुली आंखों से देखा था। जो डरावना था तो मैंने बता दिया था।
0: ओके
4: एक मुझे मैंने खुली आंखों से देखा तो मैं सोच रही थी, मतलब कि एक आइसक्रीम थी, वो मैं सोच रही थी कि अगर मैं छोटी होती तो आइसक्रीम मिली कितनी बड़ी होती खाने के लिए,
0: तो आइसक्रीम आपसे ज्यादा बड़ी हो गई थी।
3: पूरी आइसक्रीम खाती आराम से। ओह माय गॉड,
0: हमसे बड़ी आइसक्रीम मिले तो कितना मजा आएगा वो तो।
3: वही तो,
2: पर बाद में नहीं आएगा,
0: बाद में नहीं आएगा।
4: या तो
0: लेकिन हाँ, अगर वो आइसक्रीम बात करने लगे तो मजा नहीं आएगा।
4: या तो दीदी, या तो मेरे पास कोई ऐसी चॉकलेट हो जो जिसमें खाऊं फिर जो बड़ी हो जाए, फिर मैं खाऊं फिर बड़ी हो जाए,
3: मतलब वो खाए और फिर आ जाए, फिर खाए फिर आ जाए।
0: ये है खुली आंखों से देखा हुआ सपना। और फिर दांत का क्या होगा, वो भी आएंगे और जाएंगे?
1: नहीं नहीं, दो एक बार ही होगा ऐसा। दीदी हम पता है इतना डर जाते हैं सपने में, कभी कभी बोलने भी लगते हैं ना।
3: हाँ, मेरे नाना जी के साथ भी ऐसे होता था,
1: मेरे साथ होता है,
2: मेरे साथ बार एक बार हुआ है, मेरे साथ
0: होता है।
4: मैं बोलती तो नहीं थी लेकिन जब मेरा सपना आता है ना, तो मेरा पैर अपने मन से हिलने लगता है।
0: होता है
4: तो क्योंकि मैं डर जाती हूँ।
0: हमारा माइंड ही तो हमारे शरीर को कमांड देता है ना। हाँ। तो माइंड में सपना चल रहा है तो बॉडी को कुछ ना कुछ कमांड मिक्स मिलती रहती है।
3: दीदी ऐसा क्यों होता है, हम सपने में हम जब होते हैं तो हमें लगता है बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल हो रहा है हमारे साथ। हाँ। इसलिए हम बहुत डर जाते हैं या फिर हम बहुत खुश हो जाते हैं,
0: पसीना आ जाता है कभी कभी।
3: हाँ।
0: है ना,
3: और बहुत डर के मारे उठ के बैठ जाते हैं।
4: मैंने एक अच्छा वाला सपना देखा था कि मैं एक दुकानदार के पास गई, उसने मुझे मतलब कि जो भी उसकी दुकान में लगा हुआ था, चिप्स टॉफी और चॉकलेट, उसने सब कुछ मुझे दे दिया, मैं फ्री में खा रही हूँ।
0: अच्छा बच्चों, आप लोग इन सपनों के बारे में कभी किसी से शेयर करते हो, कभी किसी को बताते हो?
3: दीदी बताए, जब मेरे मुझे
0: किसको बताते हो?
3: बहुत बुरे वाले सपने आते हैं ना।
0: मम्मी को, पापा को?
3: नहीं, मम्मी को बताती हूँ मैं।
1: आप लोग तो नहीं बताता ऐसी चीजें?
3: नहीं, मुझे बहुत ज्यादा
2: डरावना आता तो वो नहीं बताता।
0: नहीं बताते क्यों?
3: डरावना आता तभी मैं बताती हूँ।
2: तो ऐसे ही कुछ अच्छा आया जो बजा सकते हैं तो।
0: लेकिन अगर रात को डर लग रहा है तो नहीं बताओगे फिर मम्मी को?
2: डर लग रहा है तो
1: परेशान नहीं करता, मैं तो सो जाता हूँ। या कभी कभी तो मैं बोलता हूँ ना दीदी डरावने सपने से, तो मुझे पता नहीं मैं बोल क्यों रहा था, पर सपना था कुछ तो डरावना।
2: हाँ,
1: जैसे कि तो फिर मम्मी पापा या को भी मेरे पास आके लेट जाता है।
0: ओके। अच्छा बच्चों, वैसे जो हम लोगों ने बात की अभी, उससे एक बात तो समझ में आती है कि जो चीजें हम पढ़ते हैं देखते हैं उसका असर होता है सपनों पे। कहीं ना कहीं
3: दीदी है ना, वो कुछ कुछ सपने जो हम देखते हैं वो सच भी होते हैं ना।
0: कोइंसिडेंस हो सकता है।
4: हाँ, बल्कि वो बड़े लोग कहते हैं कि हम लोग सुबह के सपने देखते हैं तो सच होता है।
0: वो
1: सिर्फ कहने की बात,
0: कहावत तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ भी देख लिया और वो जाएगा।
3: वो नहीं, वो कभी कुछ होता है,
2: कभी कभी होता है कि तुम मतलब रियल लाइफ में कुछ भी कर रहे हो तो फिर तुमको पता चला है कि इसके बाद मतलब इसको मैंने कभी पहले भी किया है, कभी इसको मैंने पहले भी देखा है।
0: हाँ।
2: तो ये हमने अपने मतलब हम अपने सपने में देखे होता है जो हम भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल। और ऐसा होता है बच्चों, क्योंकि हम बहुत चीज जैसे एग्जाम के बारे में, अब आप बहुत उस बारे में सोच रहे हो और सपने में भी आया पास हो गए और आप पास हो भी गए, देखा जाए तो सपना सच हुआ। लेकिन आप बहुत सोच रहे होते हो ना उस बारे में,
3: इस बार,
0: तो सच भी होता है और सपने में भी आ जाता है, ऐसा हो जाता है।
1: बस कोइंसिडेंस, मैं तो दीदी नहीं मानता कि।
0: लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी बच्चों कि आप रात को जब सोते हो तो उससे पहले आप अपने पास कोई ऐसी एक प्यारी सी बुक रख लो जो आपको पसंद है, जिसमें कोई स्टोरी है अच्छी या जिसमें कोई अच्छी बात लिखी है, भले आपको 2-3 मिनट उसको पढ़ के देख के सो, क्योंकि हम जो लास्ट थॉट लेते हैं ना रात को
3: वो हमारे सपनों में आती है।
0: तो अगर डरना नहीं है सपनों में तो क्या करना पड़ेगा?
1: अच्छी बातें सोचनी पड़ेगी।
3: जब मैं अच्छा कुछ सोच के सोती हूँ ना तब सपने में बहुत अच्छा होता है. जब कुछ फिल्म देख के सोऊंगी डरावनी ऐसा कुछ तो फिर सपने में वही आता है. ऐसा होता है
1: दीदी कभी कभी ऐसा भी होता है ना हमारा पूरा दिन अच्छा गया ना हमने कोई डरावनी मूवी या कैसी भी मूवी नहीं देखी कुछ भी सब कुछ अच्छा
3: फिर भी सपना
1: फिर भी डरावना सपना
0: है क्योंकि केवल आज के ऊपर डिपेंड नहीं करता सपना
1: पूरे पास्ट के ऊपर.
0: लेकिन फिर भी रात को अगर आप बहुत पॉजिटिव और पावरफुल ऐसा होके सोते हो तो फिर ऐसे डरावने वाले सपने
1: नहीं आते.
0: ओके बच्चों तो आज हम लोगों ने अपने बहुत सारे सपनों के बारे में बात किया और कभी कभी और भी बात करेंगे. मुझे लगता है आप लोगों के बहुत सारे सपने रह गए अभी.
3: हाँ, हाँ,
1: बहुत सारे
0: ठीक है कोई बात नहीं.
3: मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है सपने.
0: कोई बात नहीं हम आप लोगों के सपनों के बारे में फिर से बात करेंगे जब हमारे पास थोड़ा सा और टाइम होगा है ना. तब तक अपने दोस्तों को भी और सपने देखने देते हैं है ना. ठीक है बाय बाय बच्चों.
3: बाय बाय दीदी.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 10वां पाठ बोलती इमारतें, पृष्ठ 87। पहुंचे गोलकुंडा। आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकोंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ती हैं और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मज़ा आता है। शैलजा बोली, अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है ये किला। श्रीधर बोला, और कितनी ऊंचाई पर है। कल्याणी बोली, अरे ये दरवाज़ा भी तो देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट। शैलजा बोली, बहुत भारी भी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते बंद करते होंगे इसे। कल्याणी ने कहा, गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं, ये क्यों लगाए गए होंगे। शैलजा ने कहा, इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो। श्रीधर कहने लगा, कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी। कल्याणी ने कहा, यह दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है। दीदी बोली, यह बुर्ज है, देखो बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज, सुरक्षा के कितने कड़े इंतज़ाम थे। पृष्ठ 88। सोचो, इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे, बुर्ज में ये बड़े बड़े छेद क्यों बने होंगे। सीधी सपाट दीवार से झांकने में और एक ऊंचे बुर्ज से झांकने में क्या अंतर होगा। बुर्ज के पीछे खड़े होकर छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में क्या मदद मिलती होगी। किले में कितना कुछ। शैलजा बोली, क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा, यह कितना पुराना होगा। कल्याणी बोली, बाहर लिखा था कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। दीदी बोली, हाँ उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। शैलजा बोली, अरे इस बोर्ड पर किले का नक्शा है। श्रीधर बोला, इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं और देखो किले के अंदर कई सारे महल भी हैं। शैलजा ने कहा, इसका मतलब तो यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे, किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी तो रहते होंगे। कल्याणी ने कहा, फिर यह तो पूरा शहर ही होता होगा। पृष्ठ 89। सुल्तान का महल। श्रीधर बोला, ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। शैलजा बोली, उस ज़माने में भी दो मंजिला इमारतें थीं। कल्याणी बोली, अब तो यह टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाज़ा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे। श्रीधर बोला, और यह देखो दीवारों पर कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। कल्याणी बोली, एक छत पर हमने फव्वारे जैसा भी तो देखा था। दीदी बोली, हाँ इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे जिनमें हर समय पानी चलता रहता था। वाह, उस जमाने की इंजीनियरिंग। सोचो, आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है। यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे, तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई थीं। सोचें कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा। तुम भी अनुमान लगाओ, सोचो और चर्चा करो। फव्वारे कैसे चलते होंगे? हवा और रोशनी का क्या इंतजाम होगा? सामने के चित्र में दीवार पर की गई नक्काशी को ध्यान से देखो। इतनी सुंदर और बारीक नक्काशी करने में किन औजारों का इस्तेमाल होता होगा? हमारे देश में आज भी कई जगह बिजली नहीं है, पर जिन जगहों पर बिजली है, अगर वहां एक हफ्ते तक बिजली ना आए तो कौन कौन से कामों के लिए बहुत मुश्किल होगी। पृष्ठ 90, कहाँ है पूर्व पश्चिम? तुम जिस जगह पर हो वहां पर सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ डूबता है? पता करो कि तुम जहां खड़े हो वहां से पूर्व दिशा में क्या क्या है, तुम्हारे पश्चिम में क्या क्या है। अब पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है। पृष्ठ 91, यहाँ पर गोलकोंडा का एक नक्शा दिया गया है, बताओ और लिखो। गोलकोंडा के नक्शे को देखो, चारों दिशाएं तीर के निशान से दिखाई गई हैं। अगर तुम बोडली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हौज किस दिशा में है? अगर कोई बंजारा दरवाजे से अंदर आ रहा है तो कटोरा हौज उसकी किस दिशा में होगा? बाला हिसार से तुम किस दिशा में चलोगे कि मोती महल पहुंच जाओ? किले की बाहरी दीवार पर कितने दरवाजे दिख रहे हैं? गिनकर बताओ किले में कितने महल हैं? पानी के लिए क्या क्या इंतजाम दिख रहे हैं, जैसे बावड़ी, कुएं, हौज? नक्शे में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दिखाता है। अब बताओ नक्शे में फतेह दरवाजे से बाला हिसार रिक्त स्थान सेंटीमीटर की दूरी पर है। जमीन पर यह दूरी रिक्त स्थान मीटर होगी। मकई दरवाजे से फतेह दरवाजा कितनी दूर है? पृष्ठ 92, ये हमले क्यों? हम आपसे बात कर रहे हैं कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज़ दी। तोप को देखने की उत्सुकता से हम सब भी तेजी से वहां पहुंचे। शैलजा बोली, यह तोप तो कुतुबशाही सुल्तान की ही होगी। दीदी बोली, तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। जानते हो, औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। शैलजा बोली, दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी? दीदी ने कहा, बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था, अपना राज फैला सकें, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सकें और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सकें। इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे, कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमला करके। कल्याणी बोली, इतनी तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई? शैलजा ने कहा, अरे इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी? और नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है, तो सेना अंदर कैसे आती? श्रीधर बोला, अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो भी यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नजर आ जाता। मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना। कल्याणी बोली, सोचो, फौज घोड़ों और हाथियों पर सवार, हाथों में बंदूकें लिए आगे बढ़ रही है। यहाँ सुल्तान के फौजी बंदूकों के साथ तैनात हैं। शैलजा बोली, ओहो, पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ के कितने ही सिपाही और लोग मारे गए होंगे, हमले होते ही क्यों हैं? पृष्ठ 93। श्रीधर, अरे तोप तो बहुत पुरानी बात हुई, आजकल तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम हैं, इससे तो एक ही बार में कितनी तबाही हो सकती है। चर्चा करो, क्या तुमने हाल ही में सुना है कि किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया हो? पता करो कि यह हमला क्यों हुआ होगा, किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए थे, किस किस तरह का नुकसान हुआ, पता करो। श्रीधर ने कल किले में जो तोप देखी थी वह कांसे की बनी है, तुमने कभी कांसे की कोई चीज़ देखी है? बताओ क्या? कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से तांबा और टिन कैसे निकालते पिघलाते होंगे, फिर कैसे उनसे सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते होंगे। तुम्हारे घर में या आसपास कांसे की कौन कौन सी चीज़ें थीं या आज भी हैं? रंग से पहचानने की कोशिश करो कि कौन सी चीज़ तांबे की, पीतल की और कांसे की बनी है, जब टेलीफोन नहीं था। दीदी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गईं। कुछ देर बाद दीदी की आवाज़ आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर तक पहुंची कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलें तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है। पृष्ठ 94। पानी का इंतज़ाम। यहाँ एक चित्र बना है, उस जमाने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है। सोचो बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। अंदाज़ा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस झंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा, उसके साथ लगा दांतेदार पहिया फिर किस दिशा में घूमेगा, हाथ के इशारे से बताओ। देखो दांतेदार पहिए से लगा डंडा ज़मीन के नीचे से जाकर किस पहिए से जुड़ा है। बैलों के घूमने से डिब्बों की माला पानी को ऊपर चढ़ाती है। कैसे चढ़ाती है? अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा? आज भी हमें किले की दीवार में मिट्टी के पाइप दिखते हैं, इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता होगा। तुमने इस तरह एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तेमाल होते हुए और कहाँ देखा है, जैसे साइकिल में, गियर या और कहीं? अपने आसपास देखो और पता करो कि आज ज़मीन के नीचे से पानी को ऊपर तक कैसे कैसे चढ़ाया जाता है, बिजली से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है, बिना बिजली के पानी को ऊपर कैसे चढ़ाएंगे। पृष्ठ 95। हाल किया बेहाल क्यों। आवाज़ें निकालते और उनकी गूंज सुनते हुए सभी मेहराब के नीचे से गुजर रहे थे। श्रीधर बोला, पत्थर के नीचे इस सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही है। शैलजा बोली, लिखा हुआ था कि यहाँ फौजी रहते थे। श्रीधर बोला, अरे यह देखो, यह बोर्ड भी है, उस पर लिखा है दीवार पर लिखना मना है, फिर भी इस दीवार का यह हाल। शैलजा बोली, ओहो, मैं तो सोचकर ही सिहर जाती हूँ कि इस दीवार ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे, कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम, हाथी, घोड़े और न जाने क्या क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया है। कल्याणी बोली, पता नहीं लोग इन दीवारों को अपने नाम लिख लिख कर गंदा क्यों कर देते हैं। आंखें बंद करके पहुंचो उस जमाने में। मान लो कि तुम उसी समय में हो जब गोलकोंडा में पूरा का पूरा शहर बसा था। अब इन सवालों के बारे में सोचो और अपनी क्लास में बताओ। चाहो तो ग्रुप में नाटक भी कर सकते हो। सुल्तान अपने महल में क्या कर रहे हैं? उनके कपड़े कैसे हैं? उनके सामने कौन कौन से पकवान पेश हो रहे हैं? लेकिन बेचारे हैं किन फिक्रों में? और हाँ, किस भाषा में बात कर रहे हैं? पृष्ठ 96। उनके महल पर फव्वारे तो चल ही रहे होंगे ना? अंदर से महल आलीशान पर्दों और कालीनों के साथ कैसा लग रहा है? और गुलाब चमेली के फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है? किस किस चीज़ के कारखाने देख पा रहे हो? कारखानों में कितने लोग काम कर रहे हैं? उन लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? कितनी देर काम करते होंगे? अरे वहाँ देखो, वह कारीगर पत्थरों को छेनी और हथौड़ों से काट काट कर कितनी सुंदर नक्काशी कर रहा है। क्या पत्थरों की धूल से कारीगर को कोई दिक्कत हो रही है? म्यूजियम पहुँचे। गोलकोंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम में भी गए। म्यूजियम यानी संग्रहालय। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती हैं। इस म्यूजियम में गोलकोंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीज़ें भी थीं, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह। सैलजा बोली, अरे ये बर्तनों के टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे की अलमारी में क्यों रखे हुए हैं? वह देखो, वह छोटी सी प्लेट तो कांसे की है। वह नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का सा लगता है। दीदी बोली, इन्हीं सब चीज़ों से तो पता चलता है कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या बनाते थे। सोचो, अगर यह सब संभाल कर नहीं रखा होता तो क्या तुम आज उस जमाने के बारे में इतना कुछ जान पाते? पृष्ठ 97। लिखो, तुमने आसपास किस किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होते देखा है? अपने दादा दादी से पता करो कि उनके समय में और किस किस तरह के बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते थे। क्या तुम भी कभी किसी म्यूजियम में गए हो या उसके बारे में सुना है? वहाँ क्या क्या होता है? इमारत का सर्वे। लिखो, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसी पुरानी इमारत है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं? यदि है तो कौन सी? क्या तुम कभी कोई ऐसी ही पुरानी इमारत देखने कहीं दूर गए हो? कौन सी? वह तुम्हें क्या कुछ बोलती सी लगी? क्या जान पाए उस समय के बारे में जब वह इमारत बनी थी? वह कितनी पुरानी है? तुम्हें कैसे पता लगा? वह किस चीज़ से बनी है? किस रंग की है? क्या उसमें कुछ ख़ास तरह के डिज़ाइन बने हैं? अगर बने हैं तो तुम भी बनाओ। उसमें कौन लोग रहते होंगे? वहाँ क्या क्या काम होता होगा? क्या अभी भी उसमें लोग रहते हैं? पृष्ठ 98। तुम भी अपना म्यूजियम बनाओ। रजनी केरल के मल्लापुरम ज़िले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने और आसपास के बहुत से घरों से पुरानी चीज़ें जमा की, जैसे पुरानी छड़ियाँ, छतरियाँ, लकड़ी की खड़ाऊँ यानी चप्पल, बर्तन वगैरह। उन्होंने आजकल ये सब चीज़ें जैसी होती हैं वह भी देखा। फिर बच्चों ने और रजनी ने मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई जिसे आसपास के लोग भी देखने आए। तुम भी यह कर सकते हो। यहाँ एक चित्र बना है जो लगभग 500 साल पुरानी पेंटिंग है, जिसमें दिखाया गया है कि आगरे का किला किस तरह बनाया जा रहा है। चित्र में लोग किस किस तरह के काम करते नजर आ रहे हैं, कितनी औरतें और कितने मर्द काम कर रहे हैं। देखो यह भारी खंभा ढलान पर कैसे ऊपर ले जा रहे हैं। भारी चीज ढलान पर चढ़ानी आसान होती है या सीधी ऊपर ले जानी? क्या मशक में भरकर पानी ले जाता हुआ आदमी देख पाए? हम क्या समझे? संगीता को लगता है कि म्यूजियम में पुरानी चीजें संभाल कर रखना बेकार है। तुम उसे कैसे समझाओगे कि म्यूजियम होना कितना जरूरी है? तुम्हें क्या लगता है इस पाठ का नाम बोलती इमारतें क्यों रखा गया? बोलती इमारतें। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का 10वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए, आज 31 जुलाई है और 31 जुलाई के कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। आज विशेष रोहिणी नक्षत्र है और प्रेम चंद, मोहनलाल सुखाड़िया, दामोदर धर्मानंद, कोसंबी, मुमताज, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही उधम सिंह, मोहम्मद रफ़ी, मान कौर, आर डी प्रधान, श्रीपद दामोदर और इसके साथ आशुतोष दास, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए इन सभी चीज़ों के बारे में, खास करके आज के दिन के बारे में आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और बात करेंगे प्रेमचंद और मुमताज की, बातें सुनकर आपको अच्छा लगेगा। एक राइटर और एक सेलिब्रिटी, एक एक्ट्रेस, तो उन दोनों की कुछ कहानियां मैं आपसे शेयर करूंगा और मुझे लगता है कि आप सभी प्रेमचंद नाम से परिचित होंगी, है ना? जिन्होंने ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिन्होंने प्रेमचंद का नाम नहीं सुना होगा, है ना? प्रेमचंद की जीवन कहानी बहुत ही यूनिक है और एक आम व्यक्ति की जुबा वो हमेशा लिखते हैं और उनकी तरह लिखना अपने आप में एक अनूठा है। जितने भी राइटर हुए हैं मुंशी प्रेमचंद की तरह उन्हें कॉपी करना चाहते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं राइटर। तो आइए, कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जैसा अभी तक कोई हुआ नहीं ना होगा। आइए ऐसे महान साहित्यकार के बारे में बातें करेंगे, उनकी कहानी आपको सुनाएंगे। आज आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ। और गीत के पहले आपको एक सुंदर विचार, कहते हैं सुविचार मन का खुराक है, व्यवहार वो सीढ़ी है जिससे आप मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। लीजिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके नाम, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक बार आप सुन रहे हैं सफ़र कार्यक्रम को। और प्रेमचंद जी की जीवनी अगर देखें तो भारत के इतिहास में बहुत इनका महत्व है और भारत के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, जिनके युग का विस्तार 1880 से लेकर 1936 तक रहा। इस युग में भारत का आज़ादी का संग्राम नई मंजिलों से गुजरा। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे एक सफल लेखक, देशभक्त, नागरिक, कुशल वक्ता, जिम्मेवार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। 20वीं सदी के पूर्वद में जब हिंदी में काम करने की तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी इतना काम करने वाला लेखक उनके सिवा कोई दूसरा नहीं हुआ। आइए इनकी जीवनी से रूबरू कराता हूं मैं आपको। आज ही के दिन 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद का जन्म वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लम्हे नाम के गांव में हुआ। प्रेमचंद के पिता मुंशी अजैब लाल और माता आनंदी देवी थी। तो आइए इनकी कहानी मैं आपको हमारे एक साथी हैं उनके द्वारा सुनाता हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM सफर कार्यक्रम को। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। उनका जन्म सन 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। अजायब राय डाकखाने में क्लर्क थे और केवल 20 रुपए मासिक वेतन पाते थे। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। प्रेमचंद को पास के गांव के एक मौलवी साहब के मदरसे में उर्दू और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया। जब प्रेमचंद 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। प्रेमचंद का नाम हाई स्कूल में लिखाया गया। पिता का तबादला एक जगह से दूसरी जगह होता रहता था। इससे प्रेमचंद को नई नई जगह तो देखने को मिलती थी पर जमकर पढ़ाई लिखाई के लिए समय नहीं मिल पाता था। जब वे 13 वर्ष के थे तब उनके पिता का तबादला गोरखपुर हो गया। वहां उनका परिचय एक पुस्तक विक्रेता से हो गया। संपर्क बढ़ने से प्रेमचंद नियमित रूप से उसकी दुकान पर जाने लगे। दुकान से प्रेमचंद को पढ़ने के लिए किस्से कहानी की पुस्तकें मिल जाती थी। इस प्रकार अध्ययन के प्रति उनकी रुचि बढ़ी और उन्होंने उर्दू के श्रेष्ठ उपन्यासकारों की लगभग वे सभी पुस्तकें पढ़ डाली जो उस दुकान में उपलब्ध थी। उनका मन कथाशिल्प में पूरी तरह डूब चुका था और इस प्रकार उनकी जिंदगी का रास्ता भी बदल रहा था। जब प्रेमचंद केवल 15 वर्ष के थे और कक्षा 9 में पढ़ते थे तभी उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया। उनकी इच्छा थी कि वे एमए पास करके वकील बने, पर विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और परिवार का पूरा भार प्रेमचंद के कंधों पर आ पड़ा। लेकिन प्रेमचंद ने इस विषम परिस्थिति में भी हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे अपने गांव से 5 मील दूर वाराणसी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने जाते। वहां से वे ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटते थे। इसके उन्हें केवल 5 रुपए ही मिलते थे जिनसे वे घर और पढ़ाई का खर्च चलाते। मैट्रिक परीक्षा में वे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, अतः उन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लेने का इरादा छोड़ दिया क्योंकि क्वींस कॉलेज में केवल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की ही फीस माफ की जाती थी। अर्थाभाव के कारण एक दिन प्रेमचंद अपनी गणित की पुस्तक बेचने एक दुकान पर गए। संयोग से वही एक छोटे से स्कूल के हेडमास्टर से उनकी भेंट हो गई। हेडमास्टर जी ने जब प्रेमचंद की यह दीन दशा देखी तो उन्हें उन पर बड़ी दया आई और उन्होंने प्रेमचंद को 18 रुपए मासिक पर अपने स्कूल का अध्यापक बना दिया। नौकरी पाकर प्रेमचंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। वाराणसी से लगभग 60 किलोमीटर दूर चुनार जाकर उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। कुछ समय बाद क्वींस कॉलेज वाराणसी के ब्रिटिश प्रधानाचार्य ने कृपा करके प्रेमचंद को सरकारी स्कूल का अध्यापक बना दिया। प्रेमचंद उर्दू में कहानियां लिखना आरंभ कर चुके थे और उनकी रचनाएं जमाना पत्र में भी प्रकाशित होने लगी थी। उन्होंने इंटर और बीए की परीक्षाएं भी पास कर ली थी। जब देश में आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो हिंदी के कवियों और लेखकों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। उनकी रचनाओं में देश प्रेम की भावनाएं व्यक्त होने लगी। प्रेमचंद ने भी देश प्रेम की कहानियां लिखी। वे अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध भी लिखा करते थे। प्रेमचंद की इस प्रकार की कहानियों का संग्रह सोजे वतन सन 1909 में प्रकाशित हुआ। उनकी ये रचनाएं नवाब राय के नाम से छपती थी। बाद में वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद को अपनी पत्नी और सौतेली माँ के बीच झगड़ों के कारण घरेलू परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक बार उनकी पत्नी उनसे निराश होकर अपने पिता के घर चली गई। प्रेमचंद ने उन्हें वापस लाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सन 1906 में उन्होंने एक बाल विधवा से शादी कर ली जिनका नाम शिवरानी देवी था। उनका यह वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहा। बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग की घटना और 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का प्रेमचंद के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अन्याय का विरोध करने का निश्चय किया। उस समय वे गोरखपुर में विद्यालय निरीक्षक थे। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वे कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय में अध्यापक हो गए। आर्थिक संकट में तो वे जीवन भर रहे ही, पर नौकरी छोड़ने के बाद उनकी कठिनाइयां और भी बढ़ गई थी। इस बीच उन्होंने बहुत सी कहानियां और उपन्यास लिखे। कहानियां पत्र पत्रिकाओं में छपी थी जिसके कई संग्रह भी प्रकाशित हुए, किंतु लेखन कार्य से उन्हें उतना नहीं मिलता था कि उनकी गृहस्थी सुख से चल सके। उनकी रचनाएं काफी लोकप्रिय हुई और खूब बिकी, पर उनका सारा लाभ प्रकाशक हड़प जाते थे। अपने उपन्यास रंगभूमि में प्रेमचंद ने जीवन के सभी पक्षों का विशद विवेचन किया है। कर्मभूमि में प्रेमचंद ने दलित किसानों और मजदूरों की मूक वाणी को स्वर दिया है। इसमें देश की जागृति और सजीवता के चित्र देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान देश की तत्कालीन परिस्थितियों का स्पष्ट दर्पण है। भारतीय नारी के आदर्शों का चित्रण कर प्रेमचंद ने इस उपन्यास में भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। उन्होंने सैकड़ों कहानियां भी लिखी जिनका संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में वे भाषा की समस्या को सुलझाने में लग गए। उनका मानना था कि हिंदी और उर्दू को एक दूसरे से अलग करके दो कोठरियों में इस तरह नहीं बंद किया जा सकता है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध ही न रहे। ऐसा करने से दोनों भाषाओं का विकास रुक जाएगा। अपने इन विचारों को स्थापित करने के लिए प्रेमचंद ने बड़ी भाग दौड़ की, पर हिंदुस्तानी भाषा का उनका यह स्वप्न साकार नहीं हो सका। उनका स्वास्थ्य पहले से ही खराब चल रहा था और इस भाग दौड़ की वजह से वे बीमार पड़ गए। उनका बहुत इलाज किया गया पर कोई लाभ नहीं हुआ। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद ने अपनी अंतिम सांस ली। मानवीय भावनाओं का सजीव चित्रण करने वाले इस उपन्यास सम्राट को कोटि कोटि

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से, तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को

0: डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हां, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आइए अब बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में, मोहनलाल सुगाड़िया के बारे में। जी हां, राजस्थान झालावाड़ से ये बिलोंग करते हैं। राजस्थान के बहुत ही पॉपुलर राजनीतिकों में से एक इनका नाम आता है। उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। मोहनलाल सुगाड़िया सबसे लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। और मोहनलाल सुगाड़िया का जन्म आज ही के दिन 31 जुलाई 1916 को राजस्थान के झालावाड़ में हुआ। वे एक जैन परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता का नाम पुरुषोत्तम लाल सुगाड़िया था, जो मुंबई, आधुनिक मुंबई और सौराष्ट्र के अच्छे क्रिकेटर में गिने जाते थे। राजस्थान के नाथद्वार और उदयपुर में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मोहनलाल सुगाड़िया VJTI वीर माता जीजाभाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए मुंबई के लिए चले गए। वहां छात्र संगठन में महासचिव चुने गए। कॉलेज में मोहनलाल सुगाड़िया देश के मुख्य राष्ट्रीय नेताओं जैसे सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूसुफ मेहराली तथा अशोक मेहता के संपर्क में आ गए। सुगाड़िया जी निरंतर कार्यकर्ताओं की मीटिंग आदि से उपस्थित रहते थे। जब मोहनलाल सुगाड़िया वापस नाथद्वार राजस्थान आ गए, तब उन्होंने एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक दुकान से व्यावसायिक जीवन शुरू किया। इस दुकान में ही वे और उसके साथी ब्रिटिश साम्राज्य के कुशासन और सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए योजनाएँ आदि बनाया करते थे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो मोहनलाल जी का मेवाड़ में प्रजामंडल की राजनीतिक गतिविधियों में अपनी अग्रणी स्थिति बनाने के से पहले ही मोहनलाल सुगाड़िया ने इंदू बाला सुगाड़िया के साथ अंतरजातीय विवाह कर लिया। शिक्षित एवं प्रगतिशील समाज के लोगों में आर्य समाज की वैदिक रीति से ये विवाह 1 जून 1938 को सम्पन्न कराया गया। मोहनलाल जी कहते हैं अपने विवाह के बारे में कि नाग द्वारा जाकर विवाह के बाद वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेना चाहते थे और वही उनका कर्तव्य था। और सबसे अधिक भयपूर्ण और मानसिक रूप से कष्टप्रद लग रहा था, क्योंकि मुझ में आक्रोश भी बहुत था। जो माँ मुझे बचपन में स्नेह से पालती रही तथा हजारों कल्पनाएं मेरे लिए संजूती रही, वहीं आज मुझसे मिलने में आत्मग्लानी और मुंह देखने में घृणा तथा मौत की सी अनुभूति कर उठी है। मेरे लिए विषम परिस्थिति थी, इसमें माँ का भी क्या दोष था। वो ऐसे ही वातावरण भली थी। जीवन भर श्रीनाथ जी की भक्ति और साधना में छूत अछूत की पृष्ठभूमि में सतत संलग्न रही वो भला मेरे इस विवाह से कैसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे सकती थी, और उनके इस व्यवहार के प्रति मेरा भी क्रोध कैसे शांत हो सकता था। दोनों और ही मजबूरी थी। मित्रों की मित्रता का परीक्षा भी इसी समय होना था। मुझे पता चला कि नाथद्वारा का वैष्णव समाज सक्रिय रूप से मेरा विरोध करने वाला था, लेकिन मेरे मित्रों ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की और मुझे एक भागी में वर और इंदु को वधु के वेश में बिठाकर मेरे चारों ओर घेरा बनाकर एक जुलूस निकाला। जुलूस नाथद्वारा के पूरे बाजार में घूमा। मोहन भैया जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पूरे शहर की परिक्रमा हुई। किसी भी विरोध में मित्रों के पैर नहीं उखड़े। शायद मुख्यमंत्री के रूप में भी ऐसा भाव और अपूर्व उत्साहजनक जुलूस नहीं निकाला। वैसे यानों का और विलक्षण जुलूस था। तो ये थी उनका एक अनुभव विवाह के साथ में। और इस प्रकार जात पात और छूत अछूत जैसे बुराइयों का या समस्याओं के प्रबल विरोध मोहनलाल सुखाड़िया सामाजिक प्रगति व परिवर्तन के ऐसे पुरोधा थे जिन्होंने न केवल प्रगतिशीलता के समाज में रूढ़वाद जो जागरूकता है उसको पैदा की, परंतु समाज व परिवार के घोर विरोध के बावजूद अपने स्वयं के जीवन को जात पात के बंधनों से मुक्त कर आदर्श प्रस्तुत किया। परिवार का विरोध काफी अरसे तक रहा, किंतु बाद में उनकी माता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद भी दिया। उनके निधन के पश्चात हुए लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदु बाला सुखाड़िया उदयपुर लोकसभा से संसद भी चुनी गई। मोहनलाल सुखाड़िया का आधुनिक राजस्थान का निर्माण कहा जाता है। सर्वाधिक समय लगभग 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया और 54 से लेकर 71 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे। मोहनलाल सुखाड़िया जी का निधन 2 फरवरी 1982 को बीकानेर में हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ। आप सुनाए हैं सफर कार्यक्रम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप होबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM होबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार, और ढेर सारी शुभकामनाएं। मोहनलाल सुखाड़िया की कहानी सुनकर भी अच्छा लगा होगा आपको, और आइए जीवन में जितने भी महान लोग हुए हैं उनकी कहानी से हमें प्रेरणा मिलता है, क्योंकि उनकी कहानी में उन्होंने ऐसे सामाजिक पक्ष या फिर समाज के उत्थान के लिए कदम उठाए, चाहे फिर वो अपने जीवन से हो या देश के लिए अपने प्राणों की आहुति की बात हो, तो उन्होंने डटकर मौत से लड़ गए और अपने बलिदान को अमर कर गए। ऐसे लोगों की जीवन कहानी कहीं ना कहीं हमारे अंतरात्मा को छू जाती है। उन सभी को नमन जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, समाज के लिए अपने आप को एक उदाहरण साबित किया। ऐसे ही एक और व्यक्ति के बारे में बात करते हैं अब। जी हाँ, चलिए बात करते हैं एक विद्वान के बारे में। भारत के प्रसिद्ध विद्वान, भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ। गणित के अतिरिक्त भारत के इतिहास और संस्कृति में भी इनका अतुलनीय योगदान रहा है। इनका नाम है दामोदर धर्मानंद जी, जो 16 वर्ष तक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में अपनी सेवाएं दी। होमी बाबा के साथ अपने कुछ विवादों के चलते इन्हें संस्थान से हटा दिया गया था। इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। दामोदर धर्मानंद, इनका जन्म 31 जुलाई 1907 को गोवा में हुआ। धर्मानंद प्राचीन भारतीय इतिहास के बहुत ही पॉपुलर विद्वान, भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ माने जाते थे। इनके पिता बौद्ध धर्म के प्रखंड विद्वान थे और आसपास के क्षेत्रों में बहुत पॉपुलर भी थे। धर्मानंद कोसम भी अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापक थे और उनकी सारी शिक्षा दीक्षा अमेरिका में हुई। उनके अध्ययन के मुख्य विषय थे गणित, इतिहास और भाषा विज्ञान। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ वर्षों तक काशी हिंदू विद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, और उसके बाद 1932 में गणित के प्रोफेसर बनकर पूना के फर्गुंस कॉलेज चले गए। 1946 में उन्हें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में आमंत्रित किया गया, जहां वे 16 वर्ष तक काम करते रहे। गणित के अतिरिक्त दामोदर धर्मानंद का उल्लेखनीय योगदान प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में भी रहा। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना की, जिनमें मुख्य है मिथ एंड रियलिटी, स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर, द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया एंड हेरिटेजिकल आउटलाइन। दामोदर ने पश्चिम के इतिहासकारों को इस स्थापना का तर्कपूर्ण खंडन किया कि भारत की पुरानी सभ्यता बाहरी प्रभाव का परिणाम है। उनकी मान्यता थी कि भारत की अपनी आंतरिक परिस्थितियों का परिणाम था, और फिर इस बात को उन्होंने सिद्ध करके भी बताया था। आइए आगे बढ़ते हैं, और आप सभी को कहना चाहूँगा कि विशेष दामोदर जी के बारे में बातें हो रही हैं, और इनकी जो है विशेष पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रिय पात्र होमी जहांगीर बाबा के साथ मतभेद के कारण प्रखर वैज्ञानिक चिंतक गणितज्ञ समाजशास्त्री और इतिहासकार दामोदर को संबी को TIFR में रहते हुए भी भारत के संदर्भ में परमाणु ऊर्जा की तुलना में और ऊर्जा को श्रेष्ठ ठहराने का मुखर और घोषित तर्क था। अपने इसी विश्वास के चलते उन्हें होमी बाबा ने अपने संस्थान से हटा दिया था। दामोदर धर्मानंद जी के उठाए मुद्दे पर बाद में शासन द्वारा अक्सर सवालों को यथासंभव दबाया गया और ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों की अनदेखी की गई, तो यहाँ पर भारत ने थोड़ी सी चूक कर दी। अगर इन चीज़ों को ले लिया होता तो इसके माध्यम से भारत में ऊर्जा का एक नया सूत्र जो है परिकल्पना की जा सकती थी, जिसके बारे में आज भारत काम करने में लगा हुआ है। जो अनुबम से परमाणु बनाए जा रहे हैं उसका सदुपयोग हो, इसके लिए कैसे वो काम किया जाए, इसके बारे में शायद ये चीज़ें यहाँ पर छू की थी। लेकिन फिर भी कोई नहीं, देर सही दुरुस्त, भारत फिर से इस पे काम करना शुरू कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत की तरफ। आप सुना है रेडियो माधवन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, सुनते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और चलिए, विशेष दामोदर जी के बारे में सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। आइए, अब मैं एक एक्ट्रेस के बारे में बात करना चाहूँगा। जी हाँ, आपको मैंने पहले ही कहा था कि आज हम लोग इनकी कहानी भी आपको सुनाएंगे, है ना? तो आइए, ममता जी के बारे में अगर बात करूँ मैं, तो ये एक भारत की बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्रियों में से एक, चुलबुली, हंसमुख और नटखट ममताज, जिस जमाने में फिल्म पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरती थी, उस समय उनकी अदाकारी के सभी जो है मुरीद थे। बॉलीवुड में जब ममताज का आगाज हुआ, उस समय अभिनेत्री का मतलब शर्मिली, सौम्य और शांत किरदार वाली महिला। लेकिन ममताज ने अपनी नटखट अदाओं और चुलबुले अंदाज से अभिनेत्री होने के सारे मायने ही बदल दिए। आपकी कसम, रूठी, अपना देश, खिलौना और सच्चा झूठा ममताज की यादगार फिल्में हैं। ममताज ने 12 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा। आइए उनकी कहानी सुनते हैं। आज ही के दिन 1947 को इनका जन्म हुआ था। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: केक? तो आज आपका?
1: जी हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। Happy birthday to me.
0: Happy birthday to you.
2: इन्होंने शुरुआत करी बतौर स्टंट हीरोइन। एक्शन फिल्मों में काम करते करते ये बन गई बेहतरीन रोमांटिक हीरोइन। नाम मुमताज। जन्म 31 जुलाई सन 1947 मुंबई में हुआ। पिता का नाम अब्दुल सलीम अस्करी और माता शादी हबीब आगा।

मात्र 12 साल की उम्र में मुमताज ने फिल्मों में कदम रखा। 60 के दशक में मुमताज बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम किया करती थीं। एक्स्ट्रास के छोटे मोटे रोल निभाते निभाते ये बन गईं रेसलर से हीरो बने दारा सिंह की हीरोइन।

ये किस्सा मशहूर है कि दारा सिंह के साथ कोई भी फिल्म हीरोइन काम नहीं करना चाह रही थी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर परेशान थे कि कहां से हीरोइन लाएं। ऐसे में डायरेक्टर की नज़र मुमताज पे पड़ी और उन्होंने दारा सिंह जी से कहा, क्या ये हीरोइन चलेगी? इस पर महान रेसलर ने बोला कि मुझे अपनी फिल्म से मतलब है, हीरोइन आप कोई भी रखें। और यूं मुमताज एक्स्ट्रा से बन गई हीरोइन।

दारा सिंह जी के साथ इनकी फिल्में रहीं बॉक्सर, सैमसन, टार्जन, किंग कॉन्ग, और इस तरह मुमताज के ऊपर एक लेबल लग गया कि ये सिर्फ एक्शन हीरोज के साथ ही काम कर सकती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि वो दौर रोमांटिक फिल्मों का दौर था, ऐसे में कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर और बड़ा हीरो मुमताज के साथ क्यों काम करता। पर धीरे धीरे सपोर्टिंग रोल्स करते हुए मुमताज ने अपनी जगह मेनस्ट्रीम रोमांटिक सिनेमा में भी बना ली। 1965 की फिल्म मेरे सनम में इनके काम को सराहा गया और किस्मत ने वो पलटी खाई कि दिलीप कुमार की हीरोइन मुमताज को बना गई। फिल्म राम और श्याम में दिलीप साहब के साथ मुमताज जी का काम खूब सराहा गया।

इस बीच ये बातें भी मशहूर हुईं कि शम्मी कपूर और मुमताज के बीच गहरा प्रेम संबंध बन गया है। ये बात भी मशहूर हुई कि शम्मी साहब और मुमताज जी शादी करने वाले थे, पर ये शादी क्यों नहीं हुई इसकी वजह मुमताज ने कई सालों के बाद बताई कि शम्मी साहब चाहते थे कि मुमताज घर पे रहें और फिल्मों से संन्यास ले लें, पर यह वो वक्त था जब मुमताज धीरे धीरे सफलता के शिखर को छू रही थीं और इन्होंने शम्मी साहब से शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया।

पर अभी भी मुमताज के कदमों से सुपरस्टारडम बहुत दूर था। ऐसे में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने इनका हाथ थामा। फिल्म दो रास्ते में इनकी जोड़ी सुपरहिट हो गई और उसके बाद इन दोनों ने एक साथ एक के बाद एक 8 सुपरहिट फिल्म्स दी। वक्त ने ऐसी करवट ली कि वो मुमताज जो फिल्म गहरा दाग में राजेंद्र कुमार की बहन का रोल कर रही थी, वही मुमताज फिल्म टांगे वाला में राजेंद्र कुमार की हीरोइन बन गई।

ये किस्सा भी मशहूर है कि लेजेंडरी एक्टर शशि कपूर ने मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। ये कहा था कि ये तो स्टंट फिल्मों की हीरोइन है, मैं क्यों इनके साथ काम करूं। फिर वो दौर आया जब राजेश खन्ना बड़े बड़े हीरोज को चित कर रहे थे और इससे शशि कपूर भी अछूते नहीं रहे और शशि साहब ने मुमताज जी से बहुत गुजारिश की कि वो उनके साथ एक फिल्म में काम करे। शुरुआत में मुमताज ने मना कर दिया पर बाद में कहा ठीक है मैं आपके साथ काम करूंगी और फिल्म चोर मचाए शोर में इनके काम को बहुत सराहा गया और ये फिल्म शशि कपूर के लिए सुपरहिट साबित हुई।

मुमताज ने 15 साल लंबे करियर में 108 फिल्मों में काम किया और सन 1970 की फिल्म खिलौना के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। मुमताज जी की जोड़ी धर्मेंद्र साहब के साथ खूब जमी, फिरोज खान साहब के साथ, संजीव कुमार और विश्वजीत के साथ भी।

0: जिंदा बसाएंगे ओ बुल्लू बुल्लू।
1: यहाँ तक कि एवरग्रीन लेजेंडरी देवानंद साहब के साथ ही मुमताज जी का काम बहुत सराहा गया और सन 1974 में जब मुमताज सफलता के शिखर पर राज कर रही थी, मयूर माधवानी से शादी कर फिल्मों से दूर चली गईं। हालांकि शादी के 12 साल के बाद इन्होंने फिर फिल्मों में वापसी की कोशिश की, पर वो फिल्म आंधियां चली नहीं और फिर मुमताज ने फिल्मों से परमानेंटली रिटायरमेंट ले ली।
2: पॉलिसी चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसे लोगों की तरफ इशारा जरूर करूंगी जो देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं।
1: मुमताज जी की दो बेटियां हैं, नताशा और तान्या, जिनमें बेटी नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से हुई।

0: मुमताज हमेशा से एक फाइटर रहीं और वो वक्त आया जब मुमताज को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने घेर लिया था, पर मुमताज ने कैंसर को मात दी।
1: सुबह का शाम का ना चैन से खाने देते हैं ना खेलने देते हैं, जब देखो गड़की ला के रख देते हैं।
0: सन 1996 में इन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। मुमताज उन हीरोइंस में से हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा का ब्लैक एंड व्हाइट दौर देखा, जिन्होंने बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम किया और उसके बाद ये बन गईं सुपरस्टार हीरोइन। भारतीय सिनेमा के इतिहास में मुमताज जी का नाम हमेशा अमर रहेगा।

तो ये थी ममता जी की कहानी, म्यूजिक ड्रामा डायलॉग के साथ आपको हमने सुनाया। आशा करूँगा आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, और एक सुंदर विचार के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। कहते हैं, ज़िंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। तो मुस्कुराइए, है ना। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM और कार्यक्रम शुरू हो चुका है युवा मंच का। और आज हमारे साथ एक गेस्ट है जिनसे हम जानेंगे कि करियर में हमें जो डिसीजंस लेने होते हैं, कभी कभी ऐसा पॉइंट आता है जब हमें ये जानने का होता है कि हमें आगे कौन से ऑप्शंस लेने हैं और कौन कौन से डाइवर्स फील्ड हमारे लिए ओपन है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे साथ एक करियर कोच हमारे साथ हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद
2: जी। हमारे साथ शोभित सर हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में। सर,
3: तो मैं एक करियर काउंसलर हूँ, लाइफ कोच हूँ और एक स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, और लखनऊ में मेरी सर्विसेज में प्रदान करता हूँ। हमारा ऑफिस यहाँ पर है। हमको इस फील्ड में काम करते हुए, सेवाएं देते हुए करीब 15 वर्ष हो गए हैं, और हम लोग अलग अलग स्कूल के साथ काम करते हैं। हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं ताकि उनको एक दिशा मिले जीवन।
2: जी सर, थैंक यू सर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की मुलाकात को। सबसे पहला सवाल लेकर कि जैसे कि कई बार हमारे पास चॉइसेस आती हैं, सबसे पहली चॉइस जो हमें लाइफ में मिलती है करियर को लेकर वो क्लास 10th के बाद मिलती है कि हमको साइंस में जाना है कि कॉमर्स में जाना है। सर, तो वहाँ हमारे कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, उनके मन में हमेशा उन्हें ये बताया जाता है कि जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो या जो तुम्हें अच्छा लगता है वहां जाओ, लेकिन मन में एक डर रहता है कि क्या मैं इस चीज को आगे कर पाऊंगा कि नहीं, इसका कितना स्कोप है। और कभी कभी व्यक्ति फैमिली प्रेशर में भी आ जाता है और पेरेंट्स प्रेशर देते हैं कि नहीं उन तुमको यही सब्जेक्ट लेना है, यही पढ़ना है। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहली चीज हम कैसे पहचाने कि हमें कहाँ जाना है, और अगर पेरेंट्स हमें फोर्स कर रहे हैं अगर इस चीज को लेके, तो हम उन्हें कैसे कन्विंस कर सकते हैं उस फील्ड में जाने के लिए।
3: तो आपने जो अपना प्रश्न पूछा है उसका मैं उत्तर कुछ 3 भागों में दूंगा, क्योंकि एक प्रश्न में कई प्रश्न और कई पहलू समाये हुए हैं।
2: जी,
3: तो जैसे पहले आपने कहा कि 10वीं के बाद बच्चों को एक मौका मिलता है चुनाव करने के लिए कि वो साइंस लें कि कॉमर्स लें, तो बच्चों के पास साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, जिसे आर्ट्स भी कहते हैं, ये 3 विकल्प होते हैं चुनने के लिए। और हर स्कूल ये 3 विकल्प जरूरी नहीं है कि वो दे। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आपके स्कूल में अगर ह्यूमैनिटीज नहीं है या फिर कॉमर्स नहीं है तो फिर ये मत समझिएगा वो विकल्प है ही नहीं दुनिया में या अन्य स्कूलों में। अब बात आती है कि हम ये चुनाव कैसे करें कि हम कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करें। तो अगर हम विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की, तो साइंस के लिए आमतौर पे स्कूल में कट ऑफ होता है कि जैसे जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के जो स्कूल होते हैं वहां पर कहते हैं कि अगर 80% से ज्यादा आपके अंक आए हैं 10वीं के बोर्ड की परीक्षा में तो आप साइंस के लिए आप चुनाव करिए। और ये न्यूनतम जिसे एलिजिबिलिटी कहते हैं वो ऐसा कहते हैं। फिर साइंस जो विषय है इसको अन्य विद्यालय, अन्य स्कूल भी देते हैं, और वहां पर जिसे कहेंगे कि परसेंटेज कट ऑफ हो सकता है 65 हो जाए, 70 हो जाए, या 60 ही रहे, ऐसा भी होता है। तो जरूरी है कि बच्चों को ये बात समझें कि विज्ञान में भी हमारे पास क्या अलग अलग शाखाएं हैं साइंस में। जैसे साइंस में अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स का होना जरूरी होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, और अगर किसी को जीव जंतु और पेड़ पौधों में रुचि है तो उनको बायोलॉजी लेना होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये भी अलग क्षेत्र है जो कि व्यक्ति साइंस लेकर उसको आगे कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं उस क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए आमतौर पर कोई कट ऑफ नहीं होता है और इसको कोई भी विद्यार्थी अपना जो है करियर के रूप में या अपने इच्छा या रुचि के अनुकूल उस विषय का वो चयन चुनाव कर सकता है। लेकिन बात ये समझनी होगी कि हर करियर जो है अच्छा करियर है, और ये बात ये धारणा अवधारणा बनाना कि अगर विज्ञान हमने लिया है साइंस हमने लिया है तो हम बुद्धिमान मन समझे जाएंगे, और यदि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज आर्ट्स लिया है तो हमको मंद बुद्धि का समझा जाएगा, कहेंगे कमजोर है पढ़ाई में तो भी आपने ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स ले लिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जहां पर हमारी रुचि होती है वहां पर हम विषय का उस सब्जेक्ट का हम चुनाव करेंगे तो हम सफलता को प्राप्त करेंगे। तो दूसरा पहलू आपने कहा कि माता पिता जोर करते हैं, एक एक प्रकार का जैसे आपने कहा प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं कि आप फला फला सब्जेक्ट स्ट्रीम ही आप चुनाव करेंगे। आमतौर पर देखा गया है कि माता पिता जिस क्षेत्र में होते हैं वो उसी क्षेत्र में बच्चों को अपने विषय का चुनाव करने के लिए प्रेरित करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर माता पिता डॉक्टर हैं तो वो चाहेंगे कि बेटा पीसीबी बायोलॉजी विषय लें, अगर माता पिता इंजीनियर्स हैं तो वो चाहेंगे पीसीएम लें, और अगर माता पिता बिजनेस में हैं तो कहेंगे कि आप कॉमर्स दो बेटा, और अगर माता पिता संगीत में हैं तो वो प्रेरणा देंगे बच्चों को संगीत में जाएं, अगर वो कत्थक घराने से हैं तो कहेंगे कि आप ह्यूमैनिटीज लेकर कत्थक आगे घर के नाम को रोशन करिए, आप आगे लेके चलिए। कोई अगर साइकोलॉजी में है और वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो भी उनको प्रेरणा देंगे कि ह्यूमैनिटीज में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लें। तो बच्चों को खुद, या एक तो बच्चों को ना क्योंकि 15 वर्ष की आयु होती है 16 वर्ष की आयु होती है, आज के समय में बच्चों के पास जानकारी उपलब्ध कराने की कमी नहीं है। गूगल के माध्यम से वो ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा विवेकशील बनना होगा। और जैसे आपने सवाल हमसे पूछा, ये सवाल आप गूगल से पूछेंगे और गूगल ये सारी जानकारी आपको वहां पर विस्तार से आपको देगा कि 10वीं के बाद कौन कौन से विषय हमारे पास हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हम आज के समय में डिजिटल युग जिसे कहते हैं, हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं, सारी सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं, सारा काम ऑनलाइन हो गया है, यहाँ तक घर बैठे आपको सामान मिल जाता है, खाना सब्जियां मिल जाती हैं, और अगर आपको प्लम्बर चाहिए इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो वो भी घर बैठे आप कई एप्स हैं जैसे ऊबर है, ऊबर सर्विसेज, वहां से आप सेवाएं ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से जानकारी भी हम हर प्रकार की गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम

0: इस बात में मूंझ जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक रुचि होती है मनोरंजन के लिए और एक रुचि होती है पैसा कमाने के लिए। तो दिन भर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा हम क्या काम करेंगे? जैसे लोगों, क्या हमको धूप में बाहर बाजार में घूमना अच्छा लगता है? तो कई युवा कहेंगे हाँ अच्छा लगता है, लेकिन क्या रोज आपको ये काम अच्छा लगेगा, 8 घंटा 14 घंटा रोज करना? हाँ, तो ये एक प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो या फिर कहते हैं कि हमको गैजेट के साथ, हाँ गैजेट के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो शौकिया अच्छा लगता है? जैसे कि कुछ लोगों को फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिट करना, फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसको रोज आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वो भी 8 घंटा निरंतर, 14 घंटा निरंतर? हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के रूप में आ गया है, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बनना ये भी एक प्रोफेशन के रूप में आ गया है। तो ये हमको पूछना होगा अपने आप से, और ये अलग करना होगा। रुचियों की जो मनोरंजन के लिए है वो अलग है, और जीविका के लिए जो हमारी रुचियां हैं वो अलग हैं। तो इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम नहीं आकलन कर पा रहे हैं, तो हम वैज्ञानिक तरीके से, साइकोमेट्रिक टेस्ट के माध्यम से, एक करियर काउंसलर से परामर्श लेकर और एक एक सुलझे हुए और वैज्ञानिक ढंग से हम अपनी काबिलियत, अपने एप्टीट्यूड को, अपनी क्षमताओं को और अपनी रुचियों को समझ सकते हैं।
1: जी सर, बहुत अच्छा लगा जान के। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे हम अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ की पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए, और हम ये नहीं
0: जी
1: सोच सकते कि वो दूसरा व्यक्ति वो ले रहा है या उसको, मेरे को क्या होगा करके, अगर मन में डर है तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। और ये तो सर हमारे स्कूल की बात हो गई कि यहाँ पे हमने 10th के बाद चॉइस ली, यही चीज़ 12th के बाद भी अप्लीकेबल होगा कि इस फील्ड में हमको जाना है, उसकी प्रॉपर रिसर्च करके इंटरनेट में सारी जानकारी हमें मिल जाती है और हम अपने उस स्ट्रीम में जा सकते हैं। सर, अब जब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज में आ गए, कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, लेकिन जैसे मैं पर्सनली बात करूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग करते करते या कोई भी जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में कुछ एडिशनल स्किल्स भी हमें जरूरत होती है कि हम जब फ्यूचर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो वहाँ वो स्किल्स चाहिए जो कॉलेज में हमें नहीं सिखाई जाती, या हो सकता है कि कई कॉलेजों में वो चीज़ें स्किल्स सिखाई नहीं जाती, होता क्या है वो सब बताया ना जाता हो। तो कौन कौन से स्किल्स है? पहली चीज तो ये कि वो जो हम सीखें जो हमें आगे जॉब में काम आए, और हम वो कहाँ से सीख सकते हैं?
0: देखिए, स्किल्स जो होती है ना, दो प्रकार की होती हैं। अगर हम उसकी शाखाएं बनाए, एक हार्ड स्किल्स होती है और एक सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। तो ये दोनों ही हमको जरूरत होती है जीवन में सफलता पाने के लिए। हार्ड स्किल होगी जो कि आपके विषय से संबंधित है। तो जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग की जो शाखाएं हैं वो 22 से भी ज्यादा शाखाएं वर्तमान में हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मरीन, पेट्रोलियम, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। तो आप जिस इंजीनियरिंग एरिया में स्पेशलाइज करना चाहते हैं, उसके हार्ड स्किल्स तो आपको सीखने होंगे, और उसके लिए ऑनलाइन माध्यम से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर आप ऐप मेकिंग का ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। आप जैसे टैली और जो बेसिक एमएस ऑफिस है वो आना जरूरी हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में बहुत ढेर सारे काम को कम समय में, जिससे करने में पहले काफी समय लगता था, वो तुरंत खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार की कलाओं को हम अगर सर्टिफिकेशन के माध्यम से या फिर डिप्लोमा के माध्यम से, हम डिग्री कोर्स के साथ साथ हम उसको करें तो हमको लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हमें कुछ प्रैक्टिकल काम, हाँ व्यवहारिक काम करने का मौका मिलता है, देखिए डिग्री कोर्सेज में 1 महीने या 2 महीने का इंटर्नशिप मिलता है करने को, लेकिन जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स मिलते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि असल जिंदगी से संबंध रखते हैं, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए संबंध रखते हैं। तो हमें अगर मौका मिलता है किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो सहयोग करके सीखने के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाने

0: के लिए, तो ये विन विन सिचुएशन होती है और बच्चों को काफी उसमें जानकारी मिलती है, स्किल एनहांसमेंट होता है उसमें। फिर उनको समझ में आता है कि किताबी रूप से तो कैसा लग रहा है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल रूप से किया जाएगा तो वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स, देखा गया है कि जब उन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया और वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो ब्लड देखते हैं और फिर डाइसेक्शन बॉडी का करना होता है, तो कई बच्चे ना वो बेहोश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, और फिर वो
1: जी सर,
0: डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये भी एक मौका मिलता है अपने को आकलन करने के लिए कि क्या प्रैक्टिकल में मेरे लिए वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब एक होता है ना कि डबल श्योरिटी हमारे लिए हो जाती है। तो इसके अलावा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एम्पैथी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इस तरह की कलाएं भी हमको अपने अंदर विकसित करनी होती है, क्योंकि विजडम और होशियारी का होना बहुत जरूरी है, और वो तब हमारे अंदर आएगा जब हम इन सब चीजों को भी उतनी ही अहमियत देंगे जितना हम हार्ड स्किल्स को देते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स को भी हमको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सारा काम दुनिया समाज में एक संगठन में होता है, ग्रुप में होता है। तो टीम स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, हाँ, ये सब भी हमको आना चाहिए, और ये तब आएगा जब हम वॉलंटियर करेंगे अपने आप को, कॉलेज के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेंगे, या कॉलेज के बाहर हमें कुछ करने को मिलता है तो उसमें हम भाग लेंगे।
1: जी सर। और ये भी है कि अभी हमारी सबकी छुट्टियां आ रही हैं गर्मी की, और स्कूल्स में भी और कॉलेज में भी इस समय हॉलीडेज पड़ने वाली है, तो हम इस हॉलीडे जो हमें वेकेशन मिला है, हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को बिल्डअप करने के लिए कि वो हमें फ्यूचर में काम आए, जॉब में क्या क्या कर सकते हैं वो आपसे जानना चाहेंगे सर।
0: बहुत कुछ कर सकते हैं। छुट्टियों का मतलब ये होता है कि बच्चे और यूथ उसको ना एंजॉयमेंट के साथ उसको कोरिलेट करते हैं,
1: जी सर,
0: और ये एक मौका मिलता है कि हम एंजॉय करें, लेकिन एंजॉय को अपने लक्ष्य से हम मिलाकर चलें। तो जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग वो सीख सकते हैं, फोटोग्राफी है, गार्डनिंग है, कुकिंग है, कई प्रकार की चीजें आप ऑफलाइन तरीके से ट्यूशन लेकर आप सीख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन तरीके से सीख सकते हैं। कई प्रकार के सर्टिफिकेशंस हैं जो कि एक दिन से लेकर एक महीने के या 3 महीने के होते हैं, और 1 घंटा 2 घंटा आपको देना होता है उसको, 5 डेज अ वीक या ऑल्टरनेट 3 डेज अ वीक। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो गया, या हेल्थ केयर न्यूट्रिशन के ऊपर कोर्स हो गया, तो इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और हम लोगों को एक राय दे सकते हैं। आमतौर पर देखा गया है यूथ जब उनको कॉलेज में ऐसे पेइंग गेस्ट की तरह रहना होता है, हॉस्टल में रहना होता है, तो उनकी सेहत खराब हो जाती है। तो न्यूट्रिशन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे तो वो उस समय तो उनको फायदा करेगा, लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद भी वो उनको फायदा देगा, क्योंकि वो जो समय होता है 18 से 22 23 वर्ष की आयु में, वो हेल्थ का पीक जिसे कहते हैं, वहां तक जाने के लिए, जो कि युवा अवस्था होती है, वहां जा सकते हैं। तो अगर पोषण अच्छा मिलता है शरीर को, तो मन भी स्वस्थ रहता है और तन भी स्वस्थ रहता है। इसके अलावा कई प्रकार की रीडिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरीज होती हैं, या फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं, या एजुकेशनल वीडियोस पॉडकास्ट हैं, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, या वो दर्शन फिलोसफी से संबंधित हो, या वर्तमान में विश्व में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स को लेकर। आजकल वर्चुअल वर्कशॉप्स और वेबिनार, जिनके पास पैसा है तो वो पैसा खर्च करके, जैसे मैं आपको बताऊं, ऋषिवर यूनिवर्सिटी 15 दिन की पॉलिसी मेकिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है, समर कैंप, जो कि सोनीपत में है। तो
1: जी
0: कहने का मतलब ये है कि भारत में जब गर्मियां आती हैं तो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और केवल यूथ और कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि किंडरगार्टन, प्राइमरी और जूनियर स्कूल के बच्चों के लिए भी तमाम एक्टिविटीज पब्लिक डोमेन में हमको देखने को मिलती हैं। तो वो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, हाँ, कई प्रकार के। आज तो पिनिंटरेस्ट एक ऐप है जहाँ पर काफी DIY, जिसको कहते हैं डू इट योरसेल्फ, वो सीखने को मिलता है, या फिर फिटनेस और वेलनेस को लेकर, जैसे वर्कआउट वीडियोस देख सकते हैं, या फिर योगा क्लासेस हैं, सेल्फ अवेयरनेस वेलनेस को लेकर, स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन हाँ, इन सब चीजों के प्रति भी थोड़ा समय निकाल सकते हैं, जो कि बहुत फन इंटरेस्टिंग होता है, और मिलके अगर करा जाए तो हाँ एक एक सुंदर एक्टिविटी बनती है, जहाँ पर हम लोग शेयरिंग भी करते हैं और प्रेम भी बढ़ता है लोगों का, क्योंकि सेहत भी अच्छी हो रही है और मन मन दुरुस्त भी, जैसे कहते हैं, मन भी दुरुस्त हमारा बनता है, या फिर हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, तो जैसे मम्मी पापा महीने खर्चा देते हैं 5,000 रुपये या 3,000 रुपये या 10,000 रुपये या 20,000 रुपये खर्च करने के लिए, तो हम थोड़ा समझें कि हम पर्सनल फाइनेंस बजटिंग कैसे करें, और रुपए को हम कैसे बचा सकते हैं, या किसी को गिफ्ट करना है तो हम कितना पैसे रखें, अगर हमको दान करना है, मन में भावना आती है तो उसके लिए कितना पैसा निकाल के रखें, हमें कोई सामान कपड़े खरीदने हैं या हमको खाने का सामान खरीदना है, आजकल फ्रेंडशिप्स बहुत होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, तो वहां पर कितना, या कोई कोर्स हमें करना है, तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की समझ है इसके प्रति भी जागरूक होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ लैंग्वेज लर्निंग, तो भाषा भी अगर सीखना चाहें, क्योंकि विश्व भी एक छोटा होता जा रहा है, तो चाहे वो भारत में तो तमाम भाषाएं हैं, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, आप हिंदी और उर्दू और उड़िया, बहुत भाषाएं हैं, लेकिन जैसे कि फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, तो अगर कोई युवा विदेश में रहना चाहता है तो जिस देश में रहना चाहता है वहां की अगर भाषा भी सीखना शुरू करे थोड़ा थोड़ा, तो उनको काफी लाभ मिलेगा, और वहां पर संबंध, रिलेशनशिप बिल्डिंग वो अच्छा कर पाएंगे, और जीवन में सफलता पाने के लिए रिलेशनशिप का होना भी जरूरी होता है। तो देखिए बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, और अगर ऑनलाइन बात करें तो कोर्सेरा, यूडेमी, खान अकेडमी, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बहुत तरह की आप फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में, रुपए में आप कोर्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से यूथ अपना टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं।
1: जी सर, और हम जब स्किल्स की बात कर ही रहे हैं तो हमारे युवा ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में कौन कौन से स्किल्स हैं जो बहुत ज्यादा डिमांड में रहेंगी, क्योंकि कईयों का सवाल होता है कि जैसे जो चीज ज्यादा यूज आगे होने वाली है, जैसे AI हो गया या और भी कई सारी चीजें हैं जो आगे आ रही हैं, तो कौन सी वो स्किल्स हैं जो हम करें जिसका हमें आगे फ्यूचर में लाभ रहेगा?
0: देखिए जो न्यू एज करियर्स हैं वो सारा सारा काम डिजिटल हो रहा है अभी, और पेपर लेस काम हो रहा है, ई पेपर की तरफ चीजें शिफ्ट हो रही हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी, सबसे पहले मैं टेक्नोलॉजी का नाम लूंगा, एक बहुत ही बड़ा बूमिंग करियर है जो कि अब रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता ही जाएगा, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी, आप देखिए कितना ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, तो अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाऊं, तो उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखिए, तो वो ये जो फील्ड है ये बूमिंग फील्ड है, और बहुत पैसा है इसमें, और भारत जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, KPMG की रिपोर्ट हमारे सामने आई है, और वो यही बात दर्शाती है कि भारत आने वाले समय में 2040, 2050, इट वुड बी लाइक वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लिव एंड वर्क इन फॉर। तो टेक्नोलॉजी एक बड़ा एरिया है, दूसरा हेल्थ केयर, हाँ, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी, हाँ देखिए मेडिकल में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो गया, हेल्थ केयर में भी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो चाहे जैसे नर्सेस हो, या फिर मेडिकल टेक्नीशियंस हो, या फिर हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, या फिजिशियंस हो, उनके असिस्टेंट्स हो, तो और आप देखिए बीमारियां भी कितनी बढ़ती जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ा एक एरिया होगा। फार्मेसी, जैसे बैचलर्स इन फार्मा कहते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी, हम लोगों ने कोविड देखा था, तो कोविड में देखिए सारे प्रोफेशन एक तरह से ठप हो गए थे, लेकिन हेल्थ केयर वो सबसे आगे था। और अगर देखा जाए तो हम, अगर हम इतिहास देखें 100 साल का, तो जैसे जैसे एक एक दशक बीतता गया है बीमारियां और बढ़ती गई हैं, बीमारियां कम नहीं हुई हैं, और नई नई बीमारियां आ गई हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो हेल्थ केयर इज अ बूमिंग सेक्टर। तीसरा, ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो क्लाइमेट चेंज हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, इन्वायरमेंटल साइंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सब बहुत बड़े करियर्स हैं, क्योंकि ये सब प्रकृति से संबंधित रखते हैं और मनुष्य का जीवन आसान बनाते हैं, तो अगर हम सोलर पे काम करते हैं या विंड एनर्जी पे काम करते हैं या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर अर्बन प्लानिंग, टाउनशिप प्लानिंग, सस्टेनेबल जो की है, तो ये करियर्स भी युवाओं के लिए बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा काम है। आज देखिए घर बैठे हर व्यक्ति सामान चाहते हैं, तो उसके लिए बैंकिंग का भी काम होता है। तो फाइनेंस और फिन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, देखिए हर शब्द में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस का तो बहुत बड़ा फील्ड है ही, लेकिन चाहे वो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है या फिर वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है, तो या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो फाइनेंस भी बहुत अच्छा इवॉल्विंग, रैपिडली डेवलपिंग करियर है युवाओं के लिए। और पैसा अब देखा जाए तो वो हार्ड करेंसी यूज नहीं होती, कैश यूज नहीं होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है। तो ई कॉमर्स, पेमेंट ट्रांजैक्शन सब डिजिटल तरीके से हो रहे हैं, तो इसमें लोग अच्छा करियर बना सकते हैं। और एग्जाम्पल हम देखें तो पेटीएम का हमने एग्जाम्पल देखा है और जीपे का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। और आप यूथ हैं, आप खुद हमको बताइए वेदांत, ऐसे कौन से माध्यम है जिससे यूथ अभी पेमेंट करते हैं? आप बताइए मुझे दो ऐसे नाम।
1: सर, जिससे हम लोग अभी ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे।
0: हाँ देखिए आपने फोन पे एक तीसरा नाम हमको बताया। तो युवा काफी स्मार्ट है और उनको मालूम है कि क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो रिमोट लर्निंग जिसको यानी टीचिंग में जाना जाता है, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आज के समय में ऑनलाइन टीचिंग बहुत हो गया है। तो जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो अपने आप को वो ऑनलाइन टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागोजी से वो अपने आप को इक्विप करे, ताकि वह शिक्षा ऑफलाइन अगर नहीं है तो ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकता है। और आजकल तो लोग अपने कोर्सेज बना देते हैं ऑनलाइन और फिर उसको बेचते हैं। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर ज्ञान है जो कि लोगों को उससे फायदा हो सकता है, तो उसको एक ऑनलाइन कोर्स बनाकर भी आप उसको बेच सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी की मैंने बात करी, ये बहुत बहुत ही बूमिंग करियर है, सोफेस्टिकेटेड करियर है, क्योंकि बहुत तरह तरीके से ठग बैठे हुए हैं और वो भी पढ़े लिखे ठग। तो पढ़े लिखे ठगों को पढ़े लिखे लोग ही अच्छे से उनको निपटारा कर सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी लोग प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में उनका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है कि वहां पे, और गवर्नमेंट तो काम करती ही है, तो हर शहर में, हर स्टेट में, भारत में वहां पर साइबर सिक्योरिटी का पूरा विभाग होता है, बहुत बड़ा विभाग है। और दिन प्रतिदिन इसके जो तरीके हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे एथिकल हैकिंग हो गया या साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो भी जब कोई बिजनेस कोई करता है तो उसके बारे में भी सोचता है और कंसल्टेंसी लेते हैं। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी एक बढ़ता हुआ फील्ड है। तो
1: जी सर,
0: अगर कोई रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं, तो बहुत कुछ ये सब न्यू एज करियर्स का फायदा ले सकते हैं।
1: जी सर। और एक सवाल फिर मेरा यहाँ पे एक और आता है कि
0: जी
1: इंटर्नशिप्स को लेकर, क्योंकि अभी मैं भी अपने थर्ड ईयर में हूँ, जहाँ पे हमें कहा जा रहा है कॉलेज की तरफ से कि हमें इंटर्नशिप करनी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि गाइडलाइंस हमें नहीं दी जाती हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ हम कॉलेज में सीख रहे हैं और जो चीज़, क्योंकि मैंने भी देखा कि जो चीज़ हम कॉलेज में सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट हमें नहीं सिखाया जा रहा है, बट हम जब किसी इंडस्ट्री में गए तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ें हमने देखी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तो कुछ और ही डिमांड है जो हमें कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब इंटर्नशिप के लिए, और हमें कोई फैकल्टी हमें बता भी नहीं रहा है सपोज कि हमें कहाँ जाना है, कौन इंटर्नशिप के लिए कहाँ हम अप्लाई करें, तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि कंपनीज डायरेक्ट तो एंटरटेन करती नहीं है स्टूडेंट्स को, तो कैसे हम अप्लाई करें, कौन से ऐसे साइट्स या पोर्टल हैं, या क्या तरीका है किसी कंपनी को अप्रोच करने का इंटर्नशिप के लिए?
0: देखिए इसके लिए मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स को ना ये ट्रांजिशन युग है, ये जो समय, वर्तमान का समय चल रहा है, ये बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, काम करने के ढंग बदलते जा रहे हैं, तो अपने आप को अडेप्ट करना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट को लेकर ना अपने आप को अडेप्ट करना होगा, एंड दे हैव टू बिकम प्रोएक्टिव। विच मीन कि वो फर्स्ट ईयर से ही वो खुद अपने लेवल पे पता करें, और अब कि उनका जो इंटरेस्ट है, वो जो बनना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्चुअरियल साइंटिस्ट बनना चाहता है और उसने एक्चुअरीज की वो स्टडी कर रहा है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है एक्चुअरीज में. एक्चुअरीज का काम मतलब होता है इंश्योरेंस प्लानिंग से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस, वेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा. तो वो जो स्टूडेंट है वो फिर फर्स्ट ईयर से ही सोचना शुरू कर देता है कि अगर मुझे एक एक्चुअल साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी कंपनीज है जहां मैं अप्लाई कर सकता हूँ. तो उसकी वो लिस्ट बनाता है, तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट बनाएगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट बनाएगा, और वो स्टेट लेवल की लिस्ट बनाएगा, और वो जोन जैसे नॉर्थ जोन, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऐसे करके लिस्ट बनाएगा और एक नेशनल लिस्ट बनाएगा, कीपिंग इन माइंड कि फैमिली या उसकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस उसको ये इजाजत देते हैं कि वो उस शहर में, उस स्थान में जाकर वो इंटर्नशिप कर सके. तो इसी प्रकार से और इन सब चीजों में समय लगता है. फिर दूसरा जो कॉलेज का प्लेसमेंट होता है, तो आपके जो प्लेसमेंट हेड होते हैं उनसे फिर आप एक विवेकशील और एक समझदारी से आप बात कर पाएंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और कॉलेज आपको क्या दे रहा है. फिर आप उनको भी दिशा दिखा सकते हैं कि मैम सर हम चाह रहे थे कि आप नॉर्थ इंडिया में हमको जॉब्स दें, हमने एक लिस्ट खुद बनाई है जो गवर्नमेंट की है और प्राइवेट की है, अगर आप इस तरफ कोशिश करें तो हमको फायदा मिल सकता है. तीसरा जो लिस्ट आप प्रिपेयर करते हैं उन कंपनीज के एचआर डिपार्टमेंट में आप अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं अपनी खुद मेहनत करके कि यू आर इंटरेस्टेड, आप इस कॉलेज में हैं और आप 2 महीने का इंटर्नशिप करना चाहते हैं. आप वो इंटर्नशिप लेटर अपने कॉलेज से इशू करवा सकते हैं और वो ईमेल में आप भेज भी सकते हैं साथ में. अगर वो लेटर मिल जाता है समय से, अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कम से कम आप ईमेल भेजिए और उसमें लिख सकते हैं कि कॉलेज से जो हमको लेटर मिलेगा वो हम बाद में आपको भेज देंगे, अभी हम लोग को इशू नहीं हुआ है, ऐसे करके. इसके अलावा अगर आपके रिश्तेदार हैं या आपके घर परिवार में कोई ऐसे काम करते हैं जैसे कि वो इंश्योरेंस एजेंट है, फॉर एग्जांपल मैं यही एग्जांपल लेकर आगे चलता हूँ, और तो आपको अगर मौका मिलता है उनको सहयोग करने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए, तो वो भी आपके लिए इंटर्नशिप का काम करेगा. जरूरी नहीं है कि इंटर्नशिप एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो या फिर एक लार्ज स्केल कंपनी में हो. अगर वो कोई स्टार्टअप है या छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि छोटे में ना बहुत तरह के काम करना होता है, जॉब रोटेशन बहुत होता है, तो सीखने का मौका बहुत मिलता है. तो स्टूडेंट्स को तैयार होना चाहिए अलग अलग काम सीखने के लिए, ना कि कई बार स्टूडेंट्स के अंदर ये होता है कि ये तो हमने इंटर्नशिप में हमको नहीं बताया गया था हमको सिखाएंगे या हमको काम देंगे, अरे इंटर्नशिप पे हमको ले लिया है लेकिन बहुत काम हमसे कराते हैं. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
1: जी सर जी.
0: हाँ, तो स्टूडेंट्स को भी तैयार होना होता है कि अगर उनको जीवन में कुछ करना है, सफलता पानी, बड़ी सफलता पानी है, तो एक लक्ष्य को लेकर उनको चलना होगा, उसके प्रति मेहनत करनी होगी. इसके अलावा कई प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि नॉमिनल फीस लेती हैं और वो आपको समय समय पर बताती हैं कि आप कहाँ जॉब कर सकते हैं या फिर आपको इंटर्नशिप कहाँ मिल सकती है. और कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज या इंटर्नशिप एजेंसीज होती हैं जो कि कॉलेज के साथ टाई अप कर लेती हैं और सारे ही स्टूडेंट को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने के लिए काम करती हैं. तो ये सब चीजें पता करके हम अपने कॉलेज के जो चेयरमैन है या प्लेसमेंट के जो हेड हैं उनके साथ हम ये शेयर कर सकते. जैसे लखनऊ में यहाँ पर एक इंटर्नशिप कंपनी है जो कि एमबीए स्टूडेंट्स को वो इंटर्नशिप कराती है, तो उनका कॉलेज के साथ टाई अप है और कॉलेज स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देती है कि अगर आप कॉलेज के थ्रू इंटर्नशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर आप खुद अपनी इंटर्नशिप कहीं पर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. और जो इंटर्नशिप डिपार्टमेंट बना है तो वो कई ऑप्शन स्टूडेंट्स देते हैं, तो इस तरीके से भी इंटर्नशिप का काम होता है.
1: जी सर. सर आपने ये भी बात एक बताई कि हम एचआर डिपार्टमेंट में अपना रिज्यूम भी भेज सकते हैं. रिज्यूमे भेजने से फिर हम ईमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. तो सर यहाँ एक क्वेश्चन ये भी होता है हमारे युवाओं का कि कि हम रिज्यूमे में ऐसे कौन सी पॉइंट्स को डालें या बनाने का क्या सही तरीका है, प्रॉपर वो एटीएस फ्रेंडली हो, कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु है जिन्हें हम उसमें लिखें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और वो एक अच्छा पोर्टफोलियो का काम करे, उसकी थोड़ी टिप्स लेना चाहेंगे आपसे।
0: वेदांत, इसमें युवाओं को ध्यान देना होगा, पहले जिस कंपनी में उन्होंने अप्लाई किया है वो कंपनी क्या करती है। मैंने

0: बार स्टूडेंट्स को देखा है वो इंटर्नशिप सीवी भेज देंगे और लिखेंगे हमको आपके यहाँ इंटर्नशिप करना है। अरे इंटर्नशिप तो करना है लेकिन आप किस एरिया में इंटर्नशिप करना चाहते हो वो तो लिखो। फिर अगर मान लीजिए एचआर ने फोन किया और फिर उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी के बारे में आपको कैसे मालूम चला या हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं मैम सॉरी वो तो मुझे मालूम नहीं है अभी। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा
1: जी
0: हूँ?
1: सर जी
0: हाँ, तो स्टूडेंट्स को जो वो बनना चाहते हैं उस हिसाब से वो कंपनीज की जैसे सिलेक्शन लिस्ट बना ली तो वो हर कंपनी के बारे में रिसर्च करें कि वहां पे क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो कंपनी बनाती है। और अगर वो खुद एक एक एनालिसिस कर पाए कि अपॉर्चुनिटी गैप क्या है और कंपनी के एचआर को बताए कि मैम हमने आपकी वेबसाइट और आपके प्रोडक्ट्स है उसके बारे में हमने कुछ एनालिसिस किया और हमको लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी गैप है, इस तरह की बातें अगर एचआर सुनते हैं या फिर जो भी इंटर्नशिप रिक्रूटर समझता है वो काफी इंप्रेस होगा। या फिर हम उनको खुद बोलें कि आई एम ओपन टू, अगर आपको समझ में नहीं आता, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि हमें किस चीज में इंटर्नशिप करनी है, बस चूंकि वो हमको 2 महीने का बोला गया है हमको मार्क्स मिलेंगे तो हमको इंटर्नशिप करनी है, तो फिर वो सच बोले फिर एचआर वो कंपनीज में कि आई एम ओपन टू डू इंटर्नशिप इन एनी फील्ड और आई एम लाइक अ फ्रेशर, तो आप जो जैसा गाइड करेंगे हम उस रूप से करेंगे। तो इंटर्नशिप कराने के लिए अब तो जो कंपनीज है वो चार्ज करती हैं जैसे 3,000 रुपीज, 5,000 रुपीज
1: जी
0: इफ
1: सर
0: द स्टूडेंट इज नॉट केपेबल एट ऑल पर मंथ। जैसे मैं बात करूं जो क्लिनिकल साइकोलॉजी सेटिंग है तो हॉस्पिटल में कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप करने, तो उनको फिर 3,000 रुपीज पर मंथ या 5,000 रुपीज पर मंथ फीस देनी होती है वो काम सीखने के लिए। आप समझ रहे हो? अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना टाइम निकाल कर और अपने रिसोर्सेज निकाल रहा है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा, और ऑर्गेनाइजेशन की क्या जिम्मेदारी है कि वो हर स्टूडेंट को वो ट्रेन करें, क्यों ट्रेन करें? हाँ, और क्या स्टूडेंट क्या वैल्यू ऐड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि ऑर्गेनाइजेशन जानता है कि इस स्टूडेंट छोड़ के चला जाएगा, 2 महीना आया है उसको तो अपनी अपनी बस रिपोर्ट बनानी है, एंजॉय करेगा चला जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो द स्टूडेंट हैज टू प्रिपेयर हिमसेल्फ टू शो द ऑर्गेनाइजेशन एज एज अ वैल्यूएबल एसेट, और ये दिखाना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल रहेगा और अगर मौका मिलेगा या सब ठीक रहेगा तो मे बी ही कुड ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो।
1: जी सर
0: आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो
1: यस सर
0: इट वर्क्स बोथ वेज, क्योंकि इंडस्ट्री इज ऑल्सो लुकिंग फॉर गुड गुड ह्यूमन रिसोर्स, और लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को भी समझदार होना होगा क्योंकि आज के समय में एम्प्लॉयमेंट की क्या कहते हैं जो लोग
1: बहुत
0: सीवी,
1: कमी चल रही थी।
0: हाँ तो बहुत लोग आप जॉब तो बहुत लोग लेना चाहते हैं लेकिन जॉब कम
1: सीट्स नहीं
0: लोगों को
1: है।
0: मिलती है, फिर
1: जी
0: हाँ
1: सर
0: वो इसी कारण से। तो सीवी जो हम लिखेंगे सीवी में हम फिर हमारा हर सीवी अलग होगा, हम एक सीवी बनाकर 10 20 30 कंपनी में नहीं भेज सकते हम, ये बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं।
1: जी सर
0: हाँ तो हर कंपनी को स्टडी करिए उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस प्रोफाइल या किस इंटर्नशिप टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे उस हिसाब से अपने सीवी को ट्वीक करिए और वो कस्टमाइज करिए अपने सीवी को, तब भेजिए। और फिर फॉलो अप करना जरूरी होता है, ऐसा नहीं बस ईमेल डाल के छोड़ दिया, उसके उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, कॉलिंग नंबर दिया होता है, तो उनको फिर कॉल करके मैसेज करके डाला जाता है कि मैम सर थैंक यू और ईमेल, इट विल बी वेरी कॉन्सिडरेट ऑफ यू इफ यू कुड यू नो सेंड मी एन एक्नॉलेजमेंट रिप्लाई और इफ समथिंग कैन बी लुक्ड इनटू इट, आई एम टोटली फाइन एट योर कन्वीनियंस, जो भी टाइम आप देंगे हम उस टाइम पर आकर मिलने के लिए भी तैयार हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि आई कैन कम ओनली एट दिस टाइम, आप तो
1: जी
0: कंपनी एचआर को लगता है अरे अभी तो कुछ
1: सर
0: यू नो दे विल थिंक यू नो, मैं आपको बहुत रॉ शब्द में बता के अभी तो पंख भी नहीं निकले और ये लोग ऐसे बात कर रहे
1: हाँ
0: हैं।
1: सर ऐसा बोलते हैं जी।
0: हाँ सो यू, और कई बार स्टूडेंट्स के अंदर ये मेंटालिटी होती है हम बहुत होशियार हैं हम तो सब कुछ कर लेंगे, इन लोगों को तो कुछ नहीं आता, जो लोग कंपनियां चला रहे हैं उन लोगों को तो कुछ नहीं आता, हमें जितना आता है, दे हैव दिस
1: सर
0: मेंटालिटी, सो दे नीड टू यू नो कम इन टर्म्स विद द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉट लिव इन इन अ बलून इन अ बबल, क्योंकि
1: यस सर
0: जब वो बबल अचानक फूटता है ना तो फिर बहुत दुख होता है।
1: हाँ सर, वही सर, क्योंकि कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कोई एक चीज उन्हें ज्यादा अच्छी आती है, तो वो फिर वही समझने लगते हैं कि हमको ये चीज बहुत अच्छी आती है, अगर इनकी जगह मैं होता तो बहुत अच्छे से करके दिखाता। लेकिन जब वो रियलिटी आती है उनके सामने, तब वो उसे फेस नहीं कर पाते, और इसी वजह से फिर उनका जो वहाँ बिहेवियर है और बाकी सब चीजें वहाँ पे इफेक्ट होता है।
0: बिकॉज लाइफ इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, वो एक मुखी नहीं है, वो बहुमुखी है. तो स्टूडेंट्स जब काम करते हैं तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या दो तीन मतलब है, बस उतना ही है. पर जब आप रियल जिंदगी में आते हैं तो आपको सारा मतलब आंख नाक कान सब कुछ एकदम अलर्ट रखकर और आपको काम करना होता है, और आपको एक स्किल नहीं मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए टू परफॉर्म एंड एंड टू बी अ रोल मॉडल ऑफ एक्सीलेंस.
1: जी सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई और ये सब बहुत जरूरी था। लास्ट, अब हम शो को खत्म करते हैं सर, आपसे लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द की टू बी सक्सेसफुल इन एनी करियर?
0: ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है. और समझे कि टू बी सक्सेसफुल, जो सफलता की मैं आपको 10 चाबियां बताता हूं. मैं टू बी सक्सेसफुल, पहली चाबी है कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए और आपके अंदर प्रेरणा होना चाहिए और रुचि होनी चाहिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति, और वो स्थायी परमानेंट होना चाहिए, टेम्पररी नहीं. अगर टेम्पररी है तो समझ लीजिए वो मनोरंजन वाला आपका काम है. अगर वो स्थायी रहता है, बना रहता है, और जितना भी मेहनत करने के लिए हमको समय देना चाहिए उसमें सफल होने के लिए, तो पहली चाबी ये है. दूसरा है कि हमें निरंतर सीखने की हमारे अंदर ये वृत्ति होनी चाहिए कि हम निरंतर अपने आप को सीखें. हम हर तीसरे साल, दूसरे साल, अपने बदलते हुए समय के हिसाब से जो कलाएं हमको विकसित करनी है उसको हम विकसित करें. तीसरा, बिना मेहनत के तो हम सफल नहीं हो सकते, तो परसिवियरेंस, कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट हमको होना बहुत जरूरी है. और हमारे सामने चुनौतियां भी आएंगी तो हम ये सोचे चुनौती आ गई तो चलो सारा काम रोक कर बैठ जाओ, जब चुनौती खत्म हो जाएगी तब हम फिर से शुरू करेंगे, तो वहां पर वो ब्रेक लग गया. तो हमें ये अपने आप को बनाना होगा कि समस्या आई लेकिन काम चल रहा है, समस्याओं से भी निपट रहे हैं और काम भी चल रहा है. फिर चौथा, गोल सेटिंग. गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट अगर हमें सफलता में चाहिए, कि जैसे 10 साल का हमने हमारा लक्ष्य है, लेकिन उसको छोटे छोटे गोल्स में, हर पहला साल का गोल, दूसरा साल का गोल, जिसको हम एक्शनेबल भी बनाए, मेजरेबल भी बनाए, और उसको समय समय पर हम उसका आंकलन करते रहे, उसको असेस करते रहे. और जो गोल्स हम बनाए वो अचीवेबल होने चाहिए, वो ख्वाबी ड्रीम गोल्स नहीं होने चाहिए, दे शुड बी रियलिस्टिक गोल.
1: जी सर,
0: पांचवा, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग. आज के समय में अगर आपके अच्छे संबंध लोगों के साथ नहीं है तो फिर ये गारंटी है कि आप भले कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपके नंबर कितने अच्छे हो, कितनी भी कलाएं आपके अंदर हो, अगर आपके अंदर संबंध लोगों के साथ अच्छे नहीं है तो फिर आपको मौके जीवन में नहीं मिल पाएंगे, या अगर जो मौके होंगे वो सब आपसे छूट जाएंगे. तो कल्टिवेटिंग गुड रिलेशनशिप्स हमारे पीयर्स, हमारे सहपाठियों के साथ, हमारे मेंटर्स के साथ, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ, ये जरूरी है. और मैं तो कहता हूँ कि रिलेशनशिप बिल्डिंग तो घर से शुरू होती है, अपने भाई बहन, माता पिता, अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छे बनाए. फिर छठा पॉइंट मैं बोलूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी. जैसे कई बार चेंज को लोग रेजिस्ट करते हैं, आप पुराने तरीके से ही काम करना चाहते हैं, नई चीजों को अपनाते नहीं है. तो नई चीजों को अपना कर हमारी तरक्की हो सकती है अगर हम उसको ना बोल देंगे. हाँ, जैसे
1: जी सर,
0: अभी कई लोग कहते हैं कि अरे नहीं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया कोर्स कर रहे हैं, अब जैसे चल रहा है चलने दो, अब
1: जी
0: टाइम निकालना पड़ेगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं है. तो वो टाइम निकालिए, वो होता है शार्पनिंग योर एक्स जिसे कहते हैं. तो हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं तेज तीव्रता से बदलते हुए समय में. फिर सातवीं बात है कि प्रभावशाली वक्तव्य, मतलब वार्तालाप, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हमारा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए. और बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, जितना जरूरत है, जितना मतलब का है वो आप बोलिए, और चाहे वो लिखित रिटन हो, चाहे वो वर्बल हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होगा तो हमारे संबंध भी लोगों के साथ अच्छे बनते हैं और हम अपने विचारों को अच्छे से हम लोगों के साथ साझा कर पाते हैं. आठवीं बात, प्रोफेशनलिज्म और इंटेग्रिटी, कैरेक्टर होना चाहिए। तो हमारे अंदर जैसे हमने जो कहा वो हमने किया, अगर हमने नहीं कहा तो आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर इट। तो ये मतलब प्रोफेशनलिज्म हम अपने ध्यान में रखें, चाहे वो क्लाइंट्स हो, हमारे स्टेक होल्डर्स हो, हमारे कोलीग्स हो, तो उससे क्या होता है, विश्वास और क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। और नाइन्थ पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारा मतलब भावनात्मक रूप से हम बहुत समझदार हो, हमारे अंदर ये ज्ञान इस चीज का होना चाहिए कि हम जैसे कोई आया किसी ने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, ये प्रॉब्लम है, बॉस ने ऐसे मुझे बोल दिया, ये काम मैं कब से कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, और मैं कहूँ हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दुख दर्द को, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो बताना, जितना हो पाएगा मैं करूंगा। तो इस तरीके से हम जब लोगों के साथ डील करते हैं तो ये भी हमको सफलता की तरफ लेके जाता है। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। तो हम ये कई बार क्या होते हैं, लोग वन डायरेक्शनल हो जाते हैं, प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन पर्सनल लाइफ बहुत खराब है, या पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन लाइफ में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों को बैलेंस करते हुए हम चलेंगे तो एक होलिस्टिक जिसे सक्सेस बोलते हैं लाइफ में वो हमको मिल पाएगी। तो ये 10 सूत्र, 10 में चाबियां आपको सफलता की मैं आपको देना चाहूंगा।
1: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हमारे श्रोता जो भी हमें सुन रहे थे, जो भी युवा हमें सुन रहे थे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। कई सवाल थे उनके जिनका जवाब आपने हमें दिया, और ये बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये क्योंकि सबसे ज्यादा युवाओं को ही समस्या आती है, क्योंकि यही एक पीक पॉइंट है जहाँ पे उन्हें अपने करियर के लिए सोचना पड़ता है, जॉब्स के लिए सोचना पड़ता है, जहाँ पे उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो
0: जी
1: सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और सर आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहते हैं?
0: मुझे लगता है मैं इतना बहुत कुछ बोल चुका हूँ,
1: बहुत कुछ
0: इसके
1: सर।
0: अलावा और क्या मैं बोलूँ।
1: जी सर। और वही

0: चीजें बताई हमको, कंपनी में इसका अप्लाई किया जाता है, ये सब कई सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती है, लेकिन जैसे सर आपने बताया उस तरह हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप सुन रहे थे अभी युवा मंच कार्यक्रम रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, और हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ एक नया डिस्कशन लेकर आपके साथ। सर थैंक यू, सर थैंक यू सो मच।
1: Thank you so much for inviting me. I wish everyone a very successful and a bright career ahead.
0: थैंक
1: और
0: यू,
1: वेदांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण देने का.
0: थैंक यू सर। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपके दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच आज की ये शुक्रवार की खूबसूरत शाम बिताने आई हूं। आपके लिए लेकर आई हूं आज कहानी, कविता, साथ ही साथ मजेदार कुछ बातें भी जो जुड़ी हैं सहारा ऐसे मरुस्थल से। साथ ही साथ हम और आप जुड़े रहेंगे रेडियो मधुबन के अन्य अन्य भागों से भी। लाइक प्यारी सी कविता, पूछा जाएगा आप दोस्तों से सवाल भी, जिसका जवाब आप देंगे 9414151415 पर। आप सुन रहे उड़ान, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। यू नो योर रिलेशनशिप इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिलेशनशिप नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव, ये चीटिंग है अपने आप से दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन एंड असर्टिव। डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड। हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर। आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड। बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी वो बाहर अपने आप आएगी, वी विल नॉट हैव टू डू इट। एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं। तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी वेरी कम्फर्टेबल बिटवीन द टू पीपल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

वेल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज की अमेजिंग जानकारी आप दोस्तों के लिए जरूर पहुंचाते हैं, क्योंकि आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ, जहां बात कर रहे हैं हम अटकामा रेगिस्तान की। वैसे तो राजस्थान में रहते हुए हम सभी को रेगिस्तान के विषय में ढेरों बातें पता है, और शायद राजस्थान का हर व्यक्ति रेगिस्तान की सैर तो कर ही चुका होगा, लेकिन यदि नहीं किया, पर इन जानकारियों के आधार पर आप अपने राजस्थान के इस रेगिस्तान की यात्रा जरूर कर सकते हो। मैं बात कर रही हूँ अटकामा डेजर्ट की। यहाँ बारिश लगभग नहीं के बराबर होती है। यह जगह है अटकामा रेगिस्तान, जो चिली देश में प्रशांत महासागर के किनारे बसा है। यह धरती की वो सबसे सूखी जगह है जहाँ इंसान बसते हैं, और यहाँ रहते हुए इंसानों ने पानी के अभाव में भी जीना सीख लिया है। कहते हैं यह जगह इतनी सूखी है कि कुछ जगहों पर तो औसतन सिर्फ 1.1 to 1.15 मिलीलीटर बारिश ही होती है, यानी इतना कम कि आपका एक कॉफ़ी का मग भी भरने में सालों लग जाए। जी हाँ दोस्तों, सालों। और इसे यहाँ पर ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए इसके विषय पर बातें आपको बताते हैं। यहाँ पर डबल रेन शेडो है, अर्थात यहाँ पर डबल रेन शेडो की वजह से बूंद भर भी बारिश नहीं होती। इसके पीछे ये कारण है कि जब समुद्र की तरफ से पानी से भरे बादल आते हैं, लेकिन रास्ते में एक ऊंचा पहाड़ आ जाता है और बादल उस पहाड़ को पार नहीं कर पाते, तो पहाड़ के एक ही ओर सारी बारिश कर देते। इस तरह पहाड़ की पीछे की ओर का जो भाग है वो सूखा का सूखा रह जाता है। इसीलिए इस जगह को रेन शैडो एरिया कहा जाता है। इतनी सारी जानकारी के साथ साथ आज का सवाल आपके लिए जरूर लेकर आ रही हूँ मैं मोना।

दोस्तों सवाल है, अपनी नहरों के लिए प्रसिद्ध वेनिस किस देश में स्थित है? अपनी नहरों के लिए प्रसिद्ध वेनिस किस देश में स्थित है? आपके लिए ऑप्शन है ए फ्रांस, बी इटली, सी स्पेन। सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, हम बाबा के बच्चे हैं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM में हमारे श्रोतागण जुड़ चुके हैं। बात कर लेते हैं, कैसे हैं सर, कौन बोल रहे हैं?
4: ओम शांति, गुड इवनिंग दीदी, कैसे हो?
3: बहुत अच्छे, शुक्रिया कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
4: क्या हो रहा है दीदी, 8-10 दिन से ये टेक्निकल फॉल्ट या बारिश के वजह से कट कट हो रहा है रेडियो मधुबन।
3: अच्छा।
4: कनेक्ट होता है पर आवाज बीच बीच में दो दो चार चार पाँच पाँच मिनट के लिए जाती है।
3: अच्छा।
4: और हाँ,
3: ओके ओके,
4: और इसीलिए समझता भी नहीं वो लिंक। और दूसरी बात, प्रोग्राम तो हम सुनते हैं और आपका राठौर परिवार की कहानी भी हम सुनते हैं। हुआ है
3: जी,
4: आपको पिज्जा बहुत पसंद है और
3: जी, जी, जी, जी।
4: और रोहिणी जी तो मोबाइल में बहुत ही प्रवीण है, इंटरनेट मीडिया में
3: जी,
4: वो
3: जी।
4: अंकल को भी बताती है
3: जी।
4: कि अंकल हमको कविता मत सुना दे जाओ, अच्छी है कविता आपकी।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ कौन जुड़े हैं?
1: हेलो, नमस्कार, ओम शांति। हमारी प्यारी मुन्ना बहन जी, मैं दयाराम भाई बोल रहा हूँ।
0: दयाराम जी, काफी दिनों बाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। चलिए दयाराम जी, क्योंकि आप जुड़े हैं तो एक बार पुनः सभी दोस्तों को भी सुना देती हूँ आज का सवाल और फिर बात करते हैं। अपनी नहरों के लिए प्रसिद्ध वेनिस शहर किस देश में स्थित है? ए फ्रांस, बी इटली, सी स्पेन। जी अब बात करिए।
1: और आपको प्यार भरा नमस्कार मुन्ना बहन जी, बहुत दिनों के बाद कॉल किया है। और मेरा जो मोबाइल ना, मेरा मोबाइल था तो वो रिसीज हो गया था, तो सभी नंबर चले गए थे।
0: जी जी जी जी, ओके ओके ओके।
1: और मैं रेडियो मधुबन के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो मेरे श्रोता मित्र है, मेरे सुरेश भाई दर्जी जोटोना से और कंचन भाई और सभी रेडियो सुनने वाले।
0: जी
1: सुरेश भाई जो आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, तो सुरेश भाई आप मुझे कॉल करिए, मेरे पास नंबर है नहीं, आप सभी के चले गए है, मेरा फोन रिसीव हो गया था।
0: जी जी, थैंक यू। बताइए।
1: मैं जवाब तो दीदी देता हूँ, थोड़ी देर के बाद दे दूंगा। और आपको और सुनने वाले सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है,
0: थैंक यू। चलिए दोस्तों, हमारे दयाराम जी काफी दिनों बाद हमारे साथ जुड़े, लेकिन बात है नदी और सागर के मिलन की। पर्वत की ऊंचाइयों से निकलकर कलकल करती बहती जाती ये नदी, मन में एक ही प्यास लिए वो सागर से मिलने आती नदी। राह में कितने कांटे आए, पत्थरों ने रास्ता रोका, पर उस पागल निर्मल मन को किसी ने कभी यहाँ है रोका। खोकर अपना रूप कहीं वह सागर में जा मिलती है, मिटा के अपना अलग अस्तित्व वह महासागर बन जाती है। जीवन का यह सत्य यही है, कुछ पाने के लिए

खोना पड़ता है, नदी को अपनी पहचान मिटाकर पूरा सागर होना पड़ता है। चलिए इस खूबसूरत कविता के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। पुनः एक बार सवाल दोहराते, अपनी नहरों के लिए प्रसिद्ध वेनिस किस देश में स्थित है? ए फ्रांस, बी इटली, सी स्पेन। झटपट जवाब दीजिए 9414151415 पर दीजिए।

0: हाय रे, तालाब का पूरा पानी सूख गया। अब क्या होगा? पानी न मिलने पर खेत की सारी फसल सूख जाएगी। ओ किसान भाई, पानी नहीं है, जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है। जल की कोई व्यवस्था नहीं हुई तो परेशानी होगी। मालिक कुछ कीजिए, तालाब सूख गए हैं, थोड़ा गहरा करके कटाई करने पर अगर।
1: नहीं नहीं, अभी मैं तुम लोगों की किसी भी तरह कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी अभी हालत बहुत खराब है।
0: मालिक, आज गांव की सारी प्रजा आपके पास आई है खेत की फसल बचाने के लिए। मालिक, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो सभी बीवी बच्चों के साथ मर जाएंगे। मालिक
2: मालिक मालिक, अगर एक कुआ भी खुदवा देते तो।
1: जुबरा, बेवकूफ कहीं का, कुआ खुदाई कराने का खर्च पता है? अगर एक कुआ भी खुदवा देते तो कुआ खुदाई कोई बच्चों का खेल है क्या? चल भागो, जाओ।
3: अरे अरे, देखो देखो देखो, तुम खुद ना खाकर कुत्तों को खिलाना बंद कर दो बेटा।
4: खा खा खा खा खा।

0: बैठा बैठा रोटियां बर्बाद कर रहा है, खुद तो खा ही रहा है, ऊपर से कुत्तों को भी खिला रहा है। खुद के रोजगार का को तो नामो निशान नहीं और कुत्तों को खिला रहा है।
1: ओहो, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप?
0: ना कहूँ, क्यों ना कहूँ। खेत में अगर फसल सूख गई तो फिर माँ बेटे क्या खाओगे, ये सोच लो। सुने नवाबजादे, आज से तेरा खाना बिल्कुल बंद। पहले कमाई करके ला, उसके बाद ही घर में घुसना। चल जा मेरी नजर के सामने से, चला जा।
1: सुनिए जी, अरे अरे क्या कर रहे हैं आप, रुक जाइए ना।
0: अरे तुम चुप रहो, खड़ा क्यों है, जा जा, रोजगार करना, उसके बाद ही इस घर में अपना चेहरा दिखाना।
2: ये तुम क्या कर रहे हो कालू? लालू मैं घर नहीं जाऊंगा, छोड़ दो।
3: अरे सुन सुन लालू, कालू अगर रोजगार कर पाऊंगा तभी घर वापस आऊंगा, वरना नहीं। जाओ,
2: तुम लोग वापस चले जाओ, जाओ जाओ जाओ जाओ।

0: हुजूर, उस मंदिर का दरवाजा खोला नहीं जा सकता।
1: लेकिन क्या सन्यासी कभी उस मंदिर के अंदर नहीं गया?
2: नहीं हुजूर।
3: वो तो उसी मंदिर के सामने बैठा रहता है।
1: तो जाओ, नजर रखो, जब घुसे तो बताना। उस सन्यासी की हत्या करके उसमें जो भी संपत्ति छुपाई गई है सब लूट लूंगा।
3: कौन हो तुम इस समय इस जंगल में?
2: वो मुझे घर से निकाल दिया है। कहा है रोजगार करने के बाद ही घर वापस आना।
3: दिखने में तो तुम काफी अच्छे लग रहे हो। मेरे कुत्तों ने भी तुम्हें कुछ नहीं किया।
2: मैं कुत्तों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आप साधु होकर कुत्तों के साथ?
3: अरे पागल, मैं तो सामान्य हूँ, महासाधु। खुद सेवादास महाराज के पास कितने कुत्ते थे पता है? सुनो, भरोसा और प्यार, ये दोनों इन कुत्तों से सीखना चाहिए। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो इन कुत्तों से ज्यादा भरोसा और प्यार करना सिखा सकता है, याद रखना।
2: सही कहा, मैं कुत्तों से प्यार करता हूँ, इसी वजह से मुझे रोजगार वाली बात कहकर घर से निकाल दिया।
3: नहीं, ये तुम्हें शिक्षा मिलने के लिए हुआ है। सभी पूर्व निर्धारित है, पूर्व निर्धारित।
2: पूर्व निर्धारित? बाबा, साधु बाबा, बताइए ना, मेरे भाग्य में क्या है?
3: वो तो ऊपर वाला जानता है। सुनो, आज पूरी रात अगर मेरी सेवा करके तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया तो फिर मैं तुम्हें एक विद्या दे सकता हूँ जो जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगी।
2: हाँ हाँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, बोलिए।
3: ठीक है, तो फिर तुम मेरे लिए अभी भोजन की व्यवस्था करो।
2: जो आज्ञा।

0: ये क्या? साधु बाबा कहाँ चले गए? उन्होंने तो कहा था कि वो मुझे एक विद्या सिखाएंगे। लगता है साधु बाबा मेरे काम से खुश नहीं हुए।
1: कितने देर? हम इस मंदिर की संपत्ति संभालेंगे। ये
0: क्या? ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे सब समझ आ रहा है। तो फिर क्या साधु बाबा इसी विद्या के बारे में बोल रहे थे? ध्यान से उन लोगों की बात सुननी होगी।
2: ये आदमी अगर सारी संपत्ति लेकर सभी लोगों में बांट दे तो
3: संपत्ति।
0: सुनो, तुम लोग किस संपत्ति की बात कर रहे हो?
2: हाँ, वही संपत्ति जो इस मंदिर में है। तुम लोगे क्या?
3: मैं?
2: हाँ, उसके बाद उसे लोगों में बांट देना। समझ में आया?
0: ठीक है, ऐसा ही होगा।

0: ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलने वाला, इसके दरवाजे पर कुछ संकेत हैं, उसी से दरवाजा खुलेगा।
1: तो अब
0: वहाँ दीवार पर लिखा है ना, देखो एक टूटी हुई मूर्ति है, वहाँ पर चार बार गोल गोल करके उंगली घुमाओ।

0: वाह, समय आ गया है, चलो सभी जय माँ भवानी।
1: जय माँ भवानी।
2: बहुत लंबे समय से इस धन संपत्ति पर उसकी बुरी नजर थी, लेकिन मंदिर का दरवाजा ना खोल पाने की वजह से वो लोग इसे लूट नहीं पाए।
3: सत्यानाश,
2: ये दरवाजा अब बंद नहीं होगा। ये मंदिर हमेशा के लिए अब खुला ही रहेगा।
3: सुनो, मैं अकेले डकैतों से नहीं लड़ पाऊंगा ना, इसलिए ये बात गाँव वालों को बतानी ही पड़ेगी, चाहे जैसा भी हो। मैं जाता हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम लोग दरवाजे पर पहरेदारी करना।
2: मैं भी जाता हूँ।

तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है, इसलिए भागने की कोशिश मत करना। हथियार फेंक दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।

0: मंदिर बहुत पुराना है। ये मंदिर जमींदार चंद्रनाथ के घर का मंदिर था, लेकिन मैंने तो सुना था कि इसका दरवाजा खोला नहीं जा सकता।
1: वही तो। नयन, तुझे ये संकेत का कैसे पता चला बेटा?
2: कुत्तों की भाषा सीखने पर पिताजी।
1: क्या कुत्तों की भाषा?
2: हाँ पिताजी, इस मंदिर में एक साधु थे, उन्होंने ही मुझे ये विद्या दी थी, और इन सब कुत्तों ने ही मुझे ये बताया है कि ये संपत्ति गांव वालों के लिए है।
3: ये इस पुराने मंदिर के जमींदार चंद्रनाथ की वसीयत है, जिसमें लिखा हुआ है कि मंदिर की सारी संपत्ति का इस्तेमाल हमारे इस गांव की उन्नति के लिए किया जाएगा।
4: जमींदार साहब की जय हो।
5: जमींदार साहब की जय हो।
4: जमींदार साहब की जय हो।
1: आओ बेटा, आओ मेरे गले लग जाओ। आओ

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर
3: घर पीएम सूर्य घर, जी हाँ, एक ऐसी मुहिम जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सवाल का जवाब भी आप दोस्तों को दे देते हैं। अपनी नहरों के लिए प्रसिद्ध वेनिस किस देश में स्थित है? दोस्तों, वैसे तो नहर बहुत जगह पर है, हमारे देश में पंजाब नहरों के लिए फेमस है, लेकिन वेनिस में जो नहर है वो अपने आप में अनोखे हैं। और ये नहर एक्चुअली वहाँ के मेडिटेरियन सी का कुछ हिस्सा वहाँ के वेनिस शहर में पहुँचता है, और इसीलिए वहाँ पर बहुत नहर या कनाल्स हैं, और ये इटली में है। जी हाँ, वेनिस शहर बहुत खूबसूरत है, चर्चेस, वहाँ के खूबसूरत ये कनाल्स बहुत सुंदर हैं, और अपने आप में वहाँ की वाइब्स बहुत मज़ेदार है। तो ये नहर वाला जो क्षेत्र है वेनिस, ये इटली में है। फ्रांस और स्पेन सही जवाब नहीं है। कल मिलने का वादा है। अरे नहीं नहीं, आज तो शुक्रवार है। शुक्रिया आप दोस्तों का, सोमवार को मिलेंगे। तब तक उड़ान से कहना चाहेंगे गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: हम पश्चिम हो

0: मैं हूं सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूं। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस एक मिनट में मन को रखिए प्रभु के साथ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। गांव और अंचल को जब जाते बस सुनते नाम कितना खुशी लगता है, क्योंकि अपना गांव अपना अंचल जिस गांव जिस अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे वो गांव और अंचल को कभी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ देते हैं गाँव और अंचल परिवेश प्रकृति। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हर रोज की तरफ आज भी आपका पास रखने जा रहे एक कार्यक्रम जो कि बच्चों का हुनर बच्चों का टैलेंट को भाव और भावना को आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक का जो विशेषता जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंशा है वो चीज आज रख पा रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो तो सुनते हैं, कमर्शियल रेडियो भी सुनते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी रेडियो मीन्स योर रेडियो आपका रेडियो आपका द्वारा प्रसारित होता है। तो रेडियो मधुबन आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनार में पहुंचे और बच्चों का आवाज भी बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि हर विद्यालय का आवाज को रखते हैं, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय के सहयोग से मिलित भावना से आज इस कार्यक्रम को सजाएंगे सभी बारी बारी। तो हमें खुशी है इस तरह बढ़ चढ़ कर बच्चे जब भाग लेते हैं और इसका श्रेय तो माता पिता और संस्था का संस्था प्रधान का साथ सभी स्टाफ को जाता है, बच्चों को इस तरह उमंग उत्साह दिलाते हैं। तो देर किस बात की, पहले एक प्रार्थना के रूप में हमारा छात्राएं उपस्थित है तो उनको स्वागत करते हैं नाम का साथ। वो अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास और कहाँ से, क्योंकि रेडियो में जब उनका आवाज सुनेंगे तो पता चला ये किसका आवाज है। आवाज से कोई कोई पहचानेंगे, जिसको कोई सुना नहीं आवाज को वो कैसे पता चलेगा, इसलिए उनका नाम बताएंगे कौन सा क्लास। भले विद्यार्थी जीवन में अपना सहपाठी उनका आवाज को जानते जान लेंगे, लेकिन जो दूसरे बाहर लोग सुनते हैं ऑल इंडिया में कहीं पर भी सुनते हैं तो उनका आवाज सुनने के साथ साथ नाम और स्कूल का नाम जरूर ले। तो सभी को स्वागत करते हैं, अपना नाम और क्लास का साथ एक प्रार्थना शुरू कराएंगे।
1: मेरा नाम खुशबू है, मैं कक्षा 12 से हूँ और मैं चनार से हूँ।
2: मेरा नाम आफरीन है, मैं कक्षा 11 से हूँ और मैं चनार से हूँ।
3: मेरा नाम विश्ना है, मैं कक्षा 12 से हूँ और चनार से हूँ।
4: मेरा नाम दक्षा और मैं कक्षा 11 से हूँ और चनार से हूँ।
5: मेरा नाम अस्मिन है, मैं कक्षा 10 में हूँ।
1: क्या

उसे चुन लाऊं तेरे लिए। थाली में फल फूल लाए हम प्रभु के चरणों में, फल फूल लाए हम

0: भी।
1: बहुत सुंदर प्रस्तुति और भाव और भावना का साथ इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से प्रभु तक पहुंचाते हैं और अपना जो दिल का उद्गार और मन का बात प्रार्थना का रूप में हर विद्यालय में होता है। तो आज इस विद्यालय में भी बच्चे एक गीत का पूरा ये प्रार्थना सभी जगह में सभी विद्यालय में सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर गाते हैं। बहुत खुशी लगता है इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से जब भाग लेते हैं। तो बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे और क्या लक्ष्य रखे हैं? हमारा गुड़िया है, क्या नाम बताया?
0: खुशबू।
1: खुशबू। देखो नाम कितना खुशी लग रहा है, नाम सुनते ही खुशबू। खुशबू आज तो फैला रहे हैं, फूल का खुशबू आता है कि नहीं? तो आज खुशबू खुद नाम का खुशबू फैला रहे हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम में, क्योंकि एक मंच जिसका आवश्यकता था आज इन बच्चों को मिल रहा है। इसके लिए बच्चे तरसते हैं, लेकिन आज ये तो सरकार का धन्यवाद है क्योंकि सरकार इस तरह कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी बच्चों को देते हैं, जिसका चलते बच्चे अपना हुनर सिर्फ सीमित अंचल में क्यों सीमित रखे, अपना क्लास में, अपना विद्यालय में, अपना गांव में, पूरा जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन इस तरह मंच देते हैं, जिसका चलते उनका सुर लय और ताल का साथ अपना व्यक्तित्व को निखारते हैं। और जो आवश्यकता था आज मिल रहा है, और इस कार्यक्रम को सुंदर में मैम हमारा सजा रहे हैं और सर भी सजा रहे, तो उनको भी धन्यवाद देंगे और उनका भी दिल का बात सुनेंगे। लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे

तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले।

तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले।

तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: सुंदर प्रस्तुति सुनने के पश्चात ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और खासकर बच्चे सच्चे होते और उनका भावना आज जन जन तक पहुंचाए रेडियो मधुबन द्वारा, और इसका श्रेय तो सभी बच्चों को उनका माता पिता को भी जाता है, क्योंकि बच्चों को इस तरह आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देते हैं, चाहे जो भी संसाधन जो भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो इस कार्यक्रम को हमारा संस्था का प्रभारी वो भी उपस्थित है, मैम कैसे बच्चों को अनुशासन में रखते हैं, हमें बहुत खुशी लगा अनुशासन में बच्चों को रखते, पूरा साइलेंस में बच्चे बैठे, तो मैम अपना परिचय देंगे, मैम अपना परिचय देंगे और खासकर बच्चों का मेन जो लक्ष्य है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना, ये देखा मैंने, तो आप अपना परिचय देंगे मैम, आपका स्वागत।
1: थैंक यू, आपने हमारे स्कूल में मौका दिया इस बात के लिए।
0: जी मैम,
1: मेरा नाम सुमनलता मीणा, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनार की प्रिंसिपल ना होके व्याख्याता हूँ, सेकंड इंचार्ज। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो आदिवासी लोग के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनमें अनुशासन का असर बहुत ज्यादा है।
0: जी।
1: वो ज्यादा बोल नहीं पाते, बट अनुशासन उनमें पढ़ते भी हैं, पर विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी वो स्कूल से आते हैं, उनके घरों के जो हालात है आप देखते होंगे इतने अच्छे नहीं है, फिर भी वो यहाँ विद्यालय में आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमें खुशी है कि हम इनको अपने ज्ञान से इनके उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। थैंक यू।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैम को धन्यवाद देते हैं और सर को भी लेंगे, सर भी बच्चों का साथ आज कुछ उमंगों से और वार्म अप करा देंगे, बच्चे थोड़ा सा जो थोड़ा पीछे रह रहे उसको आगे बढ़ाने के लिए भी खुशी मिलेगा। सर से एक निवेदन है, सर बच्चों को ऐसे कार्यक्रम का माध्यम से देखते हुए वो भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे, आज वो अपना आवाज में गीत सुनाएंगे हमारा श्रोता मित्रों को और हमारा जो सामने बैठे सभी बच्चों को, और इस माध्यम से जो भी सुन रहे तो वो भी सर को जानते होंगे और जब सुनेंगे सर का परिचय तो उनको भी खुशी लगेगा, क्योंकि रेडियो कार्यक्रम में मंच कभी कभी मिलता, आज मिल रहा है, तो सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। जी सर।
2: जी।

0: मैं प्रीतम सिंह वरिष्ठ अध्यापक जीएसएस चनार जो ब्रह्म कुमारी से पधारे हुए मधुबन से आए हुए हमारे पवित्र भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ जीएसएस चनार में इन आदिवासी क्षेत्र में बच्चों के सामने इस प्रकार ये प्रोग्राम रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन बच्चों की जो खूबी है
1: जिस
0: इनमें प्रतिभा बहुत, प्रत्येक बच्चे में अपनी खूबी होती है। कहते हैं ना कि मछली जल की रानी होती है, वो कभी भी जंगल की रानी नहीं बन सकती। शेर जंगल का राजा होता है, वो कभी भी पानी का राजा नहीं बन सकता। इसका अर्थ कि प्रत्येक बच्चे में अपनी एक खूबी होती है, सिर्फ उसको निखारना ये बहुत बड़ी बात है। और इसको निखारने के लिए हमको भी इतनी दूर से लगाया गया है। हम चाहेंगे कि ये बच्चे बहुत आगे बढ़ें और अपना हुनर सबको दिखाएं। ये आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं बहुत दूर से आते हैं, हमें पता है इनकी परिस्थिति, जिन परिस्थितियों में ये हैं उन परिस्थितियों से, ऐसी बात नहीं है, हम भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर के आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम रखते रहें तो इन बच्चों की भी उत्साह बढ़ेगा और इनमें कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है कि हमें कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद के लिए धन्यवाद। लेकिन हम जो करते हैं, आप जो करते हैं, सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच है, जिस मंच का माध्यम से अपना बात को, भावना को और दिल का उद्गार को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और सभी का मोटिवेशन बच्चों का प्रति रहता है, सभी का लक्ष्य बच्चे आगे बढ़े, बच्चे अच्छा बने, देश का नाम रोशन करें। देश का नाम रोशन करने का पहले खुद का नाम रोशन करें, परिवार का और विद्या

तो आपका परिचय होगा कितना आप स्थित रहते हैं, स्वस्थिति में कितना स्थित रह पाते हैं, क्योंकि परिस्थिति को हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन स्वस्थिति हमारे हाथ में। हम वो परिस्थिति को, जैसे रास्ता में कोई पहाड़ गिर गया था, हमें पहाड़ को तो तोड़ नहीं पाएंगे, पहाड़ को साइड होकर हम निकलना है, नहीं तो समय हमारा बर्बाद होता है। तो इस तरह परिस्थिति देखिए, रामचंद्र का टाइम में जैसे आपने गीत के माध्यम से बोला भाई हमें इतना राम चाहिए, तो राम के पास भी परीक्षा आया था, है कि नहीं, उनका सीता को चोरी करके रावण ले गया था, वो भी कहानी आपको, उनका भी कितना परिस्थिति आया, जंगल में रहना पड़ा। परिस्थिति सबके लिए आता है, लेकिन हमें अपना स्थिति से, जैसे रामचंद्र अपना स्थिति बना के रखा, भले ये तो आया लेकिन वो तो जाएगा, कभी रहेगा नहीं वो, फिर सीता आपस आया कि नहीं, तो इसलिए बुद्धिमान कहते, इसलिए देवता कहते, भगवान कहते, इसलिए हमारे पास भी परिस्थिति आएगा, आता है कि नहीं, परिस्थिति सभी के पास परिस्थिति आता है कि नहीं, परिस्थिति आएगा, कि परिस्थिति आएगा तो आपको मजबूत कराएगा, ये ठीक है कि नहीं, इसलिए परिस्थिति को आने दो और हम अपना स्थिति में उसको पार करेंगे। पढ़ाई कर रहे तो परीक्षा आएगा कि नहीं, परीक्षा को डरेंगे नहीं, डरते बच्चे डरते परीक्षा जब समय आता डरते हैं नहीं, डरते तब तो उत्तीर्ण होगा आगे क्लास को, परीक्षा नहीं देंगे एग्जाम नहीं देंगे तो अगला क्लास को जाएंगे नहीं जा पाएंगे, तो हम परीक्षा को निमंत्रण करना चाहिए, आइए हम रेडी है मुकाबला करने के लिए, ऐसे साहस होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, इसलिए परिस्थिति अपना काम करे और हम अपना स्वस्थिति से मुकाबला करके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनकर एक कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, ये था खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चनार का सभी का आवाज, खासकर हमारा आज स्टाफ भी इस कार्यक्रम को बच्चों का साथ मिलकर एक आवाज का गुलदस्ता बन गया, सर का आवाज प्रीतम सर को धन्यवाद देते हैं, और मैम को भी धन्यवाद देते हैं, और बच्चों को भी धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्ते, कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए हमारा बच्ची उपस्थित है और स्कूल के नाम रोशन करने के लिए भले बहुत सारा बच्चे लेकिन एक बच्ची काफी होता है। जैसे रात को बहुत सारा तारे होते हैं लेकिन एक चांद पूरा रोशन कर देती है कि नहीं। हजारे तारे रहते हैं लेकिन फिर भी एक चांद होते हैं। जैसे हर स्कूल में इतने बच्चे होते हैं लेकिन एक दो बच्चे पूरा चांद का जैसे काम करते हैं, तो आज चांदनी का रात में जैसे चांद अपना प्रभाव विस्तार करते हैं। आज इस स्कूल के होबनार बच्चे जो सिलेक्टेड बच्चे उनको पुनः स्वागत करते हैं। तो नाम फिर से बताइए।
3: मेरा नाम आफरीन, मैं कक्षा 11 से चनार से।
2: सुनाओ गीत।
3: ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके।

0: ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और ऐसे बच्चे को जब मंच मिलता है तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, उनको एक मौका का आवश्यकता था। उनका जो हुनर है, जो टैलेंट है, इस तरह जब कंपटीशन हो, चाहे इंटर स्कूल कंपटीशन हो, चाहे कोई भी प्रतिभा को निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह सहयोग मिलता है जिसका चलते वो आगे बढ़ पाते। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सर, इसका बारे में क्या कहना चाहिए, इसके गीत का बारे में थोड़ा दो शब्द बताएंगे।
2: आफरीन हमारे विद्यालय की विद्यार्थी जो क्लास 11th में है
1: जी,
2: जिसने जो ये देशभक्ति गीत सुनाया है, वास्तव में कहते हैं कि अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश के प्रति प्रेम है ना, क्या होता है वो अपनी या तो आवाज से पता चलता है, या ऐसा नहीं है कि देश पे डटा हुआ जवान ही देश की रक्षा करता है। देश की रक्षा करने के लिए हम सभी देश की रक्षा करते हैं। अगर मैं हूं, मैं एक टीचर हूं, अगर मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा, आपका काम, आप विद्यार्थी हो, अगर विद्यार्थी अपना काम, इनका काम जो है, इनका काम क्या है विद्यार्थी का, विद्या का
1: अध्ययन
2: अर्जन करना, विद्या का अर्जन करना, इसका मतलब इनको पढ़ना है, इनको इनका जो काम है वो पूर्ण रूप से कर लें। जो मेरा काम है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर लूं, तो अपना देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, उन्नति कर जाएगा। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति, जैसे किसान है, किसान अपना कार्य ईमानदारी से करता है, ईमानदारी से करता है, फसल पैदा करता है और वो फसल पूरे देश के लिए काम आती है ना। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो चपरासी हो या कलेक्टर, जिसका जो कार्य है वो अपना कार्य अगर ईमानदारी से कर ले, है ना, कहीं हमें ना तो देश बॉर्डर पे जाने की जरूरत है ना। ये नहीं कि बॉर्डर पे जाकर ही हम देश की सेवा करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी देश की सेवा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सही बात, स्पष्ट रूप में बताया भाई, हम सभी एक एक सैनिक है देश बॉर्डर में, तो सैनिक हमारा भाई रहते हैं, लेकिन हम जो अंदर रहते हैं उनको सपोर्टिंग करते हैं, उनको जो चाहिए हम देते हैं, जैसे किसान सब कुछ देते हैं, शिक्षक एक अच्छा सैनिक बनाकर देते हैं, और शिक्षक को सरकार भी इतना सहयोग देते हैं, चाहे संसाधन भी मिलता है जिसका चलते वो आराम से बच्चों को पढ़ा पाते हैं, और बच्चे भी आराम से बढ़कर पढ़ते हैं क्योंकि संसाधन चाहिए, क्योंकि इसका चलते हमारा देश नाम रोशन करेगा और भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब हम सब ईमानदार से अटेंशन होकर हर कार्य को श्रेष्ठता रूप में देंगे, तो जरूर कामयाब होंगे, और हम सब कामयाब होंगे ही, जरूर हुए थे और होंगे, कोई नया चीज नहीं है, हम भूल चुके हैं लेकिन हम थे, अभी है और आगे भी होंगे, हम ही देश को आगे बढ़ाया था और आज हम ही आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे देश को, पहले हम खुद बढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा ईमानदार से, है ना सर। तो ईमानदार एक अच्छा वैल्यू है, सर्वश्रेष्ठ गुण है, ऐसे सभी बच्चों के पास विशेष गुण है, सब विशेष है, कोई किसका पास अवगुण नहीं है, अवगुण रहते भी एक विशेषता है जिसका चलते परमात्मा भगवान प्रभु आपको सिलेक्शन किया है मनुष्य जीवन में, भले हमें पता नहीं चलता लेकिन हमारे पास इतना विशेषता है, जो विशेषता कहीं ना कहीं काम में आता है, इसलिए कभी खुद को छोटा नहीं सोचना है, मैं बाहर बाहर में ऐसे सोचना है, मेरे जैसे कोई संसार में नहीं, इतना लोग है, कितना करोड़ लोग है, आपका जैसे शकल, आपका जैसे आवाज, आपका जैसे विचार दोबारा बच्चा भी होगा तब नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे होगा, हाँ कि नहीं सर।
2: बिल्कुल,
1: इसलिए खुद को महान सोच के ईमानदार से काम करेंगे तो हम महान आत्मा बन सकते, महान आत्मा बन सकते कि नहीं, महान आत्मा क्या, देवात्मा भी बन सकते हैं, दिव्य गुण रहेगा तो देवता बनते हैं, हर्षित मुक्तता, नम्रता, नियमितता, कौन कौन बच्चे नियमितता, नियमित स्कूल को आते हैं, विद्यालय में नियमित जो भी स्कूल खोलता है नियमित कौन आता है, रेगुलर, हाथ उठा देखी सर, हमारा देख रहे, मैम भी देख रहे, रेगुलर। विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण, विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण है नियमितता, क्या बोला,
3: नियमितता,
1: रेगुलरिटी, पूरा कभी भी छुट्टी नहीं, ऐसे होना चाहिए, जब नियमित आएंगे तो हमारा जो अध्यापक आपको अच्छे से ज्ञान सुनाएंगे, है ना सर? तो नियमित आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए?
2: ये तो है ही है,
1: आते ही
2: है। बिल्कुल, पहला ही है विद्यार्थी का पहला लक्षण ही है कि हमको रेगुलर आना है। विद्या अर्जित करने के लिए तो हमें रेगुलर रहना ही पड़ेगा,
1: अनुशासन में रहना है। तो इसका बात रेगुलरिटी हर रोज हम जब भी स्कूल खोलता है आना चाहिए। इसका बाद सभी गुण आ जाएगा, नम्रता आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, मधुरता आ जाएगा, सब आ जाएगा।
2: फिर भी सर हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना,
1: जी सर,
2: बहुत दूर से आते हैं, ये एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो किलोमीटर से आते हैं और इनको टाइम दे रखा है हमने 7:15 बजे, 7:20 तक ये लगभग लगभग 95% और अब तो 100% उपस्थिति हो जाती है 7:20 पे, 7:25 पे।
1: ये तो अनुशासन है,
2: ये है सबसे पहला अनुशासन इनका, यही है
1: समय से पहले आना।
2: आज इनकी उपस्थिति 7:20 पर, 7:30 का टाइम है लेकिन हमने इनको टाइम दे रखा है 7:15 बजे का, और 7:25 तक सभी बच्चे विद्यार्थी उपस्थित हो जाते हैं। देख लो,
1: देखो
2: कितनी परिस्थितियों से गुजर के आते हैं, इन्हीं को पता है।
1: जी जी,
2: आगे हमको पता है इनकी परिस्थिति,
1: हम भी पढ़ते तो हमको भी पता है, हम भी तो ऐसे परिस्थिति में पढ़ते हैं तब जाकर आगे बढ़े। परिस्थिति आएगा इतना, हम तो 7-8 किलोमीटर जाते सर,
2: बिल्कुल
1: पढ़ाई हमारा समय में इतना नजदीक नजदीक स्कूल नहीं था, हर ग्राम पंचायत भी तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉलेज, हमारा कॉलेज हमारा गांव में नहीं रहता था उड़ीसा में सर। 9th क्लास से बस 7th क्लास पढ़ने के लिए हमें 5 किलोमीटर, मैट्रिक 10th क्लास तक हम 5 किलोमीटर, फिर कॉलेज 12वीं क्लास करने के लिए हमको 10 किलोमीटर जाना पड़ता पैदल हो चाहे साइकिल, अभी तो मोटरसाइकिल उस समय नहीं था। और आप तो भाग्यवान है सभी, हमसे भी आप नजदीक है, एक ग्राम पंचायत का अंडर में रहते हैं, तो तब भी अभी का समय में आपको मुश्किल लग रहा है समय को, उस समय हमको मुश्किल लग रहा था, अभी आपको मुश्किल लग रहा है, मुश्किल तो आएगा ही लेकिन उसमें हमें पास होना है। पास होना है कि नहीं? पास होना है और पास रहना है, किसका पास? ऊपर वाला का पास, परमात्मा का पास। बुद्धि रहेगा ना तुम्हारा चार्जिंग होगा बैटरी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति होगा, अंतिम प्रस्तुति, वो भी हमारा सर ही कर देंगे लास्ट।

0: बढ़ाते हैं। अगला प्रस्तुति अंतिम प्रस्तुति होगी और ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय का जो मिलित सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है और सब सुन पा रहे सभी का आवाज को अंतिम की और हम चल रहे हैं और हमारा सर इस कार्यक्रम को सजाएंगे वंस मोर लास्ट सर स्वागत।
1: धन्यवाद सर आपका। हमारे जो एक आप पढ़ते आ रहे हो सर सिक्स क्लास से ट्वेल्थ तक सभी में पढ़ते हो या कबीर कबीर पढ़ते हो ना, कबीर का अर्थ क्या है पता है? कबीर कोई व्यक्ति का नाम नहीं था, सिर्फ हमने उसको नाम दे दिया गया। कबीर क्या है? का से करुणा, बा से बीज और रा से रम रहा। जिस व्यक्ति के अंदर करुणा का बीज रम रहा है वो व्यक्ति कबीर है, वो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति कबीर है। करुणा करुणा से ही हमें हमारे अंदर प्रेम की उत्पत्ति होती है। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करें है ना, प्रत्येक व्यक्ति से चाहे वो कैसा भी है ना, तो हमारे अंदर उसके प्रति करुणा है तो हम कबीर हैं। तो कबीर साहब का एक भजन है उससे इस प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर कबीर।

फिर आए हैं यहाँ सैलानी, हम पंछी परदेश मुसाफिर आए।

0: फिर बोलो सतगुरुदेव की जय।
1: तो कितना सुंदर और भाव का साथ, दिल का साथ गाए सर ने, और सभी को मन मुग्ध कर दिए। और पंछी आई और कभी भी जा सकती है। तो हम सब मेहमान है संसार में, आत्मा पंछी कभी भी उड़ सकती है और आई तो जाएगी। तो आज के लिए सबको धन्यवाद देते हैं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। और मैंने सोचा नहीं था सर इतना सुंदर रूप में गीत गाते हैं, और भाव और भावना का साथ सभी बच्चों को आत्मा साथ करा दिए, मन मुग्ध करा दिए, और वाणी में जो मधुरता वो विशेषता आज देखने को मिला। कि कबीर का जो वाणी, कबीर वाणी जो कहते हैं, वो वाणी में मधुरता सही में और गीत में भी मधुरता। और हमारा बच्चे भी मीठे बच्चे हैं, हमारा सभी बच्चे मीठे हैं, किंतु गीत मीठे सुने और मीठे गीत गाए तो मीठा वाणी में सभी मन मुग्ध हो गए। तो मैम को भी धन्यवाद देते हैं और सभी स्टाफ को, और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सभी ने सजाया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और सर भी अपना आवाज को रोक नहीं पाए, वांच मोर करके अपना कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी और
2: मौका मिला तो।
3: हाँ धन्यवाद साहब आपका, बहुत बहुत आप विद्यालय में आए।
1: मौका मिला तो सर मौका ढूंढ रहे थे और मौका मिल गया जैसे, तो चौका छक्का लगा दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गाए। देखो हाँ कि नहीं बच्चा अच्छे गए। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे सर, नमस्ते।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PMSuryaghar.gov.in पर।

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड्स से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाइए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाइए। याद रखें, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। रेडियो मधुबन 90.4।

0: रीमा सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के

आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाइए। याद रखे 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: मैं ढूंढई गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाइए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। हर

क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाइए। याद रखें, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। दोस्तों, कभी कभी ना जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ सब्जेक्ट टफ लगते हैं, कुछ आसान लगते हैं, पर फिर भी जिंदगी का सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। कभी कभी अपनी भावनाओं को समझना ही आसान नहीं लगता, और लगता है बाकी चीजें तो समझ में आ रही है पर खुद को कैसे समझे। तो अगर सवाल आपके दिल में भी है तो जवाब हमारे पास है, क्योंकि ये कार्यक्रम ही ऐसा है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ जाते हैं हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का, सीधा ग्लोबल अस्पताल से आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, और बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं रेडियो के माध्यम से भी। आपके साथ जुड़ते रहते हैं हम। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया आरुषि जी, बहुत अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से मिलकर, उनसे बातें करके, और खास कर अपनी इमोशंस को उनके साथ शेयर करके। जो हल्कापन, जो रिलैक्सेशन फील होता है, वो किसी और ही लेवल का होता है।
0: बिल्कुल, और वो हम समझ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत इजीली समझ रहे हैं, आसान भाषा में समझ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट श्रीनिधि जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी है। श्रीनिधि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी। कल्पना जी नमस्कार, हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। और एक और लव यू जिंदगी के एपिसोड में आते हैं तो कुछ और सीखने की तैयारी के साथ मैं वापस आ गए।
0: और हम बात कर रहे थे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी अपनी भावनाओं, यानी इमोशंस के बारे में। पिछले एपिसोड में भी बातें हुई थी, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले एक सवाल आया था जो मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, वो ये, किसी ने पूछा कि बहुत अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, कुछ चेंज भी नहीं हुआ होता है, लेकिन अचानक से बुरा लगने लगता है या डाउन लगने लगता है, लो फील होने लगता है, और कुछ हुआ भी नहीं होता है, तो ये अंदर क्या बदल जाता है कि ऐसा होता है कि अंदर उदासी लगने लगती है विदाउट एनीथिंग हैपनिंग, कैसा होता है, ऐसे क्या समझे?
1: जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। हमारी लाइफ एक, जैसे बोलते हैं ना, हार्ट का ये होता है, स्कैनिंग होती है, एनालिसिस होता है, तो हमारी लाइफ सीधी सीधी रेखा में नहीं है, तो हमारा ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे मूड का हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा हाथ होता है हमारे ब्रेन के केमिकल्स का। कई बार हमारी ब्रेन में कुछ ऐसी गड़बड़ियां उत्पन्न होती है कुछ समय के लिए, जिससे हमारा मूड, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होती है। और इसके लिए जब इस बात की समझ आती है कि ब्रेन के केमिकल्स का कुछ अप डाउन है, तब डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, किसी काउंसलर या किसी गाइड या साइकोथेरेपिस्ट को मिलकर इसके बारे में पूछताछ करना जरूरी है। परंतु ये हमारा जो सिम्टम है, ये 3 हफ्तों से ज्यादा अगर चले तभी हमें डॉक्टर की सलाह की जरूरत। अदरवाइज तो 24 घंटे में भी 3 बार या 4 बार हमारा मूड चेंज हो सकता है। सो ये एक नॉर्मल चीज है, जिसके कारण घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, इसके लिए हमें कुछ पैटर्न्स को पहचान कर उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हफ्ते में 2 या 3 बार मेरा मूड अपसेट हो जाता है या मुझे लो फील होता है और मुझे कहीं मन नहीं लगता है, तो वो कौन सा ऐसा समय है, क्या पैटर्न है मेरे मूड के अप डाउन होने का, उसको एक बार पहचान लेंगे और फिर उसके लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। जैसे मूड ठीक नहीं है तो हो सकता है मैंने नींद नहीं अच्छे से की है तो मैं अच्छी नींद ले लूं। मूड ठीक नहीं है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, हो सकता है मैंने खाना ठीक से नहीं खाया है या मुझे समय पर खाना नहीं मिला है, नींद नहीं हुई है। दूसरा, हो सकता है मैंने बाहर थोड़ा एक्सपोजर नहीं किया, बहुत लंबा समय तक अंदर ही अंदर बैठ के काम किया है, जैसे कई लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं और घर में बैठे रहते हैं, बाहर जाते नहीं है, तो बाहर की खुली हवा का, नेचर के सानिध्य का एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो बंद वातावरण में हो सकता है मेरा मूड खराब। तो सबसे पहली बात है अपने पैटर्न्स को पहचानना, और दूसरी बात है उस उदासी भरे मूड से अपने आप को बाहर निकालने की स्ट्रैटेजी बनाना। तो स्ट्रैटेजीज में हम क्या बना सकते हैं कि म्यूजिक सुन लिया, शॉर्ट ब्रेक ले लिया, 10 मिनट का एक्सरसाइज कर लिया, पानी पी के बाहर घूम के आ गए, खुली हवा में चले गए, किसी दोस्त से बात कर ली। ज्यादातर समय पर हमें जिस जगह पर हम हैं वहां से दूर किसी नेचुरल जगह पर जाकर खुली हवा में सांस लेने की आवश्यकता होती है। सो इस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं।
0: ओके इंटरेस्टिंग। तो पहले मतलब फिगर आउट करें या पहले उससे बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी बनाएं, पहले क्या करें?
1: नहीं, पहले फिगर आउट करना जरूरी है, अपने पैटर्न को पहचानना जरूरी है। जैसे कि महिलाएं होती हैं, उनमें मूड स्विंग्स तब होते हैं जब उनको पीरियड्स आने वाले होते हैं या पीरियड्स जा रहे होते हैं या पीरियड्स के पहले 3-4 दिन और उसके बाद 1-2 दिन उनका मूड डिस्टर्ब रहता है। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न के लिए हम स्ट्रेटेजी बना सकते
0: हैं। ओके, तो हमें समझना है और फिर उसको स्ट्रेटेजी बनानी है। उसके लिए परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है कि क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या हो गया। मतलब वो हम कभी कभी सिनेरियोज इमेजिन करने लगते हैं, इसकी बात बुरी लगी, उसकी बात बुरी लगी, बुरा लग रहा है और फिर ढूंढने लगते हैं कि किस बात से बुरा लगा। तो उस पे ज्यादा ओवरथिंक ना करें, पैटर्न को समझें और स्ट्रेटेजी बनाएं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है। श्रीनिधि जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
2: मैं समझता हूँ जो कल्पना जी बात कह रहे थे, हम अक्सर ये अपने आप को रीड करने के बारे में सोचते नहीं। जब मूड खराब है तो ये समझने की जरूरत है कि क्यों खराब है। कभी कभार जैसे रिपीटेडली मूड खराब होता है, या समझ लीजिए एक पैटर्न बना हुआ है कि ये चीजें होती है तो मेरा मूड खराब होता है। जैसे कल्पना जी कह रहे थे, समझो आपको भूख लगी है, आपको खाना नहीं मिला है, तो चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है। बहुत सारे लोगों को, मैं भी होता हूँ, कि अगर मैं भूखा हूँ और मुझे खाना खाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई मेरे को खाना खाने से रोक रहा है, बट मैं काम एक के बाद एक काम आता जा रहा है, कोई मिलने आ रहा है, फिर मतलब मैं मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है, या मैं थोड़ा अपने आप को स्पेस देना चाहता हूँ, एक काम से दूसरे काम के बीच में मैं थोड़ा सा गैप रख पाना चाहता हूँ और वो नहीं हो पा रहा है, तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। मैं समझता हूँ इस बात को और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जब ऐसी सिचुएशंस हो रही होती है तो मैं जानबूझ के उसके बीच में स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो कोई व्यक्ति मेरे ऊपर हावी हो रहा होता है, वो बोलते नहीं हमको अभी टाइम चाहिए, तो अब मैंने ना कहना सीखा है। मैंने कहा है कि नहीं, अभी मैं नहीं दे सकता, 10 मिनट बाद आप मेरे से मिल सकते हैं। तो मैं इस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल के बीच में मैं ऐसे मोमेंट्स चुरा रहा हूँ, अपने लिए स्पेसेस क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे मैं अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करता हूँ। और खाने की बात तो है कि मैं खाने के टाइम पे किसी और चीज को टाइम नहीं देता। मैं कहता हूँ भाई मैं खाना खाके बाद में बात करूँ, अभी नहीं बात करूँ। तो बहुत बार ये ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो इन चीजों को जानना जरूरी है कि क्या चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, क्या चीजें आपको ऐसे जोन्स में पुश करती हैं जो आपको इरिटेट करती हैं, या आपको गुस्सा दिलाती हैं, या आपको सैड फील कराती हैं, या आपको एंग्शियस बनाती हैं, अनेक इमोशंस हैं। तो इन चीजों के बारे में खुद अपनी परख करना जरूरी है। और जब मैं अपने आप को ऐसे समझ लेता हूँ, जानता हूँ कि मैं इन चीजों से ट्रिगर होता हूँ, ये चीजें मेरे ट्रिगर्स हैं, तो फिर आपको उन ट्रिगर्स के सॉल्यूशंस भी पता होते हैं। अगर यही ना पता हो कि भाई चाकू से कट सकता है हाथ, तो फिर आप चाकू के साथ खेलते रहेंगे। जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये मैं प्रोन हूँ इस चीज के लिए, जैसे कुछ लोगों के लिए हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि कुछ लोग कुछ इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं, उनके बॉडी में कुछ फिजिकल सिस्टम्स वीक होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है, कुछ लोग होते हैं जो लाउड म्यूजिक या कुछ ऐसा हवा में बदलाव होने की वजह से उनको हेडेक होने लगता है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं जो हम प्रोन हैं, किन चीजों के लिए हम प्रोन हैं, क्या चीजें हमें तकलीफ में डाल। तो अगर वो समझ जाते हैं तो फिर शायद उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है।
0: ओके, तो यानी हमें कुछ बाउंड्रीज भी सेट करनी जरूरी है जो हमें लगता है कि हमें ट्रिगर कर रही है या हमें परेशान कर रही है, जिसके कारण हमारी मूड चेंज हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो बाउंड्री सेट करें और ना कहना भी सीखें। ये भी समझ में आया, कई बार ना कहना नहीं आता है और मुश्किल लगता है। दीदी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि हम बाउंड्रीज क्यों नहीं बिल्ड कर पाते, या बाउंड्रीज एक्चुअली होती क्या है, क्या हमारी भावनाओं से लिंक्ड है, इसका कोई कनेक्शन है?
1: मैं बिल्कुल सहमत हूँ श्री जी से कि अपनी बाउंड्रीज को सेट करना और ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। मैं कल का ही एग्जाम्पल बताती हूँ। कोई मुझे शेयर कर रहे थे कि अरे मैंने इनको इतना गाइड किया, कदम कदम पर इनको किया, लास्ट मोमेंट पर भी ये मुझे से पूछ रहे हैं बात, इतना डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो जब हम लोगों को अपना टाइम देते हैं और उस टाइम की हम कदर नहीं करते हैं, तो लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो हमारे टाइम की भी कदर नहीं करते हैं और छोटी छोटी बात के लिए वो हमसे ही सपोर्ट लेना चाहते। तो ऐसे समय पर कोई भी व्यक्ति आपके पास आए या आपसे कुछ फेवर ले या कुछ मांगे, तो आपको आपकी बाउंड्रीज सेट करने आना चाहिए। कि भाई इतना तक मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ और इससे आगे आपको खुद को हेल्प करनी होगी।
3: ओके,
1: क्योंकि मेरी लिमिटेशंस ये है, इस टाइम में ही मैं आपसे मिल सकता हूँ, क्योंकि इसके अलावा जो मेरा टाइम है वो मेरा मेरे लिए टाइम, मैं उसमें अवेलेबल नहीं हूँ। सो नो कहना आना चाहिए। कई प्रिय प्रेशर में आ जाते हैं कि चलो यार पार्टी में चल रहे हैं, बर्थडे पार्टी है, सब कुछ फ्री ही है, खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा, चलो फोर्स करते हैं। आप अपनी पढ़ाई का, अपने इम्पोर्टेंट काम छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर आप पार्टीज में शामिल हो जाते। जब एक बार आप पार्टीज में गए, उनके साथ समय बिताया, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो आपको समझते हैं कि हाँ इनका टाइम तो हमारे साथ गुजारने के लिए अवेलेबल है,
3: तो ग्रांटेड ले लेते हैं जैसे आपको।
1: बिल्कुल, कई आपके काम रह जाते हैं और आपको इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अच्छा, इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि मैं सबको खुश करना चाहती, किसी को ना नहीं कहना चाहती, कोई नाराज हो गया तो, मेरे से बात करना छोड़ दिया तो, या मेरे बारे में कुछ बुरा सोच लिया तो, इसलिए हम उसको कहते पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी, सबको संतुष्ट करना चाहते। लेकिन हम सबको हर समय संतुष्ट करते करते खुद की टाइम, खुद की एनर्जी, खुद का हेल्थ, खुद की नींद, खुद का कंफर्ट सब कुछ गवा चुके हो, और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं। घर की मदर्स का ऐसे ही होता है, सबको खुश करने के हाँ सिलसिले में वो खुद पर ध्यान देना ही छोड़ देती।
0: ओके, तो मतलब अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है, और पीपल प्लीजिंग ये एक बहुत बड़ा विषय है, मुझे लगता है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कई बार हम इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि खुद की पर्सनालिटी भी दूसरों की तरह बनती जाती है। या हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात की थी कि चेंज किसके लिए होना चाहते हैं, आपने भी वो कहा था कि आप चेंज पॉजिटिवली हो रहे हैं या फिर किसी को देख के हो रहे हैं, वहां भी डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। श्रीनिधि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, बाउंड्रीज क्या होती है, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें इसे।
2: बाउंड्रीज मैं समझता हूँ एक हर व्यक्ति का एक कंफर्ट का दायरा होता है, अलग शब्दों में लोग इसे कंफर्ट जोन भी कहते हैं।
3: ओके,
2: कंफर्ट जोन्स को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। कभी कभार हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की भी जरूरत होती है, जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं या फिर हम कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं। मगर कंफर्ट जोन और बाउंड्री के बीच में अंतर ये है कि हम सबकी हदें हैं, कि हम कुछ चीजें अपनी कैपेसिटी तक मैं इतना कर सकता हूँ, इसके बियॉन्ड कर पाना मैं अपने आप को टैक्स कर रहा हूँ, यानी मैं अपने आप को स्ट्रेच कर रहा हूँ कि मैं कंफर्टेबल तो नहीं हूँ बट मैं फिर भी मतलब अपने आप को खींच रहा हूँ कि भाई चलो ठीक है, इनके लिए तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब आप अपने आप को खींच करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो आपको बाउंस बैक करने का भी मौका मिलना चाहिए। वो आपने स्ट्रेच किया है उसको वापस रिलैक्स होने का मौका मिलना चाहिए। तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि मैं अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ, क्या मेरी बाउंड्रीज हैं, क्या मेरी लिमिट्स। और कभी कभार जब हम, जैसे कल्पना जी अभी कह रहे थे कि पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं तो हम हर चीज के लिए हाँ कह देते हैं। अक्सर अंग्रेजी में इसको यस मैन सिंड्रोम कहा जाता है, कि हर चीज के लिए यस कहते हैं। और आजकल प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम इसको कहते हैं कि यस बॉस, हर चीज के लिए यस बॉस कहना। जरूरी नहीं है कि बॉस आपसे कोई चीज कह रहे हैं, आपका काम आपसे कोई रिक्वायरमेंट दे रहा है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस चीज को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप नई चीजें करने के बारे में सोचे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नवीनता के बारे में, इनोवेशन के बारे में, अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचे नहीं। इसका मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज आप अपने बॉस को खुश करना चाहते हैं इसलिए आप सारा काम अपने ऊपर ले लेना चाहते हैं। आप ऑलरेडी ओवरवर्क्ड हैं, आपके पास ऑलरेडी 10 काम हैं करने के लिए, तो जस्ट बिकॉज आपको दिया जा रहा है आप बोल रहे हैं हाँ हाँ ये भी दे दो कोई बात नहीं, और आपको 10 बजे 11 बजे 12 1 बजे तक लोग बैठ के काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ना नहीं कर पाए, और इसकी वजह से उनके पारिवारिक संबंध खराब होते हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पाते, या हस्बैंड वाइफ के लिए, या घर में पेरेंट्स रहते हैं या जो भी रहते हैं उनके लिए हम टाइम न देकर अपने आप को ओवरवर्क महसूस करते हैं। तो ये अलग अलग फील्ड्स में लागू होता है, ऐसा नहीं है कि बाउंड्रीज सिर्फ हमारे पर्सनल वेलबींग के स्पेस में है, हमारे प्रोफेशनल स्पेसेस में भी होता है। हम दोस्तों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे फ्रेंडशिप्स हैं तो वहां पर हम अक्सर दोस्तों को कहते ही हैं कि भाई तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, ये कहने वाली बात तो शायद आना लग सकती है कि जान हाजिर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला मुझसे जान मांगेगा और न ही मैं जान देने वाला हूँ उसके लिए। कहने का भाव ये है कि मैं तुम्हारे लिए अपने लिमिट्स को पार करके करने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या ऐसा आप हर किसी के लिए करना पसंद करेंगे?
3: संभव भी नहीं है शायद।
2: संभव नहीं है क्योंकि वहाँ उस रिलेशनशिप में वो गिव एंड टेक है, वहाँ पर एक कंफर्ट जोन है, हम दोनों एक दूसरे से कुछ चीजों के प्रति कंफर्टेबल हैं, परिवार में भी हम लोगों के लिए करते हैं, मगर
3: नहीं करना चाहते तो सेल्फिश फील करते हैं कि अरे मैं
2: मैंने किया नहीं,
3: मेरे दोस्त है, मेरा परिवार है और मेरी बाउंड्रीज इसमें कैसे बीच में आ सकती है, हैव टू गिव।
2: जैसे अभी कल्पना जी होम मेकर्स का उदाहरण दे रहे थे, ऐसे महिलाएं जो घर का काम सारा देखती हैं, घर संभालती हैं, वो अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है घर संभालना, तो वहां पर भी उनको अपना स्पेस चाहिए। जब कोविड का समय था, कोरोना काल था, उस समय पर हमने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ा क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं, हस्बैंड भी घर पे हैं, और जो लोग घर से बाहर चले जाते थे तो सुबह उनके लिए नाश्ता बना के दे दिया, टिफिन बॉक्स पैक करके दे दिया, आप शाम को आएंगे बच्चे को उनको देखा जाएगा, हस्बैंड रात को आएंगे तो उनको देखा जाएगा, तब तक उनके पास एक ब्रीदिंग स्पेस था, वो अपने लिए कुछ करना चाहते थे तो वो सब कुछ कर सकते थे, अपना टाइम टेबल था। अब अचानक वो टाइम टेबल मेसअप हो गया, ये सारे टाइम घर पे हैं और घड़ी घड़ी पूछ रहे मम्मी मेरे को ये दो ऐसा करो वैसा करो, तो उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स बाउंस हो गए। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि उस समय पर एक नेचुरल बाउंड्री एग्जिस्ट करती थी कि बच्चे घर पे नहीं है, हस्बैंड घर पे नहीं और मैं अपना काम कर रहा हूँ, बट जब वो बाउंड्रीज हट गई तो सब कुछ मिक्स हो गया तो मैनेज करना मुश्किल हो गया।
3: इसलिए कहीं ना कहीं पर्सनल बाउंड्रीज भी जरूरी है। दीदी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ ऐसी भावनाएं हैं जैसे हमें लगता है कि वो प्यार है, लेकिन उस प्यार में जब हम कुछ चीजें लिमिट लगा देते हैं या बाउंड्री सेट करते हैं तो गिल्टी या सेल्फिश फील करता है, बुरा फील करता है, तो क्या ये फील करना चाहिए या नहीं चाहिए?
1: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। गिल्टी फील करना ये सबसे बड़ी सजा है इंसान के लिए, चाहे आप गलती करो या ना करो। कई लोग ऐसे हैं जिनकी आदत होती है कि वो हमेशा गिल्टी फील करते रहते हैं। गिल्टी फील करने का कारण है लो सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ लव की कमी। खुद के महत्व को, खुद की स्ट्रेंथ को न जानकर, उसकी परवाह न करना, उसको इम्पोर्टेंस न देना, इस वजह से सेल्फ वर्थ को न जानने की वजह से गिल्टी फील करते हैं। दूसरा सेल्फ लव नहीं, खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, इसलिए छोटी छोटी बात में जब दूसरों को हम प्रसन्न नहीं कर पाते, संतुष्ट नहीं कर पाते, तो हमें गिल्टी फील

0: आया या नहीं बना पाई या अभी है नहीं घर में उस शॉप में, तो उसे गिल्टी फील होता है। अब बताइए क्या उस माँ को गिल्टी फील होना चाहिए या उसे बच्चे को ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि बच्चा जब कुछ चीज नहीं है तो उसके लिए जिद करने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, बच्चे ने तो जिद किया लेकिन मुझे गिल्टी फील नहीं करना है, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, जो उसके लिए जरूरी था मैंने किया है और किसी कारण की वजह से मैं उसकी पसंदीदा चीज नहीं बना पाई। तो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ को जानना, अरे मैंने सुबह से लेकर दिन भर इनके लिए सब कुछ करती हूँ मैं, अब छोटी सी चीज अगर मैं नहीं कर पाई तो उसके लिए मुझे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं बच्चे के साथ बात करूंगी, उसको एंटरटेन करूंगी, उसको अच्छे से समझाऊंगी, वो समझेगा, नहीं समझा तो थोड़ी देर के लिए रो लेगा और चुप हो जाएगा, भूख लगेगी तो खा लेगा। सो ये है बच्चों का अपने माँ बाप को मैनिपुलेट करने का तरीका। अब वो हमारी भावनाओं से खेल रहे
1: हैं
0: और हम गिल्ट में चले जा रहे
1: हैं जैसे ना जी। ओके, तो फील नहीं होना चाहिए मतलब। लेकिन दीदी जैसे ये आपने एक मदर के कॉन्टेक्स्ट में बताया, क्या मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कुछ यूथ के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इससे समझ सकते हैं क्या कि कब वो गिल्टी फील करते हैं या मतलब नहीं जहां उन्हें करना चाहिए। कई चीजें तो ऐसी भी हैं जो समझनी चाहिए, लेकिन कई चीजें क्या ऐसी है जो गिल्ट में ले जाती है पर नहीं होना चाहिए। लाइक हम मॉडर्न रिलेशनशिप्स में भी देखते हैं, फ्रेंडशिप में भी देखते हैं, क्या ये वहां पे भी कुछ इस तरह की चीजें आती हैं जो हमें लगता है हम इसे नाम दे देते हैं दोस्ती का या प्यार का, लेकिन फिर हम खुद ही गिल्ट में जाते जाते हैं या फिर बुरा फील करते जाते हैं। क्या ऐसा उस कॉन्टेक्स्ट में भी क्या हम थोड़ा और समझ सकते हैं इस बात को, श्रीनिधि जी या दीदी आप में से कोई?
2: मैं समझता हूँ ये एक ऐसा चीज है जहाँ पर रिलेशनशिप्स की जब हम बात करते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये फैमिली के रिलेशनशिप्स हो, बच्चे या माँ के बीच में हो, मगर ये सारे ही रिलेशनशिप्स पे लागू करता है। आपने फ्रेंडशिप्स की बात कही, मैं वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स की भी बात करता हूँ। अगर आप कोलीग्स के साथ काम करते हैं तब आप कुछ ऐसा कह सकते हैं या कर सकते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को आप गिल्ट फील करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं हर दिन किसी के काम में मदद करता हूँ, ठीक है, और क्योंकि मैं हर दिन ही कर रहा हूँ, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि मतलब मैं जब भी मदद मांगूंगा ये व्यक्ति मेरे लिए है ही अवेलेबल। ऑफिस का ही काम है, समझ ले कि मैं किसी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद कर रहा हूँ, मगर आज मेरा कुछ और काम निकल आया जिसकी वजह से मुझे बैंक जाना पड़ रहा है और उसी समय उस व्यक्ति ने मुझे बुलाया और कहा कि भाई आप आओ, ये काम अभी करना है अर्जेंट, और मैंने कहा कि नहीं मैं अभी बैंक जा रहा हूँ, कोई और मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसके लिए जाना है। तो अब उन्होंने कहा अरे मेरी जरूरत नहीं होती तो मैं आपको क्यों बुलाती, जरूरत के समय पर तो दोस्तों की मदद की जरूरत होती है ना, आप तो बैंक चले जाना चाहते हो। तो अब मुझे ये गिल्ट फील होता रहेगा कि भाई ये जरूरत के टाइम पे मदद नहीं की, क्योंकि हमने ये चीज सुनी हुई भी है कि भाई जरूरत के समय पर तो मदद हमेशा देने की जरूरत है। अब मैं इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करके चल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा, जरूरत के समय पर उनके काम नहीं आया। बिल्कुल, हम अंग्रेजी में ये कहावत सुनते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, पर सही अर्थों में अब मैं दोस्त ही नहीं रहा।
1: ये भी होता है, मैं अच्छा दोस्त ही नहीं हूँ।
2: और आप अपने आप को उस लेवल के साथ अब चला के चल रहे हो कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, बट एक्चुअल रियलिटी में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति हमेशा मौजूद हो, अवेलेबल हो, हर चीज को कर सके, ऐसा संभव नहीं होता। हर एक व्यक्ति के अपने लिमिटेशंस हैं, हर एक व्यक्ति अनेक चीजों से घिरा हुआ है, हर एक के अपने अपने रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इन चीजों को समझ कर चलना शायद आवश्यक होता है। और दोस्तों में जब ये खास चीज होता है तो तब हम अक्सर समझाने का प्रयास नहीं करते। जब ऐसे कोई लेबल्स पास किए जाते हैं, आपको गिल्टी फील करा दिया जाता है, तो आप उस गिल्ट को कैरी करते हैं और उस समय पर ये आवश्यक होता है कि हम कैसे इस चीज को प्रोसेस करें। ऐसी घटनाएं होती हैं, बट उन घटनाओं को प्रोसेस करने के तरीकों के बारे में समझना होता
1: है।
2: कल्पना जी बता सकते हैं कि भाई ऐसे अनेक घटनाओं को लोग संजो कर रखते हैं जिसमें वो उन्हें अपने आप को गिल्टी फील कराया और वो गिल्ट लेके चल।
1: भारीपन वो गिल्ट।
0: जैसे ऑफिस में जब हम काम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो भी काम आता है उसको

0: पेंडिंग में रखते जाते, है ना, फाइल के ऊपर फाइल, फाइल के ऊपर फाइल, पेंडिंग रह जाती। और फिर हमें स्ट्रेस आता है उन पेंडिंग फाइल्स को देखकर कि अरे इतनी ज्यादा हो गई। इमोशंस का भी ऐसे ही, इमोशंस को भी अगर हम पाइल अप करते जाएंगे, जैसे गिल्ट को, बचपन से लेके बड़े होने तक मैं गिल्ट को कैरी कर रही। बचपन में मैंने कुछ गलत किया, उसका गिल्ट कैरी किया, मेरे से कुछ गलत हुआ बचपन में, उसका गिल्ट कैरी कर लिया, तो वो आदत बन जाती है गिल्टी फील करने की। और हर छोटे बड़े जिसमें मुझे गिल्टी फील करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं भी की, उसमें भी मुझे गिल्टी फील होता है, सेल्फ ब्लेम शुरू हो जाता है, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरे कारण सबको तकलीफ हो रही, इस तरह से खुद को विक्टिम बना लेते। तो अब क्या करना है, जो फाइल्स हम पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग में डाल रहे हैं ना, उसको उसी समय क्लियर करना है। समझो कि फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ आपकी कोई बात हो गई, आपसे कुछ गलती हो गई या आपको गिल्टी फील हुआ, अब वो गिल्टी कॉन्शियस को हम कैसे रिलीज करें? तो सबसे पहले है, जिसके साथ आपको गिल्टी फील होता है उनके साथ जाकर बात करें। तुरंत जाके सॉरी भी कहने की जरूरत नहीं, बात करें, एक नॉर्मल बात करें, एक्सेप्ट करें कि मेरे से गलती हो गई, इस बार ये छोटी सी गलती थी, कई बार मेरे से बड़ी भी गलतियां हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इंसान अगर जिंदा है तो उससे गलती ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। हाँ, तो गिल्ट फीलिंग को उसी समय रिजॉल्व करना है, जाकर बात करो सामने वाले से, सॉरी कह दो एक बार, बार बार सॉरी कहना भी आपकी लाचारी को दर्शाता है, और उस बात को भूल जाओ, सामने वाले से फिर नॉर्मल व्यवहार में आ जाओ, फिर उस बात को बार बार याद नहीं करो, तो मैं बार बार उसी बात को सोचती रहूंगी, वो मेरा ऑब्सेशन हो जाएगा, फिर वो गलत बात मेरे दिमाग से नहीं निकले। सो गिल्टी फील करने की जो फाइल्स है उसको पाइल अप ना करे, उसी समय उसे रिजॉल्व कर दे।
1: सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दीदी, क्या हम जाते जाते कुछ ऐसा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमने अभी तक जो पाइल अप करके रखा है उसको कहीं ना कहीं हम रिजॉल्व कर सकें?
0: बिल्कुल। अपनी गिल्ट को, अपनी नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस की बहुत आवश्यकता है, और पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हैं। हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ गुण और शक्तियां होती है, उन शक्तियों को हम याद करें, उन स्ट्रेंथ्स को याद करें और अपने आप को याद दिलाएं, आई एम वर्थ टू लिव, मुझे जीने का हक है और मुझे खुशी से जीने का हक है। तो आइए चलिए कुछ मिनटों के लिए एक निश्चित स्थान पर आराम से बैठ जाए, गहरी और लंबी सांस ले, अपने सांसों को ऑब्जर्व करें, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर एकाग्र करें, अपने मन के विचारों को सांसों की लयबद्धता के साथ ट्यून करें। जैसे ही मैं गहरी और लंबी सांस ले रही हूं, मेरा मन और शरीर शांत शांत शांत और रिलैक्स हो रहा, अनुभव करें उस शांति और रिलैक्सेशन का, अपने आप को याद दिलाएं, मैं एक मनुष्य के रूप में एक महत्वपूर्ण इंसान हूं, सृष्टि नाटक का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हूं, मैं अपने लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूं। अपनी स्ट्रेंथ्स को याद करें, मुझ में ये गुण विशेषताएं हैं, अपनी काइंडनेस को, अपनी अच्छाई को याद करें, गहरी और लंबी सांस लेते हुए अपने आप से बात करें, मैं जो हूं जैसी हूं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करती, मुझ में बहुत सारी अच्छाइयां हैं और कुछ कमियां भी, उन कमियों के साथ मैं खुद का स्वीकार करती, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई केयर माई सेल्फ। कई बार मुझसे गलतियां होती हैं, लेकिन मैं खुद के साथ कंपैशनेट रहकर उन गलतियों को आगे के लिए सुधारने में प्रयासरत रहती। मेरी गलतियों के लिए गिल्टी फील करने की बजाय मैं उसके लिए सॉरी कहकर उसके बोझ से अपने आप को मुक्त करती हूँ। हर बार मेरी ही गलती हो ऐसा जरूरी नहीं, जैसे मैं खुद की गलती को माफ करती हूँ वैसे मैं दूसरों की भी गलती। मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं एकाग्र हूँ, मैं खुश हूँ। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच दीदी। एक्चुअली बहुत लाइट फील हुआ ये एक्सपीरियंस करके, और ऐसा लग रहा है सच में 5 मिनट एक्सपीरियंस करके बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, शिफ्ट आ जाता है। तो डेली अगर हम कर लें तो कितना फायदा होने वाला है हमें, सिर्फ 5 मिनट और फायदा 24 घंटे का और उससे भी ज्यादा, बल्कि फायदा ही फायदा है। थैंक यू सो मच इस एक्सपीरियंस के लिए। और फिलहाल वक्त हो गया है हमारे दोस्तों से इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, अपनी भावनाओं से भी और इस कार्यक्रम से भी। तब तक आइए जिंदगी को मिलकर कहते हैं कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से क्रांतिकारी ऐसे रहे जिनके योगदान एवं बलिदान को ठीक से याद नहीं किया जा सका। लाला हरदयाल उनमें से एक थे। उन्होंने जो आजादी की लड़ाई लड़ी वो अपने आप में किसी मिसाल से कम नहीं थी। कुशाग्र बुद्धि के मालिक लाला हरदयाल की बुद्धिमत्ता का लोहा उनके आसपास रहने वाले हमेशा ही माना करते थे। वंदे मातरम से उनका संबंध भी गहरा है। साल 1909 में पेरिस में उन्होंने भिकाजी कामा के साथ मिलकर वंदे मातरम मासिक पत्रिका का संपादन किया था। इसके अलावा गदर पार्टी के माध्यम से उन्होंने वंदे मातरम की गूंज अमेरिका तक फैलाई थी। आज एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में हम सुनेंगे इन्हीं देशभक्त लाला हरदयाल की कहानी।
1: गीत दीदी, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है, बहुत उत्सुक हूँ लाला हरदयाल जी के बारे में जानने को, बताओ ना जल्दी।
2: हाँ हाँ बता रही हूँ बन्नो, तनिक धीरज रखो। सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूं। लाला हरदयाल जैसी शख्सियत के बारे में बयां करना आसान थोड़ी ना है।
1: ऐसा क्या दीदी?
2: लाला हरदयाल न सिर्फ एक महान क्रांतिकारी थे बल्कि देशभक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने विदेश की धरती पर रहते हुए देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया। वहां रह रहे भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया।
0: 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली के एक कायस्थ परिवार में जब लाला हरदयाल का जन्म हुआ तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये बालक एक दिन तीन महाद्वीपों में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बनेगा। उनके पिता गौरी दयाल माथुर जिला न्यायालय में रीडर थे। वो फारसी व उर्दू के विद्वान थे। जो भी उनसे मिलने आता बेटे की प्रशंसा किए बिना नहीं रहता।
3: मित्र, आप बड़े भाग्यशाली हो कि ऐसा ओनार बेटा पाया है आपका।
4: हाँ शायद पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए होंगे। मुझे कभी भी उसे पढ़ने के लिए नहीं कहना पड़ता, समय से सारे कार्य करता है।
3: सच कह रहे हो, जब भी तोड़े घर आया हूँ उसे किताबों में डूबा देखा है।
4: उसे संस्कृत पढ़ने का बहुत शौक है।
0: लाला हरदयाल के घर में पढ़ने का माहौल था। कैम्ब्रिज स्कूल से शुरुआती शिक्षा दीक्षा हासिल करने के पश्चात उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से संस्कृत में स्नातक किया। आगे चलकर पंजाब यूनिवर्सिटी से संस्कृत में ही मास्टर्स किया। पढ़ाई में वो सदा अव्वल आते रहे, उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं था। लेकिन एक समय आया जब वो कुछ दबाव में रहने लगे। दरअसल घर वाले उनका विवाह कराना चाहते थे।
4: अरे हरदयाल की माँ, सुनती हो, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है हरदयाल के लिए, लेकिन वह अभी बहुत छोटा है। सोच रहा हूँ उन लोगों को क्या उत्तर दूँ।
5: एक बार हरदयाल का मन भी टटोल कर देखें।
4: सोचा था कि पूछूंगा पर हिम्मत नहीं जुटा पाया।
0: इस बातचीत के बीच ही अचानक वहाँ हरदयाल आ पहुँचे।
6: क्या हुआ, आप दोनों कुछ चिंतित दिख रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या?
4: नहीं नहीं, तुम आओ बेटे मेरे पास बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी।
6: अच्छा, फिर इतना संकोच क्यों कर रहे हैं, बताइए ना क्या बात है।
4: पुत्र, तुम्हारे लिए विवाह का एक रिश्ता आया है, बहुत अच्छा शिक्षित परिवार है, और मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि उनसे क्या कहूं। अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है और तुम्हारे सामने पूरा भविष्य भी है।
5: बेटा, तुम जो भी निर्णय लोगे हमें स्वीकार होगा, सोच कर बताना।
6: आप दोनों का फैसला ही मेरा फैसला है।
4: तो फिर ठीक है, मैं उन लोगों को तैयारी करने के लिए कह देता हूं।
6: जी, आपको जो उचित लगे।
0: महज 17 साल की आयु में लाला हरदयाल का विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम सुंदर रानी था। दोनों को एक बेटा हुआ, मगर उसने 2 वर्ष की आयु में ही दुनिया छोड़ दी। घर में अचानक से मातम पसर गया। सुंदर गुमसुम रहने लगी। हरदयाल भी खुद को व्यस्त रखने का प्रयास करते, लेकिन मन शांत नहीं हो रहा था। तभी एक दिन माँ ने बेटे से कहा,
5: बेटा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। जीवन में आगे बढ़ना होता है, आगे की सोचो, बढ़ो।
6: कोशिश कर रहा हूं माँ, पर बार बार सुंदर का चेहरा सामने आ जाता है, उसे कुछ समझा नहीं पाता हूं मैं।
5: मैं उससे भी बात करूंगी।
0: समय बीता और घर में फिर किलकारी गूंजी। लाला हरदयाल और सुंदर को एक बेटी हुई। उसे सभी बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे दिल पर लगा घाव भरता गया। लेकिन इसी दौरान लाला हरदयाल का झुकाव आर्य समाज की ओर होने लगा। वो उनकी सभाओं में जाने लगे। उनके विचारों से वो काफी प्रभावित थे।
1: दीदी, फिर वे क्रांतिकारी कैसे बने?
2: बन्नो, पहले पहल आर्य समाज के अलावा उन पर कार्ल मार्क्स एवं मिखाइल बाकुनिन का भी प्रभाव था। जब वे श्याम जी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर एवं भिकाजी कामा के संपर्क में आए, तो जीवन में बहुत कुछ बदल गया। जानती हो, 1905 में उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ने के लिए भारत सरकार की ओर से छात्रवृत्ति मिली थी। ये बड़े सम्मान की बात थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि लाला हरदयाल के मन में आखिर क्या चल रहा है।
1: अच्छा, ऐसा क्या हुआ दीदी?
2: बन्नो, लंदन में लाला हरदयाल श्याम जी कृष्ण वर्मा, सीएफ एंड्रयूज आदि के संपर्क में आए थे। उनके विचारों से उनमें परिवर्तन आने लगा। उन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका में ब्रिटिश राज के खिलाफ तीखे लेख लिखने शुरू कर दिए। उन्होंने घोषणा भी की,
7: कोई भी भारतीय जो वास्तव में अपने देश से प्रेम करता है, उसे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, और भारत के विदेशी दमनकारी शासकों के हाथों किसी भी प्रकार का लाभ पाने के लिए अपनी सत्य निष्ठा का सौदा नहीं करना चाहिए।
2: साल 1907 में लाला हरदयाल ने वो किया जो उस दौर में लगभग अकल्पनीय था।
1: क्या किया था उन्होंने?
2: उन्होंने ऑक्सफोर्ड की 2 छात्रवृत्तियां त्याग दी और ICS का स्वर्णिम करियर तक छोड़ दिया। इतने से ही मन नहीं भरा तो ब्रिटिश सरकार को खत लिख दिया,
6: मैं उस साम्राज्य से कोई एहसान नहीं लेना चाहता जो मेरी मातृभूमि को गुलाम बनाए हुए है।
1: दीदी, बड़ी हिम्मत थी उनमें, सच में।
0: लाला हरदयाल ने लंदन में देशभक्त समाज की स्थापना और वहां असहयोग आंदोलन भी चलाया। साल 1908 में वो भारत लौट गए और लाहौर में राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय होना शुरू किया। मॉडर्न रिव्यू और द पंजाबी जैसे अखबारों में उनके लेख छपने लगे। इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने उन पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें गिरफ्तार करने की योजना भी बन रही थी। तभी लाला लाजपत राय उनसे मिले।
8: हरदयाल, मुझे लगता है कि अभी तुम्हारा भारत से निकल जाना ही सही रहेगा। ब्रिटिश हुकूमत तुम पर कड़ी निगरानी रख रही है।
6: जी, मुझे एहसास है, लेकिन कहां जाऊं ये तय नहीं कर पा रहा हूं।
8: मेरी मानो तो पेरिस चले जाओ, भिकाजी से बात कर लो। जिनेवा से एक अखबार निकलता है, वंदे मातरम, उसका संपादन संभाल सकते हो।
0: वो साल 1909 था। लाला जी पेरिस चले गए और वहाँ जिनेवा से निकलने वाले वंदे मातरम नामक मासिक पत्रिका का संपादन कार्य संभाल लिया। लेकिन पेरिस में लाला हरदयाल के रहने की व्यवस्था नहीं हो सकी।
6: यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं हो रही है, सोच रहा हूँ अल्जीरिया निकल जाऊँ। वहाँ लामार्तनिक द्वीप में कुछ समय एकांतवास में रहने की इच्छा है।
8: आपको जो उचित लगे।
0: लामार्तनिक द्वीप पर लाला जी एक सन्यासी की तरह रहने लगे। एक दिन एक पड़ोसी उनके पास आए।
9: लाला जी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप यूं सन्यासियों के भांति क्यों रह रहे हैं। आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ, आप लेंगे तो अच्छा लगेगा।
6: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मैं सिर्फ उबला अनाज और सब्जियां ही खाता हूँ। जमीन पर सोने से धरती से जुड़ाव का आभास होता है, ध्यान लगाने से मन को शांति मिलती है। सादा जीवन, उच्च विचार, यही मेरे जीवन का सिद्धांत बन चुका है।
9: आप ऐसा कह तो रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आ रही है। मैं आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालूंगा, जब भी आवश्यकता हो मुझे बुला लीजिए, आपके बगल वाले घर में ही रहता हूं।
0: समय जैसे तैसे बीत रहा था, तभी एक दिन आर्य समाज के भाई परमानंद लाला हरदयाल से मिलने पहुंचे।
10: आप यहाँ एकांतवास में क्यों रह रहे हैं, क्यों ना कुछ नया करने की सोचते हैं?
6: क्या नया किया जाए,
10: क्यों ना आप अपनी असाधारण बुद्धि का उपयोग क्रांतिकारी कार्यों के लिए करते। अमेरिका जाकर वहां के प्रवासी भारतीय श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं।
6: आपकी सलाह पर मैं अवश्य विचार करूंगा।
11: इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
0: लाला हरदयाल पहले बोस्टन से कैलिफोर्निया गए, फिर होनुलुलु में अपना डेरा डाला। कुछ समय वैकिकी समुद्र तट पर ध्यान साधना की। वहां बौद्ध धर्म के कुछ जापानी लोगों से उनकी मित्रता हुई। उन्होंने कार्ल मार्क्स को भी पढ़ना शुरू किया, लेकिन भाई परमानंद की सलाह पर फैसला नहीं ले पा रहे थे। एक दिन

0: दोनों मिले तो परमानंद ने पूछ ही लिया,
1: आपने अमेरिका लौटने के बारे में क्या सोचा?
2: हाँ, बस वहीं के लिए निकलना है।
3: गीत दीदी, लाला जी ने आखिर क्या निर्णय लिया?
4: उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। ये साल 1911 की बात है, वे अमेरिका लौट गए। जब सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह पर उतरे तो कैलिफोर्निया के पंजाबी सिख किसानों ने उनका स्वागत किया। ये लोग बेहतर जीवन की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन कनाडा और अमेरिका में नस्ल भेद का सामना कर रहे थे।
5: इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद!
6: लाला, हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आप ही हमें गुलामी से छुटकारा दिला सकते हो। पहले हम अपनी धरती पे गुलाम थे, अब विदेश में भी आकर दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह गए।
7: मैं आप सबकी पीड़ा समझ सकता हूँ। हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा।
0: कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में लाला हरदयाल ने बुकलिन इंस्टीट्यूट की स्थापना की। वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी बने, साथ ही इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड के सैन फ्रांसिस्को चैप्टर के सचिव भी बनाए गए। इस संस्था को ऑकलैंड में भूमि दी गई थी। वो स्टॉकटन, सैक्रामेंटो, फ्रेस्नो में रहने वाले पंजाबी किसानों से नियमित रूप से मिला करते।
7: आप सब जानते हैं कि कैसे ब्रिटिश राज भारत को लूट रहा है, कैसे भारतीय अपनी ही धरती पर पराए हो गए हैं। हम सभी को मिलकर कुछ करना चाहिए।
5: जी बिल्कुल, हम सभी आपके साथ हैं।
8: हाँ,
5: जी बिल्कुल,
8: हम साथ हैं।
5: हम साथ हैं।
0: लाला हरदयाल अपनी धुन में थे। तभी एक दिन उन्हें भारत में वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिन पर क्रांतिकारी बसंत कुमार बिस्वास द्वारा हमले की सूचना मिली। इस घटना का लाला जी के मन पर गहरा असर हुआ। जिस नालंदा क्लब से वो दूर रहा करते थे, वो उसके हॉस्टल पहुंच गए। इससे वहां रह रहे भारतीय स्टूडेंट्स में खलबली मच गई।
1: ये प्रोफेसर साहब यहाँ क्यों और कैसे आए हैं?
9: कोई तो बात है, वरना इनके कदम तो यहाँ कभी पड़ते ही नहीं है।
1: सुनो सुनो, थोड़ा शांत रहो। देखो, वे कुछ बोलना चाह रहे हैं।
7: मित्रों, 23 दिसंबर 1912 एक ऐसी तारीख जिसे हम सभी को याद रखना चाहिए। ये तिथि प्रत्येक राष्ट्रवादी भारतीय की स्मृति में अंकित होनी चाहिए। इसी दिन बसंत कुमार बिस्वास ने ब्रिटिश राज पर प्रहार किया था। बसंत बिस्वास वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। ये भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत का संकेत है। इस पर मुझे दिल्ली के उर्दू शायर मीर ताकी के दोहे की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। पगड़ी अपनी संभालिएगा मीर, और बस्ती नहीं ये दिल्ली है। पगड़ी अपनी संभालिएगा मीर, और बस्ती नहीं ये दिल्ली है।
5: वंदे मातरम्। वंदे मातरम्।
0: लाला जी के इस ओजस्वी भाषण के बाद हॉस्टल में पार्टी शुरू हो गई। वंदे मातरम गीत गूंजने लगा।
10: लाला हरदयाल केवल एक विद्वान या दार्शनिक नहीं है, वे काफी दूर की सोचते हैं। कुछ तो पक रहा है इनके मन में।
0: साल 1913 की घटना होगी, जब ओरेगांव के एस्टोरिया शहर की यात्रा के दौरान उन्होंने वहां एक ऐतिहासिक बैठक बुलाई। उसमें उनके अलावा सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा और अन्य साथी शामिल हुए।
7: आप सभी यहाँ आए इसके लिए धन्यवाद। ये बैठक एक विशेष उद्देश्य से बुलाई है।
11: जी कृपया बताएं।
7: भारत की स्थिति से तो सभी वाकिफ ही हैं। अंग्रेजों का जुल्म खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कितने ही क्रांतिकारी देशभक्त अपना बलिदान आजादी की लड़ाई में दे चुके हैं, हमें भी कुछ ठोस करना है।
8: आप खुलकर बोलें, क्या विचार है?
7: क्यों ना हम एक पार्टी बनाएं जो आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाए।
11: ये तो उत्तम विचार है, नाम भी सोचा है क्या पार्टी का?
7: हाँ, गदर पार्टी, कैसा होगा? इसके अलावा हम इस नाम से एक समाचार पत्र भी निकालेंगे।
12: इंकलाब जिंदाबाद,
13: इंकलाब
12: जिंदाबाद।
0: बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने एक सुर से पार्टी के नाम पर सहमति जताई। धीरे धीरे गदर आंदोलन जंगल की आग की तरह फैल गया। अमेरिका में रहने वाले बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय इससे जुड़ गए। गदर नाम से गुरमुखी, उर्दू और हिंदी में एक साप्ताहिक अखबार भी निकालना शुरू किया। उसमें खुले तौर पर सशस्त्र क्रांति और ब्रिटिश शासन के तख्ता पलट का आह्वान किया गया था। लेखों के माध्यम से बम और विस्फोटक बनाने के तरीके भी बताए जाते थे।
3: दीदी, लाला हरदयाल ने पार्टी का नाम गदर ही क्यों रखा?
4: अरे बन्नो, गदर 1857 के विद्रोह की याद दिलाता था, इसलिए पार्टी का ये नाम रखा। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया। दफ्तर में रात रात भर लाला हरदयाल अपने साथियों के साथ बैठकर बहसें करते। समाजवाद, अराजकतावाद, भारतीय दर्शन जैसे विषयों पर लंबी लंबी बहसें होती थीं। साथ ही सशस्त्र संघर्ष की योजना भी बनाई जाती थी।
7: देखिए, अगर सशस्त्र आंदोलन चलाना है तो उसके लिए हमें फंड्स चाहिए होंगे।
14: वो कहां से आएंगे?
7: विदेशों में रहने वाले भारतीयों से चंदा इकट्ठा करते हैं, उसी से हथियार खरीदे जाएंगे।
0: सब सुनियोजित तरीके से चल रहा था, लेकिन तभी अराजकतावादी साहित्य फैलाने के कारण से अप्रैल 1914 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार के दबाव में ऐसा किया गया।
3: दीदी, क्या उन्हें जेल भेज दिया गया? क्या हुआ फिर?
4: थोड़ा समय लगा, लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा करा दिया गया। लेकिन उसके बाद लाला हरदयाल ने अमेरिका छोड़ने का निर्णय लिया। उनके साथी कुछ परेशान हो गए कि आगे क्या होगा।
14: आप कहाँ जाएंगे? हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे?
7: मैं पहले स्विट्जरलैंड, फिर बर्लिन जाऊंगा। वहां भी समान विचारधारा वालों से मिलने का प्रयास करूंगा, जिससे कि उनका सहयोग लिया जा सके।

0: बीच प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। जर्मनी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रही थी। हरदयाल जी ने सोचा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बर्लिन में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन करने का सोचा और उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही जर्मन खुफिया विभाग के साथ मिलकर भारत में विद्रोह की योजनाएं बनाई।
1: आपके सहयोग की आवश्यकता होगी, हथियारों की खेप भारत भेजनी है।
2: जो हो सकेगा हम करेंगे।
0: लेकिन ब्रिटिश खुफिया विभाग को इस योजना की भनक लग गई। इससे उनकी कई योजनाएं विफल हो गईं। फिर विश्व युद्ध भी खत्म हो गया और उसमें जर्मनी हार गई।
3: हरदयाल जी, अब आपका यूरोप में रहना ठीक नहीं है।
1: हाँ, वापस लंदन जाने की सोच रहा हूँ। वहां कुछ समय अध्ययन एवं अध्यापन करूंगा।
0: 1930 में लाला हरदयाल ने लंदन विश्वविद्यालय से बौद्ध संस्कृत साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। फिर स्वीडन गए और 10 साल तक भारतीय दर्शन के प्रोफेसर रहे। 1920 के दशक के अंत में उनका दोबारा अमेरिका लौटना हुआ। इस बार वो बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाने लगे। दिन में वो प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या करते और शाम को क्रांतिकारी साथियों से मिलते। उन्होंने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नाम से एक किताब भी लिखी, जो व्यक्तिगत विकास को सामाजिक प्रगति का माध्यम बताती थी।
4: जानती हो बन्नो, देश के इस महान सपूत ने आजादी की लड़ाई के लिए कितना कुछ किया, लेकिन उनकी मौत एक रहस्य बन गई।
5: ऐसा क्या हुआ था, बताओ ना जल्दी।
4: ये 1939 की बात होगी। ब्रिटिश सरकार ने लाला हरदयाल को भारत लौटने की अनुमति दे दी थी। वे लौटने की तैयारी में जुटे थे। तभी एक मनहूस खबर आई कि फिलाडेल्फिया में एक व्याख्यान के बाद अचानक रहस्यमय ढंग से उनका निधन हो गया। 4 मार्च 1939 को दिए गए उस व्याख्यान में उनके अंतिम शब्द थे, मैं सबके साथ शांति में हूं।
0: लाला हरदयाल के इस तरह जाने से उनके करीबी मित्रों को शंका हुई।
6: मुझे तो शंका है कि किसी ने इन्हें जहर दिया है।
0: लाला हरदयाल विद्वान और क्रांतिकारी थे। वो शांत और विद्रोही, सन्यासी और योद्धा भी थे। उन्होंने सशस्त्र संघर्ष की योजना बनाई, लेकिन जीवन भर सादगी से जिए। 3 महाद्वीपों में भटकते हुए भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया, लेकिन खुद कभी आजाद भारत देख नहीं पाए। वो ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन सपना देखना नहीं छोड़ा। एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले एपिसोड में एक और क्रांतिकारी की कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।
7: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: अभी बजे हैं रात के 10। स्वयं को दें अभी 1 मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। विचार पर करेंगे विचार और नुस्खों का देंगे जरूर साथ। खुशनुमा जीवन की करेंगे बात तो नई नई व्यंजन भी बनाएंगे साथ। और प्रश्न पूछने वाली हूँ आज, प्रश्न का जवाब दे सकते हो। हमारे नंबर है 94-1415-1415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो। तो आइए सुनते हैं कि पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना एक कला है। लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। कैसे, तो आज के विचार का विस्तार एक छोटे से दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी कि बहुत समय की बात है, एक बहुत धनवान राजा था, उसका नाम था मिडास। धनवान होने पर भी वह संतुष्ट बिल्कुल नहीं था, उसे पैसे और सोने का बहुत ही अधिक लालच था। एक दिन उसके सपने में एक परी आई, वह जाग उठा, उसने देखा कि वह परी उसके सामने खड़ी है। अपने बिस्तर से उठकर के राजा परी के चरणों में गिर गया। उसने परी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप कितनी सुंदर हो, मैंने सुना है कि परियां मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण करती हैं। परी मुस्कुराते हुए बोली, हे राजन, कहिए आपकी क्या इच्छा है, हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। राजा को कुछ समय तक तो समझ में ही नहीं आया कि वह क्या मांगे। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा कि हे परी, आप मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं जिस चीज को भी छूं वह सोना बन जाए। परी ने राजा की इच्छा पूर्ण कर दी। धीरे से राजा एक पत्थर के पास गया। राजा ने अपना हाथ जब पत्थर को लगाया तो पत्थर सोना बन गया। राजा तो जैसे खुशी से नाचने लगा। राजा ने एक फूल को देखा, उसे छुआ तो वह भी सोना बन गया। राजा अपने बगीचे में जाकर के सब फूल पौधों को छूने लगा, वह जिसे भी छूता वह सोने में परिवर्तित हो जाता। राजा तो जैसे खुशी से पागल हुआ जा रहा था। कुछ देर बाद जब उसे भूख लगी तब उसने फल और पानी मंगवाया और जब खाने के लिए हाथ लगाया तो फल सोने में बदल गए। पानी के जग को छूते ही वह भी सोना हो गया। राजा अब न कुछ खा सकता था न ही पी सकता था। अपनी मूर्खता पर राजा को बहुत ही दुख हुआ। राजा को दुखी देख करके राजा की बेटी उसके पास आई तो राजा ने बड़े प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा तो वह भी सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा और भी ज्यादा दुखी हो गया। पश्चाताप के आंसुओं में राजा जब डूबा हुआ था तब वही परी उसके सामने पुनः प्रत्यक्ष हो गई। उसने कहा, हे राजन, मैंने तो सोचा कि आप बहुत खुश होंगे, लेकिन आप तो बहुत दुखी दिख रहे हैं। क्या आपको मिली हुई शक्ति से आप खुश नहीं हैं? क्या आपको और कुछ चाहिए? तब राजा ने परी के पांव पकड़े और माफी मांगते हुए कहा, कृपया आप यह शक्ति वापस ले लीजिए और मुझे मेरी बेटी तथा मेरा सामान्य जीवन वापस दे दीजिए। मेरे पास बहुत धन है और आज से मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, अपना धन गरीबों में बांटूंगा। ये सुनकर के परी ने अपनी दी हुई शक्ति वापस ले ली। राजा बहुत खुश हो गया और सदा के लिए उसने सोने के प्रति अपने लालच को छोड़ दिया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कि लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

ये संसार एक विशाल कुरुक्षेत्र है और हमारा जीवन एक महाभारत। हमारा कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अपनी महाभारत कभी हम शस्त्र के बिना लड़ते हैं, कभी शस्त्र के साथ, कभी अपने शत्रु के विरुद्ध और कभी अपने विरुद्ध। न्याय के लिए, सत्य के लिए, अधिकार के लिए। इस संघर्ष में हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा विश्वास है, सबसे बड़ा शस्त्र हमारा कर्म है।

0: मैं हूं जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। छाती का दर्द हो, पसली का चलना हो, अगर ये सारी समस्याएं हैं तो बहुत ही अच्छा आपको नुस्खे देने वाली हूँ कि अजवाइन एक चम्मच आप 250 ग्राम पानी में उबालिए, ठीक है। एक चौथाई भाग रह जाए, फिर आप इस काढ़े को छान करके रात को सोते समय गरम गरम पी करके ओढ़ करके सो जाइए। दिन में दो बार इस तरह आपको पीना है। इससे 5-7 दिन में ही छाती का दर्द खत्म हो जाएगा, और काढ़ा 2 चम्मच की मात्रा से दिन में दो बार निरंतर कुछ दिन लेने से पसली का चलना भी ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर नुस्खा है, फिर से दोहरा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि अजवाइन एक चम्मच 250 ग्राम पानी लीजिए और उसमें डाल करके उबालिए, फिर एक चौथाई रह जाए तो इस काढ़े को छान करके रात को सोते समय गरम गरम पी करके ओढ़ करके सो जाइए। दिन में इस तरह आपको दो बार पीना है, ठीक है। इससे 5-7 दिन में छाती का दर्द ठीक हो जाएगा, और ये काढ़ा 2 चम्मच की मात्रा से दिन में दो बार निरंतर कुछ दिन तक लेने से पसली का चलना भी ठीक हो जाएगा। अगर आप 6 महीने से लेकर के 12 महीने के आयु वाले छोटे बच्चे को ठंडे मौसम व ठंडी हवा के कारण सर्दी लग जाए, छाती में कब बोले, छाती में दर्द हो या पसली चले, तो आधा कप पानी में 10-12 दाने अजवाइन के डाल करके उबालिए। बड़ों के लिए आपने सुना है, अभी बच्चों के लिए दे रही हूँ। 6 महीने से 12 महीने वाले जो साल भर के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए, ठीक है। 10-12 दाने अजवाइन के डालिए और उबालिए। आधा रहने पर इसे कपड़े से छान लीजिए, और ये अजवाइन पर काढ़ा, थोड़ा सा ये जो अजवाइन का काढ़ा बनाया है, थोड़ा सा गरम गरम पर सहता सहता, ऐसे नहीं कि एकदम गरम, बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए सहता सहता एकदम नवसे का हो जाए ना कि बच्चे को अब पिलाने की स्थिति में है ये काढ़ा, तब पिलाइएगा। गरम गरम एकदम जलता हुआ नहीं देना है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर आप कहेंगे उषा दीदी ने कहा है कि गर्मा गर्म देना, अरे भाई अब बड़े तो हम पी सकते हैं थोड़ा सा गर्म, चाय दूध कैसे पीते हैं, गरम गरम पीते हैं ना, इस तरह काढ़ा भी पी सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं पी सकते हैं, इसलिए बच्चों को बच्चे के हिसाब से नवसेका देना है, दिन में दो बार, ठीक है, और रात में सोने से पहले देना है और सुबह देना है। दिन में एक आध बार दे सकते हैं, इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर होगा। तो इस तरह बच्चों को भी सर्दी जुकाम या पसली, छाती में दर्द जो भी है, उसमें आप इस अजवाइन के काढ़े को दे सकते हो। साथ ही अजवाइन का काढ़ा यकृत, तिल्ली, हिचकी, वमन, मिचली, फिर खट्टी डकारे आना, पेट की गुड़गुड़ाहट, इन सभी समस्याओं में भी ये फायदा करता है। तो कहते ना कि एक वस्तु और फायदे अनेक, तो ज़रूर आप आजमा सकते हैं। अगर दमा है, दमा की शिकायत है, तो सुहागा का फुल्ला और मूलहटी को अलग अलग खरल, या फिर इसको कूट पीस करके कपड़ छन कर दीजिए, और मैदे की तरह बारीक इसका चूर्ण बना लेना है। फिर इन दोनों औषधियों को बरोबर वजन मिला करके किसी बोतल में कांच की शीशी में सुरक्षित रख लीजिए। बस सांस खांसी जुकाम के ये सफल दवा है। अब इसको आप कैसे लेंगे, तो आप क्या करेंगे, साधारण मात्रा 0.5 ग्राम से 1 ग्राम तक दवा दिन में 2-3 बार शहद के साथ चाटिए, या गर्म जल के साथ लेना है, ठीक है। बच्चों के लिए आप 0.5 ग्राम माने रत्ती भर की मात्रा आप आयु के अनुसार दे दीजिए। परहेज में दही, केला, चावल, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, बड़े हैं तो मात्रा को बढ़ा दीजिए, बच्चे हैं तो रत्ती भर ही दीजिएगा। फिर से दोहरा रही हूँ कि सुहागा का फुल्ला और मूलहटी, इनको अलग अलग खरल या फिर खरल में बांटिए, या हमारे में कूट पीस करके कपड़ छन करके मैदे की तरह बारीक चूर्ण बना लेना है, ठीक है। फिर इन दोनों औषधियों को बरोबर वजन मिला करके किसी कांच की शीशी में सुरक्षित रख दीजिए। बस सांस खांसी जुकाम इन सब के लिए ये सफल दवा है। लेना कैसे है, जो आपको बता रही हूँ कि साधारण मात्रा 0.5 ग्राम से 1 ग्राम तक दवा, दिन में 2-3 बार शहद के साथ चाटिए या गरम जल के साथ लीजिएगा। और बच्चों के लिए 1 रत्ती, ठीक है, मात्रा आयु के अनुसार इसी तरह देना है। परहेज में दही, केला, चावल, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। तो ये सारे ही नुस्खे फायदेमंद है और आप चाहो तो आजमा सकते हो। अब आइए ले लेते हैं एक अल्पविराम, पुनः लौट करके आ रही हूँ, फिर आपको मैं प्रश्न भी पूछूंगी, खुशनुमा जीवन की बातें भी आपके साथ करेंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: करेंगे, तो ऐसी कौन सी तिथि आने वाली है और कब ये तिथि है? हेलो,
1: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: जी जय श्री हरि, जय माता दी, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: और सबसे पहले तो हमारे कंचन पर यात्रा में गए, तो बस बाबा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी यात्रा सफल और मंगलमय रहे।
0: जी,
1: और आपका सवाल तो बहुत ही सुंदर है, आंसर दे दो।
0: हाँ जी, बिल्कुल दे दीजिए, अगर आप ऑफ एयर देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। ऑफ एयर देंगे तो अच्छा रहेगा, हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी थोड़ा सोचने का अवसर मिलेगा।
1: तो कोई बात नहीं,
0: आज का विषय मैं बोल रही हूँ, तो गरीब पर मत हंसना साहब, कहीं ऊपर वाले ने सुन लिया तो कटोरा बदलने में देर नहीं लगेगी। तो गरीबों पर अक्सर हम कमेंट करते हैं, अक्सर उन पर हंसते हैं, हीन भावना से उनको देखते हैं, उनका मतलब समय प्रति समय, वो कहते हैं ना कि लोग बाग अपमान भी करते हैं, क्या कहेंगे आप?
1: देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी मतलब तेज मतलब ऊपर से कोई अमीर बन के नहीं आता है।
0: जी,
1: ऊपर से तो सब खाली हाथ ही आते हैं।
0: जी,
1: तो मतलब जो वो गरीब है ना, उनको उनका सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि देखिए हर एक इस धरती माता के ऊपर तो सब उनके पुत्र समान है।
0: जी,
1: वो देखिए मतलब जो पैसे वाला होता है उसको भी अन्न उगा के खिलाती है।
0: जी,
1: और जो गरीब होता है ना उसको भी अन्न मिलता है। प्रभु ने कितनी अच्छी बात बताई है कि देखिए मतलब जो सोते हैं तो कोई भूखा नहीं सोता है।
0: जी,
1: उसको बोले कोई सूखी रोटी खाता है, कोई माल पानी खाता है।
0: जी,
1: मगर उठते हैं तो सब भूखे उठते हैं, पैसे वाला हो या गरीब हो।
0: हाँ जी, बिल्कुल, तो कहते हैं कि भूखे उठते सभी हैं, लेकिन ईश्वर सभी को मतलब भूखा सुलाता नहीं है, उठाता जरूर है लेकिन सुलाता नहीं है,
1: कुछ ना कुछ खिला के सुलाता है।
0: जी जी,
1: तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए आज के मंदिरों पे भी अपन देखते हैं तो कितने गरीब लोग बैठते हैं कटोरा लेके।
0: जी,
1: तो आपने सही बात की कि किसी की गरीब पे हंसना अच्छी बात नहीं है, जो भी आपके हाथ में लगे तो दे दो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है।
0: जी बिल्कुल,
1: मगर उसके ऊपर हंसोगे ना तो वो कल उठ के वही कटोरा अपने हाथ में आ सकता है, क्योंकि पलक झपकते ही करोड़पति रोड़पति बन सकता है।
0: जी जी, हो रहा है, देख रहे हैं समाज में, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई।
1: बस तो यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ये कुछ भी नहीं है, बस मतलब उसके कुछ पिछले कर्मों का होगा तो उसको मिल रहा है, बाकी अपन को मतलब उसके प्रति अच्छी भावना रखनी है।
0: जी,
1: ताकि अपना जीवन सुधर सकेगा।
0: बहुत सुंदर, बहुत
1: और अपन सच
0: जी
1: अपने अंदर से जो भी अच्छे विचार निकले वो उसको भी मतलब हिम्मतवान बनाए और उसको भी अच्छी राह दिखा सके।
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने स्पष्ट किया है कि भाई देखिए कुछ नहीं कह सकते, आज बीज है तो कल तीज है, कब किसकी परिस्थितियाँ बदल जाए। हेलो, हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो?
2: तो और अच्छे हो गए।
0: अच्छा,
2: कार्यक्रम कार्यक्रम तो हम सुनते थे लेकिन आज आपसे रूबरू बात हो रही है तो बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी,
2: और बहुत अच्छी बात हो रही है, विषय भी अच्छा है, प्रश्न भी अच्छा है, प्रश्न तो मैं बाद में दूंगा।
0: जी,
2: लेकिन विषय बहुत अच्छा दिया है, गरीब और अमीर
0: जी
2: बहुत फर्क है, माने तो
0: जी
2: वरना कुछ नहीं है।
0: जी,
2: तो कहते हैं कि हम भी कभी कभी ऐसे पहले थे, लेकिन आज हम थोड़ा सा जो पैसे वाले बन गए तो आज हम गरीब को बोल नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं कि हर किसी को ऐसा दिन आता है और उसको मजा करना, उस पर कुछ बोल देना तो सही बात नहीं है। आज देखते हैं हम कई परिवार ऐसे हैं तो खाने का भी नहीं मिल रहा है, ऐसे परिवार है, लेकिन इसको हम मजा मदद नहीं कर सकते, लेकिन उसके मजाक तो जरूर नहीं।

0: करना चाहिए कभी,
1: बिल्कुल
0: मदद नहीं करो तो चलेगा, लेकिन मजाक नहीं करना कभी
1: जी।
0: आज कई गरीब परिस्थिति वाला ऐसे लोग होते हैं तो इसके ऊपर लोग फंसते हैं, उसको ताना बाना मारते हैं, उसके कहते हैं कि भी आप कुछ करो, जैसा क्यों मांग रहे हो, सारी लड़ाई कर रहे हो, तो ऐसा तो बोलना सही नहीं। आपके पास हो तो जो, वरना तो आपके पास थोड़ा सा ले जाएगा, तो ऐसे ना करके हम कुछ ना कुछ मदद करेंगे तो ही सही है, क्योंकि सब तो अमीर नहीं होता
1: जी।
0: तो सबका हाल ऐसा आता है, सबका दिन आता ऐसा आता है कभी कभी, तो ऐसा पर हम हंसने से नहीं कि हम कुछ मदद करें, इसको कोई मदद करे, इसके साथ कोई मजाक करे तो अच्छा नहीं है
1: जी।
0: तो बस ऐसे मजाक नहीं करना, क्योंकि कभी कभी ईश्वर भी सुनता है और ईश्वर भी कहता है कि चलो भाई वो तो आज ऐसा है, आप पैसे वाले, कभी कभी आपका भी दिन ऐसा आ जाएगा तो आप क्या करोगे, आपके पर लोग भी हंसेंगे, तो ऐसे ना करके हम जो हमारे पास हो उसकी मदद करें।
1: बिल्कुल, वो कभी कभी नहीं रोज सुनते हैं, लेकिन कहते हैं ना खुदा की लाठी की आवाज नहीं होती है,
0: नहीं होती। और कई लोग कई किस्से दीदी देखे हैं हमने कि बाहर पैसे वाले थे, आज वो भी ऐसे हालत में हो गए, बहुत गुस्सा करते थे गरीबों पर
1: जी,
0: अत्याचार करे
1: जी,
0: और गरीबों को ताना उड़ाना मारे
1: जी,
0: तो वो सही नहीं है। वो इसके हिसाब से गरीब है, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि किसी का घर में जाके ले जाए, ऐसा तो है नहीं, इसको चोरी करे, गरीब चोरी नहीं करता है कभी, ये हमने देखा है
1: जी।
0: तो बस कुछ न कुछ हम कह सकता है, कुछ मदद कीजिए और मजाक नहीं करना पर।
1: जी जी, बहुत सुंदर,
0: ठीक है
1: जी,
0: नमस्कार,
1: आभार आपका। तो देखिए सुरेश भाई बाहर है, फिर भी देखे जिनको रुचि है रेडियो के प्रति, वो कहीं पर भी जाते हैं तो भी रेडियो से जुड़े रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप सुनते ही नहीं है, अमल भी करते हैं, और रेडियो को कितना आप दिल में बसाए रखते हैं इस बात से पता चलता है। तो बात चल रही थी कि भाई गरीबी का, जैसे कि सुरेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं गरीब की तो उसकी मजाक भी मत करिए, बहुत अच्छी बात है। कितनी बार हमारे घर के बाहर जैसे कोई मांगने आते हैं, हेलो
2: हेलो, नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई, देवपूजक दानेरा।
1: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: बस अच्छे है, और पहले जो रेडियो हमारे यहाँ पता नहीं क्यों फ्रिक्वेंसी बिल्कुल नहीं पकड़ रहा था, अब तो बात भी हो रही है सुरेश भाई ने, अभी अच्छी अच्छी बातें बनाई सुन रहे हैं हम
1: जी जी जी,
2: और अभी रेडियो ऑन किया है जब सुरेश भाई का कॉल था, तो किस बारे में चर्चा हो रही है,
1: बात हो रही है कि गरीब पर, देखिए कि मैं एक शेर बोलती हूँ, गरीब पर मत हंसना साहब, कहीं ऊपर वाले ने सुन लिया ना तो कठोरा बदलने में देर नहीं लगेगी, मतलब जो गरीब के हम हंसी मजाक उड़ाते हैं, उनको तुच्छ नजरों से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं, ये जी, तो क्या कहेंगे
2: सुरेश भाई ने जैसे बात बताई उस पर, और मैं ऐड करना चाहूँगा कि कई भी ऐसे गरीब थे जो आज अपनी मेहनत से, मैंने देखा है जो अपनी मेहनत से वो कुछ अपने कदम पर चल रहे हैं, और वो कभी कभी पुराने याद करते हैं, पुरानी बात जब वो गरीब थे, इधर ठोकरे खाई, ऐसे ठोकरे खाई, तो एक संदेश देते हैं कुछ लोगों को कि आप जो गरीब होते हैं खास करके उन लोगों को
1: जी,
2: पहले हमारी ऐसी परिस्थिति और हम हमने ऐसा किया, जब हम अपने कदम पर खड़े हुए, आप भी ऐसा कीजिए, अगर हम अपने कदम पर चले और मेहनत और अपनी नीति धर्म सब कुछ अच्छे रखे तो गरीबी दूर हट सकती है, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, और हम जो वैसे ही परिस्थिति में रहे और जैसे कि अभी बताया कि चोरी चकारी ऐसे कुछ करते हैं तो ऐसे ही करते रहेंगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही और कुछ ना कुछ बातें करते ही रहेंगे
1: जी जी,
2: तो मेरी राय ये है दीदी
1: जी, बहुत बहुत आभार
2: जी दीदी, अब तो रेडियो चालू हो गया तो हम हर रोज जुड़ेंगे,
1: जरूर जरूर, प्रश्न का जवाब देंगे आप,
2: प्रश्न सुना नहीं दीदी, क्या है?
1: अच्छा प्रश्न है कि ऐसी तिथि आने वाली है, चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे सब खाएंगे और घर बार आस भी करेंगे, ऐसी कौन सी तिथि आ रही है और कब है वो तिथि?
2: वो अभी कुछ ही दिन है, शायद आज 12-13 से 2-3 ही बाकी है अभी आने वाली पूनम की बात करती है शायद आप।
1: अच्छा ठीक है, आप आशियाना सुनिए, हम जरूर जवाब देंगे आपका। ठीक है,
2: थैंक यू दीदी, नमस्कार
1: जी, वेलकम, नमस्कार। तो आइए यहीं पर एक छोटा सा गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधर क्या पहुँचा दोगे है, कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? कोई जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना क्या? और समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: माता रानी कहती है, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इनको देना, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। मेरे दर पर मांगने वाले, तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि गरीब लोगों पर अक्सर हम छीटाकसी करते, हीन भावना से देखते, उनकी मजाक उड़ाते हैं, और उनको वो कहते हैं ना कि अगर चार जनों के बीच कोई गरीब रिश्तेदार, कहते ना चार जने रईस बैठे हुए होते और कोई गरीब रिश्तेदार आकर के बैठ जाता है तो उसको ऐसे नकारने की कोशिश करते हैं कि अरे नहीं नहीं, इनसे तो हमारा कोई लेना देना नहीं, ये तो बहुत दूर से है। भले सगे भाई भी होगा तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये तो दूर से भाई है, हमारा कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं है। मतलब गरीब लोग इतने आपको ऐसे लगते हैं कि उसमें भी बहुत लोगों को अपने इंसल्ट महसूस होती है कि मेरा रिश्तेदार इतना गरीब है तो मैं कैसे दूसरे लोगों के सामने इसके साथ रहूं। अंदर भले वो काम लेंगे, अंदर ही अंदर उनसे कहेंगे आपसे, और देखिए आप देखिए गरीब लोग जल्दी से आपकी मदद करेंगे, पैसे वाले मदद नहीं करेंगे। फिर भी पैसे वालों के पीछे सभी दीवाने होते हैं, उनके गुणगान करेंगे, बिना कारण उनकी तारीफ करेंगे। और गरीब भले आपकी मदद करता होगा लेकिन चार जनों के बीच में खुल करके उसके आप तारीफ भी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ। हेलो,
4: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति।
3: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति। कुपाराम जी बोल रहे?
4: हाँ जी कुपाराम।
3: हाँ जी कुपाराम जी, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
4: चलो प्रश्न तो आपका है वो शरद पुनमारी है
3: जी, चलिए हम जवाब जरूर देंगे, सही है या गलत आपको इंतजार करना पड़ेगा जी।
4: गरीब, पहली बात तो थोड़ा ये उल्लेख करना, वास्तव में गरीब किसको मानेंगे? और मेरे यहाँ कई भी मांगने वाले जो आते हैं ना
3: जी,
4: उनके मैं आपको बता रहा हूँ, इनको सरकार राशन दे रही है
3: जी,
4: वो राशन तो यहाँ किराने की दुकान में आके गेहूँ बेचते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा,
4: मांग के खाते हैं
3: जी।
4: मेरे पास कभी आते हैं, मैं पूछता हूँ बीड़ी पीते हो? जगह हाँ
3: जी।
4: तो मैंने कहा अब आज तो कुछ देता एक दो रुपया, लेकिन आज नहीं दूंगा जी, क्यों? बीड़ी छोड़ के आना मैंने
3: जी।
4: अब उसको बीड़ी की क्या जरूरत है
3: जी, अब गरीब हो तो बीड़ी सिगरेट पीने की क्या जरूरत है। सही कहा,
4: दो रुपए की जिनकी पीता है ना
3: जी,
4: 20 साल के अंदर 54,000 रुपए होते हैं उसके
3: जी। क्या बात,
4: जब वो भीख मांगने वाला बीड़ी पीता है
3: जी।
4: अच्छा, उसको बोलेंगे कि थोड़ा धंधा करो, मजदूरी चलो, तो वो कभी मजदूरी नहीं करेगा वो
3: जी,
4: क्योंकि एक तो आदत पड़ गई है मांगने की
3: जी।
4: मानता हूँ गरीबी है, ऐसी बात नहीं, मजबूरी में भीख मांगता है तो वो बरोबर है
3: जी,
4: लेकिन जब उसे समझ आ जाएगी फिर तो उसको भीख मांगना बंद करना चाहिए, फिर धंधा मजदूरी करना पड़ता है
3: जी।
4: हाँ जी,
3: बहुत
4: मेरा ये विचार था।
3: हाँ जी, हाँ
4: अच्छा
3: जी।
4: दूसरी बात ये रही, अब वो एक सुबह उठ के आता है तो वो स्नान करके क्यों नहीं आता, जब पानी का तो पैसा लगता नहीं है
3: जी। बिल्कुल सही कहा आपने,
4: मेरे हिसाब से उनको गरीब को थोड़ा, ये गरीब जिसको मानते हैं उनको थोड़ा विचार देना है कि वो भीख ना मांगे, वो सफाई से रहे
3: जी,
4: तो अपना विचार बदल जाएंगे
3: जी। जी क्या बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत बहुत आभार कुपाराम जी आपके
4: जी,
3: आपके इन विचारों ने मुझे भी कुछ बातें याद दिला दी है, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर बात कही है कि देखिए गरीबी मतलब गरीब किसे कहते हैं, कोई दिल से होते हैं तो कोई वो नेचुरल गरीब होते वो बात अलग है, वो खुददारी से जीवन जीते, वो हाथ नहीं फैलाते किसी के सामने, खुददारी से वो अपने रोजगार करते रहते, छोटा मोटा जो भी उनको मिला है मजदूरी करके पेट भरते, लेकिन हाथ नहीं फैलाते। और जो इस तरह के बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो हाथ फैलाने की आदत हो जाती है, वो उनके कितने भी सरकार मदद करे लेकिन वो मदद उनको मतलब लेना ही नहीं आती है, ले लेते। जैसे कि कुपाराम जी ने बताया कि राशन से जो उनको अनाज मिलता है बेच देते हैं, थोड़े से 2-4 रुपए दुकान वाले ज़्यादा दे देते हैं तो उस लोभ में बेच देते हैं, और भले बेच करके वो सिगरेट बीड़ी पियेंगे, शराब के भी आदि होते हैं, बहुत सारे गरीबों को देखा है शराब के भी आदि होते हैं, लेकिन उनको वही जीवन अच्छा लगता है। रेडियो मधुबन की टीम कभी आपने सुना भी होगा, पहले भी हम बोल चुके हैं इस बात को कि हमारे आबू के अंचल में ही कुछ कचरे बीनने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को हमने पढ़ाया, उनको जैसे कि कुपाराम जी ने कहा ना कि वो गंदे रहते हैं, नाना तो कम से कम हैंडपम्प लगे होते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है, तो हमने देखा है कि उन गरीब बच्चों के घर के बाहर ही हैंडपम्प लगा हुआ है, लेकिन वो स्नान ध्यान नहीं करते, इतने गंदे रहते हैं, और कपड़े तो देख लो कि क्या डिज़ाइन है क्या कलर है समझ में ही नहीं आता। तो उन बच्चों को नहलाना धुलाना सब सिखाया, कपड़े धुलाना भी सिखाया। उन बच्चों का कहना था कि उनकी माता क्या करती है, कपड़ों को जला देती है, 8-10 दिन पहने रहते फिर उन कपड़ों को जला देती, फिर मांगने चले जाते हैं और लोग देते भी है, क्योंकि अब बच्चों के जो कपड़े छोटे हो जाते हैं, बच्चे की हाइट बन जाती है, तो वो फिर इस तरह गरीब बच्चों को दे देते हैं, तो उनको नए नए कपड़े मिल जाते हैं पहनने के लिए, और कीमत तो उनको पता नहीं क्योंकि खरीदते हैं पैसे दे करके खरीदते हैं, तो उस चीज़ की कीमत नज़र आती है, और भीख में मिल गई ना, दान में मिल गई, उस चीज़ की क्या वैल्यू। तो उन बच्चों को उस वैल्यू का एहसास कराया कि आपकी माताएं जला देती है, जाने दो, लेकिन आपको खुद को नहा धो करके स्वच्छ होकर के पढ़ने के लिए आना है, कपड़े धुलाई करके आना है, तो बच्चे अच्छी तरह आने लगे। लेकिन माता पिता की आदत है ना, कुछ पिता लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग जो कचरे बीनते हैं उसमें से 50-60 रुपये वो कमा लेते हैं पूरे दिन के, और पिता लोग शराब पी करके पड़े रहते हैं, ऐसा भी हमने इन आँखों से देखा है, और उनको काफ़ी समझाने की भी कोशिश की कि आपके बच्चों का भविष्य इस तरह आप क्यों खराब करते हो। उनका स्कूल में एडमिशन भी कराया गार्जियन के तौर पर, लेकिन नहीं समझते हैं ना, वो बदलना ही नहीं चाहते अपनी परिस्थितियों को, उनको ऐसे कि बस 50-60 रुपये वो, फिर 50-60 रुपये उनकी बीवी कमा के लाती है, कचरा बीन करके 100-150 रुपये आ गए, हो गया पूरे दिन का आराम से गुजर।

0: चल जाएगा, इससे आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप। इसलिए ये भी सही है कि जानबूझकर के लोग अपनी आदतों से मजबूर होकर के भी लोग कुछ काम धंधा नहीं करना चाहते। लेकिन चलिए, ये तो बात हो रही थी भाई गरीबों की कि वो अपनी आदत से मजबूर है, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे गरीब जो अपने स्वाभिमान में रहते हैं, आप उनकी मदद, लाचार स्थिति को देख करके अगर मदद करेंगे तो वो मदद भी नहीं लेंगे, खुददारी से जीवन जिएंगे, नहीं नहीं साहब हमारे पास कोई कमी नहीं है, वो नहीं लेते हैं। तब ऐसा लगता है कि कोई कोई तो उसको गलत समझ लेते हैं कि अरे देखो गरीब है फिर भी इतरा रहा है, लेकिन इतरा नहीं, वो स्वाभिमानी है। और कहीं कहीं पर मजबूरी भी होती है, माताएं बहनों को देखिए आप, कहीं कहीं पर पति गुजर जाता है या फिर शराबी कबाबी होता है, बच्चे हो जाते हैं तो माताएं मजबूर हो जाती हैं, वो खुद के लिए फिर भीख नहीं मांगेगी लेकिन अपने बच्चों के लिए वो भीख मांगेगी, क्योंकि उनको काम अगर नहीं मिलता है तो। बहुत सारी माताओं को तो जैसे कि कुपाराम जी ने कहा कि भाई काम के लिए कहते हैं कि आइए और काम करिए, लेकिन बहुत सारे गरीब को कोई काम, ऐसे भी लोग हैं जो देना नहीं चाहते कि अरे भाई बहुत गरीब है, कहीं घर से कुछ उठा के ले गया तो। लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको परखना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, गरीबों के लिए ये ज़रूर करना चाहूँगी कि भाई वो स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहेंगे, कपड़ों की शर्म नहीं है कि उन्होंने फटा पहन रखा है या पुराना पहन रखा है। फटे है तो आप सिलाई कर लीजिए, लेकिन स्वच्छ कपड़े पहनिए, धुलाई करके पहनिए। अगर आप स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे तो लोग आपको दो नहीं चार काम देंगे। घर पर देखिए आजकल माताएं बहनें भी क्या है, सर्विस ज़्यादा करती है या फिर घर पर भी रह करके बिजनेस करती है, तो उनको सारा काम करने का समय नहीं मिल पाता है, तो झाड़ू पोछे बर्तन में भी माइयों को रखते हैं, तो ऐसा काम तो कर सकते हैं ना। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं है हमारी, हम गरीब है तो कोई सा भी काम, शर्म नहीं, काम करने की कभी ऐब या शर्म नहीं रखनी चाहिए। चोरी, झूठ, छल कपट, इनकी शर्म होनी चाहिए, इसलिए काम का शर्म नहीं करनी है। जैसे कि एक बार शुक्रवार को जब हम स्पेशल कोई माता बहन से आपको मिलवाते हैं, तो एक बहन से भी मिलवाया, नेपाल की बहन थी, किस तरह वो झाड़ू पोछा करके 6-7 हज़ार महीने के कमा लेती हैं। और देखिए अच्छे घर होते हैं, वहाँ से फिर बच्चों के कपड़े है, फिर खाने पीने का है, वो भी देते हैं। वो देखिए ऐसे नहीं कि उनका दया देख करके, कि उन पर दया करके दे रहे, नहीं, स्वाभाविक है। चार जनों का खाना बनाते हैं तो पांचवें का बन ही जाता है, एक जनों का ज़्यादा बनता ही है, और लास्ट में भोजन करने के बाद बचता है तो वो हम अपनी माइयों को ही देते हैं कि भाई ये बच्चा है जो ले जाओ, तो वो तो ताज़ा खाना ही है ना, बच्चा इसलिए दे रहे हैं और उनको पता है कि बच्चा है इसलिए दे रहे हैं, स्पेशल नहीं बनाया हमारे लिए या फिर हम उनके लिए स्पेशल नहीं बना रहे हैं, तो वो बात अलग है। तो गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन स्वाभिमान से जीना ये अच्छी बात है। कि गरीबी तो परिस्थितियां सभी के अंदर आती है, और बात रही हंसने की, कि गरीब को देख करके हंसी मजाक नहीं करना है। वो कहते ना कि कभी भी ये पहिया घूम करके, ये चक्र घूम करके हमारे तक भी आ सकता है। हेलो
1: हेलो, नमस्कार दीदी, मैं फिर से सुरेश भाई दानेरा से। मुझे एक सच्ची घटना याद आई है
0: जी,
1: कि एक गरीब तो वो मांग रहा था, तो जो ज्यादा भीड़ में फुटपाथ पर, तो उनका जो मांगने का जो वक्त का होता है ना, वो लोगों को पैरों से इधर उधर हो रहा था, पैसे भी गिर रहे थे, तो एक इंसान ने देखा और वो बोला कि तुम इधर ऐसे ही हर रोज रहते हो, कुछ पैसा इकट्ठा करके क्यों कुछ काम नहीं करते, कि मेरे पास इतने पैसे है नहीं। तो उन्होंने पैसा 500 रुपया दिया और कुछ कुछ काम कर लो ऐसा बोलकर वो तो चला गया
0: जी।
1: और लगभग 4-5 साल बाद जब वो 500 रुपया देने वाला जा रहा था, तो एक इंसान ने पकड़ा और पैरों में गिर गया और के अपने साथ ही चलो, अरे भाई मैं आपको पहचानता नहीं, आप है कौन। तो बहुत छोटा मोटा घर था, उनके घर में ले गया और अच्छी सी खातिरदारी की, लेकिन आप बताओ तो सही है कौन
0: जी।
1: तो के आपको याद हो 4-5 पहले जो आपने 500 रुपया दिया और मैं भीख मांग रहा था ना, वो फुटपाथ पर, वो मैं ही हूँ। आपने सिर्फ उन दिन 500 रुपया ही नहीं दिया, लेकिन मुझे जीने की तरकीब सिखाई है। तो ये सब कुछ आपका ही है और आप बहुत धन्यवाद दिया, सब कुछ किया। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि गरीब को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बड़े जी। तो ऐसा भी होता है कि देखिए, गरीब के अगर हम समय रहते उनकी मदद करते हैं तो वो भी ऊपर आ सकते हैं, उड़ सकते हैं ऊपर, क्योंकि उनके अंदर कला है कुछ करने की। जैसा कि आपने बताया कि 500 रुपए से उनको इतनी मदद मिली कि कुछ ही सालों में वो थोड़े से योग्य बन गए, छोटा मोटा घर भी खरीद लिया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, पैसों का सदुपयोग करना आना चाहिए। पैसे तो सभी के हाथ में मिल जाते हैं, लेकिन कितनी बार क्या है उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। तो बात चल रही थी कि गरीब है, ठीक है वो गरीब है, लेकिन हमें उसकी हंसी मजाक उड़ाने की कहाँ आवश्यकता है। कभी कभी इंसान बेमतलब ही गरीबों की हंसी उड़ाते हैं, उनके ऊपर कमेंट कसते हैं, न जाने कितने व्यंग मार देते हैं। मांगने वाले के भी आप देखना, कोई मांगने हमारे दहलीज पर आता है तो बहुत सारे लोग तो उसका पूरा ही अपमान कर देते हैं। अरे भाई अच्छे खासे हो, कुछ काम धंधा करो ना, ऐसे मतलब व्यंग में। नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो आया है हमारे द्वार पर तो उसकी कुछ मजबूरी होगी। अगर आप मदद कर सको तो ठीक है, नहीं तो मत करिए, क्योंकि आजकल किसी का कुछ नहीं कह सकते कि कोई मदद मांगने आता है और अपना ही चेन वगैरह खींच के ले जाता है, ऐसा भी हो रहा है अभी वर्तमान में। तो मत करिए, लेकिन हंसना नहीं है, उसके ऊपर छीटा कसी नहीं कसनी है कि अरे तुम क्या करते हो, तुम तो काम धंधा कर सकते हो। प्यार से कहो कि भाई काम धंधा करके अपना गुजारा करो, मांगना अच्छा नहीं है। ये बात तो अलग है, एक सलाह देना हुए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि ऐसे ताने मारते, ऐसे डांटते हैं कि जैसे उसने कोई गुनाह किया हो। हमने दिया भी कुछ नहीं और बहुत कुछ सुना दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा करने से भी सामने वाला अगर वो मजबूरी से आया, हमें नहीं पता कि वो किस आशय से, किस मतलब भाव से आया है, लेकिन हमने उसका अपमान किया और उसका दिल दुख गया, उसको ताने मारे, उसके ऊपर व्यंग कसे और उसका दिल दुख गया, तो भी पाप के भागीदार तो हम हो जाएंगे ना। इसलिए कोई मांगने आ रहे हैं, देना न देना अपने हाथ में है, लेकिन अपमान नहीं करना है गरीब का, क्योंकि कब समय पलटी खाए, कब परिस्थितियां हमारे पास आ जाए, तो उस समय हम क्या करेंगे। हो रहा है समाज में, देखिए करोड़पति के रोड़पति बन रहे और रोड़पति के करोड़पति बन रहे। जैसे योग्य बच्चे निकलते हैं, पढ़ लिख करके होशियार बन जाते हैं, अच्छी ऊंची पोस्ट पर विराजमान हो जाते हैं, तो उनकी परिस्थिति अच्छी संभल जाती है, तो वो अच्छा जीवन जीने लगते हैं। बहुत सारे लोग जो अहंकार में रहते हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता, वो देखो आप भीख मांगते नजर आते हैं। वो कहते हैं ना, कुछ कुछ रॉयल भिखारी भी होते हैं कि लोगों से पैसे मांगने की आदत होती है और देना नहीं होता है। तो दरअसल गरीब तो उनको ही कहेंगे जो पैसे तो ले लेते हैं लोगों से कि धंधे में डालना, उसमें डालना, इसमें डालना, और फिर उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। जो मांगने आते हैं ना, उनको मुंह भी नहीं दिखाएंगे और घर परिवार में समझा देंगे कि बता देना भाई, वो आवे तो बोल देना कि घर पर नहीं हूँ, और वो ही जवाब मिलता है। बेचारे लोग कितना धक्का खाएंगे, 10-15-20 धीरे धीरे फ़ोन कॉल्स भी बंद, उठाना बंद, नंबर बदल देंगे। गरीब वो है जो इस तरह लोगों का मांग मांग करके खाते, मेहनत करने वाले कभी गरीब नहीं होते। इसलिए स्वाभिमान का जीवन जीना है और स्वाभिमान में रहना है, यही दरअसल दिल के अमीर कहलाते हैं। और आज के प्रश्न है कि ऐसी तिथि आने वाली है, चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे और गरबा रास भी करेंगे, तो ऐसी कौन सी तिथि आती आने वाली है अभी जो ये सब हम करने वाले हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए सुनेंगे फिर से एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। परंतु आज के प्रश्न का जवाब बहुत सरल है। पहले मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, जो भी आशियाना कार्यक्रम सुन रहे हैं आप प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये तिथि बहुत ही जल्दी आने वाली है। ऐसी

0: तो भाई ऐसी कौन सी तिथि आने वाली है? नवरात्रि तो देखिए बहुत सभी ने गरबा रास किया, डांडिया किया, मजा आ गया सभी को, है ना। तो गरबा रास अपने अपने सोसाइटी में हुए हैं और किए भी होंगे, लेकिन फिर से गरबा रास करेंगे परंतु कौन सी तिथि को? जवाब दीजिएगा। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब आशियाना की किचन में आज बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट वानगी, गुजराती में वानगी कहते हैं और वैसे हम कह सकते हैं कोई भी एक अच्छे से डिश, तो बनाएंगे राजस्थानी कचौरी चाट। राजस्थानी कचौरी चाट का नाम सुनते ही तो पानी आ ही गया होगा, और वो भी जोधपुरी कचौरी चाट, उसका तो कहना ही क्या है। जगह जगह पर भले मिष्ठान वालों की दुकानें होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे दुकानों पर लिखा होता है कि जोधपुरी कचौरी, लेकिन चलिए जोधपुरी कचौरी आज हम सभी को बनाना सिखाएंगे ताकि आप सभी बना करके आनंद ले सको। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: ओम शांति।
0: हाँ जी, नमस्कार लीला जी, ओम शांति, कैसे हो आप?
1: एकदम बढ़िया है मैडम जी, आपकी इतनी अपनी फर्स्ट क्लास आवाज आज बराबर आई है, क्योंकि एक आवाज बराबर नहीं सुनाई दे रहा था।
0: अच्छा,
1: थोड़ा
0: मिस्टेक हो रहा
1: था, बराबर
0: गुर गुर गुर
1: करते तो मजा नहीं आ रहा था सुनने में।
0: चलिए आज तो आवाज एकदम क्लीन आ रही है।
1: बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी पूनम में गरबे के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं रात की।
0: अच्छा, तो आ जाइए फिर, करेंगे हम सभी रेडियो मधुबन में धमाल।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पूनम आ रही है फर्स्ट क्लास।
0: जी जी जी, चलिए हम देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं है। आ रही है तो कब आ रही है?
1: जल्दी जल्दी खीर, पौवे की खीर बनाएंगे और फिर चांदनी रात में रख देंगे और फिर चंदा मामा से अमृत गिरेगा अंदर।
0: जी जी, क्या बात है। बहुत अच्छा,
1: बुनमनी रात जो चांदनी सखी मारा चौक माँ।
0: क्या बात है। बहुत खूब। तो लीला जी, हम जरूर आएंगे इस बार, भाई ज्यादा बनाना, ठीक है?
1: बहुत देर बनाएंगे अपन, कमी नहीं पड़ेगी।
0: ठीक है ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और उस दिन हमारे श्रोता बंधु को आप ही सिखा देना, ठीक है? दूध पोहे।
1: ठीक है, ठीक है मैडम जी।
0: ओके जी, बहुत बहुत आभार आपका जी। तो आज आपको कचौरी, राजस्थानी कचौरी चाट बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है? तो पहले मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ, पेन और डायरी आप तैयार होगी आपके हाथ में, सामग्री लिख लीजिए, क्योंकि देखिए ये चीज़ें ऐसी है कि लिख लेना अच्छा है। आप रोज़ कुछ ना कुछ सिखाते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं, तो लिख लीजिए कि सामग्री है मैदा 250 ग्राम, फिर आप धुली हुई मूँग की दाल ले लीजिए 100 ग्राम, और हरी मिर्च ले लीजिए 3-4, अदरक भी एक छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं, 1 चम्मच जीरा ले लीजिए, हींग चुटकी भर लेना है, पीसी हुई लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच लेना है, मोटा कुटा हुआ गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच ले लीजिए, और मोयन और तलने के लिए तेल आवश्यकता के अनुसार लेना है। भरने की सामग्री दोहरा रही हूँ, 4-5 उबले हुए आलू लेना है, और हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया ये आप आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, चाट मसाला भी लेना है, हरी चटनी और इमली की सौंठ ये भी आपको तैयार रखना है, बीकानेरी भुजिया और फेटा हुआ दही, और ये सब आपको तैयार रखना है, ठीक है? तो फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, ध्यान दीजिएगा कि राजस्थानी कचौरी चाट, वैसे तो देखिए राजस्थान के लोग चटपटा खाने के बहुत ही प्रसिद्ध है, जोधपुर की स्पेशल कचौरी की चाट खाने के बाद तो दिनों तक, बहुत दिनों तक उसका स्वाद याद आता रहता है। अक्सर आपने देखा ही होगा, क्योंकि कोई ऐसे नहीं होंगे हमारे श्रोता बंधु जिन्होंने जोधपुरी कचौरी चाट नहीं खाई होगी, और उसका आज मैंने याद दिला दिया होगा तो उसका टेस्ट भी याद आ गया होगा कि कैसा उसका स्वाद रहता है। लेकिन अब ये रोज तो बाहर से ला के नहीं खा सकते हैं, इसलिए घर पर बना करके आप जरूर खा सकते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी रहती है। तो मैदा 250 ग्राम लीजिएगा, दाल लेना है 100 ग्राम मूंग की दाल, ठीक है। हरी मिर्च, अदरक सब अपने आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, जैसे 3-4 हरी मिर्च है, एक अदरक का टुकड़ा है, जीरा 1 चम्मच है, चुटकी भर हींग है, पीसी हुई लाल मिर्च और नमक दोनों ही अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। और अमचूर पाउडर 1/2 छोटा चम्मच लेना है, और मोटा कुटा हुआ गरम मसाला भी 1/2 छोटा चम्मच ले लीजिए, और मोवन के लिए और तलने के लिए आवश्यकता के अनुसार तेल लेना है। फिर भरण की सामग्री है भरने की, कि उबले हुए आलू 4-5 ले लीजिए, और हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया ये सब आपको आवश्यकता के अनुसार लेना है। इसके साथ चाट मसाला भी आपको लेना है थोड़ा सा। अब इसमें आप तैयार रखेंगे हरी चटनी, इमली की सौंठ, बीकानेरी भुजिया और दही आपको लेना है, ठीक है। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए गीत सुनेंगे, उसके बाद राजस्थानी कचौरी चाट कैसे बनाई जाती है वो जरूर सिखाएंगे। परंतु आज का प्रश्न है, हमारे जो भी श्रोता बंधु सुन रहे हैं दे सकते हैं आज के प्रश्न का जवाब। प्रश्न है, ऐसी तिथि आने वाली है चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे तो गरबा रास भी करेंगे। जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है रेडियो मधुबन के 94-14-15-14-15, और सुनते हैं गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे हैं राजस्थानी कचौरी चाट। सामग्री आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, आप लिख चुके होंगे। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि आप क्या करेंगे। मैदे को छानिए, छान करके एक बड़ा चम्मच तेल इसमें डालिए और थोड़ा सा नमक मिला करके नरम नरम इसको गूंदना है और गूंद करके गीले कपड़े से ढक करके रख देना है, ठीक है। फिर एक कढ़ाई रखिए गैस पर, कढ़ाई में तेल डालिए और हींग जीरे का तड़का लगाइए। फिर दाल जो हमारी भीगी हुई है, दाल को क्या है भिगो के रखना है एक घंटे पहले ही, ठीक है। तो इसका छोक लगा दीजिए, पानी निकाल देना है और छोक देना है दाल को। फिर नमक लाल मिर्च डाल करके कम पानी में गलने तक पकाइए, हल्के हल्के से छींटे देते जाने हैं। पानी तो निकाल ही देना है, बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो हाथ में लेकर के थोड़ा सा छींटा दीजिए, ठीक है, ताकि दाल हमारी थोड़ी सी गल जाए। गलने के बाद यदि वो पानी तो रखना ही नहीं है, फिर भी है तो आप उसको सुखा दीजिए और अच्छी तरह इसको मैश करिए। गरम मसाला और अमचूर मिलाइए, थोड़ा हरा मसाला भी मिला दीजिए। मैदे की छोटी लोइया बना करके बीच में मूंग का मिश्रण थोड़ा सा फैलाना है लोइया बना करके, ठीक है। फिर मूंग के दाल की ये पिट्ठी रखिए और इस मिश्रण को भर करके चारों ओर से मोड़ करके गोलाई में बंद करिए। हथेली से हल्का सा दबा करके कचौरी की तरह बनाइए, ठीक है। फिर गरम तेल में इसको डाल दीजिए, मंदी आंच पर करारी होने तक तलना है। तो कचौरी फूलना अवश्य, देखे कचौरी आप डाल रहे हैं तल रहे हैं तो कचौरी फूलनी ज़रूर चाहिए, ठीक है। अगर नहीं फूली बैठ जाएगी तो फिर वो कचौरी की तरह दिखाई नहीं देगी, इसलिए इस बात पर आपको पूरा ध्यान देना है। एक आध बिगड़ जाए तो दूसरी पर अच्छी मेहनत करनी है। अच्छी तरह इसका लुआ बनाना है, लुआ बना करके इसको हथेली से ही चौड़ा चौड़ा बना करना है। फिर मसाला जो पिट्ठी बनाई है दाल की बीच में रख करके गोल गोल फिर से लुआ बना करके हल्के हाथ से दबा देना है कचौरी की तरह। फिर तेल गरम हो जाए उसको मध्यम करके मध्यम आंच पर कचौरियाँ तलिए, दोनों तरफ से सुनहरी सुनहरी हो जाए फिर आप निकाल दीजिए और दूसरी कचौरिये तल दीजिए। कचौरिये फूलनी ज़रूर चाहिए। कचौरी को ऊपर से थोड़ा फ्राई करके उसमें कटे हुए आलू, हरा मसाला, जैसे कि हमने सामान लिया ना भाई, उबले हुए आलू 3-4 लिए, उसके आप थोड़े से कटके कर लीजिए, काट लीजिए, ठीक है। और उसमें ये हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, कटा हुआ चाट मसाला, ये सभी आपको बताया था तो लीजिए। फिर आलू डाल करके हरा मसाला और चाट मसाला अपने स्वाद के अनुसार डालिए और हरी मिर्च, बीकानेरी भुजिया ये भी डाल दीजिए। इमली की सौंठ भी इसमें डालनी है, इमली की सौंठ बोले तो चटनी, ठीक है। और दही और नमक सब छिड़क करके पिरसिए। तो ये बन गई कचौरी, राजस्थानी कचौरी चाट। इसके खाने का जायका ही अलग है, बनाने का भी तरीका और खाने का भी स्वाद पूरा ही आपको अलग ही लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी। बच्चे, बुजुर्ग, किशोर सभी इसको पसंद करते हैं और सभी खा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कचौरी चाट तैयार है, अब देर किस बात की, लीजिए एक प्लेट। प्लेट में ये सब रखिए और अच्छी तरह इसमें सब कुछ मसाला डालिए और एक थाली में रख दीजिए, स्वच्छ थाली में। और भी आपने कुछ बनाया है वो भी रखिए, तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए और ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो कचौरी चाट का। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था कि भाई आप सभी ने सुना ही होगा कि ऐसी तिथि आने वाली है चंदा में सभी झूमने वाले हैं, दूध पोहे भी खाएंगे तो गरबा रास भी करेंगे। तो आज के प्रश्न का जवाब सभी ने सही दिया है। नाम मैं पहले सुना रही हूँ, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई जोटाना से, सुरेश भाई दानेराव से, कुपाराम जी कोजरा से और लीला जी माउंट आबू से, सभी ने सही जवाब दिया है। शरद पूर्णिमा जय। तो सही जवाब आप सभी के लिए तामिया। और अब खाली दो लाइन में गीत की सुनाऊंगी क्योंकि समय भी होने को आ चुका है, इसलिए सिर्फ दो लाइन गीत की सुनाऊंगी। आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या,
भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या।

0: रुका। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: और मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई, है? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? और बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन

0: करने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम लेकर के आप सभी के बीच में आते हैं और कुछ नई अनोखी बातें सीखने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों, जीना इसी का नाम है कब कहा जाता है, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो और वो चीजें शायद हमें जीवन में कभी और हासिल नहीं कर पाते हैं, और यही वो जीवन है जो हम जीना चाहते हैं और हम उस चीज को हासिल कर लेते हैं। जब ऐसे पल आते हैं तो फिर जीवन की जो संतुष्टता है वो बढ़ती जाती है। ऐसे ही कुछ अनुभवों के साथ आज हमारे बीच में है सूरज भाई। सूरज भाई शांतिवन ब्रह्म कुमारीज के परिसर में कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और एक योगी जीवन जीते हुए कैसे वो इस स्थूल कार्य को भी करते हैं, आइए आज के इस बातचीत में हम जानते हैं। सूरज भाई, आपको रेडियो मधुबन में और जीना इसी का नाम है कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी मुझे इन्वाइट करने के लिए।
1: जी तो सूरज भाई, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपका बचपन, आपका परिवार कहाँ बीता और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और बचपन से ही आपकी धार्मिक प्रवृत्ति रही या फिर बाद में आपको ये आध्यात्मिकता के प्रति रुचि आया।
2: सभी श्रोताओं को मेरा ओम शांति। बचपन से, वैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जन्म हुआ नासिक महाराष्ट्र में, बिलोंग हम महाराष्ट्र से ही करते हैं। तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, कोपरगाँव करके एक तहसील है, तो वहाँ पे हमारे पिताजी जॉब करते थे, तो वहीं पे हमारी पढ़ाई शुरू से लेके आखिर तक सब कुछ वही हुई। बचपन भी कोपरगाँव एक छोटा तहसील है, उसमें भी तिलक नगर करके एक जगह है, तो जहाँ पे हम रहते थे वहीं पे हमारा सारा बचपन बीता, वहीं पे हमारी सारी पढ़ाई पूरी हुई। और रही आध्यात्म की बात, तो घर में ही आध्यात्म का वातावरण पहले से रहता था। बड़े चाचा थे जो हमेशा भक्ति मार्ग में रहते थे, छोटे चाचा भी भक्ति मार्ग करते थे, पिताजी भी भक्ति मार्ग करते थे, हम तीन चाचा, मतलब दो चाचा भाई, मेरे पिताजी माताजी, हम साथ एक सिंगल परिवार हमारा एक ही था उस समय जब तक दादाजी थे। तो बड़े चाचा को मैं हमेशा देखता था कि सवेरे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, घर में जितने भी भगवान है सबकी पूजा करेंगे, उनको नहलाएंगे, फिर वो खुद सबकी पूजा आरती करके फिर काम पे चले जाते थे। तो ये हम बचपन से देखते आ रहे थे, तो वही संस्कार थे। फिर कभी कभी ऐसे भी मौके आए कि घर में कोई नहीं, मतलब बड़े चाचा नहीं, छोटे चाचा नहीं, पिताजी भी नहीं, सिर्फ मैं होता था, मेरा छोटा भाई। भाई काफी छोटा होने के कारण उसको निकली, फिर माँ मुझे बोलती थी कि आज तेरी बारी है, तुम पूजा कर। तो इतने सालों से जो देखा हुआ था वैसे ही नहा के आओ, सिर्फ एक वस्त्र पहनो, पूरे शरीर पे इधर उधर सब जगह पे भस्म लगाइए, और फिर शुरू करते थे। जो भी देखा होता, तो माँ बैठ के हंसती थी। तो लेकिन इस तरीके से हमारे में भक्ति मार्ग भी रहा। माँ हमें बताती थी कि जब हम काफी छोटे थे तो माता पिता दोनों भक्ति मार्ग में थे, तो महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी बहुत प्रचलित है, जैसे पूरे भारतवर्ष में गीता है तो उसी का मराठी में अनुवाद ज्ञानेश्वरी होता है, तो ज्ञानेश्वरी के पारायण होते हैं 7 दिन के, तो उसमें अपने को पूरी ज्ञानेश्वरी पढ़नी होती है। तो माँ कहती थी कि आप लोगों ने वैसे भक्ति मार्ग तो अपने हाथों से नहीं किया होगा, लेकिन आप जब छोटे थे तो हम आपको हमारी गोदी में लेके बैठते थे और ज्ञानेश्वरी पढ़ते थे, तो हमारे साथ साथ आपका भी वो भक्ति मार्ग पूरा हुआ। फिर जब नवरात्र आती थी तो हम पूरे जो गली में रहने वाले थे, सवेरे 4 बजे 5 बजे उठो नंगे पैर, जो हमारे गांव की ग्राम देवी थी वहां तक पैदल पैदल जाते थे, सवेरे की आरती करना, प्रसाद खाके फिर घर में आना। तो गणपति का जब सीजन आता था तो गणपति का स्थापना करना, 10 दिन उनकी पालना करके, पूजा आरती करके विसर्जन करना, ये सब चीजें हमने बचपन में की हुई है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि भक्ति मार्ग का बीज जो है वो बचपन से ही था, घर से ही, और ज्ञान मार्ग में आने के लिए भी परिवार वाले ही निमित्त बने हुए हैं।
1: सो आप इस राजयोग मेडिटेशन कहे या इस ईश्वरीय पढ़ाई के संपर्क में कैसे आए, और ब्रह्म कुमारी से परिचय कैसे मिला?
2: संपर्क में वैसे बचपन में पिताजी के साथ सिर्फ गुरुवार गुरुवार सेंटर पे जाता था, क्योंकि दीदी मीठी मीठी टोली खिलाते थे तो वो बस।
1: क्या उम्र रही होगी
2: उस समय? मेरी उम्र थी शायद 11 साल।
1: जी
2: 10-11 साल के आसपास, मतलब 5th-6th standard में ऐसा कुछ होगा, समझ बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन पिताजी के साथ सिर्फ जाने का, दीदी खिलाएंगे, अपने पास बिठाएंगे, प्यार करेंगे, इतना ही अच्छा लगता था, उसके बाद कभी नहीं। फिर बाकी पिताजी ज्ञान में चलते थे, उसके बाद हमारे माताजी आए। तो जैसे माताजी ज्ञान में आए तो घर में खाना बनना ब्रह्म कुमारी के हिसाब से बिना प्याज लहसुन का होने लगा, और हमें उस समय तक आदत तो थी नहीं वैसे कुछ खाने की, तो मैं जाता था बाजू वाले घर में खाना खाने के लिए क्योंकि बाजू वाले भाभी को हमें पता था कि सूरज को ये सब चीज़ें पता है, हम छोटे छोटे थे तो भाभी हमें प्यार से बुलाती थी कि आजा तेरे आज पसंदीदा मेथी की सब्जी बनाई है, तो वो लहसुन डाल के बनाते थे तो वो मुझे बड़ी पसंद होती थी, तो मैं खाने के लिए उनके पास। भेल खाने की आदत, तो वो भेल जो है वो बिना प्याज की तो खाई नहीं जा सकती, तो वो सब शुरुआत में ऐसा रहा। फिर छोटा भाई ज्ञान में आया और फिर धीरे धीरे मैं ज्ञान में आया, सबसे लास्ट मैं अपने परिवार में हूँ ज्ञान में चलने वाला। तो मेरे पिताजी को ज्ञान मिला हमारी मौसी से, मौसी ने बाद में चलो बाबा का हाथ छोड़ दिया लेकिन पिताजी ने पकड़ के रखा, फिर पिताजी माताजी भाई और लास्ट में मैं आया। तो इस तरीके से हमें ज्ञान मिलता गया। तो ज्ञान में चलता तो था लेकिन हर चीज़ फॉलो नहीं हो पाती थी, जो धारणाएं हैं अपनी ज्ञान की वो सब नहीं हो पाती थी। लेकिन टेंथ के बाद उन सब चीज़ों पे मैंने थोड़ा सा गौर भी किया क्योंकि मेडिटेशन करने से स्टडी में मुझे वाकई काफ़ी फ़ायदा मिला। मेरे छोटे भाई को हम सबसे ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा छोटे भाई को ज़्यादा फ़ायदा हुआ मेडिटेशन का अपनी स्टडी में, क्योंकि उसकी हर साल ग्रोथ होती गई, तो वो था। और उसके बाद जब प्रैक्टिकल में इंजीनियरिंग पूरी की, बाहर जॉब के लिए गए, तो और भी चीज़ें हुई जिसमें हमें ज्ञान में काफ़ी मदद की, तो उस वजह से ज्ञान काफ़ी पक्का हो गया और फिर इसमें ही आगे चल पड़े
1: जी। सो जैसे आपने कहा कि बचपन में माँ बाप के साथ आप आश्रम जाते थे और टोली खाने से आपको अच्छा लगता था लेकिन ज्ञान इतना आपको समझ में नहीं आता था, तो ऐसे कौन सा वो पॉइंट आया जब आपको लगा कि हाँ यही सत्य ज्ञान है और मुझे इस पे विश्वास करना चाहिए, इसी से मेरे जीवन की उन्नति होगी, कौन सी बात थी जिससे निश्चय हुआ?
2: वो बात मेरे लाइफ में काफ़ी देरी से आई, ज्ञान तो बहुत पहले मिल चुका था। तो सेंटरों पे जाता था तो बहनें बोलती थी सूरज ये सेवा करनी है वो सेवा करनी है, प्रदर्शनी समझानी है, वो सब समझाता था, आत्मा का नॉलेज झाड़ वगैरह हर चीज़ में सबको प्रदर्शनी में समझा सकता था। लेकिन जब मेरे उम्र का लगभग 23 साल के आसपास का था मैं, जब पूना में जॉब करता था, तो ज्ञान में तो चलता था लेकिन धारणाएं उतनी नहीं हो पा रही थी। तो जैसे जब जॉब करता था तो लौकिक जीवन वाले जैसे चीज़ें करते थे वैसे मेरे साथ भी हुआ, किसी लड़की से प्यार किया और जब उस चीज़ में रिजेक्शन मिला तो काफ़ी लगभग 3 महीने तक मैं डिप्रेशन में था। उस समय वो पूरा 3 महीना कोई भी मेरे साथ नहीं था, कोई चीज़ नहीं, मतलब अपने घर वाले नहीं, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पाता था। उन 3 महीने में सबसे अच्छी एक चीज़ यही रही कि मैं 3 महीना कंटिन्यू सेंटर को जाता था, रोज़ मुरली पढ़ता था, छोटी गीता पाठशाला थी पूना में तो वहाँ रोज़ जाता था, शाम को योग करता था, मुरली पढ़ता था, भले ज्ञान इतना उस समय नहीं वो हो पा रहा था लेकिन ज़रूर पढ़ता था। और उसी ज्ञान में मतलब मुरली पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगे कि भगवान अपने को ये चीज़ बता रहा है, तो उस समय निश्चय हुआ क्योंकि वो मेडिटेशन और वो मुरली पढ़ना ही मुझे उस डिप्रेशन से बाहर निकाला, उस हीलिंग, वो पूरी हीलिंग हुआ और उस समय उस चीज़ से मैं बाहर निकला। उस समय मेरा निश्चय पूरा हो गया कि यही वो चीज़ है जो मुझे आगे भी और ले जा सकती है और मुझे इसी मार्ग पे आगे चलते रहना है
1: जी। तो वो कौन सा पल आया जब आपकी लाइफ तो सेट हो गई, ज्ञान भी समझने लगे, धारणाएं आ गई और लाइफ को आपने सीरियसली लेना या समझना बेहतर तरीके से, फिर नौकरी भी चल रहा था, तो कब ऐसा फील हुआ कि आपको नहीं मुझे अभी समर्पित होना है?
2: जब मैं पूना में जॉब कर रहा था तो मैं साथ साथ इंजीनियरिंग के कुछ एग्जाम्स है जो एक्सटर्नली हम दे सकते थे वो भी दे रहा था, तो उसके लिए एग्जाम आए थे 1 महीने के बाद, तो मैंने हमारे बॉस से छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने छुट्टी मना कर दी। मैंने कहा कम से कम 7 दिन की छुट्टी दे दीजिए ताकि मैं साल भर की पढ़ाई करके पेपर पास कर सकूँ, पेपर में पास हो सकूँ, उन्होंने वो भी मना किया, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया, पेपर वगैरह दिए। फिर पिताजी ने कहा कि अगर आपने अभी जॉब कर ही नहीं रहे हो, रिज़ाइन किया है तो घर अपना बनना है, बाबा का नया घर बना रहे हैं तो आप आके मदद कीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर 6 महीना घर पे रहा, घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह देखा, तो 6 महीने बाद मैं बहुत बोर हो गया था, उब गया था उन सब चीज़ों से। तो फिर मेरे दीदी ने फ़ोन किया सेंटर के कि शांतिवन में 1 महीने की सेवा है, तुम जाओगे क्या ज्ञानामृत में सेवा है? मैंने कहा बहुत अच्छा है दीदी, मैं ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मुझे ऐसे किसी जगह पे जाना है जहाँ पे मुझे कम से कम काम करना हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सो सकूँ और खाना भी मुझे आराम से मिले, ये सब चीज़ें। और लौकिक वालों को जब मैं सोचता
1: बहुत थक गया था
2: लौकिक वालों के बारे में सोचता था, तो किसी के घर में भी जाऊँगा तो वो दिन भर काम कराएंगे, सोना हो नहीं पाएगा। फिर मेरे दिमाग में आया था कि हमारे दीदी का यहाँ फ्लैट है बाहर योगीनगर में, दीदी से बात करके मैं वहां रहूंगा, यहाँ थोड़ी सेवा कर लूंगा, खाना हो जाएगा और ज्यादा सो जाऊंगा। ये मेरे विचार चल ही रहे थे तो 8-10 दिन में दीदी का ही फोन आया कि शांति उनमें सेवा है, तुम 1 महीने के लिए जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल जाऊंगा दीदी। 1 महीने की सेवा के लिए आया था ज्ञानामृत में निमिचंद भाईजी के पास, 3 महीना रुका। उस 3 महीने में मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मुझे अभी यही समर्पित होना है। तो उस समय
1: ऐसा
2: में
1: क्यों लगा? क्योंकि आपने तो ऑलरेडी लाइफ को सेट कर लिया था, पैसे भी कमा रहे थे और घर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था।
2: उस समय जब मैं यहाँ आया ना, मुझे बहुत बहुत अच्छे अनुभव हुए, बहुत अच्छे अनुभव। मैं यहाँ सेवा कैसे करते हैं, किस तरीके से, कंप्यूटर ऑपरेशन आता था क्योंकि इंजीनियरिंग के जो सॉफ्टवेयर से वो सीखा हुआ था तो वो सब कुछ जानता था, लेकिन यहाँ किस तरीके से क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, क्या क्या चीजें करनी होती है, वो ज्यादा पता नहीं था। उस कारण से यहाँ आने के बाद जब मुझे भाई जी सिखाते थे, मैं जाके कमरे में दोपहर में जब रेस्ट करता था तो बाबा से बात करते हुए कुछ चीजें बाबा को बोलता था कि ये भाई जी ने आज सिखाया है, इसके लिए मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ।
1: बाबा मतलब परमात्मा से?
2: परमात्मा से ऐसी बात करता था कि मेरे को आज ये सीखने को तो मिला है, लेकिन इसको और बेटर तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ चीजें या कुछ आइडियाज आती थी कि हम ये कर सकते हैं। फिर मैं ऑफिस आने के बाद शाम को फिर से वो आइडिया एक्सपेरिमेंट करके देखता था और वो ठीक हो जाता था, और मैं हमारे भाई साहब को बताता था भाई साहब मैंने ये किया, वे बोलते ये तो अच्छा है, तूने कम समय में बहुत अच्छी चीजें कर ली। तो 3 महीने में मैंने वो सारी सब चीजें सीख ली थी जो उनको आती थी, और जो वो हर बार से किसी और भाई को दूसरे डिपार्टमेंट से बुला के करवाते थे वो सारी चीजें मैं करने लगा। वो काफी खुश थे टेक्निकली सब चीजें, तो भाई जी मेरे से काफी खुश थे। मुझे बोले भी कि आप तो अभी सब सीख गए हो तो आप अभी यहाँ रुक जाइए, फिर मैं आपको और भी जो जिम्मेदारियां दे दूंगा। तो उस समय मैंने भाई जी को फिर रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे समर्पित कर लीजिए, फिर मैं आपके पास ही रहूंगा। तब उन्होंने मुझे जो आंसर दिए तो वो थोड़े से नकारात्मक टाइप के थे, या फिर वो नहीं कर पाएंगे इस तरीके से थे। मैंने कहा कोई बात नहीं। और उस समय देखिए मतलब ड्रामा ऐसा था कि जिस दिन मुझे भाई जी ने मना किया, दूसरे दिन हमारे दीदी ने फोन किया कि यहाँ पे एक शरद भाई जी है जो वेल्डिंग डिपार्टमेंट संभालते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनसे मिलेंगे? मैंने कहा हाँ दीदी मिलूंगा। और वो भाई से, शरद भाई से मैंने दूसरे दिन रात को 9:30 बजे बड़े डाइनिंग में मुलाकात किया, और मैं कुछ बोलने से पहले ही वो भाई ने बोला कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको समर्पित करता हूँ। जो मेरी दिल थी
1: जी,
2: जो मैं परमात्मा को बोला था, हमारे भाई जी को बोला था कि मेरी ये दिल है, तो मुझे कुछ कहने से पहले ही उन्होंने ये शब्द बोल दिए कि आप मेरे पास सेवा कीजिए, मैं आपको समर्पित करवा सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे पूछा आपको क्या क्या आता है। जब बाहर रहता था तब मैंने कुछ लैंग्वेजेस सीखी थी, जैसे ड्वाइच लैंग्वेज है जर्मन, वो सीखा हुआ था, कंप्यूटर सब आता था, मैंने उनको बताया। तो वो उन्होंने भी कहा कि यार मैं भी बाबा को बोल रहा था कि मुझे भी ऐसे एक हैंड्स की जरूरत है। तो फिर मैंने कहा कि मैं इस तरीके से यहाँ सेवा कर रहा हूँ तो आपके पास आऊंगा तो वो भाई जी को बुरा लगेगा। तो उन्होंने मुझे तरीका बताया कि यहाँ पे किस तरीके से आप डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, क्या करना है, वो सब बताया। फिर मैं उस हिसाब से यहाँ से छुट्टी लेके घर गया। वैसे घर बन गया था तो घर का इनॉग्रेशन भी था, तो पूरा हमारा जो कास्ट है, समाज है, सबको बुलाया था, जो भी रिलेटिव्स थे सबको बुलाया। और सबके सामने मैंने ये चीज किसी को बोली नहीं थी पहले, जब सबके सामने मैं आके खड़ा होके कुछ बोल रहा था तब मैंने उस समय बोला कि मैं अपना जीवन परमात्मा के यज्ञ में समर्पित करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता भी सरप्राइज हो गए और जो भी रिलेटिव्स बैठे थे सारे सरप्राइज हो गए कि ये ऐसा कैसे बोल रहा है। तो मैंने उनको उनकी भाषा में समझाया कि मैं शादी नहीं करने वाला हूँ और अपना जीवन भगवान ईश्वरीय कार्य में समर्पित करना चाहता हूँ। तो इस बात से उनको काफी शौक लगा। वो इस बात से, उनका प्रॉब्लम नहीं है कि तुम ईश्वरीय कार्य करते हो, उनको इस बात से प्रॉब्लम हो गई कि मैं शादी नहीं करना हो, इस बात से उनको काफी दिक्कत होगी। तो ये बताने के बाद माता पिता को काफी समय तक बहुत चीजें फेस करनी पड़ी, रिलेटिव्स का बहुत सुनना पड़ा, क्योंकि कोई भी मुझे आके डायरेक्ट नहीं बोल सकता था। बोलते भी थे तो मैं अपना जवाब तो मेरा रेडी रहता था हमेशा, तो वो बोलने के बाद वो मुझे नहीं बोलते थे लेकिन माता पिता को काफी बोलते थे। लेकिन आज अभी तो वो भी खत्म हो गया ना, उनको कुछ फेस करना पड़ता है ना मुझे। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये थी कि घर से सपोर्ट होने के कारण माता पिता ने कभी इस चीज को अपोज नहीं किया, उन्होंने ये मेरी बात तुरंत एक्सेप्ट कर ली कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम्हें समर्पित होना है, ईश्वरीय जीवन जीना है तो तुम वो कर सकते हो। फिर वहां पे इनॉग्रेशन वगैरह करके 15 दिन बाद फिर यहाँ आया निर्माण भवन में सेवाएं की, तो आज तक निर्माण भवन में ही है और 14 साल से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहा है, स्टिल कंटिन्यू।
1: जी बहुत सुंदर। सो जैसे आपने सारी परिस्थितियों को जब सामना किया, ऐसे तो नहीं है कि आपने बोला और उन्होंने रिजेक्ट किया तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट कुछ तो आपने अपने आप को हिम्मत करने के लिए या फिर उनको सामना करने के लिए आपने अपने आप को सिखाया होगा, तो वो कौन सी चीज थी आपने अपने आप को स्टेबल किया?
2: बिल्कुल, वो चीज उस समय बस एक ही चीज थी, ड्रामा। ड्रामा में जो है वो अच्छा था, और वो चीज उस दिन से आज तक इतनी पक्की हुई है, इतनी पक्की हुई है लाइफ में, कि उसके साथ साथ और भी काफी बातें हैं जो मैंने अपने जीवन में धारण की एक प्रकार के। तो परिस्थिति कैसे भी आए तो उससे निकलने का, उतने आपको स्टेबल करने का तरीका आ जाता है कि ड्रामा में जो होगा वो सही है, अच्छे के लिए ही हो रहा है, या जो हो रहा है उसमें कुछ कल्याण ही होगा। भले मुझे वो कल्याण अभी तुरंत नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट नहीं किया होता तो मैं शायद किसी और से मिलने भी नहीं जाता, और उनसे नहीं मिलता तो आज इस जगह पे नहीं होता। क्योंकि यहाँ आने के बाद भी मैंने हर एक स्टेप किया है, मतलब जिस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट के भाई साहब ने भी हमें काफी समय तक ट्रायल में रखा, मतलब उन्होंने पहले परखा,
1: टेस्ट किया, मतलब हर चीज आप कितना सर्वाइव कर सकते
2: हैं। हर चीज के लिए उन्होंने हमसे गाड़ी चलवाया, उन्होंने हमको मतलब ऑफिस बॉय जैसा भी एक तरीके से वो सीख थी कि आप ऑफिस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं। उन्होंने मुझे ये तक सिखाया कि गाड़ी चलाते समय अगर आपके साथ में कोई बैठा है तो आपको किस तरीके से गाड़ी चलानी है। फोन पे बात करने की स्किल भी उन्होंने सिखाई कि अगर आप किसी बड़ों से बात कर रहे हो, आपको किसी से काम करवाना है तो किस तरीके से बात की जाती है। अगर आपको किसी को आज्ञा देनी है, ऑर्डर करनी है, या आपको किसी को बताना है कि ये काम करके दो, तो उस समय कैसे बात किया जाता है, ये सब चीजें उन्होंने मुझे सिखाई। तो इस वजह से आज स्टेप बाय स्टेप आके आके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये बात उस समय से आज तक है कि जो होता है वो कल्याण ही है उस चीज में। बस कभी कभी कल्याण तुरंत नजर नहीं आता, लेकिन बाद में समझ में आ ही जाता है कि वो चीज जो हुई वो सच में कल्याणकारी थी।
1: मतलब लाइफ में टफ सिचुएशंस आते हैं, लेकिन अगर उसको सामना कैसे करना है और हम क्यों कर रहे हैं उस चीज का अगर अंडरस्टैंडिंग होता है तो फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगती।
2: बिल्कुल मुश्किल नहीं लगती, और टफ सिचुएशंस तो आनी ही है, क्योंकि वो टफ सिचुएशन ही आपको मजबूत बनाती है, आपके टेस्ट लेती है कि हाँ आप इस समय इस सिचुएशन में भी सर्वाइव कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अगर आप सर्वाइव कर लोगे तो आप औरों को भी सर्वाइव करवा सकते हो, करके आगे ले जा सकते हो। तो वो सिचुएशंस तो आनी है, और वो आती है तो अच्छी है। मुझे तो सिचुएशंस ने ही बहुत कुछ सिखाया।
1: तो जैसे एक होता है वर्क लाइफ बैलेंस, दूसरा है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, इन द सेंस आश्रम में रहते हुए या ब्रह्म कुमारी में इस संस्था में रहते हुए मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि स्व उन्नति। कोई भी चीज है, पहले मैं अपने आप को जांचूं, या फिर खुद को हमें समझना और खुद को निखारना, अपनी गलतियों को सुधारना और हमें बेहतर से बेहतर दैवी जीवन जीने की संस्कारों को एडॉप्ट करना। फिर उसके साथ साथ स्थूल कार्य भी है, जैसे एक जिम्मेवारी है आपके पास कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। तो जैसे आपने कहा कि जब आप युवावस्था में या जब नौकरी कर रहे थे उसमें जब घर के कंस्ट्रक्शन के काम आए, यू फेल्ट दैट कि इट इज टू मच ऑफ वर्क। तो ये चीजों का बैलेंस कैसे करते, क्योंकि अभी फिर से वही जैसा ही लाइफ है, बट इतना है कि आप भगवान के घर में है और यहाँ पे माहौल आपको बहुत सहयोग करता है, फिर भी आपका अपना एक पुरुषार्थ, अगर वो नहीं होता है तो फिर वो बैलेंस नहीं बन पाता।
2: बेसिकली जैसे यहाँ रहने वालों के लिए तीन चीजें तो मस्ट एंड शुड होनी चाहिए, जो मैक्सिमम लोग करते भी है। सवेरे अमृत वेला है, मुरली क्लास है, नुमा शाम का योग है। ये तीन चीजें अगर आप ठीक से करते हैं बैलेंस, तो आपका वर्क भी बैलेंस रहता है। और जैसे परमात्मा ने, मैंने एक चीज को अपने आप में ढालने के लिए काफी कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे परमात्मा ने बोला कि अंतिम समय में आपको, जैसे यहाँ पे रहते हुए, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पे रहते हुए हर चीज की फैसिलिटी, एनवायरमेंट भी अपने को मदद कर रहा है, भले हम बाहर में लौकिक जैसा जॉब भी नहीं करते लेकिन वर्क यहाँ पे भी है, सेवा यहाँ पे भी है जो दिन भर चलती है, तो भी वर्क बैलेंस करना है। तो जैसे परमात्मा ने भी कहा हुआ है कि आपको अंतिम समय में हर चीज का वो नहीं हो पाएगा, और आपको एक लंबा समय का अभ्यास चाहिए। 8 घंटा मेडिटेशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसके लिए भी परमात्मा ने ये बता के रखा है कि अगर आप चलते फिरते उस चीज का अभ्यास करो तो भी आपका काफी समय मेडिटेशन में आप व्यतीत कर सकते हो, जिससे आपको उन्नति में मदद मिलेगी। तो मैं उस चीज का अभ्यास अपने आप पे इम्पोज करने की कोशिश करता हूँ कि मैं उस चीज की धारणा करूँ, चलते फिरते भी मुझे याद रहे कि मैं एक आत्मा हूँ और एक परमात्मा की संतान हूँ, और परमात्मा मेरे साथ हमेशा है। जैसे सूरज की किरणें हम कहीं पे भी जाओ अपने ऊपर आती ही रहती है, बारिश में जाते तो पानी बरसता ही बरसता है, तो वो एक सिचुएशन है या वो एक विजुअलाइजेशन है जो मैं करने की कोशिश में रहता हूँ कि जब भी वॉक पे हूँ या फिर अदर देन, मतलब अगर दिमाग में मुझे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है तो मैं उस समय वो चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ तो मैं वो चीज़ करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा चलते फिरते भी मेडिटेशन
1: या
2: परमा की साथ कनेक्शन जुड़ा रहे। ये वर्क लाइफ बैलेंस करने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे करूँगा वैसे वैसे वो अभी और पक्का होता जाएगा।
1: बहुत सुंदर। सो सूरज भाई, जैसे आपने कहा कि अभी ये 14-15 साल से आप मधुबन में हैं और ये योगी जीवन जी रहे हैं या फिर सादगी का जीवन जी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप अपने अंदर किस प्रकार के परिवर्तन को देखते हैं? हो सकता है वो चीजें अगर लौकिक दुनिया में रहते तो फिर वो चीजें आप हासिल नहीं कर पाते।
2: बहुत परिवर्तन आया लौकिक में। जो मैं अपना युवा अवस्था मतलब स्कूल डेज में देखता हूँ अपने आप को, तो बहुत गुस्सा था, जो अभी नल के बराबर है, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो खत्म हो गया है, लेकिन ना के बराबर। पेशेंस पहले 0 थे, अभी 100% के आसपास पेशेंस लेवल बढ़ गई है। जो मेरे लौकिक दोस्त है जिनसे मेरी कभी बातें होती है, मतलब जो कभी सभी की शादियां होगी, सबके बच्चे, सबके लाइफ में कोई ना कोई क्राइसिस है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और सबको पता है सूरज एक ऐसा व्यक्ति जो सुनता है, जिसके पास हम बोल सकते हैं, वो बातें औरों तक फैलाएगा नहीं और कुछ ना कुछ अपने को सांत्वना जरूर देगा। भले सॉल्यूशन शायद ना मिले, लेकिन वो बात सुन लेगा, अपना दिल हल्का होगा। तो काफ़ी सारे मेरे दोस्त मुझे कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो वो ये बात हमेशा बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे से सुन लेता है और तेरे से बात करने के बाद अच्छा लगता है। तो मेरे में ये चीज़ आई है, पेशेंस और लिसनिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होगी कि सामने वाले का सुन लो, वो जो भी कहना चाहता है, जिस भी आवाज़ में, जिस भी भाषा में, जिस भी स्वर में, वो जो भी कहना चाहता है उसको सुन लो, ताकि उसका आधा दर्द कम हो जाए। तो क्वालिटीज़ बड़ी है, एक तो पेशेंस अच्छे बड़े हुए हैं, मेडिटेशन करना और गुस्सा वो सबसे ज़्यादा कम हुआ है। खाने पीने में मोह नहीं है, किसी चीज़ में ज़्यादा मोह नहीं है, क्योंकि ये चीज़ भी ज्ञान से अंदर आ गई है कि जो अपने पास है वो पर्याप्त है, तो वो चीज़ खुशी देती है। अगर मैं ये समझूँ ये मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो चाहिए चाहिए वाली बोल या चाहिए चाहिए वाली सोच मुझे परेशान करेगी। लेकिन जब मैं वो सोच को पूरा खत्म करता हूँ, क्योंकि इस चीज़ का भी एक छोटा सा अनुभव, जब शुरुआत में मैं जब इस कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में आया, तो हमारे जो भाई साहब थे उनकी एक आदत थी कि वो मंथली एक पूरे डिपार्टमेंट की मीटिंग्स बुलाते थे, सबको बुलाते थे, पूछते थे। और उसके साथ साथ वो क्या करते थे, उनके पास जो भी गिफ्ट आए हैं, जो भी चीज़ें अच्छी होंगी, कभी कप होगा, कोई बुक्स होंगी, शेविंग किट्स होंगी, कोई भी चीज़ अच्छी, वो सारा टेबल पे रखे रख देंगे। वो काम मेरा ही था कि सब लाके रख दो, वो जो जो बोलेंगे वो सब, कोई ओढ़ने वाला है, कोई बेडशीट है, कुछ भी है, सब लाके टेबल पे रख दो। मीटिंग्स होगी, किसकी क्या परेशानी है, क्या है, कैसा चल रहा है, सेवाएं वगैरह सब होगा, और उसके बाद वो बोलेंगे जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से लेता था। तो वैसी मेरी जब पहली मीटिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में हुई, तो सब मीटिंग पूरी हुई, जो सफाई वगैरह करनी थी वो करके मैं लॉक करके बस जा ही रहा, तब हमारे भाई साहब ने मुझे पूछा कि कैसा रहा तुम्हारा मीटिंग एक्सपीरियंस। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा भाई साहब। तो आपने क्या लिया? मैंने कहा भाई साहब लास्ट में एक दादी का फोटो बचा था, मैंने वो लिया। क्यों, आपने बाकी का कुछ नहीं लिया? मैंने कहा भाई साहब हमारे सब भाइयों ने ले लिया, वो खुश तो मैं भी खुश। तो उनको वो बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने उस दिन मुझे यहाँ यज्ञ का एक छोटा सा मोबाइल और एक सिम कार्ड जो पहले CUG चलते थे वो गिफ्ट किया था। वो मेरा पहला एक एक्सपीरियंस था कि कुछ न मांगने के बाद आपको अपने आप मिल जाता है। आप अगर किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं रखोगे तो जो ज़रूरी है वो आपको आपके पास तो ज़रूर आएगा, अगर आपने अपेक्षा नहीं रखी है। फिर जैसे जैसे मेरे दिन आगे बढ़ते गए, तो मुझे ये संकल्प आते थे कि मुझे समर्पित होना है। मैं कब समर्पित होऊंगा? समर्पित लोगों को ये मिलता है, वो होता है, ये होता है। वो संकल्प 2 साल तक ऐसा था कि मैं किसी परछाई की पीछा कर रहा हूँ, उसके पीछे जा रहा हूँ, और वो मेरे आगे तो मेरे हाथ में ही नहीं आए। लेकिन जिस दिन मैंने वो संकल्प छोड़ दिया, तो जो चीज़ ज़रूरी वो अपने आप मिल जाती है। फिर उसी प्रकार समर्पित भी हो गए। ये एक मंत्र मैंने अपने जीवन में इतना धारण किया हुआ है कि मैं लगभग मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रहती है। मैंने अपने मन को ये बात बता के रखी, अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो और वो चीज़ नहीं मिलती है तो भी आपको दुख नहीं होना चाहिए। तो वो रहता है, इस कारण से मुझे कई बार वो जो फीलिंग्स आती है दुख की, वो बहुत कम होती है। क्योंकि एक तो एक्सपेक्टेशन रहते ही नहीं, और जिस चीज़ से या जिस किसी कार्य से या किसी व्यक्ति से एक्सपेक्टेशंस रहती है, वो लेवल एक्सपेक्टेशन भी बहुत कम होती है। अगर वो पूरी भी नहीं हुई तो भी उस चीज़ का जो दुख होना है वो बहुत कम हो जाता है मेरे पास। तो मैं सफ़र बहुत कम करता हूँ और खुश ज़्यादा रहता हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत कम कर दी तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल खुशी से, तो खुशी बढ़ जाती है अपने आप।
1: वेरी ब्यूटीफुल। एक मैथमेटिशियन लाइफ में भी हर चीज़ का मैथमेटिक्स के साथ देखता है, और आपके जो लाइफ के मैथमेटिक्स है आपने अपने हिसाब से उस चीज को
2: किया है।
1: है और सेट किया है। तो एक योगी जीवन जीना क्यों है और जीने से आपको क्या मिलता है उसका भी एक कैलकुलेशन है आपके
2: बिल्कुल।
1: पास
2: लौकिक जीवन में मैथ्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा था।
1: अच्छा,
2: सबसे फेवरेट सब्जेक्ट,
1: इसीलिए आपको जीवन की कैलकुलेशंस भी अच्छे से आते।
2: बहुत अच्छे से।
1: बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सूरज भाई, आज आप हमारे बीच में आए हैं और अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। अंत में एक सवाल, एक शब्द में अगर आपके पूरे जीवन को एक शब्द में अगर कहना चाहते हैं, या कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगता है कि मुझे यही जीना था और इसे ही कहते हैं जीना, इसी का नाम है, वो कौन सा मोमेंट था?
2: ये चीज मैं एक शब्द में तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ज्यादा शब्दों में बताना चाहूंगा। ये चीज मुझे बहुत बार फील हुई जब मैं मेडिटेशन में, स्पेशली जब मेडिटेशन में बैठता हूँ, अमृत वेले हो या नुमा शाम का योग हो, तो ये चीज़ का मुझे काफ़ी बार अनुभव हुआ है। अपने इस देह से परे होने की अवस्था, उसको काफ़ी लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब भी किया हुआ है। मेरा अपना एक डिस्क्रिप्शन है उसके लिए कि मैंने ये चीज़ नोटिस की हुई है कि जब आप मेडिटेशंस करते हो और आपका मेडिटेशन सच में परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ता है ना, तो आपकी सांसें जो चलती है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है, आपका हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो एकदम ही पल्स डाउन हो जाएंगे, लेकिन जो नॉर्मल है उससे कम होता है। आपकी सांसें बहुत धीमे तरीके से चलती है, समय बहुत धीमा हो जाता है, क्योंकि आप इस देह से परे हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने खुद अनुभव की है कि अगर आप 7 बजे आपका मेडिटेशन लगा है, आपको फीलिंग ऐसी आएगी कि आपने घंटा भर मेडिटेशन किया है, और जबकि आप अगर थोड़ी देर बाद देखोगे तो 10 या 15 मिनट ही हुए होता है, लेकिन फीलिंग आपको 1 घंटे की आती है। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि जब वो अवस्था पूरी हो जाती है, अपने देह से परे होने की अवस्था पूरी हो जाती है, उस समय जो खुशी मिलती है वो कभी भी नहीं मिलती, किसी भी चीज़ से नहीं मिलती, ना किसी मतलब लौकिक व्यक्ति, वस्तु या कोई सिचुएशन, किसी से वो चीज़ नहीं आती। जब जो देह से परे होने का अनुभव है, उसमें ना अपने आप मतलब इस देह का कोई भान ही नहीं रहता, वो चीज़ ही पूरी अलग हो जाती। तो फिर वो चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब आप उस अवस्था से बाहर आते हो तो आपको उबासी ज़्यादा आती है, और साइंस ये कहता है आपको उबासी आ रही है इसका मतलब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, तभी आपका मुंह खुलता है ज़्यादा इनटेक ऑक्सीजन का होने के लिए, और उसके बाद से ही समय तेज़ी से भागने लगता है। जब तक आप देह से परे अवस्था में, उस समय स्लो डाउन होता है, सांसें स्लो डाउन होती है, फिर शरीर अपने आप वो जो कमी है ऑक्सीजन की उसको पूरा करने के लिए उबासी करता है। ये मेरा जीवन का अनुभव है जो मैंने सीखा है, और सबसे ज़्यादा अच्छा मेडिटेशन के समय ही लगता है।
1: सो आपको लगता है कि यही है जो जीवन है, मतलब इसी को जीना कहते हैं?
2: बिल्कुल, अगर आप अपनी मेडिटेशंस को सुधार सके, अच्छा कर सके, तो इस जीवन से अच्छा कोई जीवन नहीं। संसार के सारे सुख जितने मैंने भोगे हैं आज तक, जो चीज संसार के हिसाब से ये बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत बड़ी, बहुत बड़ा बंगला, विदेशों में घूमना, इन सारे चीजों से वो 10-15 मिनट का जो देह से परे होने का अभ्यास है, जो देह से परे होने की जो फीलिंग है ना, वो इन सारी चीज़ों से बहुत बढ़िया है। वो जो सुख दे के जाता है वो शायद ही कभी मिलता है, और वो शायद मुझे कब मिला है वो भी याद नहीं, लेकिन वो आज तक मुझे एज इट इज़ याद है वो चीज़।
1: बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सूरज भाई, आज आप हमारे बीच में आए और जीना इसी का नाम है, इस चीज़ का एक नई परिभाषा आप हमारे श्रोताओं को दिया आपके जीवन के अनुभव से। दोस्तों, यहीं पे हम विराम लेते हैं और फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। गांव और अंचल को जब जाते बस सुनते नाम कितना खुशी लगता है, क्योंकि अपना गांव अपना अंचल जिस गांव जिस अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे वो गांव और अंचल को कभी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ देते हैं गांव और अंचल परिवेश प्रकृति। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हर रोज की तरफ आज भी आपका पास रखने जा रहे एक कार्यक्रम जो कि बच्चों का हुनर बच्चों का टैलेंट को भाव और भावना को आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक का जो विशेषता जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंशा है वो चीज आज रख पा रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो तो सुनते हैं, कमर्शियल रेडियो भी सुनते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी रेडियो मीन्स योर रेडियो आपका रेडियो आपका द्वारा प्रसारित होता है। तो रेडियो मधुबन आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनार में पहुंचे और बच्चों का आवाज भी बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि हर विद्यालय का आवाज को रखते हैं, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालयों के सहयोग से मिलित भावना से आज इस कार्यक्रम को सजाएंगे सभी बारी बारी। तो हमें खुशी है इस तरह बढ़ चढ़ कर बच्चे जब भाग लेते हैं और इसका श्रेय तो माता पिता और संस्था का संस्था प्रधान का साथ सभी स्टाफ को जाता है, बच्चों को इस तरह उमंग उत्साह दिलाते। तो देर किस बात की, पहले एक प्रार्थना के रूप में हमारा छात्राएं उपस्थित है तो उनको स्वागत करते हैं नाम का साथ। वो अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास और कहाँ से, क्योंकि रेडियो में जब उनका आवाज सुनेंगे तो पता चला है किसका आवाज है। आवाज से कोई कोई पहचानेंगे, जिसको कोई सुना नहीं आवाज को वो कैसे पता चलेगा, इसलिए उनका नाम बताएंगे कौन सा क्लास। भले विद्यार्थी जीवन में अपना सहपाठी उनका आवाज को जानते जान लेंगे, लेकिन जो दूसरे बाहर लोग सुनते हैं ऑल इंडिया में कहीं पर भी सुनते हैं तो उनका आवाज सुनने के साथ साथ नाम और स्कूल का नाम जरूर ले। तो सभी को स्वागत करते अपना नाम और क्लास का साथ एक प्रार्थना शुरू कराएंगे।
1: मेरा नाम खुशबू है, मैं कक्षा 12 से हूँ और मैं चन्नार से हूँ।
2: मेरा नाम आफरीन है, मैं कक्षा 11 से हूँ और मैं चन्नार से हूँ।
3: मेरा नाम विश्ना है, मैं कक्षा 12 से हूँ और चन्नार से हूँ।
4: मेरा नाम दक्षा और मैं कक्षा 11 से हूँ और चन्नार से हूँ।
5: मेरा नाम अश्विन है, मैं कक्षा 10 में हूँ

उसे चुन लाऊं तेरे लिए। थाली में फल फूल लाए हम प्रभु के चरणों में, में फल फूल लाए हम प्रभु के चरणों में उसे

0: लिए।
1: बहुत सुंदर प्रस्तुति और भाव और भावना का साथ इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से प्रभु तक पहुंचाते हैं और अपना जो दिल का उद्गार और मन का बात प्रार्थना का रूप में हर विद्यालय में होता है। तो आज इस विद्यालय में भी बच्चे एक गीत का पूरा ये प्रार्थना सभी जगह में सभी विद्यालय में सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर गाते हैं। बहुत खुशी लगता है इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से जब भाग लेते हैं। तो बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे और क्या लक्ष्य रखे हैं? हमारा गुड़िया है, क्या नाम बताया?
0: खुशबू।
1: खुशबू। देखो नाम कितना खुशी लग रहा है, नाम सुनते ही खुशबू। खुशबू आज तो फैला रहे हैं, फूल का खुशबू आता है कि नहीं? तो आज खुशबू खुद नाम का खुशबू फैला रहे हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम में, क्योंकि एक मंच जिसका आवश्यकता था आज बच्चों को मिल रहा है। इसके लिए बच्चे तरसते हैं, लेकिन आज ये तो सरकार का धन्यवाद है क्योंकि सरकार इस तरह कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी बच्चों को देते हैं, जिसका चलते बच्चे अपना हुनर सिर्फ सीमित अंचल में क्यों सीमित रखे, अपना क्लास में अपना विद्यालय में अपना गांव में पूरा जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन इस तरह मंच देते हैं, जिसका चलते उनका सुर लय और ताल का साथ अपना व्यक्तित्व को निखारते हैं। और जो आवश्यकता था आज मिल रहा है, और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में मैम हमारा सजा रहे हैं और सर भी सजा रहे, तो उनको भी धन्यवाद देंगे और उनका भी दिल का बात सुनेंगे। लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे

तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले।

तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले

तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: सुंदर प्रस्तुति सुनने के पश्चात ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और खासकर बच्चे सच्चे होते और उनका भावना आज जन जन तक पहुंचाए रेडियो मधुबन द्वारा। और इसका श्रेय तो सभी बच्चों को, उनका माता पिता को भी जाता है, क्योंकि बच्चों को इस तरह आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देते हैं, चाहे जो भी संसाधन, जो भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो इस कार्यक्रम को हमारा संस्था का प्रभारी वो भी उपस्थित है। मैम, कैसे बच्चों को अनुशासन में रखते हैं? हमें बहुत खुशी लगा, अनुशासन में बच्चों को रखते, पूरा साइलेंस में बच्चे बैठे। तो मैम अपना परिचय देंगे, और खासकर बच्चों का मेन जो लक्ष्य है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना, ये देखा मैंने, तो आप अपना परिचय देंगे। मैम आपका स्वागत।
3: थैंक यू, आपने हमारे स्कूल में मौका दिया इस बात के लिए।
2: जी मैम,
3: मेरा नाम सुमनलता मीणा, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चनार की प्रिंसिपल ना होके व्याख्याता हूँ, सेकंड इंचार्ज

0: हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो आदिवासी लोग के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अनुशासन का असर बहुत ज्यादा है।
1: जी
0: वो ज्यादा बोल नहीं पाते बट अनुशासन उनमें पढ़ते भी हैं। विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी वो स्कूल से आते हैं। उनके घरों के जो हालात है आप देखते होंगे इतने अच्छे नहीं है, फिर भी वो यहाँ विद्यालय में आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमें खुशी है कि हम इनको अपने ज्ञान से इनके उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। थैंक यू।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम को धन्यवाद देते हैं, और उस सर भी लेंगे, सर भी बच्चों का साथ आज कुछ उमंगों से और वार्म अप करा देंगे। बच्चे थोड़ा सा जो थोड़ा पीछे रह रहे उसको आगे बढ़ाने के लिए भी खुशी मिलेगा। सर से एक निवेदन है, सर बच्चों को ऐसे कार्यक्रम का माध्यम से देखते हुए वो भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे। आज वो अपना आवाज में गीत सुनाएंगे हमारा श्रोता मित्रों को, और हमारा जो सामने बैठे सभी बच्चों को, और इस माध्यम से जो भी सुन रहे तो वो भी सर को जानते होंगे, और जब सुनेंगे सर का परिचय तो उनको भी खुशी लगेगा, क्योंकि रेडियो कार्यक्रम में मंच कभी कभी मिलता है। आज मिल रहा है तो सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। जी सर।
2: जी नहीं।

0: मैं पीतम सिंह, वरिष्ठ अध्यापक जीएसएस चनार, जो ब्रह्म कुमारी से पधारे हुए, मधुबन से आए हुए हमारे पवित्र भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ जीएसएस चनार में इन आदिवासी क्षेत्र में बच्चों के सामने इस प्रकार ये प्रोग्राम रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन बच्चों की जो खूबी है, इनमें प्रतिभा बहुत, प्रत्येक बच्चे में अपनी खूबी होती है। कहते हैं ना कि मछली जल की रानी होती है, वो कभी भी जंगल की रानी नहीं बन सकती। शेर जंगल का राजा होता है, वो कभी भी पानी का राजा नहीं बन सकता। इसका अर्थ कि प्रत्येक बच्चे में अपनी एक खूबी होती है, सिर्फ उसको निखारना ये बहुत बड़ी बात है। और इसको निखारने के लिए हमको भी इतनी दूर से लगाया गया है। हम चाहेंगे कि ये बच्चे बहुत आगे बढ़ें और अपना हुनर सबको दिखाएं। ये आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं बहुत दूर से आते हैं, हमें पता है इनकी परिस्थिति, जिन परिस्थितियों में ये हैं, उन परिस्थितियों से, ऐसी बात नहीं है, हम भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर के आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम रखते रहें, तो इन बच्चों की भी उत्साह बढ़ेगा और इनमें कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है कि हमें कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद के लिए धन्यवाद, लेकिन हम जो करते हैं, आप जो करते हैं, सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच है, जिस मंच का माध्यम से अपना बात को, भावना को और दिल का उद्गार को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और सभी का मोटिवेशन बच्चों का प्रति रहता है, सभी का लक्ष्य बच्चे आगे बढ़े, बच्चे अच्छा बने, देश का नाम रोशन करें। देश का नाम रोशन करने का पहले खुद का नाम रोशन करें, परिवार का और विद्यालय का नाम रोशन, सबका आस बच्चों का ऊपर रहता है। बच्चों का सर्वांगीण उन्नति के लिए पढ़ाई का साथ साथ इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से भाग लेते हैं एक दूसरे को देखकर, तो हमें खुशी होता है। और सरकार का जो मंचा है, एक लोकल के जो सिंगर हो चाहे उनका बस जो भाषण का कला हो चाहे गीत का जो कला है वो जन जन तक पहुंचाए, इससे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक खुला मंच है, सभी अपना बात को रख सकते हैं। और सर ने जैसे बताया, बहुत कठिन परिस्थिति, जब परिस्थिति आता है तो स्वस्थिति को भी मजबूत रखना होगा, क्योंकि परिस्थिति का काम तो आएगा ही, सबका पास परिस्थिति आता है, परिस्थिति किसी का पास नहीं है। परिस्थिति आएगा तो आपका परीक्षा होगा, कितना आप स्थित रहते हैं, स्वस्थिति में कितना स्थित रह पाते हैं, क्योंकि परिस्थिति को हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन स्वस्थिति हमारे हाथ में। हम वो परिस्थिति को, जैसे रास्ता में कोई पहाड़ गिर गया था, हमें पहाड़ को तो तोड़ नहीं पाएंगे, पहाड़ को साइड होकर हम निकलना है, नहीं तो समय हमारा बर्बाद होता है। तो इस तरह परिस्थिति देखे, रामचंद्र का टाइम में जैसे आपने गीत के माध्यम से बोला, भाई हमें इतना राम चाहिए, तो राम के पास भी परीक्षा आया था, है कि नहीं, उनका सीता को चोरी कर रावण ले गया था, वो भी कहानी आपको है, उनका भी कितना परिस्थिति आया, जंगल में रहना पड़ा। परिस्थिति तो सबके लिए आता है, लेकिन हमें अपना स्थिति से, जैसे रामचंद्र अपना स्थिति बना के रखा, भले ये तो आया लेकिन वो तो जाएगा, कभी रहेगा नहीं, वो फिर सीता आपस आया कि नहीं, तो इसलिए बुद्धिमान कहते, इसलिए देवता कहते, भगवान कहते, इसलिए हमारे पास भी परिस्थिति आएगा, आता है कि नहीं, परिस्थिति सभी के पास परिस्थिति आता है कि नहीं, परिस्थिति आएगा, कि परिस्थिति आएगा तो आपको मजबूत कराएगा, ये ठीक है कि नहीं, इसलिए परिस्थिति को आने दो और हम अपना स्थिति में उसको पार करेंगे। पढ़ाई कर रहे तो परीक्षा आएगा कि नहीं, परीक्षा को डरेंगे नहीं, डरते बच्चे डरते परीक्षा जब समय आता डरते हैं नहीं, डरते तब तो उत्तीर्ण होगा आगे क्लास को, परीक्षा नहीं देंगे, एग्जाम नहीं देंगे तो अगला क्लास को जाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो हम परीक्षा को निमंत्रण करना चाहिए, आइए हम रेडी है मुकाबला करने के लिए, ऐसे साहस होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, इसलिए परिस्थिति अपना काम करे और हम अपना स्वस्थिति से मुकाबला करके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनकर है कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, ये था खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चनार का सभी का आवाज, खासकर हमारा आज स्टाफ भी इस कार्यक्रम को बच्चों का साथ मिलकर एक आवाज का गुलदस्ता बन गया। सर का आवाज, प्रीतम सर को धन्यवाद देते हैं और मैम को भी धन्यवाद देते हैं और बच्चों को भी धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: नमस्ते कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति के लिए हमारा बच्ची उपस्थित है और स्कूल के नाम रोशन करने के लिए भले बहुत सारा बच्चे है लेकिन एक बच्ची काफी होता है। जैसे रात को बहुत सारा तारे होते हैं लेकिन एक चांद पूरा रोशन कर देती है कि नहीं। हजारे तारे रहते हैं लेकिन फिर भी एक चांद चांद होते हैं। जैसे हर स्कूल में इतने बच्चे होते हैं लेकिन एक दो बच्चे पूरा चांद का जैसे काम करते हैं। तो आज चांदनी का रात में जैसे चांद अपना प्रभाव विस्तार करते हैं, आज इस स्कूल के होबनार बच्चे जो सिलेक्टेड बच्चे उनको पुनः स्वागत करते हैं। तो नाम फिर से बताइए।
1: मेरा नाम आफरीन, मैं कक्षा 11 से चनार से।
0: सुनाओ गीत।
1: ओ देश मेरे तेरी शान।

ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूल

0: परिंदा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और ऐसे बच्चे को जब मंच मिलता है तब कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, उनको एक मौका का आवश्यकता था। उनका जो हुनर है, जो टैलेंट है, इस तरह जब कंपटीशन हो, चाहे इंटर स्कूल कंपटीशन हो, चाहे कोई भी प्रतिभा को निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह सहयोग मिलता है जिसका चलते वो आगे बढ़ पाते। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। इसका बारे में क्या कहना चाहिए, इसका गीत का बारे में थोड़ा दो शब्द बताएंगे।
2: आफरीन हमारे विद्यालय की विद्यार्थी जो क्लास 11th में है,
1: जी
2: जिसने जो ये देशभक्ति गीत सुनाया है। वास्तव में कहते हैं कि अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश के प्रति प्रेम है ना, क्या
1: जी
2: होता है वो अपनी या तो आवाज से पता चलता है, या ऐसा नहीं है कि देश पे डटा हुआ जवान ही देश की रक्षा करता है।
1: क्या बात
2: देश की रक्षा करने के लिए हम सभी देश की रक्षा करते हैं। अगर मैं हूं, मैं एक टीचर हूं, अगर मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा, आपका काम, आप विद्यार्थी हो, अगर विद्यार्थी अपना काम, इनका काम जो है, इनका काम क्या है, विद्यार्थी का, विद्या का
1: अध्ययन।
2: अर्जन करना, विद्या का अर्जन करना, इसका मतलब इनको पढ़ना है, इनको इनका जो काम है वो पूर्ण रूप से कर लें। जो मेरा काम है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर लूं, तो अपना देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, उन्नति कर जाएगा। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति, जैसे किसान है, किसान अपना कार्य ईमानदारी से करता है, ईमानदारी से करता है, फसल पैदा करता है, और वो फसल पूरे देश के लिए काम आती है ना। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो चपरासी हो या कलेक्टर, जिसका जो कार्य है
1: जी
2: वो अपना कार्य अगर ईमानदारी से कर ले, है ना, कहीं हमें ना तो देश बॉर्डर पे जाने की जरूरत है ना। ये नहीं कि बॉर्डर पे जाकर ही हम देश की सेवा करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी देश की सेवा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सही बात सर ने स्पष्ट रूप में बताया भाई, हम सभी

0: एक एक सैनिक है देश बॉर्डर में, तो सैनिक हमारा भाई रहते हैं, लेकिन हम तो अंदर रहते हैं, उनको सपोर्टिंग करते हैं, उनको जो चाहिए हम देते हैं, जैसे किसान सब कुछ देते हैं, शिक्षक एक अच्छा सैनिक बनाकर देते हैं, और उस शिक्षक को सरकार भी इतना सहयोग देते हैं, चाहे संसाधन भी मिलता है जिसका चलते वो आराम से बच्चों को पढ़ा पाते हैं, और बच्चे भी आराम से बढ़कर पढ़ते हैं क्योंकि संसाधन चाहिए, क्योंकि इसका चलते हमारा देश नाम रोशन करेगा और भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब हम सब ईमानदार से अटेंशन होकर हर कार्य को श्रेष्ठता रूप में देंगे तो जरूर कामयाब होंगे, और हम सब कामयाब होंगे ही, जरूर हुए थे और होंगे, कोई नया चीज नहीं है, हम भूल चुके हैं लेकिन हम थे, अभी है और आगे भी होंगे, हम ही देश को आगे बढ़ाया था और आज हम ही आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे देश को, पहले हम खुद बढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा ईमानदार से, है ना सर। तो ईमानदार एक अच्छा वैल्यू है, सर्वश्रेष्ठ गुण है, ऐसे सभी बच्चों के पास विशेष गुण है, सब विशेष है, कोई किसका पास अवगुण नहीं है, अवगुण रहते भी एक विशेषता है जिसका चलते परमात्मा भगवान प्रभु आपको सिलेक्शन किया है मनुष्य जीवन में, भले हमें पता नहीं चलता लेकिन हमारे पास इतना विशेषता है जो विशेषता कहीं ना कहीं काम में आता है, इसलिए कभी खुद को छोटा नहीं सोचना है, मैं बाहर बाहर में ऐसे सोचना है, मेरे जैसे कोई संसार में नहीं, इतना लोग है, कितना करोड़ लोग है, आपका जैसे शकल, आपका जैसे आवाज, आपका जैसे विचार दोबारा बच्चा भी होगा तब भी नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे होगा, हाँ कि नहीं सर,
1: बिल्कुल,
0: इसलिए खुद को महान सोच के ईमानदार से काम करेंगे तो हम महान आत्मा बन सकते, महान आत्मा बन सकते कि नहीं, महान आत्मा क्या, देव आत्मा भी बन सकते हैं, दिव्य गुण रहेगा तो देवता बनते हैं, हर्षित मुक्तता, नम्रता, नियमितता, कौन कौन बच्चे नियमितता, नियमित स्कूल को आते हैं विद्यालय में, नियमित जो भी स्कूल खोलता है नियमित कौन आता है, रेगुलर, हाथ उठा देखी सर, हमारा देख रहे, मैम भी देख रहे, रेगुलर, विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण, विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण है नियमितता, क्या बोला,
2: नियमितता,
0: रेगुलरिटी, पूरा कभी भी छुट्टी नहीं, ऐसे होना चाहिए, जब नियमित आएंगे तो हमारा जो अध्यापक आपको अच्छे से ज्ञान सुनाएंगे, है ना सर, तो नियमित आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए,
1: ये तो है ही है,
0: आते ही
1: बिल्कुल, पहला ही है विद्यार्थी का पहला लक्षण ही है कि हमको रेगुलर आना है, विद्या अर्जित करने के लिए तो हमें रेगुलर रहना ही पड़ेगा,
0: अनुशासन में रहना है, तो इसका बाद रेगुलरिटी हर रोज हम जब भी स्कूल खोलता है आना चाहिए, इसके बाद सभी गुण आ जाएगा, नम्रता आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, मधुरता आ जाएगा, सब आ जाएगा,
1: फिर भी सर हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना,
0: जी सर,
1: बहुत दूर से आते हैं, ये एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो किलोमीटर से आते हैं, और इनको टाइम दे रखा है हमने 7:15 बजे, 7:20 तक ये लगभग लगभग 95% और अब तो 100% उपस्थिति हो जाती है 7:20 पे, 7:25 पर,
0: ये तो अनुशासन है,
1: ये है सबसे पहला अनुशासन इनका, यही है
0: समय से पहले आना,
1: आज इनकी उपस्थिति 7:20 पर, 7:30 का टाइम है लेकिन हमने इनको टाइम दे रखा है 7:15 बजे का, और 7:25 तक सभी बच्चे विद्यार्थी उपस्थित हो जाते हैं, देख लो,
0: देखो
1: कितनी परिस्थितियों से गुजर के आते हैं, इन्हीं को पता है,
0: जी जी,
1: आगे हमको पता है इनकी परिस्थिति,
0: हम भी पढ़ते तो हमको भी पता है, हम भी तो ऐसे परिस्थिति में पढ़ते हैं तब जाकर आगे बढ़े, परिस्थिति आएगा इतना, हम तो 7-8 किलोमीटर जाते सर,
1: बिल्कुल,
0: पढ़ाई हमारा समय में इतना नजदीक स्कूल नहीं था, हर ग्राम पंचायत भी तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉलेज, हमारा कॉलेज हमारा गांव में नहीं रहता था उड़ीसा में सर, 9th क्लास से बस 7th क्लास पढ़ने के लिए हमें 5 किलोमीटर, मैट्रिक 10th क्लास तक हम 5 किलोमीटर, फिर कॉलेज 12वीं क्लास करने के लिए हमको 10 किलोमीटर जाना पड़ता पैदल हो चाहे साइकिल, अभी तो मोटरसाइकिल उस समय नहीं था, और आप तो भाग्यवान है सभी, हमसे भी आप नजदीक है, एक ग्राम पंचायत का अंडर में रहते हैं, तो तब भी अभी का समय में आपको मुश्किल लग रहा है, समय को उस समय हमको मुश्किल लग रहा था, अभी आपको मुश्किल लग रहा है, मुश्किल तो आएगा ही लेकिन उसमें हमें पास होना है, पास होना है कि नहीं, पास होना है और पास रहना है, किसका पास, ऊपर वाला का पास, परमात्मा का पास, बुद्धि रहेगा ना तुम्हारा चार्जिंग होगा बैटरी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति होगा, अंतिम प्रस्तुति वो भी हमारा सर ही कर देंगे लास्ट में।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

0: बढ़ाते हैं। अगला प्रस्तुति अंतिम प्रस्तुति होगी और ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय का जो मिलित सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है और सब सुन पा रहे सभी का आवाज को अंतिम की और हम चल रहे हैं और हमारा सर इस कार्यक्रम को सजाएंगे वंस मोर लास्ट सर स्वागत।
1: धन्यवाद सर आपका। हमारे जो एक आप पढ़ते आ रहे हो सर सिक्स क्लास से ट्वेल्थ तक सभी में पढ़ते हो या कबीर कबीर पढ़ते हो ना, कबीर का अर्थ क्या है पता है? कबीर कोई व्यक्ति का नाम नहीं था, सिर्फ हमने उसको नाम दे दिया गया। कबीर क्या है? का से करुणा, बा से बीज और रा से रम रहा। जिस व्यक्ति के अंदर करुणा का बीज रम रहा है वो व्यक्ति कबीर है, वो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति कबीर है। करुणा, करुणा से ही हमें हमारे अंदर प्रेम की उत्पत्ति होती है। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करें, है ना, प्रत्येक व्यक्ति से चाहे वो कैसा भी है ना, तो हमारे अंदर उसके प्रति करुणा है तो हम कबीर हैं। तो कबीर साहब का एक भजन है, उससे इस प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर कबीर।

0: हम पंछी परदेश मुसाफिर आए हैं यहाँ सैलानी। हम पंछी परदेश मुसाफिर। बोलो सतगुरुदेव की जय।
1: तो कितना सुंदर और भाव का साथ, दिल का साथ गाए सर ने और सभी को मन मुग्ध कर दिए। और पंछी आई और कभी भी जा सकती है। तो हम सब मेहमान है संसार में, आत्मा पंछी कभी भी उड़ सकती है और आई तो जाएगी। तो आज के लिए सबको धन्यवाद देते हैं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। और मैंने सोचा नहीं था सर इतना सुंदर रूप में गीत गाते हैं और भाव और भावना का साथ सभी बच्चों को आत्मा साथ करा दिए, मन मुग्ध करा दिए। और वाणी में जो मधुरता वो विशेषता आज देखने को मिला, क्यों कबीर का जो वाणी, कबीर वाणी जो कहते हैं, वो वाणी में मधुरता सही में और गीत में भी मधुरता। और हमारा बच्चे भी मीठे बच्चे है, हमारा सभी बच्चे मीठे है, किन्तु गीत मीठे सुने और मीठे गीत गाए तो मीठा वाणी में सभी मन मुग्ध होगी। तो मैम को भी धन्यवाद देते हैं और सभी स्टाफ को, और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सभी ने सजाया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और सर भी अपना आवाज को रोक नहीं पाए, वांच मोर करके अपना कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी। और
2: धन्यवाद साहब आपका, बहुत बहुत आप दिल्ली में आए,
1: मौका मिला तो सर मौका ढूंढ रहे थे और मौका मिल गया जैसे, तो चौका छक्का लगा दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गाए, हाँ कि नहीं बच्चा अच्छे गए। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे सर, नमस्ते।

0: नमस्ते, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब है कार्यक्रम जीवन रोशनी का वक्त, जहां हम बात करते हैं रियल लाइफ की, रियल वैल्यूज की। और आज का टॉपिक है इंटीग्रिटी, यानी कि जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है तब हम क्या काम सही से करते हैं, वो है इंटीग्रिटी। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे हम। हमारे पास हमारे एक्सपर्ट भी पधार चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों, कि आज की दुनिया में जहां शॉर्टकट्स बहुत आसान है, वहां इंटीग्रिटी रखना एक्चुअली एक सुपर पावर जैसा है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में है हितेश जी, जो एक ऑथर है, इंजीनियर है, मोटिवेशनल स्पीकर है और डिजिटल इन्फ्लुएंसर भी है, जो आज के यूथ को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से लाइफ के वैल्यूज सिखा रहे हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है जीवन रोशनी। बहुत बहुत स्वागत है बीके हितेश जी आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: जी। तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि आज जो तीव्र गति से हम भाग रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है, तो इंटीग्रिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, अगर एक सिंपल लाइन में?
1: फास्ट पेस लाइफ है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो स्लो ही होती हैं। जैसे प्रकृति लें, नेचर लें, दिन लें, है ना, धीरे धीरे ही मौसम बदलता है। कुछ चीजों का शॉर्टकट कभी नहीं होता
0: जी।
1: और नहीं होना चाहिए। अगर उनका भी शॉर्टकट लेंगे तो फिर जो रियल रीजन, कारण पता नहीं लग पाएगा कि क्यों मुझे अजीब फील हो रहा है, क्यों बेचैनी आ रही है, एकदम से नेगेटिव फील हो रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि लाइफ से इंटीग्रिटी चली गई है। जो आपने कहा कि शॉर्टकट्स आ गए हैं, ऑप्शंस बहुत हैं
0: जी
1: डिस्ट्रैक्ट होने के। आप कुछ गलत करना चाहो तो आपके पास पूरा मेन्यू है। तो उन बातों में भी सेंस बनाकर रखना और वो करना जो सही है, उसके लिए हिम्मत तो चाहिए, उसके लिए बहुत इनर क्लैरिटी चाहिए, मैं बिल्कुल कहूँगा, बट इट्स वर्थ इट।
0: मतलब इनर क्लैरिटी और हिम्मत,
1: यस,
0: ये दोनों हम ले सकते हैं इंटीग्रिटी को डिफाइन करने के लिए। अगर हम ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, ईमानदार रहना चाहते हैं, तो ये दोनों कोर वैल्यूज भी चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी, जी।
1: और ये अवेयरनेस चाहिए कि दुनिया तो है, दुनिया के पास बहुत से मेन्यू है। अगर आप भटकना चाहो, गलत करना चाहो, तो आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। एग्जांपल, जैसे आज के समय में, जैसे मैं देख रहा था कि डेटिंग वेबसाइट्स हैं
0: जी,
1: उसमें भी वैरायटी है। मैरिड लोगों के लिए अलग से है, तो सोचिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए कि मैरिड लोग हैं
0: जी,
1: उनके लिए भी है, तो ऑप्शंस तो बहुत है। मुझे तो वो एक लाइन याद आती है कि विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है जी बिल्कुल। तो आज के जमाने में बहुत सारे विकल्प हैं, पहले के जमाने में भी
1: थे
0: हमारे पास,
1: बिल्कुल थे,
0: लेकिन आज आसान है, इजी,
1: आज इजी है, आज ज्यादा है। आप ये कह सकते हो कि जैसे कहा ना, मेन्यू कार्ड पे वैरायटी ज्यादा है, पहले कम थी, थी जरूर, बट आजकल टेम्पटेशंस और ज्यादा है ना। मान लीजिए किसी का कमजोरी है आइसक्रीम खाना, तो पहले आइसक्रीम थी, आज आइसक्रीम में कुछ ना कुछ मिक्स करके देंगे
0: जी,
1: तो वो ज्यादा टेम्पटिंग लगेगा, वो लगेगा कि अरे यू नो, फिर दुनिया में कहते हैं ना कि अरे एक्सपीरियंस तो हर चीज का होना चाहिए ना, आए हैं लाइफ में तो अनुभव करने आए हैं, किस चीज का अनुभव मुझे कभी नहीं करना, उसकी भी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक वही इंटीग्रिटी है
0: जी। तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है आपको इंटीग्रिटी की तरफ बढ़ने के लिए
1: जी।
0: तो ये माइंडसेट है या हम इसे डेली हैबिट्स में भी ला सकते हैं?
1: ये दोनों है। मतलब जैसा माइंडसेट होता है, जैसे माइंड को हम तैयार करते हैं, वैसा ही हैबिट्स में आता है। और दूसरा भी कि जैसे हैबिट्स में आ गया तो हैबिट को भी चेंज करने से माइंडसेट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि इट्स अ माइंडसेट, कि एक माइंडसेट होता है कि मुझे सही चीज करनी है, मैं एक रिलेशनशिप में हूँ तो मुझे उस रिलेशनशिप की वैल्यू रखनी है, चाहे वो इंसान मुझसे पूछे नहीं पूछे, उसे पता लगे या नहीं लगे, स्टिल मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो उस रिश्ते की मर्यादा में नहीं आता है, उसकी गरिमा जो कहती है रिश्ते की रखने के लिए। अब दूसरी चीज है कि एक तो ये माइंडसेट हो गया कि चलता है एटीट्यूड ना, कि किसे पता लग रहा है, ये होता है कि कौन कौन पूछ रहा है. वही बात कि हमारे अंदर कुछ है जिसे अहम अहंकार कहते हैं, कि वो जानबूझकर ये गलत चीजें करना चाहता है, वो गिल्ट में रहना चाहता है. वो कहते हैं बाद में देख लेंगे, गिल्ट विल्ट फेस कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो जो फ्लो में है ना वो कर लेते हैं. दूसरा, जैसे ये तो माइंडसेट हुआ कि मुझे क्या करना है, मतलब मुझे कंज्यूम करना है या मुझे अपनी इंटीग्रिटी, मतलब अपनी सही चीज को बरकरार रखना है, जो अब मेरा जो कैरेक्टर है उसे सही रखना है. और दूसरा बिहेवियर हो गया, जैसे कि व्यवहार में आ गए कि किसी से ऐसे ही बात कर ली. कितना केसेस सुनने को मिलते हैं, मेरे पास कितने आते हैं कि कुछ मैरिड फीमेल्स हैं, वो कहते हैं कि मेरे पति बात करते हैं, किसी लड़की से बात करते हैं, हेलो हाय लिखते हैं. ये तो उनको पता है, पता नहीं कितना रियलिटी है, लेकिन ये भी तो एक आदत है ना, एक आदत ही तो है ये, कि ये भी तो जैसे बोलते हैं कि फिजिकल चीटिंग नहीं है तो इमोशनल तो है ही ना.
0: जी, और बिल्कुल. और इसको हमने स्वीकार भी कर लिया कि ये होता रहता है, शायद सब करते हैं, मैं भी कर लूँ तो क्या फर्क पड़ता है.
1: बिल्कुल, ये है. मतलब मान लीजिए वही इंसान ऑफिस में गया, अब ऑफिस में वैसे ही चार लोग यही कह रहे हैं कि अरे मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, तो वो एक वही बात कि जब अंदर क्लैरिटी नहीं है और अंदर पता नहीं है करना क्या है, तो फिर हम भी कैरिड अवे हो जाते हैं कि अरे मैं ऐसे इतना लॉयल बन के घूम रहा हूँ, है ना, मैं ऐसे इतना शरीफ होकर चल रहा हूँ, नहीं दुनिया में तो ऐसे नहीं चल सकते, ये भी होना चाहिए. वो फिर वो प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है गलत संगत से.
0: तो अपने आप से पूछना चाहिए हमें कि हमें लाइफ में चाहिए क्या, ऑनेस्टी से.
1: हाँ, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाना है मुझे, ये दो क्वेश्चन तो पूछने बहुत जरूरी है कि ये मैं हूँ क्या असली में, वास्तव में मैं ये करना चाहता हूँ या आई एम जस्ट गेटिंग कैरिड अवे. ये मैं अपने आप से बार बार पूछता हूँ कि सच में मैं ये चाहता हूँ या कैरिड अवे हो रहा हूँ, किसी और की बात से प्रभावित होकर कर रहा हूँ. तो वो बहुत जरूरी है पूछना,
0: क्योंकि लगता है कि ये भी स्किल है और हम ये सब करेंगे तो हम दोस्तों के बीच में कूल लगेंगे.
1: कूल लगेंगे
0: नहीं तो फिर दोस्त बोलेंगे तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुमने तो लाइफ की कोई टेस्ट ही नहीं लिया.
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ ये बहुत होता था. सभी इतना बोलते थे कि अरे छोटा बच्चा है क्या, इतना शरीफ नहीं होना चाहिए. आई रिमेम्बर मैं ऑफिस में था तो मेरे बॉस मुझे बोलते थे कि हितेश आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलते. मैंने कहा हाँ सर. कहते बीच में ना एक दो बोल दिया कर
0: जी
1: कि काम निकल जाएगा. तो ऐसा मतलब वही है कि एक एक माइंडसेट वही बैठा हुआ है कि इट्स कूल अगर हम चीट करें, अगर हम एक्स्ट्रा पैसा गलत तरीके से कमाएं,
0: अगर हम बातों को बोलते हैं कि मोल्ड करके या तोड़ मोड़, हाँ मैनिपुलेशन करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे फिर.
1: उससे बड़ी चीटिंग तो असली में कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज
0: उसको तो युक्ति कहते हैं.
1: हाँ, लेकिन वही बात है ना कि ये बहुत बड़ी चीज जो आप कह रहे हैं ना कि ये बहुत सटल होती है.
0: ओके,
1: बाकी चीजें तो पकड़ में आ जाती है, लेकिन ये जो है इसमें हमें लगता है कि हम ऐसी घुमाकर बात कर रहे हैं, पर उसमें बहुत ज्यादा एजेंडाज मिक्स हो जाते हैं हमारे. हमें लगता है कि हम बुद्धिमानी से काम ले रहे हैं, ओवर स्मार्टनेस में काम ले रहे हैं, लेकिन असली में वो बहुत अलग डायरेक्शन में ये चीज़ जाती है कि मैनिपुलेट करना,
0: एक घुमाना बातों को,
1: एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी होती है कि रिश्तों में आजकल ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है. और स्टैट्स बोलते हैं हर पांचवें इंसान में ये पाई जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कि गलती खुद की होती है लेकिन दूसरे पर ब्लेम करते हैं. कि मान लीजिए किसी ने कुछ कहा कि आपका ये बिहेवियर ठीक नहीं है, तो उसी को ही गलत प्रूफ करना शुरू कर देते हैं कि अरे आप अपने आप को ठीक करो ना, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, ये कोई बात थोड़ी है. तो वो भी बहुत एक मैनिपुलेशन, भी बहुत ज़्यादा, मैं यही कहूँगा कि ये भी चीटिंग में ही आ सकता है.
0: जी, और अगर स्टूडेंट के बारे में बात करें, कोई स्टूडेंट को चीटिंग करने का मौका मिला, मार्क्स ले सकता है, अगर नहीं करेगा तो शायद फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए.
1: मुझे वो मूवी याद आ गई, 12th फेल, अगर आपने देखी हो तो उसमें वो जो बच्चा होता है, रियल स्टोरी है, तो वो 12th क्लास का एग्जाम देता है, गांव में था शायद बिहार के, तो उसमें पूरी चीटिंग, खुलेआम चीटिंग हो रही थी और वो पुलिस वाला आए, बड़े ऑफिसर थे, तो उन्होंने उस लड़के को कहा, पूरी कहानी मुझे याद नहीं आ रही उसी को क्यों कहा, पर उसने उनको कहा कि चीटिंग कभी मत करना लाइफ, और वो बात ना उसके अंदर बैठ गई। अगले साल पूरी क्लास चीटिंग कर रही थी, उसने चीटिंग नहीं की और आज वो आईएएस ऑफिसर बन गया, जस्ट बिकॉज उस दिन के बाद उसने एक चीज ठान ली कि मुझे चीटिंग नहीं करनी। वही मैं जो बात कह रहा था कि मैं जब जॉब करता था मेरे पास बाकी स्किल्स अच्छी थी पर आप कह सकते हो कि कम थी, इतना मैं ओपन अप होकर बात नहीं कर पाता था, जिस तरह का जैसे कहा ना लोग मिक्स हो जाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, वो मैं नहीं, मुझे नहीं आता था, पर ऑनेस्टी ने, सच्चाई ने मुझे बहुत दूर तक हेल्प की लेकर जाने में। मेरा इंटरव्यू भी एक इसीलिए सिलेक्ट हुआ क्योंकि उनको एक ऑनेस्ट पर्सन चाहिए था, ना कि कोई स्किल चाहिए थी। तो एक आपका वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा ना लाइफ में, हमें पता भी नहीं है। हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, छोटा सोचते हैं कि ये चीट कर लिया। चीटिंग एक हैबिट बन जाती है और कोई भी हैबिट जब बहुत डीप हो जाती है, जिसे एडिक्शन कहते हैं, कुछ लोगों को झूठ बोलने की एडिक्शन, कुछ लोगों को किसी से बात करने की एडिक्शन, चीट करने की एडिक्शन, एक बार वो एडिक्शन या बहुत डीपली आदत बन गई ना, तो उसे चेंज करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है
0: जी।
1: इसलिए जैसे कहते हैं ना कि जब भी कोई पैटर्न बने तो शुरू में ही उसे चेंज कर देना चाहिए। तो पौधा जब अगर अनवांटेड है, अगर वो जरूरी नहीं है, तो जितना छोटा हो उसे तभी निकाल देना चाहिए, अदरवाइज उसकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती है, बहुत मुश्किल होता है
0: जी।
1: इसलिए चीट नहीं करना चाहिए,
0: नहीं करना चाहिए। आगे हम आपसे जानेंगे कि कैसे कोई भी संस्कार हो, हैबिट्स हो, अगर वो गलत है उसे कैसे हम निकालें, उसके बारे में आपसे जानेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहूँगी, जैसे आप कह रहे थे कि जब आप ऑफिस में थे, वर्क कल्चर में थे, तब आप अपने आप के साथ, उन वैल्यूज़ के साथ चल रहे थे, तो अगर जब हमें कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, तब सेल्फ डिसिप्लिन हो या इंटीग्रिटी हो, उससे कैसे मेंटेन करना चाहिए।
1: मुझे एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी और मुझे बहुत उसने हेल्प की इस बात को प्रैक्टिस करने में, कि असली फ्रीडम का मतलब क्या है। असली फ्रीडम का मतलब वो नहीं है कि जो मन में आए करूं। हम ज्यादातर यही बोलते हैं ना, मेरा मन है जो मैं करूं, मैं फ्री हूं, आई एम अ फ्री पर्सन। रियल फ्रीडम इज डूइंग व्हाट इज राइट,
0: ओके,
1: वो करना जो सही है, चाहे फिर आपको कोई मॉनिटर कर रहा हो नहीं कर रहा हो। आइडली ये मैटर नहीं करता, बिकॉज जिस दिन हम ये समझ जाते हैं ना कि मैं जो कर रहा हूँ वही मुझे वापस मिलेगा, अगर मैं चीट कर रहा हूँ किसी भी लेवल पे, एक रिलेशनशिप में, एग्जाम में, तो किसी ना किसी तरीके से वापस आएगा। मैंने चीट किया, मैंने रूल को फॉलो नहीं किया, कुछ और किया, तो कोई ना कोई मेरी लाइफ में आएगा जो रूल को फॉलो नहीं करेगा और मेरा नुकसान होगा।
0: मतलब कर्म बन जाता है,
1: कर्म बन जाता है, जो बोलते हैं ना कि समय बहुत बलवान है। ये ऐसी कहावतें नहीं बनी हुई है, इसी वजह से बनी हुई है कि जिस दिन हमें ये समझ आ जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना, कोई और देख रहा हो या नहीं, यूनिवर्स देख रहा है, मेरे कर्म दुनिया में फैल रहे हैं और लोग उसे देख रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई आंखों से देख रहा हो, आपकी एनर्जी से पता चल जाएगा और वही वापिस हमारे पास आएगा। तो जो भी अगर कोई यूथ है सुन रहे हैं और कूलनेस में मान लीजिए चीट कर रहे हैं, सो थिंक अबाउट इट कि वो वापस मेरे ऊपर आया
0: तब कैसा लगेगा,
1: तब आपको कैसा लगेगा, और वो होगा ही होगा अगर हम कर रहे हैं। ये डरने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। मुझे एक लाइन याद आती है, किसी ने कहा था कि अगर कोई कहे ना आपको कि आपके कर्मों का हिसाब किताब आपको जरूर मिलेगा, और अगर मैं खुश महसूस करूं कि वाह
0: जी,
1: कि वाह मेरे कर्मों का हिसाब किताब मिलेगा, तब इंटीग्रिटी है, कि तब आप खुश हो, ना कि दुखी हो कि अरे वापिस मिलेगा।
0: राइट तो ये चेक करना,
1: तो ये इनर डायलॉग बहुत जरूरी है। वही छोटे छोटे बिलीव्स होते हैं कि व्हाट इज रियल फ्रीडम, और ऐसे ही कि व्हाट इज रियल ब्यूटी। मतलब हम स्पेशली यूथ में या जॉब में परिवार में हम दिखावे के लिए करते हैं, वैलिडेशन के लिए करते हैं कि यू नो हमारा स्टैंडर्ड है, हम ये हैं, हम वो हैं, कूल है, यू नो. तो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ कूलनेस, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ यू नो हाई स्टैंडर्ड लिविंग. एक बोलते हैं हम सोसाइटी में रहते हैं, कल्चर्ड लोग हैं. कल्चर का मतलब क्या है वो खुद से चेक करना बहुत जरूरी है. कि कल्चर्ड का ये मतलब है कि बाहर बाहर से तो पढ़े लिखे दिख रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, चश्मा पहने हुए हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है. अंदर वो है ट्रूथफुलनेस, नहीं तो स्टैट्स तो हर जगह है जो बहुत ऐसी चीजें बताते हैं सोसाइटी के बारे में जो अदरवाइज हम लोग बात करना नहीं चाहते उस बारे में. तो वो कौन कर रहा है, वो चीजें कौन कर रहा है? वो वही लोग कर रहे हैं जो ऊपर से कल्चर्ड दिख रहे हैं, वेल एजुकेटेड दिख रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ तो है जो इंटीग्रिटी नहीं है.
0: राइट. बहुत ही सूक्ष्म है और उसे सही तरीके से और अपने आप के साथ बैठ करके ही हम इसका समाधान खोज सकते हैं या फिर जान सकते हैं कि हमारे अंदर है कि नहीं है इंटीग्रिटी.
1: जी
0: जी.
1: इसमें मतलब एक चीज आ जाती है ना कि हमें ऐसे एक बर्डन फील होता है
0: इंटीग्रिटी अगर नहीं है.
1: अगर इंटीग्रिटी है मतलब कि इतना सच्चा रहना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी.
0: जी.
1: बट अल्टीमेटली खुद को अच्छा फील होता है ये सब चीजें करने के बाद. जैसे हम खुश रहने के लिए कितना कुछ करते हैं, ग्रेटिट्यूड कर प्रैक्टिस करते हैं या घूमने जाते हैं, क्या नहीं करते. बट रियल हैप्पीनेस या अच्छा फीलिंग गुड, हाई सेल्फ इस्टीम तभी होती है जब हम अलाइनमेंट में है, जब हम सही चीज कर रहे हैं, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. तो ये मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूँ, ये मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं खुद की हैप्पीनेस के लिए ही कर रहा हूँ. कि मुझे अच्छा फील होगा, मुझे बर्डन, मुझे गिल्ट, मुझे नेगेटिव ओवरवेलमिंग फीलिंग नहीं होगी अगर मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ. तो ये जैसे कहते हैं कि सच से मिला कुछ नहीं, बस मज़ा आ गया.
0: जी. ओके. ओके. तो कई बार मज़ा आने की जगह पे ना हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो सामने वाला जो है वो भी मेरे साथ सही करना चाहिए क्योंकि मैं अच्छा कर्म कर रही हूँ तो मुझे तुरंत वो फल मिलना चाहिए. अगर सामने वाला नहीं करता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं.
1: हाँ, तो ये तो वही बात हो गई कि मैं गया शेर के पास, मैंने कहा शेर मैं तो आपको नहीं खाता हूँ तो फिर
0: आप मुझे मत खाओ,
1: आप भी मुझे मत खाओ. नहीं. ये जो दुनिया है ये इतना सिंपल नहीं है. इसे थोड़ा सा अलग लेवल से समझने की जरूरत है. और वो ये कि अगर कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा है ना, एक्चुअली में उसको कुछ एक कोई उसको प्रेरित करता है, कोई रोल मिला हुआ है. चाहे वो आप कार्मिक अकाउंट्स कहें, सटल में जो हमारे पेंडिंग हैं, बहुत सी फोर्सेस एक साथ लगती हैं उस इंसान को वो करने के लिए जो वो कर रहा है. तो जब हम ये अवेयरनेस में होते हैं कि मुझे अपना कर्म बेस्ट करना है, जो मुझे जितनी समझ है उसके बेसिस पे करना है, ना कि दूसरों के बेसिस पे कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं. तो जब वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती, समझ आ जाती है, और जब वो बहुत डीप हमें महसूस होता है, रियलाइज होता है कि मुझे अपना कर्म श्रेष्ठ करना है, तब जाकर इंटीग्रिटी आ पाती है कि मुझे ऑनेस्ट रहना.
0: जी.
1: और कोई रहे या ना रहे, प्यार से रहे या ना रहे, अच्छे से उसे ले या ना ले, बट मुझे करना है.
0: जी. और आप ऑनेस्ट होते हैं और अगर आपके साथ कोई मैच नहीं कर रहा है और उसके बारे में आप दूसरों को बोलते रहते तो फिर वो भी इंटीग्रिटी नहीं हुआ.
1: बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि वही बात कि मैं कर रहा हूँ तो अगर मुझे इसका भी एक ईगो आ गया कि मैं तो सच बोलता हूँ, तो फिर हमने क्या किया, हमने उस बात को भी अपने ईगो में ले लिया. हमने कहा मैं तो सच बोलता हूँ, बाकी सब झूठे हैं. नहीं, तो फिर ये क्या किया हमने, हमने बाकी चीज छोड़कर इसको अपना आइडेंटिटी बना लिया. करना वो भी नहीं है कि मुझे सिर्फ खुद को देखना है. और बस ये याद रखना है कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ ना, तो आज नहीं तो कल इस इंसान पर फर्क पड़ेगा मेरे बिहेवियर से, मैं जो कर रहा हूँ. क्योंकि लोग अनकॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं एंड एब्जॉर्ब करते हैं कि वो आपको कहेंगे कुछ नहीं पर आपके एक एक बिहेवियर से उनको वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे सच बोल सकते हैं जैसे ये इंसान बोल रहा है सबके सामने. तो फिर वो अपने आप धीरे धीरे सीखने लग जाए, आपको बोलने की भी जरूरत
0: नहीं. राइट जी. अभी ये सोशल मीडिया पर बात करते हैं. आज के यूथ तो सब सोशल मीडिया पर ही है. वहाँ पर हम परफेक्ट लाइफ देखते हैं और रियल और फेक कैसे हम पहचाने फिर?
1: ये बहुत एक तो वही बात है कि थोड़ा सा इसमें अवेयर रहने की ज़रूरत है कि मैं सोशल मीडिया पर क्यों जा रहा हूँ. अभी ही किसी बहुत फेमस कोई कॉमेडियन है, उन्होंने बहुत बिल्कुल क्लियरली बोला कि जो हम सामने आपको दिखाते हैं ना वैसे हम असली में होते ही नहीं है. कि मैं अपना रियल सेल्फ आपको दिखा ही नहीं सकता. ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं ये बात, लेकिन वही बात कि हम इतना कैरिड अवे हो जाते हैं, आसपास फ्रेंड्स भी वही कर रहे हैं और दुनिया में जो देख रहे हैं मूवीज में देख रहे हैं, तो वो बहुत ब्लरी हो जाता है. सही क्या है, गलत क्या है, ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, रियल क्या है, अनरियल क्या है, उसके लिए वही इनर कंपस सही होना बहुत ज़रूरी है. कि वैसे तो सही बताऊं तो अगर मैं खुद की भी बात करूं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोशल मीडिया पर मैं खुद बिल्कुल सच्चा नहीं बोल सकता हूं जो बात है. क्योंकि वो प्रोटोकॉल कुछ चीज़ें होती हैं, आप 100% तो नहीं कर सकते
0: जी.
1: तो मैं सोचता हूं मैं नहीं कर सकता तो कितने लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए, बचने के लिए, सेफ्टी के लिए, वायरल होने के लिए
0: सोशल मीडिया का यूज़
1: करते हैं, तो वो तो पता ही नहीं क्या करते होंगे. रियल वर्ल्ड से बिल्कुल ही अलग है चीज़ें. तो अगेन बहुत अवेयर रहना है कि मैं वहाँ क्या करने जा रहा हूँ. सब खोखला है, कुछ भी रियलिटी है ही नहीं. आज के समय में वही बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात ही ये है कि हम बस देखते हैं और मान लेते हैं उस बात को. और अभी तो AI है तो अभी तो
0: और भी मुश्किल है.
1: और भी मुश्किल
0: है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं बहुत जल्दी.
1: सीधा वीडियो देखा, स्क्रीनशॉट देखा, चैट देखा, वॉइस नोट सुना, सीधा जज कर लेते हैं वन साइड ऑफ द स्टोरी. कुछ भी रियल नहीं है. सीधी बात तो माननी ही नहीं है किसी की. कोई भी अगर आपका कोई रोल मॉडल भी है सोशल मीडिया पर और वो कुछ भी कहते हैं, सीधी बात नहीं माननी है. अपनी लाइफ की सिचुएशन को देखना होता है, फिर फैक्टर्स को देखना होता है, फिर उस बात को देखना है. ऐसे नहीं कि सीधा सीधा मान लो उस बात को.
0: जी बिल्कुल. और जब पीयर प्रेशर में होते हैं हम, तब कई बार हम अपनी इंटीग्रिटी को साइड में रखते हैं क्योंकि हमें नो कहना टफ लगता है. तो इससे आसान कैसे बनाया, आपने कैसे बनाया था अपने स्टूडेंट लाइफ में या अपने वर्किंग लाइफ में?
1: वो बोलते हैं ना कि अकल बादाम खाने से तो नहीं आती, ठोकर खाने से ही आती है. तो ऐसा है कि मैंने भी गलती करके सीखा और यही ऑब्जर्व किया कि ये जो पीयर प्रेशर हम कहते हैं, ये जो डर है टू बी लेफ्ट अलोन कि सब छोड़ जाएंगे मुझे, और जो सही चीज़ है करने के लिए इवन किसी इंसान को मुझे छोड़ना भी पड़े, अगर मैं सही काम कर रहा हूँ तो सही काम करते हुए अगर कोई इंसान मुझसे दूर भी जा रहा है, मेरे दोस्त मुझसे दूर जा रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं.
0: अच्छे दोस्त आएंगे
1: वो दोस्त समझेंगे और फिर से वापस आएंगे. अगर वो सच में आपके दोस्त हैं, वो सच में प्यार करते हैं तो. लेकिन जब हम इसका ऑपोजिट करते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं कई बार, अपनी बात नहीं रखते, और हमें डर लगता है कि अगर मैं इस रास्ते पर चला, मैंने सच बोला या कुछ भी किया तो पता नहीं वो कैसे लेंगे, जैसे फैमिली में होता है, तो फिर हम अवॉइड करते हैं. ये असली में ये कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये फिर बाद में और ख़राब करता है ना, फ्रस्ट्रेशंस क्रिएट करता है. उसके लिए एक ही चीज़ याद रखनी है कि पहले तो चेकिंग मुझे सही चीज़ करनी है, व्हाट इज़ राइट, जो ट्रुथफुल है, जो सबके लिए फायदेमंद है, मेरे लिए, सभी के लिए, जब वो करना है मुझे, तो फिर जो उसमें अलाइंट होगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, और जिसमें नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेट गो भी प्रैक्टिस करना है
0: और ईमानदारी से करना है सारी चीजें,
1: बस करना ईमानदारी से है, अपने आप को खो नहीं देना है दूसरों को खुश करने के चक्कर में,
0: वो भी अपने आप के ऊपर ईमानदारी नहीं होगा अगर हम दूसरों की बातों में
1: बिल्कुल
0: आ जाते
1: हैं। बिल्कुल, जैसे एक वो बहुत फेमस बुक है टॉप 5 रेग्रेट्स ऑफ द डाइंग, उसमें जो नर्स है उन्होंने लिखी, तो उनका काम ही ये था कि जो लोगों का केयर करते थे वो पेशेंट्स का, जो जिनके पास 6 महीने 1 साल ऐसी बीमारी थी उनको, लाइक कैंसर, तो वो उनसे पूछती थी कि व्हाट इज योर मोस्ट यू नो फर्स्ट रेग्रेट इन योर लाइफ, सबसे ज्यादा किस बात का रेग्रेट है, तो सबसे पहला रेग्रेट जो उन्होंने देखा लोगों का सबसे ज्यादा रेग्रेट होता है नॉट एबल टू डू द थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू डू, आई वॉज मोर इन टू पीपल प्लीजिंग, वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, मैं ये सोचता रहा कि
0: लोगों को कैसे खुश
1: रखना है, अवॉइड करना है कॉन्फ्लिक्ट को, अपनी बात रखने में डर लगता है, जजमेंट्स आती हैं, क्रिटिसिज्म आता है, लेकिन हुआ क्या फिर अल्टीमेटली वो धीरे धीरे ना फ्रस्ट्रेशंस में बढ़ता रहता है, और इसीलिए फिर हम कहते हैं इनको एकदम से इतना गुस्सा कैसे आ गया, एकदम से हाइपर कैसे हो गए, वो बात नहीं थी, वो फ्रस्ट्रेशंस कैरी हो रहा है इतने वर्षों से, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए, जो सही है, जो इंटीग्रिटी है, इस वजह से वो जब दुविधा आती है तो वो बढ़ती रहती है और केओस क्रिएट कर देती है।
0: राइट, तो क्या हम छोटे छोटे झूठ नहीं बोल सकते? झूठ तो नहीं है, कोई युक्ति रच ले, कोई एक्सक्यूजेस बहाना देते हैं क्या ये हमारी इंटीग्रिटी को धीरे धीरे डैमेज करता है?
1: हाँ, मतलब बोलते हैं कि एक इंसान एक दिन में 11 झूठ बोलता है, एक रिसर्च कहती है, और वो कहती है कि जब दो लोग नए मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, तो पहले 30 मिनट में एक झूठ जरूर बोलते हैं। अब हम क्या बात करते हैं, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, कितनी सैलरी है एक्सेट्रा, तो उसमें एक आधा झूठ बोल ही देते हैं।
0: सैलरी पे तो बोल ही देते
1: हैं। सैलरी पे, एज पे,
0: एज पे,
1: हाइट पे,
0: जी
1: हाइट एक आधा इंच ज्यादा बताते हैं, एज 1-2 साल कम बताते
0: जी बिल्कुल।
1: अब ये क्यों है? ये इसीलिए है, इतने वर्षों का ये प्रोग्रामिंग है कि हमें आदत है छोटा मोटा भी झूठ बोलने की। छोटे बच्चे बोलने लग जाते हैं, आजकल छोटे बच्चे बोलने लग गए, पहले उन्हें इतना बोलते थे कि इतने इनोसेंट होते हैं, आजकल वो इनोसेंस भी कम हो रही है ना? तो कहने की बात वही है कि ये भी एक एडिक्शन से कम नहीं है। और फिर वही बात की
0: छोटे छोटे झूठ, मतलब जैसे हम किसी से कोई बात एग्जैक्टली बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अभी बता देंगे तो शायद वो रिजल्ट सही नहीं आएगा।
1: आपने जो ये बात कही ना कि अभी बता देंगे, इसमें एक लाइन मैंने सुनी थी बहुत अच्छी लगी थी मुझे, किसी ने एग्जांपल दिया कि उनकी एक फ्रेंड ने ना कुछ प्रोग्राम किया सिंगिंग का, एंड बिल्कुल अच्छा नहीं गाया उन्होंने, तो कहते कि वो मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि मैंने कैसा गाया, तो कहता अब सोचो अब क्या कहना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि वाओ, मतलब गुड टू सी यू, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, ये सब ठीक है। कहते मैंने उनको ये नहीं कहा कि आपने बुरा गाया, मैंने ओवरऑल कहा कि लुक एट यू, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, इतना सब कुछ अच्छा है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली कि यू डोंट हैव टू बी ऑनेस्ट राइट अवे, तभी आपको ऑनेस्ट होना जरूरी नहीं है, तब आप थोड़ा सा झूठ भी नहीं बोलना, तब आपको क्या करना है, जनरल कुछ वैसे बात करनी है, और बाद में जब वो उस स्टेट ऑफ माइंड में हो तब आप सच बोल सकते ना
0: जी।
1: तो इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि ट्रुथफुलनेस तो होनी चाहिए, बट कल्चर्ड ट्रुथफुलनेस, है ना, सत्यता के साथ सभ्यता होनी जरूरी है, कि झूठ भी नहीं बोलना आपको। कभी कभी मैं समझता हूँ होता है कि मान लीजिए कोई सीनियर है और वो कुछ बोल रहे हैं, ये कैसा लगा, ये मैंने कैसा बनाया, मम्मी ने पूछा, है ना, तो ऐसा नहीं कि हमने तो सीखा है सच बोलना, नहीं, आपको बहुत प्यार से बोलना है कि आपने इतनी मेहनत की, आपने इतना कुछ किया, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में तब आप बोल सकते हो कि इसे थोड़ा बेटर कर सकते,
0: राइट?
1: ये तो छोटी सी बात है, लेकिन जब आप ये आदत डाल लेंगे ना, तो आप शिफ्ट देखेंगे। रिसर्च बोलती है कि जैसे एडिक्टेड लोग होते हैं ना
0: जी,
1: तो उनका 12-step प्रोग्राम होता है, उसमें एक स्टेप होता है कि आपको ना सच बोलना है, सच बोलना है, पूरा सच बोलना है। आपने जैसे रिकवरी में होते हैं वो, तो आपको सच बोलना है कि आपने फिर भी कहीं से कुछ कंज्यूम किया क्या, फैमिली से सच बोलना है। तो उस रिसर्च में मिला कि जब जब हम सच बोलते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में स्पार्किंग होती है।
0: ओके,
1: स्पार्किंग इन द सेंस कि यहाँ जो हमारी बुद्धि है, हमारी जो क्षमता है निर्णय करने की, वो डेवलप होती है, न्यूरो प्रोग्रामिंग होती है नई। तो जब हम धीरे धीरे धीरे धीरे हर बात पे सच बोलना शुरू करते हैं, तो न्यूरो पाथवेज बन जाते हैं, पावर बढ़ जाती है, माइंड पावर। और यहाँ जैसे ग्रे मैटर जो बोलते हैं ब्रेन में, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो जिसका ज्यादा होता है, कहते हैं उनकी बुद्धि, उनकी जजमेंट्स पावर ज्यादा होती है, तो वो ग्रे मैटर बढ़ता है इन सब चीजों से, अगर आप साइंटिफिक वे में समझे। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों में सच बोलना बहुत जरूरी है। ये एक आदत है, जस्ट लाइक एडिक्शन, डी एडिक्शन, ये भी एक बहुत बड़ी एडिक्शन हो चुकी है, तो उसे ठीक करने के लिए छोटे छोटे को भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इनसाइड आउट, आउटसाइड इन, बाहर से भी अंदर से भी, दोनों तरह से, व्यवहार में भी और माइंडसेट में, दोनों जगह से चेंज करना। तो व्यवहार में क्या चेंज कर सकते हैं कि आज ना मैं झूठ नहीं बोलूंगा,
0: सच बोलूंगा जी। ओके, कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि आप सच तो बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, मतलब डाउट करते हैं लोग, इतना भी कोई सच नहीं बोलता है, बड़े आई सच बोलने वाले, तो उस समय हमें कैसा माइंडसेट रखना है?
1: मतलब ये तो वही बात हुई ना कि मान लीजिए मैं सच में जेन्युइनली सबके लिए अच्छा सोचता, लेकिन दुनिया ऐसी है वो कहेगी कि आपका कोई मतलब होगा इन सब,
0: यस,
1: है ना। मुझे ना एक कविता याद आती है, बहुत बहुत फेमस है, जो हम बात कर रहे हैं मदर टेरेसा की, डू इट एनीवेज
0: जी।
1: तो वो इतनी अच्छी है, आप ये पोएम आप पूरा पढ़ेंगे ना, आपको इतना क्लैरिटी मिलेगी। तो उसमें एक लाइन है कि इफ़ यू आर काइंड टू समवन, इफ़ यू आर ऑनेस्ट सिंसियर, सो सी उसमें क्या है, पहला इफ यू आर काइंड, अगर आप अच्छे हो तो फिर भी लोग आपको कहेंगे, पीपल में एक्यूज यू ऑफ सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स, है ना। वो कहेंगे कि इतना कहते नहीं, ये इतना प्यार से क्यों बात कर रहे थे, इनको क्या चाहिए मुझसे,
0: कुछ तो होगा,
1: कुछ तो है ना। बट बी काइंड एनीवेज, है ना। इफ यू आर ऑनेस्ट एंड सिंसियर, पीपल में डिसीव यू, मतलब उनको पता है ये सच बोलते हैं, हो सकता है आपकी सच्चाई का फायदा उठाए, हो आपने सच सच सब कुछ बता दिया, वो कहीं जाकर कुछ बता दें,
0: राइट,
1: फिर भी बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर एनीवेज, है ना। ऐसे ही नीचे है कि इफ यू डू समथिंग गुड एंड समवन विल कम एंड डिस्ट्रॉय ओवरनाइट, बट डू गुड एनीवेज। क्यों? क्योंकि जो लास्ट लाइन है ना, वो बहुत सुंदर है कि जो फाइनल एनालिसिस होगा, इट इज बिटवीन यू एंड गॉड, इट वाज नेवर बिटवीन यू एंड देम एनीवेज।
0: वो चार लोगों के बीच में नहीं होगा,
1: वो चार लोगों के बीच में,
0: हाँ।
1: वो फाइनल एनालिसिस, फाइनल एनालिसिस कहो या फाइनल का वेट ही क्यों करें, रोज जो हमारी जो मन की संतुष्टता है, खुशी है, तो वो एनालिसिस तो मेरे और वही परमात्मा या मेरे कार्मिक अकाउंट के बीच है ना। तो इट वाज नेवर बिटवीन मी एंड देम एनीवेज,
0: मी एंड मी होगा,
1: मी एंड मी, मी एंड गॉड, कि मुझे अपने लिए करना है
0: जी।
1: तो जो आपने कहा कि आप सच बोलोगे तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं सच नहीं, इतना ये वो फिर अपने तरीके से बोलेंगे ना, वो उनकी प्रोग्रामिंग है, वो उनका माइंडसेट है। कोई भी इंसान, आप किसी इंसान के पास जाइए जो गलत करता है, गलत मतलब गलत खाता है, नॉनवेज खाता है या अल्कोहल लेता है, अगर वो नहीं छोड़ना चाहता तो वो तो आपको कन्विंस कर देगा कि आपको भी लेना चाहिए, है ना,
0: क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है लोगों के साथ।
1: वो आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताएंगे कि आप भी चक्कर आ जाएंगे।
0: वो रिश्वत लेने के टाइम में वैसा ही होता है।
1: यस,
0: ये ले लो, अब सैलरी से घर नहीं चलता।
1: हाँ।
0: ये चाहिए, आज के एक्सपेंसेस देख लो, बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे, आज तो सब CBSE में पढ़ते हैं या फिर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना चाहिए ये सब।
1: हाँ। तो फिर वही बात है ना कि फिर मुझे क्या करना है, वो वही क्लैरिटी होनी जरूरी है, क्योंकि लोग तो आपको अप्रिशिएट करेंगे अगर आप गलत काम करेंगे।
0: यस, आजकल ऐसा है,
1: आजकल ऐसा,
0: जैसे अगर हम स्पिरिचुअलिटी को अपना रहे हैं तो अभी एज ही क्या है।
1: हाँ, फिर वही बात फिर वही, वो कितना सुनने को मिलेगा कि इनका ना कुछ
0: गड़बड़ है और ये कुछ तो लाइफ में ब्रेक डाउन हुआ होगा,
1: कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो चाहिए इनको, इसीलिए ये सब कर रहे हैं, फ्री में क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। तो वो उनका फिर थॉट प्रोसेस है, उसमें हमें नहीं
0: जाना। लेकिन इंटीग्रिटी से आपको संतुष्टि मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रहा है, तो आपको ये अपनाना चाहिए।
1: यू हैव अ पर्पस बिफोर एनीवन हैज एन ओपिनियन अबाउट यू। ये बात मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ शुरू से, कि मेरा पर्पस है वो ज्यादा जरूरी है रेदर देन कि कोई और क्या कह रहे हैं। और वो ओपिनियन भी वो लोग बोलते हैं आपको गलत भी, वो जो उनमें नहीं होता ना वो उनको इरिटेट करता है।
0: ओके ओके, इसीलिए वो आपके ऊपर सवाल उठाते हैं या फिर आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करने।
1: दो तरीके हैं ना, जो चीज मुझ में नहीं है अगर मैं उस बात से संतुष्ट नहीं हूं, तो मुझे किसी में वो चीज दिखी और मुझे दिखा कि वो अच्छे से कर रहे हैं, तो या तो मैं इंस्पायर हो जाऊंगा कि मुझे भी ये करनी है, वो मुश्किल है, वो मेहनत है ना,
0: या फिर जेलसी,
1: या फिर क्या करें कि मैं चार लोगों को उनकी बात बताकर मैं उनको पुल डाउन करने की कोशिश करूं कि मेरे लेवल तक आ जाए।
0: राइट,
1: ये अहंकार का काम है।
0: अगर ये ऐसा हो रहा हो आपके लाइफ में, चल रहा हो, तो फिर इंस्पायर करते हुए अपने आप को स्टे मोटिवेटेड रहते हुए आपकी अच्छाई को नहीं छोड़ना, ये बहुत चैलेंजेस है।
1: ये चैलेंजिंग है, बट इट्स वर्थ इट। चैलेंजिंग क्या नहीं है लाइफ में, दूसरों की चुगली करना कोई कम चैलेंजिंग थोड़ी है। उसमें भी मेहनत लगती है।
0: बट आपको इजीली वैसे लोग मिल जाते हैं रादर देन कि वो शायद आपको दुख दे रहे हैं, आपको गिरा रहे हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आप अपने आप को स्ट्रांगली मोटिवेट करते हुए उसको पार करते हो।
1: यस, एंड सिर्फ ये बात नहीं है, अगर ये आदत है तो हर जगह वो आदत रहेगी। मान लीजिए हम डीमोटिवेट करते हैं, दूसरों को गलत बोलते हैं, तो मैं कभी सेटिस्फाई रहूंगा ही नहीं, मैं पूरा दिन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूंगा, ऐसी आदतें अपनाऊंगा जो अनहेल्दी है, तो वो भी मुश्किल है। वो कौन सा आसान है, बीमारी के साथ रहना, इरिटेशन के साथ रहना, गुस्से के साथ रहना, जो करते हैं उनसे पूछो, इतना आसान नहीं होता है सब करना।
0: सही बात है, इसीलिए सिंपल रहो वैल्यूज के साथ। मान लीजिए कोई अपनाना चाहता है, रीबिल्ड करना चाहता है इंटीग्रिटी को फिर से, बहुत सारे गलत काम हमने किया है, डिसीजंस लिया है, वैल्यूज भी बहुत सारे गलत चुना है, तो फिर कैसे रीबिल्ड कर सकता है?
1: बस एक ही चीज करनी है कि आज से एक नई शुरुआत करते हैं। आप मुझसे पूछोगे, जैसे जैसे मैं गलती करता था, सीखता था अभी भी, तो फिर खुद को फिर से उठा कर कहता था कि चलो अब से एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करते हैं, जो हो गया हो गया, पास्ट हो गया, ठीक है, खत्म, उससे मैंने सीखा है, अब मुझे सब कुछ सही करना है। और सब कुछ सही करना मतलब बिल्कुल बाइट साइज में अपने टास्क को डिवाइड कर लीजिए कि आज क्या करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये मैं सबको ही कहता हूँ कि आज से काम करो प्रैक्टिकल डूएबल, कि आज ना मुझे एक भी झूठ नहीं बोलना। आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ माइंड झूठ बोलने की कोशिश कर रहा होगा, बट आप पकड़ लोगे कि नहीं आज झूठ नहीं बोलना। फिर आपको तरीका आएगा कि सच भी बोलना है लेकिन तरीके से बोलना है, सभ्यता से बोलना है, प्यार से बोलना है, ये कर सकते हैं। दूसरा वही खुद से बातचीत करते रहना है कि मैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बिकम, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, मेरा पर्पस क्या है। तो कुछ भी काम करना है तो ये चेक करना है ये उससे अलाइनमेंट में है। अगर मैं इंसान बनना चाहता हूँ विद द पावरफुल माइंड, पीसफुल माइंड, क्लियर माइंड, तो रील्स देखना क्या ये अलाइनमेंट में है, 2 घंटे सोशल मीडिया पर रहना, मैं चाहता हूँ कि मैं लॉयल पर्सन बनकर रहूँ, पहले जो हुआ छोड़ देते, लॉयल बनूँ, तो क्या किसी से बात करना चाहिए मुझे, चेक करना है क्यों क्यों चाहिए, फिर अपने आप को बताना है कि नहीं चाहिए ना, ये मेरे मुझसे अलाइन नहीं है जो मैं चाहता हूँ, मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ कुछ। सबसे बड़ा आज जो पीस ऑफ माइंड का जो ऑपोजिट है वो ये है कि हम ना कुछ ढूंढ रहे हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, तो खुद को कहना पड़ेगा कि बस हो गया मेरा सर्च, हो गया डन, अब मुझे पीसफुल कंटेंटेड फील करना है
0: जी
1: अंदर से ही, और किसी से बात करके कुछ भी करके गलत करके मुझे नहीं मिलने वाला है, नहीं करना है मुझे। छोटी सी बात की आज एग्जांपल, आज झूठ नहीं बोलना, आज पूरा दिन मुझे किसी से बात नहीं करनी, आज मोबाइल को 3 घंटे मुझे बंद रखना है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, और उस समय पर मुझे खुद से बात करनी।
0: जी बिल्कुल, तो खुद से बात करते हुए आपको आंसर्स मिलेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, टूल्स आपके पास है, आपने क्वेश्चन अपने आप से पूछा, आंसर ऑलरेडी हमारे अंदर है, बहुत अच्छे अच्छे आंसर आपको मिलेंगे, बस उसको नॉक नॉक करने की ज़रूरत है, वो अपने आप बाहर आना शुरू हो जाएगा।
0: लेकिन आपने बोला कि डेली एक प्रैक्टिस करनी है, या फिर अपने मन को ये बोलना है कि आज मैं ये करती हूँ।
1: हाँ,
0: अगर मैंने सोच लिया कि मैं पूरे साल भर झूठ नहीं बोलूँगी तो शायद नहीं होगा,
1: थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारा माइंड एक साल की बात छोड़ देता है। मतलब रोज करना चाहिए, माइंड को क्लैरिटी चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए, और खुद पे काम करना, ये जो आदतें गहरी आ गई हैं वो उसको सफाई रोज करनी पड़ेगी, तो अपने ऊपर काम करना इट्स एन एवरीडे थिंग।
0: जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल यूथ बहुत सारे जैसे पोर्न एडिक्टेड हैं, और क्योंकि हम बात करें इंटीग्रिटी के बारे में, जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है तब जो काम हम करते हैं ईमानदारी से, तो वो चाहकर भी शायद इस हैबिट को नहीं मतलब इसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, रिबिल्ड नहीं कर पा रहे, तो कैसे कर सकता है, क्या स्टेप यूथ उठा सकता है?
1: एक तो वही बात कि जो भी ये हम एक्सटर्नल, पहले तो सबसे पहले तो एक काम करना है कि अपने ट्रिगर्स को अवॉइड करना है,
0: फोन की नोटिफिकेशन और ये सब।
1: हाँ,
0: okay.
1: मतलब आजकल जैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम है और स्नैपचैट है, और तो मुझे नहीं पता, जितना मुझे पता है पर इतना जितना मैंने देखा उसमें ऐसी ऐसी वीडियोस लोग डालते हैं, है ना, और वो हर बार रियल भी नहीं होती। मतलब कोई लड़की की प्रोफाइल बनाकर मॉफ्ट करके उसे चेंज करके करते हैं, और अब कुछ करने को नहीं है, मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, तो उनको पता है कि कहाँ से एंगेजमेंट ज्यादा आएगा, तो फिर वो जानबूझकर बीच में एक आधी ऐसी वीडियो डाल देते हैं जिससे ट्रिगर हो जाता है। अब वो ट्रिगर हुआ तो फिर वही बात कि इंसान गूगल क्रोम खोलता है और वो शुरू करता है। पहली चीज तो वही कि ट्रिगर्स को जितना अवॉइड हो उतना पॉसिबल अवॉइड करना है, और उसके लिए पहले तो इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए ना, खुद के वेस्ट टाइम नहीं होना चाहिए कि हम घंटों घंटों देख रहे हैं, है ना, पहले तो ये। दूसरी चीज़ कि ये भी एक ट्रैप है, ये भी रियलिटी नहीं होती है जो दिखाई जाती है, और उस वजह से ही ये प्रॉब्लम आती है कि लोगों
0: रियल लाइफ में
1: प्रॉब्लम आती है, और आजकल जितने केसेस सुनने को मिलते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। मूवी देखी मैंने, जो भी नई मूवी है, एक मूवी आई थी एनिमल, और जो भी लेटेस्ट मूवीज आई ध्यान से देखो तो उसमें ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, शुरू से ही किया जाता है एक फीमेल को, तो चलो मूवी अच्छी बनानी है, एक आइटम सॉन्ग डाला और ये किया वो किया। धीरे धीरे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारा माइंड बिल्कुल करप्ट हो गया है, हमें लगता है कि वो इंसान नहीं है, वो
0: ऑब्जेक्ट है
1: ना, तो उस वजह से ये गैप आना शुरू हो जाता है, और रियल लाइफ में जब ऐसा होता नहीं, उनको कुछ ऐसा मिल नहीं पाता तो फिर वो एग्रेसिव हो जाते हैं.
0: ओके.
1: तो ये भी समझना जरूरी है कि ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जो लोग मिलकर कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया वाले करते हैं जानबूझकर ऐसी वीडियो, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स वाले जानबूझकर, अच्छा स्कूल के बच्चे हैं चलो ऐसे करो, कुछ वेब सीरीज बनाते स्कूल के बच्चों के लिए. बच्चे तो देखेंगे कि अरे स्कूल जैसा है, कॉलेज वालों के लिए कॉलेज, ऑफिस वालों के लिए ऑफिस. तो उनको गेम समझ आ गई है कि लोगों के पास ज्यादा करने को कुछ नहीं है, इनको भर भर के कॉन्टेंट दो. तो ऐसे ही फिर वो पोर्न एडिक्शन का हो जाता. तो अगेन एक पर्पस, एक क्लैरिटी कि मुझे क्या करना है.
0: लोग खाली हैं अंदर से, आपको लगता है इसी कारण ये सब हो रहा है?
1: इसी कारण से भी खाली और खाली होते जा रहे हैं. ये लेयर ऐड कर रहा है, रियल रीजन है खाली है इस वजह से ये चीज चल रही है.
0: वाइस वर्सा
1: जैसे मैंने कहा कि लगते सब अच्छे हैं लेकिन कितनी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, और कभी भी कभी कभी तो मुझे लगता है 90% तो बातें बाहर आती नहीं है, पर रियलिटी में सोसाइटी में परिवार में क्या चल रहा है. कोई भी आजकल कहते हैं कोई सेफ नहीं है, कोई बच्चा सेफ नहीं है.
0: तो अंदर से सब खोखले हैं, मतलब वैल्यूज है नहीं.
1: हाँ, और वो मानने को रेडी नहीं है
0: कि हमारे अंदर वैल्यूज नहीं.
1: हाँ,
0: ओके.
1: मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक पब्लिक प्रोग्राम में इसी बारे में बात कर रहा था
0: जी.
1: कि हम कहते हैं कि इतना ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, इतना ऐसे प्योर नहीं होना चाहिए. फिर मैंने उनको यही सब स्टैट्स बताए कि फिर ये कौन लोग हैं जो 70% पीपल वॉच पॉर्न. ये स्टैट्स है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो ये कौन लोग हैं फिर देख रहे हैं जो हमें से ही है. तो एड्रेस उसको करना जरूरी है और ये अवेयर होना जरूरी है कि ये मेरे अंदर के खालीपन को दूर नहीं करेगा और खाली करेगा. खालीपन दूर करने की वही बात कि जितना ये छोटी छोटी बातों में चीट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सैड है, परेशान है, दुखी है, गलत आदतें हैं, माइंड से अपने आप से दूर है, तो फिर ये हर तरह की वो जो हमने शुरू में बात की कि मेन्यू पूरा है. जितना डिस्ट्रैक्ट होना चाहो हो सकते हो. इतना कंटेंट है आज ये नेटफ्लिक्स पर सिर्फ कि 100 साल अगर आप 4 घंटे भी देखो ना तो भी खत्म नहीं होने वाला. सिर्फ नेटफ्लिक्स, बाकी तो छोड़ ही देते. तो वो उसका कुछ अंत नहीं है. हमें लगता है कि ये मूवी देख लें, वो मूवी देख लें, ये देख लें, नहीं कुछ रखा नहीं है उसमें. अपनी स्किल्स पर काम करना, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, वो बहुत ज़रूरी है
0: जी. तो आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि अंतिम मोड पर तो हम पहुँच चुके हैं, कि ऐसे कौन सी आदत है जो हम आज से अपनाएं ताकि अगर हम अकेले भी रहें तो भी हम मौज में रहें वो अलग बात है, लेकिन हम सही काम करें, सही तरीके से काम करें.
1: सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आज के समय में है वो है कि ज़रूर टाइम निकालना चाहिए हमें खुद के लिए. जो मैं करता हूँ रोज़ 1 घंटा 2 घंटा अपने टेरेस पर जाता हूँ और खुद से बात करता हूँ.
0: सेल्फ टॉक
1: बिना किसी चीज़ के,
0: बिना कोई फिल्टर के,
1: बिना एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन के. मतलब कोई उस समय मुझे ना कुछ म्यूजिक सुनना है, ना कुछ वीडियो देखना है, ना कुछ कुछ भी नहीं. सिर्फ और सिर्फ मैं, मेरा नोटबुक पेन, वॉक किया और खुद से बात की. चाहे आप कितना भी ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो इस समय, लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही हो, अंदर कोई बात खा रही हो, गिल्ट हो, अनकंफर्टेबल हो,
0: सब कुछ लिखना है या बात करनी है अपने आप से,
1: दोनों सब कुछ लिखना है. और ये आदत बनानी है जो मैं पिछले कुछ दिन से दोबारा से शुरू किया है, पहले भी करता था, रोज 1 या 2 पेज जरूर लिखने हैं. व्हाटएवर,
0: क्या बात करनी है अपने से, क्या पॉइंट्स, ऐसा होना चाहिए
1: मेरा आज का दिन कैसा गया.
0: ओके.
1: आज मैंने क्या किया, आज क्या है. आप इतना भी लिखोगे ना, अपने आप देखना आपकी गाड़ी ऐसे स्टार्ट होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको खुद को रोकना पड़ेगा कि बस हो गया एक बार, बस कि आज का मेरा दिन कैसा गया. क्योंकि हम जब लिखते हैं तो रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं तो बहुत सी बातें, थॉट्स जो है वो वर्ड्स में आ जाती है. जैसे कभी कभी हम कुछ गाना सुनते हैं ना तो हमें क्यों अच्छा लगता है, हम कहते हैं सेम फीलिंग मेरी थी, बस मुझे वर्ड्स नहीं पता थे. तो वो इट्स अ गुड फीलिंग. तो जब आपके अंदर वो थॉट्स चल रही है, जब आप वर्ड्स में उसको ट्रांसलेट करते हो ना, तो बड़ा अच्छा फील होता है. तो इसलिए खुद से बात करें बिना किसी चीज के, खुद को चाहे वो अनकंफर्टेबल हो कितना भी, पर अवॉइड नहीं करें, भागे नहीं. भागना, अवॉइड करना, इट्स एन ईजी एंड लेजी थिंग. वो मुझे नहीं करना, मुझे खुद को ऑनेस्टली चेक करना है. मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि उसमें क्या होता है. आपको इतना कुछ दिखेगा कि जैसे मैं खुद को बोलता हूँ, हितेश ये तो फिर ईगो है ना, हितेश ये तो फिर गलत बात है ना, ये तो फिर आप सोच ही सही नहीं है आपकी, ये तो ईगो आ रही है, आप क्यों ये चाहते. मतलब आपको इतना लेयर दिखेगा ईगो का कि आप कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहते हो लाइफ ऐसी हो, फ्यूचर में ऐसा हो. कुछ भी कंट्रोल में हमारे होता नहीं,
0: कहीं ना कहीं ईगो फैक्टर की वजह से, अहंकार की वजह से भी
1: ये ईगो होता
0: है. इंटीग्रिटी को भी नहीं समझ पाते, कर भी नहीं पाते शायद.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो उस ईगो को समझना और उसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है.
0: तभी आप इंटीग्रिटी को अपना सकते हो, फिर आप मेंटल पीस और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हो.
1: हाँ, वो चीजें साथ साथ चलेंगी,
0: दोनों साथ साथ.
1: क्योंकि कॉन्फिडेंस कुछ एक अलग चीज नहीं होती. मैं आपको कहूँ आपको अपने दोस्त से बात करनी है, आप ये नहीं कहते मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए. वो तो होता ही है, नेचुरल है. जब आप क्लियर होते हो, जब आप कंफर्टेबल होते हो, रिलैक्स्ड होते हो, तो आपको कुछ भी अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं है. कॉन्फिडेंस आप नेचुरल होते हो, ऑटोमेटिक आता है. तो क्लैरिटी पे काम करना है, पर्पस पे काम करना है कि मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है. मतलब मुझे कैसा इंसान बनना है, मेरा पर्पस क्या है.
0: तभी ऑटोमेटिक जो भी वैल्यूज हम ऐड करना चाहते हैं अपने जीवन में वो कर सकते हैं,
1: वो अपने आप ऐड होती जाएगी.
0: जी बिल्कुल. तो अभी तो वक्त हो गया है अलविदा कहने का, तो लास्ट लाइन क्या बोलना चाहेंगे आप यूथ को, एक पावरफुल मैसेज क्या देना चाहेंगे?
1: वही कि अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, एक्शंस को इतना इतना क्लियर, इतना प्योर बनाए कि जब हम ये सोचें कि ये वापस आएगा तो अच्छा फील होना चाहिए कि I'm okay to get it. अगर वापिस भी आता है तो मेरे लिए ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है.
0: अगर मेरा कर्म वापस आए तो
1: हाँ, बस मुझे ये करना है कि अगर वो वापिस आए I should be okay with it. मैं कंफर्टेबल होना चाहिए. अगर नहीं तो फिर वही करूँ जिससे मैं कंफर्टेबल हूँ, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं. मुझे वो करना है कि वही देखकर मेरे आसपास के लोग, मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे क्लोज वंस हैं, वो करेंगे मेरे साथ. बस इसको याद रखना है.
0: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा इंसाइट्स है ये, और हमने आज बहुत कुछ सीखा आपसे. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए.
1: जी जी, धन्यवाद धन्यवाद.
0: तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में. तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM.

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति, मैं हूं ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। आज 1 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात बताई है। बाबा कहते, एक है ज्ञान, दूसरा है अज्ञान और तीसरा है विज्ञान। ज्ञान का सागर बाप जब आते हैं तो हम बच्चों को योग का विज्ञान सिखाते हैं। ज्ञान से मुक्ति होती है, विज्ञान से जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं और फिर द्वापर के बाद अज्ञान आरंभ होता है। बाबा कहते हैं कि विज्ञान अर्थात योग, बाबा के साथ हमारा योग तभी लगता है जब हम निश्चय बुद्धि बनते हैं। तो ज्ञान में भी निश्चय चाहिए, विज्ञान में भी निश्चय बुद्धि होकर के बाप को प्यार से याद करना है। लेकिन जब द्वापर आरंभ होता है तो अज्ञान आरंभ होता है, और अज्ञान इसीलिए आता है क्योंकि देह अभिमानी बने और देह अभिमानी अर्थात कर्मेंद्रिय के अधीन। तो बाबा आकर के हम बच्चों को यही ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम्हें अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करना है, निश्चय बुद्धि होकर बाप को बहुत प्यार से याद करना है, तो तुम ज्ञान की प्रालब्ध सदा सुख को प्राप्त करते हो, अज्ञान की प्रालब्ध तो दुख है। इसीलिए मनुष्य दुख में फिर परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि वही ज्ञान का सागर आकर के हम बच्चों को फिर से ज्ञान अमृत देते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। आज की मुरली से प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास तो सदा करते रहते, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, वे हट से अपनी कर्मेंद्रिय को वश नहीं करते। जो अशरीरी बनने का अभ्यास करते, बाबा कहते, वह हट से अपनी कर्मेंद्रिय को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रिया स्वतः शीतल हो जाती है। हम आत्मा भाई भाई है, यह स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है, दूसरों की याद नहीं आती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, शिव बाबा सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रालब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रालब्ध। अज्ञान की प्रालब्ध है दुख, ज्ञान की प्रालब्ध सुख है। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान का, रात है अज्ञान, यह भी किसको पता नहीं है। ज्ञान अज्ञान के विषय में कोई जानते ही नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है, ये बेहद की बातें हैं। ये कोई हद के दिन और रात या ज्ञान अज्ञान की बातें नहीं, बाबा कहे ये बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो, जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। यह भी तुम जानते हो कि यह जो मंदिर आदि है ये सब यादगार है। उनके जीवन कहानी को भी तुम जानते हो। मंदिरों में
जो देवताएं हैं उनकी जीवन कहानी भी तुम जानते हो, जो पूजा करने जाते हैं वह खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है, किस लिए? भक्ति का फल देने के लिए। भगवान को भक्तों से मिलना है, किस लिए? भक्ति का फल देने के लिए। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो जरूर होने का है, कोई भी समय हो सकता है। विनाश कोई भी समय हो सकता है। तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है, अनेक कुदरती आपदाएं होती है। ये तो लिख देना चाहिए, ग्रह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। ये तो ड्रामा की नोंद है जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज सब आने वाली है। बाबा कहे नेचुरल कैलेमिटीज भी विनाश में भी मदद करेंगे। मुसलधार बरसात पड़ेगी, भूखों मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब आने की है। इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते हैं ये तो जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। जरूर इकट्ठा विनाश होगा, दुनिया भर में इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं ये सब कपड़े धोए जाएंगे। बाबा कहते हैं ये सब आत्मरूपी कपड़े धोए जाएंगे। ये बेहद की बड़ी मशीनरी है। गाया जाता है मूत पलेती कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं है, स्थूल कपड़ों की बात नहीं है, यह है शरीर की बात। आत्माओं को योग बल से धोना है। वास्तव में बेहद की बड़ी मशीनरी में आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं, रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहां जहां भक्ति यज्ञ होते हैं, बाबा कहते जहां जहां भक्ति यज्ञ आदि होते हैं वहां जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो। बाबा के उनको समझाना चाहिए कि इन देवताओं ने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो, तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। ज्ञान में आए तो बाबा कितनी समझ देते हैं। परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी हो जाती है। सर्वव्यापी कह दिया तो ये जीवन कहानी थोड़ी हो जाती है। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे, जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते इस समय मैं आकर स्थापना करता हूं, कराता हूं। स्थापना करता भी हूं, कराता भी हूं। करण करावन हार हूं। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे, बाबा आकर इनकी कर्मेंद्रिय द्वारा करते हैं। इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। करण करावन हार तो जरूर सन्मुख हो कराएंगे, जरूर सन्मुख आकर के ही कराएंगे। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत कहते हैं दुनिया में, बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो,
हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। कई माताएं भी बाबा को कहती हैं, बाबा आप प्रेरणा करो हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहती है प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं, फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों, इस संसार में आए ही क्यों, फिर शिव जयंती क्यों मनाते? एक तो ईश्वर क्या चीज है ये नहीं जानते, सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे, वह तो करण करावन हार है। आकर के रास्ता बताते हैं, कर्मेंद्रिय से मुरली चलाते हैं, जब तक कर्मेंद्रिय का आधार न ले तब तक मुरली कैसे चलाए। ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है, समझते हैं ज्ञान बिगर गति नहीं। ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो ना, विज्ञान भी कहते हैं तो ज्ञान, अज्ञान विज्ञान भी कहते हैं। अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, ज्ञान माना समझ, समझ से मुक्ति और फिर विज्ञान से जीवन मुक्ति कह सकते हैं। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए, परंतु बाप समझाते हैं ये पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान की क्या दरकार है, सत्युग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध। ये बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे, ये ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता है? बाप कहते ये प्रायलोक हो जाता है, सत्युग से प्रायलोक हो जाता है। हाँ, संगम पर ज्ञान मिला, उसके बाद जैसे महाविनाश हुआ, सतयुग आया, तो वहां ज्ञान की प्रारब्ध हो जाती है, ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। दिन हो गया तो अज्ञान तो है ही नहीं, दिन हो गया तो फिर उसको अज्ञान भी नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता ज्ञान की प्रारब्ध है, वहां ज्ञान है नहीं तो उसको अज्ञान नहीं कहेंगे। दिन हो गया फिर अज्ञान तो है नहीं, जो ज्ञान की दरकार रहे, यह भी समझने समझाने की बातें हैं, बहुत गुह्य बातें, फट से कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, भक्ति का फल देने लिए, भक्ति के बाद है सदगति। यह विनाश भी होगा जरूर, आसार खड़े हैं, तुम सुनते रहेंगे, चिंगारी लगती है तो एक दो घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, विनाश तो होना जरूर है। सतयुग में होते ये थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी, तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है, माया नाक से एकदम पकड़ लेती है, ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है। बड़े ते बड़ी चोट है काम विकार की, इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है। यही पतित बनाते हैं, झगड़ा होता ही है विकार पर। विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करे वो अच्छा है। हम बाबा कहते हैं झगड़ा सारा विकारों पर है, और अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करे वो अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएंगे परंतु पवित्र रहेंगे, इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है, पांच विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए।
ज्ञान मार्ग में सबसे पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए, फिर जीते जी मरे हुए हैं, यहां से लंगर उठा लिया है, कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है, अब हम यात्रा पर जा रहे हैं, हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को यह ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे, हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में याद रहे कि यह तो कब्रिस्तान है, फिर हम सुखधाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं, पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं, याद से ही विकर्म विनाश होंगे तब आत्मा शरीर छोड़ेगी, याद से विकर्म विनाश होंगे तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है, सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो, इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है। बाबा कहते इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है, अलफ को याद करो बस, परंतु माया वह भी याद करने नहीं देती, मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है, आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है, आत्मा भाई भाई है, देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं, यहां तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो, प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों को वर्षा चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है, अपने को आत्म समझना यही मेहनत है, देह अभिमान न रहे। बाबा कहे प्रवृत्ति मार्ग है, दोनों को वर्षा चाहिए, तो आत्मा पुरुषार्थ करती है और पुरुषार्थ है अपने को आत्म समझना, देह अभिमान न रहे। शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे, हम आत्मा हैं, बाप के पास जाना है, शरीर का भान ही न रहे। जितना योगी बनते जाएंगे कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी, देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां चंचल होती है। आत्मा जानती है, क्या जानती है आत्मा, हमको प्राप्ति हो रही है, शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत होती जाएगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्मेंद्रिय को शांत करते हैं, वह तो हठ योग हो गया ना, तुमको तो योग से काम लेना है। बाबा कहते तुम्हें तो राजयोग या कहो बुद्धि योग से काम लेना है, क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो। जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत होती जाएगी, जितना जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत हो जाएगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्राप्ति तो बहुत ऊंच है ना। बाप कहते योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्मेंद्रिय पर जीत पहनते हो, इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता पतित से पावन बनते हो, प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना, योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते हो। मेहनत कोई बहुत नहीं है, कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है, कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है, यह भी मूर्खता है। बाबा कहते एकदम फ्री जीवन कुमारी जीवन, उससे अधर कुमारी अगर बन गए तो यह भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत है जो हिम्मत करते हैं परंतु आग की आंच आ जाती है तो खेल खलास। बाबा कहे तो खेल खलास,
इसलिए बाबा कहते कुमारी फिर भी अच्छी है। अदर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी, बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है, दो हो पड़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वेत हो जाता है, दो से द्वेत आ जाता है, जहां तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है, बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। ऐसे जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े, ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है, कुमारियों ने नाम भी निकाला है, कन्हैया नाम गाया जाता है ना, कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है। इन्हों के लिए बहुत सहज है, स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ जिसमें बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसे बनना है। कल्प पहले भी रहे हैं तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं, क्या फरमान करते हैं, मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो। दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं, तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है, सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है। पावन बनने के बिगर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। झरमुई झरमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते तो आप ही अपने को श्रापित करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं फरमान करता हूं और बच्चे जितना श्रीमत पर चलते जाएंगे भगवान की दुआओं के पात्र बनते जाएंगे, बाकी श्रीमत पर नहीं चलते तो अपने आप को श्रापित कर देते हैं। तो ये तो बाबा सावधान कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झरमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रिय को शांत शीतल बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा बाप में स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। जो बच्चे बाप में स्वयं के पार्ट में ड्रामा के हर सेकंड की एक्ट में 100%

करना है। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। आज का व्यक्त इशारा है, आज से अगस्त मास शुरू हुआ तो आज से अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प चलना, मेजॉरिटी बच्चों में अभी यह संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है, जो मन मना भव होने नहीं देता। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। बाबा कहते, श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। अच्छा, ओम शांति।